मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज एवं FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के बैशाख माह की 29वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 19 मई 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:52 हो चुके हैं। आरंभ होती है आज की ये सभा।

0: आप जुड़े हैं आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से। आज खेत खलियान कार्यक्रम में चर्चा का विषय है जैव उर्वरक। वार्ताकार हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह।
1: भूमि उपचार के लिए 2 किलोग्राम कल्चर लेकर 50 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट में मिलाकर आखिरी जुताई से पहले खेत में बिखेर देते हैं। सब्जियों के लिए बिछड़ा उपचार भी कर सकते हैं। बिछड़ा उपचार करने के लिए 600 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर कल्चर लेकर 100 से 200 लीटर पानी में घोल बना लेते हैं और बिछड़े की जड़ों को आधे घंटे तक दबाते हैं। आधे घंटे के बाद बिछड़े को इच्छित खेत में रोपाई कर दी जाती है। फॉस्फोबैक्टीरियन या PSB जीवाणु खाद, इसका प्रयोग धान, गेहूँ, मक्का एवं सब्जी आदि में किया जाता है। बीज उपचार, 600 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर कल्चर लेकर 1 से 2 लीटर पानी में घोल बनाकर बीज में मिला देते हैं। मिलाने के उपरांत साया में छुकाकर खेत में बिजाई कर दी जाती है। भूमि उपचार के लिए 2 किलोग्राम कल्चर एवं 50 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट लेकर के मिला लेते हैं और इच्छित खेत में आखिरी जुताई से पहले बखेर दिया जाता है। सब्जियों के लिए बिछड़ा उपचार करते हैं और बिछड़ा उपचार के लिए 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर कल्चर लेकर 100 से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर पौधे की जड़ों को डुबोते हैं और ये आधे घंटे तक डुबोया जाता है। डुबोने के बाद इच्छित खेत में इसकी बिछड़े से रोपाई कर दी जाती है। माइकोराइजा, इसका प्रयोग धान, गेहूँ, मक्का, सब्जियाँ एवं फल वाली पौधों में किया जाता है। माइकोराइजा का उपचार पौध क्यारी में भी कर सकते हैं। जैसे 100 ग्राम इनोकुलम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से भूमि उपचार, 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। यदि बाग में पौधे लगे हैं तो एक पौधे में 200 ग्राम इनोकुलम पर्याप्त रहता है। ये इनोकुलम पौधे की जड़ों के आसपास खोद करके उसके जड़ के आसपास मिला दिया जाता है। नील हरित शैवाल, इसका प्रयोग केवल धान में किया जाता है और इसके लिए 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कल्चर लेकर उसको 20 किलोग्राम मृदा या बालू में मिलाकर धान रोपनी के 10 दिन के बाद छिड़काव कर देते हैं। जैव उर्वरकों से लाभ, रासायनिक उर्वरकों से सस्ते होते हैं जिससे फसल उत्पादन की लागत घटती है। जैव उर्वरकों के प्रयोग से नाइट्रोजन व घुलनशील फास्फोरस की उपलब्धता पौधों के लिए बढ़ जाती है। जैविक खाद से पौधों में वृद्धि कारक हार्मोन्स उत्पन्न होता है जिनसे उनकी बढ़वार पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। जैविक खाद से खेत में लाभकारी सूक्ष्म जीवों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। जैविक खाद से पर्यावरण सुरक्षित रहता है एवं मानव और पशुओं के स्वास्थ्य पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैव उर्वरकों के प्रयोग करने में कौन सी बातें ध्यान रखें? नाइट्रोजनयुक्त जैव उर्वरकों के साथ हमेशा फॉस्फोबैक्टीरियन या PSB जैव उर्वरक का प्रयोग करना अत्यंत लाभकारी है। प्रत्येक तिलहनी फसल के लिए अलग अलग राइजोम कल्चर आता है, अतः तिलहन फसल के अनुरूप ही राइजोम कल्चर का प्रयोग करें। जैव उर्वरकों को धूप में कभी भी ना रखें। कुछ दिनों के लिए रखना हो तो मिट्टी के घड़े का प्रयोग किसान भाई कर सकते हैं। फसल विशेष के अनुसार ही जैव खाद का चुनाव करें। फसल उत्पादन की किसी भी संभावना का मूलाधार मिट्टी है, जिसमें जैविक एवं अजैविक पदार्थों के मिश्रण के अलावा सूक्ष्म जीवाणुओं की उपस्थिति की अनंत संभावनाएं हैं। लगातार फसल उत्पादन के परिणाम स्वरूप कृषिगत भूमि में उर्वरता एवं उत्पादकता का लगातार हानि होते जा रही है। बिहार में जहां पूरी आबादी का लगभग 90% लोगों की जीविका का एकमात्र संसाधन कृषि है, मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी के अलावा फसल उत्पादन योग्य मिट्टी के भौतिक।
0: खेत खलियान कार्यक्रम में आपने जाना जैव उर्वरक के बारे में। डॉक्टर महेंद्र सिंह वार्ताकार थे। प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। लीजिए अब सुनिए दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नॉर्वे को समझौते के तहत 100 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल

0: करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री योनास गहर स्तोरे भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे।
2: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन वो परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में देश में वाटर मेट्रो सेवाओं की शुरुआत को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पहले चरण में गुवाहाटी समेत 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो सेवा पर्यावरण अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था होगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्स एवं FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है आज का चिंतन मनन।
4: सर्वभू भारतीय परंपरा में विवाह का काफी महत्व है। हमने विवाह को एक प्रमुख संस्कार माना है और मानव जीवन की पूर्णता के लिए इसे आवश्यक माना गया है। भारतीय चिंतकों ने जीवन को चार आश्रमों में बांटा है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यस्त और वानप्रस्थ। इसमें गृहस्थाश्रम विवाह संस्कार और इसके कर्तव्यों के पालन का काल है। भारतीय इतिहास में राजा जनक, संत कबीर ऐसे कई महापुरुष हुए हैं जिन्होंने गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी परम संत का दर्जा प्राप्त किया है। ऐसे ही एक महापुरुष है महात्मा गांधी। मोहनदास का विवाह बहुत ही कम आयु में हो गया था। उनकी पत्नी कस्तूरबा उनसे कुछ ही महीने बड़ी थी। शुरुआती दिनों में अन्य पतियों की तरह ही गांधी में भी पुरुषवादी अहंकार भरा था। वे कस्तूरबा पर रोब जमाने और उस पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाने में भी पीछे नहीं रहे। लेकिन जैसे जैसे गांधी ने कस्तूरबा को जाना, वे उनके गुणों के कायल हो गए। अब तक बा ने स्वयं को पूरी तरह बापू के अनुरूप ढाल लिया था और बापू भी बा का महत्व समझने लगे थे। एक दूसरे को जानना, समझना और स्वीकारना दाम्पत्य जीवन का एक सर्व प्रमुख कर्तव्य है। सन 1882 में विवाह होने के बाद दोनों 1888 तक साथ साथ रहे। लेकिन गांधी जी के इंग्लैंड प्रवास के बाद कस्तूरबा घर पर अकेले ही रही। उन्होंने अकेले ही अपने बच्चे हरिलाल का पालन पोषण किया। शिक्षा पूरी होने के बाद गांधी जी इंग्लैंड से लौट आए, लेकिन फिर जल्द ही उन्हें अफ्रीका जाना पड़ा। उस दौरान भी बा ने कई वर्षों तक अकेले दुख झेला। फिर बाद में वो गांधी के साथ दक्षिण अफ्रीका गई। दक्षिण अफ्रीका में बा ने गांधी जी का बखूबी साथ दिया। वहां भारतीयों की दशा के विरोध में जब वो आंदोलन में शामिल हुई तो उन्हें गिरफ्तार कर 3 महीने के लिए जेल भेज दिया गया। जेल में उन्होंने फलाहार करने का निश्चय किया। अधिकारियों द्वारा उनकी फलाहार की बात नहीं सुने जाने पर बा ने उपवास किया। इसके बाद अधिकारियों को झुकना पड़ा। यहां कस्तूरबा ने न केवल जीवन संगिनी की भूमिका निभाई बल्कि सहधर्मिणी की भी भूमिका निभाई। आगे चंपारण सत्याग्रह के दौरान भी कस्तूरबा ने गांधी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम किया। कस्तूरबा ने लोगों को जागरूक करने में बड़ी भूमिका निभाई। खेड़ा सत्याग्रह के दौरान भी बा घूम घूम कर स्त्रियों का उत्साहवर्धन करती रही। विवाह के साथ फेरों के सातों वचन को निभाने का ये एक बेजोड़ उदाहरण है। 1930 में दांडी और धरासना के बाद जब बापू जेल चले गए तब बा ने उनका स्थान लिया और लोगों का मनोबल बढ़ाती रही। देश की सेवा के लिए एक साथ अपने जीवन को समर्पित करने वालों में गांधी दंपति एक आदर्श उदाहरण है। अंतिम समय में बा को निमोनिया हो गया था। उनके मुंह में जल्दी जल्दी बलगम जम जाती थी जिससे उन्हें बार बार थूकना पड़ता था। बापू ऐसे समय।
3: आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से आप सुन रहे थे चिंतन मनन। आइए अब आनंद लेते हैं भक्ति गीतों के कार्यक्रम वंदना का आरंभ करेंगे देश वंदना के साथ।

हमारा जीवन किसी संग्राम से कम नहीं, और इस संग्राम की शुरुआत, एक नई शुरुआत हम हर रोज़ करते हैं। और कहते हैं कि किसी संग्राम की शुरुआत करें या किसी भी चीज़ की शुरुआत करें, हमें ईश्वर का नाम लेना चाहिए। उससे हमें शक्ति मिलती है, हमें विश्वास रहता है कि कोई है जो हमें देख रहे हैं, हमारा साथ देने को हमेशा तत्पर हैं। और कहते हैं कि अगर विश्वास हो मन में तो हम बड़ी सी बड़ी बाधा को आसानी से पार कर लेते हैं। केवल एक विश्वास ही काफ़ी होता है हमारी मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए। तो आइए अपने दिन की शुरुआत करें एक विश्वास के साथ, विश्वास कि ईश्वर है हमारे साथ। आइए नाम जपें ईश्वर का।

जीवन के संग्राम में फिर चाहे कोई रिश्ता हो या कोई कार्य, सब समर्पण मांगते हैं। अगर हम किसी कार्य को समर्पण के साथ ना करें तो वो असफल हो जाता है, आधा अधूरा सा लगता है। ठीक उसी तरह कोई रिश्ता हो या भक्ति हो या प्रेम हो, सब समर्पण मांगते हैं। यदि समर्पण ना हो तो वो भक्ति अधूरी होती है, प्रेम अधूरा होता है और कई बार तो रिश्ता खत्म होने की कगार तक पहुंच जाता है। समर्पण बहुत ज़रूरी है और अगर भक्ति में, प्रेम में, रिश्ते में समर्पण सीखना हो तो हमें भगवान हनुमान से सीखना चाहिए। राम भक्त हनुमान, जिनकी आँखों में उनके प्रभु राम की सारी कथा नज़र आती है, वो इतने समर्पित कि उनके सीने में भी उनके प्रभु नज़र आते हैं केवल।

सारी रामकथा का सार बजरंगबली के आंखों में मिलता है। फिर चाहे वो संजीवनी बूटी लानी हो या लंका तक राम जी का संदेश माता सीता तक पहुंचाना हो, सारा का सारा सार उनकी आंखों में, उनके हृदय में छपा है। परंतु ये सारी घटनाएं पहले ही लिखी जा चुकी थी। वो केवल ईश्वर होकर भी वो केवल उस घटना के अन्य अन्य पात्र को निभा रहे थे, अपने अपने पात्रों को निभाते हुए जो उनके लिए लिखा गया था वो कर रहे थे। और वो तो ईश्वर थे और हम मानव, हमारे लिए भी हमारा जीवन लिखा जा चुका है। और अगर हम अपने लिखे जीवन को बदलना चाहते हैं, तब उस ईश्वर से, ईश्वर के लिखे को बदलने के लिए हमें इतनी मेहनत करनी होती है कि वो ईश्वर खुद कहें कि इसके जीवन के लिखे कष्टों को बदल दो, ख़त्म कर दो। रावण को भी मौका दिया गया था, उन्हें भी समझाया गया था। अगर वो समझाने पर समझ गए होते तो शायद कहानी कुछ और होती, अंत कुछ और होता। लेकिन जब हमारा वक्त बुरा चल रहा होता है, तब हमारी सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें जो सोचने समझने की शक्ति में ना हो, जो ये ना समझे कि उनके आसपास किस तरह के लोग हैं, जो ये ना समझे कि उन्हें किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो समझ जाइए कि वो अपने आपे में नहीं है। वो अपनी शक्ति, सोचने समझने की शक्ति ईश्वर के हाथों समर्पित कर चुके हैं और उनका अब वही होगा जो ईश्वर चाहते हैं, क्योंकि मारने वाला भी भगवान है, बचाने वाला भी भगवान।

मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। कुछ भक्त इस बात को इतनी गहराई से समझ लेते हैं और इतनी अच्छे से अपना लेते हैं कि उसके बाद उन्हें लगता है कि जब ईश्वर की शरण में आ ही गए हैं तब किसी और बात की क्या चिंता, ईश्वर देख लेंगे। वो अपने आप को पूर्णतः ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, अपने जीवन को उन्हें समर्पित कर देते हैं और वो मानते हैं कि जब प्रेम रघुनंदन से हो गया है, जब प्रेम ईश्वर से हो गया है तो दुनिया के मोह में क्या पड़ना, और वो ईश्वर के प्रेम में जोगी जोगी बने फिरते हैं।

0: भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे थे आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से। आइए अब स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में जाने मेलिना रोग के बारे में। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर चंद्रमौली उपाध्याय।
1: रात्रि में कहीं भी ऊपर से लेकर नीचे तक रक्त का स्राव होता है।

बीमारी की वजह से तो पखाना के रास्ते से काला काला पखाना निकलता है, इसी को मेलिना कहते हैं। जैसे कि स्टोमक में अल्सर हो जाना, ड्यूओडेनम में अल्सर हो जाना,

0: इतना मेरा खून कहाँ से आ रहा है, और डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसके लिए जांच कराना चाहिए। उसका जांच है कि एंडोस्कोपी करके हम लोग देखते हैं कि अंदर में जो एसोफेगस है उसमें वायरिसेज होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं। जब पेशेंट को सिरोसिस लिवर हो जाता है तो डायलेट कर जाता है, जो सबसे कॉमन काउज है, और वहाँ से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। तो उसको हम लोग देखते हैं एंडोस्कोप से या पर्याय एंडोस्कोप से, और उसका इलाज कर देते हैं और ब्लीडिंग बंद करने का कोशिश करते हैं और कर देते हैं। उससे आगे बढ़ते हैं तो स्टोमक में असर होगा, तो ड्यूओडेनम में असर होगा, तो दूसरा काउज है जिसमें ज़्यादा मेलिना होता है, फिर उसका इलाज करना पड़ता है।
1: यानी पेट के किसी आंत या किसी हिस्से में वो घाव हो सकता है, आम भाषा में यही कहा जाए,
0: घाव हो जाता है,
1: उसके चलते जो खून आता है मल द्वार से वही मेलिना है,
0: मेलिना कहलाता है।
1: और इसमें खतरा कितना है डॉक्टर साहब, जीवन का खतरा कितना?
0: बहुत ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा खून गिर जाए तो आदमी को एनीमिक हो जाएगा और खून की कमी से मर जाएगा। इसलिए उसको तुरंत थोड़ा सा भी ब्लड नजर आवे तो तुरंत उसका डॉक्टर से जाँच करा के और उसका इंतजाम करना जरूरी है
1: जी। तो कभी कभी ऐसा होता है गांव देहात में, या हम लोग आम तौर पे कभी कभी थोड़ा बहुत अगर एक आध बार इस तरह से हुआ तो हम लोग बवासीर का समझ लेते हैं या कुछ और चीज़ हाँ। समझ लेते हैं।
0: बवासीर में जो खून गिरता है वो एकदम लाल रंग का होता है, वो पखाना के रास्ता से एकदम निचला भाग से
1: जी
0: रेक्टम से निकलता है और वो एकदम रेड रहता है
1: जी।
0: वो मैलिना नहीं है, मैलिना तब कहेंगे जब एकदम काला रंग का खून ऊपर से आता है, तब मैलिना कहते हैं। इसको तो तुरंत पता चल जाता है पेशेंट को कि हमको खून गिर रहा है, लाल रंग का खून गिरा, पखाना करने गए तो वो तुरंत डॉक्टर के पास चला जाता है
1: जी।
0: लेकिन कभी कभी जो काला रंग का पखाना होता है आदमी उसको नहीं देख पाता है
1: हाँ।
0: वो तो पैन में पखाना कर रहा है तो नहीं देखा, जो जमीन पर बैठ के पखाना करेगा तो देखेगा
1: हाँ।
0: या हर लोग अपना देखता नहीं है कि हमारा रंग कैसा हुआ
1: जी जी जी,
0: इसलिए वो ओवरलुक हो जाता है। लाल रंग देख के आदमी तुरंत डर जाता है कि हमको खून गिर रहा है।
1: हाँ ये बात है, तो इसलिए मेलिना में पहचान का खतरा ज्यादा है, पहचान
0: नहीं हो पाता है, कभी कभी तो पता भी नहीं चलता है। और कैंसर रहता है कोलोन में तो ब्लडिंग होते रहता है, लेकिन पेशेंट को ये पता नहीं रहता है कि हमारे हाथ से खून बह रहा है।
1: अच्छा।
0: बहुत कम ब्लड गिरता है उसे और धीरे धीरे पेशेंट एकदम एनीमिक हो जाता है।
1: अच्छा, वो अपना स्टूल देखे, पकाना देखे, इसके अलावे भी कोई लक्षण उसका उभरेगा क्या, किसी को मेलिना की समस्या?
0: हाँ होगा, तो जैसे ही कोई पेशेंट एनीमिया लेके आता है जिसमें रक्त अल्पता जिसको कहते हैं
1: जी जी,
0: तो हम लोग उस पर देखते हैं कि कहीं इसको कहीं से ब्लडिंग तो अंदर में नहीं हो रहा है।
1: अच्छा।
0: जीआईटी में कि जो दिखलाई नहीं पड़ रहा है और उसको ब्लड लॉस हो रहा है, या पेशेंट बहुत कमजोरी कहता है चलते हैं तो थक जाते हैं
1: जी जी,
0: थोड़ा सा काम कर जाते हैं तो थक जाते हैं, तो हम लोग समझते हैं कि इसको कहीं खून की कमी तो नहीं हो गई है, तो उसका कारण क्या है, तो हम लोग देखते हैं ऑकल्ट ब्लड टेस्ट कराते हैं स्टूल में।
1: अच्छा।
0: अगर हाँ तो उसमें पता चलता है कि हाँ भाई इसमें ऑकल्ट ब्लड है, माने छुपा हुआ ब्लड है
1: जी जी,
0: तो उसका तुरंत एंडोस्कोपी करते हैं, ऊपर से अपर एंडोस्कोपी, नीचे से कोलोनोस्कोपी, और कहाँ से ये ब्लीड कर रहा है उसको खोजने की कोशिश करते हैं।
1: अच्छा, तो ये ढूंढने के बाद फिर उसकी सर्जरी?
0: हाँ, उसके इलाज को बहुत सा तरीका है, कोई दवाई से, लेजर से नहीं, और खान पान में परहेज से, जो बीमारी जैसा रहा हर का अलग अलग इलाज, अपना अलग अलग है।
1: अच्छा, तो खान पान में परहेज से भी इस तरह घाव ठीक?
0: छोटा सा अल्सर, मान लीजिए अल्सर है, स्टोमक में अल्सर है, ड्यूओडेनम में अल्सर है, और उसको दवाई देंगे, खान पान में परहेज करेंगे तो हो सकता है उसका भर जाए और उसको ब्लीडिंग बंद हो जाए
1: जी जी। यानी कि जिसको इस तरह की समस्या है, जैसा कि आप पूरे कार्यक्रम में सुन रहे श्रोताओं, तो तुरंत अपने नज़दीकी चिकित्सक से संपर्क कीजिए और आपके भागलपुर के आसपास के लोग मायागंज अस्पताल में जाके मिलें, वहाँ योग्य चिकित्सक लोग तुरंत पहचानेंगे और आपका इलाज करेंगे। और डॉक्टर साहब एक बात जानना चाहें कि इस तरह की अगर बीमारी।
2: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आज भेंटवार्ता का विषय था मेलिना। भेंटवार्ता का डॉक्टर चंद्रमौली उपाध्याय, ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं, अब आपके लिए प्रस्तुत है रामचरित मानस गान वाणी जयराम के स्वर में।

श्री राम को देख सभी नर नारी अत्यंत हुलसित हैं। सबकी यही इच्छा है कि वे श्री राम को साथ लिए बिना वापस न लौटें। उन्हें वन में छोड़कर जिन्हें घर नगर में रहना अच्छा लगे, समझ लेना चाहिए कि विधाता उनके विपरीत हो गया है। यदि दैव अनुकूल हों तभी राम के निकट वन में निवास करने का सौभाग्य मिल सकता है। एक दिन माताओं के पास समय देख राजा जनक का रनिवास उनसे मिलने आया। कौशल्या ने आदर सहित उनका सत्कार किया, उन्हें उचित सम्मान से आसन दिए। दोनों टोलियों के व्यक्ति पुलकित किंतु शिथिल हैं। उनकी आंखों में हैं प्रेम और शोक के

रामचरितमानस गान आपने सुना वाणी जयराम के स्वर में। प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। श्रोताओं, अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ने से पहले आइए जान लें आज की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में संक्षिप्त रूप से।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि ठीक 7 बजे आनंद लीजिए मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला का। कार्यक्रम के अंतर्गत आप जान पाएंगे मौसम का मिजाज, रेल सूचना, समाचार पत्रों की सुर्खियां, आज का इतिहास, साथ ही आप सुन पाएंगे फिल्मी गीतों को और सुगम संगीत को, साथ ही सुनिए स्मृति संवाद। आज फिल्मी गीतों का आनंद लीजिए प्रातः 9:06 पर, 11:00 बजे, 11:30 पर, 2:30 पर शाम

5:30 पर, रात 8 बजे और रात 10:30 पर गीत गजल कार्यक्रम भावगीत होगा। उर्दू श्रोताओं का साप्ताहिक कार्यक्रम बज़्मे उर्दू प्रातः 9:30 पर, श्रोताओं प्रस्तुत होगा लोकगीत प्रातः 10:30 पर, कलाकार होंगे विवेकानंद ठाकुर। आज 1 बजे लोकगीत में कलाकार होंगी संगीता कुमारी। दोपहर 12 बजे बहनों को संबोधित हमारा विशेष कार्यक्रम नारी लोक होता है। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग दोपहर 12:30 पर, 1:30 पर धारावाहिक पोषण नींव पर स्वास्थ्य महल की अगली कड़ी लेखिका डॉक्टर आरती स्मिथ, प्रस्तुतकर्ता नाओमी शांति हेम्ब्रम। सुगम संगीत का प्रसारण समय आज है दोपहर 3 बजे, कलाकार जसवंत सिंह। शाम 7:52 पर कलाकार नरेंद्र सिंह के स्वर में सुगम संगीत होगा। 3:20 पर आप सुनते हैं समूह स्वर में देशभक्ति गीत। 3:25 से शाम 5 बजे तक विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों का आनंद लीजिए। श्रोताओं, हमारे केंद्र के शेष कार्यक्रम प्रसारित होंगे शाम 5 बजे से।

शाम 5 बजे युवाओं को संबोधित विशेष कार्यक्रम युववाणी। हमारा पर्यावरण कार्यक्रम में आज वार्ता का विषय होगा पर्यावरण का अलंकार, जैव विविधता। वार्ताकार डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद राय। ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे शाम 7:10 पर। सुनना न भूले नाटक ये हवा आंधी तो नहीं, रात 9:30 पर। लेखिका होंगी डॉक्टर आभा कुमारी, प्रस्तुतकर्ता नाओमी शांति हेम्ब्रम। अंगिका लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम गूंजे बिहार प्रस्तुत होगा रात 10 बजे। श्रोताओं, हमारी आज की ये सभा संपन्न होगी रात 11:10 पर।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, 6:55 होने ही वाले हैं। आइए सुने दिल्ली केंद्र से संस्कृत समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

गुड मॉर्निंग, राम राम, सुप्रभात। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना, अपने अपनों का और अपने आसपास का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे, खुश होंगे। साथ ही अपने जीवन में आप हर रोज़ कुछ नया जोड़ने की, कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे होंगे। बस आपकी इसी कोशिश में आपका थोड़ा सा साथ देने के लिए लेकर आ गए हैं हम आपका पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में मैं आपकी रेडियो दोस्त, रेडियो होस्ट उमा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप

आपने अपने दिन की शुरुआत कर ली होगी। हम भी अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक छोटी पर बहुत ही जरूरी जानकारी के साथ। जी हाँ, हमारे आज के कार्यक्रम में बहुत सी जानकारियाँ होने वाली है, लेकिन मनोरंजन की पोटली में लिपटे हुए मनोरंजन भी होगा, जानकारी भी होगी और ढेर सारी बातें भी होंगी। फिलहाल अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं समय के हाल के साथ। आपको अगर मैं समय का हाल बता दूं तो 7:02 हो चुके हैं और दिन है आज मंगलवार का, तारीख है 19 मई सन 2026। जी हाँ, 2026 का पांचवा महीना, आज तारीख है 19 और दिन की शुरुआत आपने कर ली होगी। और अगर नहीं की है अपने दिन की शुरुआत तो हमारे कार्यक्रम के साथ अपने दिन की शुरुआत कीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपके दिन की शुरुआत बेहतर होगी और पूरा का पूरा दिन अच्छा जाएगा। और अगर किन्हीं के जीवन में कोई परेशानी चल रही है और उन्हें लग रहा है कि दिन की शुरुआत कर तो ले पर आगे क्या होगा, यकीन मानिए आप हिम्मत रखिए और सच्चे राह पर चलिए तो ईश्वर आपकी लाज ज़रूर रखेंगे। बस ईश्वर का साथ और खुद का साथ कभी मत छोड़िए। और अगर आपके परिवार में कोई ऐसे हैं जो परेशानी से गुजर रहे हैं, जो परेशान हैं, उनका साथ मत छोड़िए, क्योंकि अगर समय ख़राब चल रहा होता है तब सबसे बड़ी ताकत हमारे अपने होते हैं और हमारे ईश्वर होते हैं, जिन पर हमें हमेशा भरोसा रखना चाहिए कि कुछ भी हो वो हमारी लाज तो रख ही लेंगे, वो हमारे साथ बुरा नहीं होने देंगे।

ईश्वर अच्छे व्यक्ति की लाज तो रखते ही हैं। और हम अपने कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज मौसम का क्या हाल होने वाला है, मौसम का क्या मिजाज होने वाला है, क्या आसमान साफ होगा या फिर रिमझिम रिमझिम बारिश होगी और आपको या तो काम रोकना पड़ेगा या तो फिर छाते के साथ घर से बाहर निकलना होगा या पानी की बोतलें अपने साथ रखनी होगी। जी हाँ, कड़ाके की मतलब बिल्कुल कड़कती धूप होगी। आइए जानते हैं मौसम का हाल। अगर अधिकतम तापमान की बात करूं तो 36 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, वहीं न्यूनतम तापमान रहने वाला है 26 डिग्री सेंटीग्रेड। और अधिकतम तापमान के बारे में जैसे कि अभी आपको मैंने बताया 36 डिग्री सेंटीग्रेड। और बात करें आसमान की तो आसमान आज साफ ही रहेगा। जी हाँ, छाते की नहीं पर बोतल की ज़रूरत पड़ सकती है आपको। आप पानी का बोतल अपने साथ लेकर निकले क्योंकि तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। अगर हम सापेक्ष आर्द्रता की बात करें तो सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% और दोपहर में 20 से 25% रहने की संभावना है। और अनुमान है कि इस दौरान 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी।

0: तो ये था मौसम का हाल, मौसम का मिजाज। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो अपना अपने अपनों का बहुत ध्यान रखें, और ख़ास तौर से घर में जो छोटे बच्चे हैं उनका विशेष कर ख्याल रखें, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है कि बाहर गर्मी है, बाहर धूप है, हमें नहीं जाना चाहिए, हमें सिर ढककर जाना चाहिए या फिर दोपहर के वक्त हमें घर में रहना चाहिए। बच्चे जो छोटे होते हैं वो बाहर दोपहर को खेलने के लिए तंग करते हैं, तो ऐसे में उन्हें घर पर बिठाएं, उनसे बातें करें, उनके साथ अभी अच्छा वक्त बिताएं और उन्हें बाहर जाने से रोकें। और अगर बाहर जाएं तो पूरा पूरा ध्यान रखें कि सिर ढका होना चाहिए, और साथ ही आप पानी की बोतलें लेकर साथ में निकले। अगर बाहर पानी की बोतलें खरीदनी पड़ी तो एक तो आपके पैसे जाएंगे, ऊपर से प्लास्टिक जो खर्च होगा वो अलग। अभी जितना हो सके प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करिए, ये सिर्फ हमारे सेहत के लिए नहीं बल्कि हमारी धरती की सेहत के लिए भी अच्छा है। तो पानी की बोतल घर से लेकर निकले, और अगर ज़रूरी ना हो तो घर से दोपहर के वक्त तो निकलना टाले ही। फिलहाल हम अपने कार्यक्रम को एक छोटा सा विराम देते हैं, एक छोटा सा अंतराल, और अंतराल के उस पार हम यहीं होंगे।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
0: एक छोटा सा अंतराल, और अंतराल के इस पार मैं हूँ आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त, रेडियो होस्ट उमा, और कार्यक्रम है आपका पसंदीदा गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में मौसम का हाल तो हमने जान लिया, अब आइए जानते हैं ट्रेनों का हाल। जी हाँ, कौन सी ट्रेन लेट लतीफ़ है और कौन सी ट्रेन बिल्कुल अपने सही समय से चल रही है, और अगर आप कहीं जाने वाले हैं या फिर आपके कोई अपने आपके पास आने वाले हैं तो फिर ट्रेनों का हाल तो आप अच्छे से जान लीजिए, क्योंकि कुछ सेकंड्स भी अगर आप देर हो गए तो ट्रेन छूट जाएगी, और ट्रेन दौड़ कर पकड़ना तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। इसलिए समय का ध्यान रखें और वक्त पर घर से निकले। बात करें ट्रेन संख्या 15553 यानी कि भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस की, तो ये बिल्कुल अपने सही समय 7:50 पर भागलपुर से रवाना होगी। ट्रेन संख्या 13016 यानी कि हावड़ा कविगुरु एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 7:45 पर भागलपुर आएगी। 12368 आनंद विहार भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस अपने तय समय से चलते हुए 8:15 पर भागलपुर पहुंचेगी। 15658 ब्रह्मपुत्र मेल अपने निर्धारित समय से 1:04 की देरी से चल रही है। जी हाँ, 1:04 की देरी से चलते हुए अब ब्रह्मपुत्र मेल 9:09 पर भागलपुर आएगी। ट्रेन संख्या 53416 यानी कि जमालपुर साहिबगंज पैसेंजर 8:37 पर भागलपुर पहुंचेगी, यानी कि अपने तय समय पर भागलपुर पहुंचेगी। 12335 भागलपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 8:55 पर भागलपुर से रवाना होगी। ट्रेन संख्या 13403 रांची भागलपुर वनांचल एक्सप्रेस अपने तय समय यानी कि 9:00 भागलपुर पहुंचेगी। 63431 साहिबगंज जमालपुर मेमू बिल्कुल राइट टाइम है, 9:15 पर भागलपुर आएगी। 13409 मालदा क्यूल इंटरसिटी 9:35 पर भागलपुर पहुंचेगी। 13241 यानी कि बांका राजेंद्र नगर इंटरसिटी आज सुबह 10:15 पर भागलपुर आएगी। ट्रेन संख्या 12367 यानी कि भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 11:55 पर भागलपुर से रवाना होगी। तो ये था ट्रेनों का हाल, ट्रेनों का मिजाज। अब कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं। हमने कार्यक्रम में सुगम संगीत अभी सुना, और सुगम संगीत में कलाकार थे शैलेश कुमार। आइए एक और सुगम संगीत सुनते हैं, और सुगम संगीत के उस पार मिलते हैं, और बहुत सी बातें होंगी, बहुत सी जानकारियाँ आप तक पहुँचेंगी।

0: किनारा हमसे किए जा रहे हैं, यकीन मानिए हम आपसे किनारा कभी नहीं करेंगे। आप भी हमारे साथ बने रहिए, कार्यक्रम के साथ बने रहिए। हम आप तक पहुंचाते हैं ढेर सारी जानकारी, ढेर सारा मनोरंजन और ढेर सारी बातें। आइए अब कुछ बातें करते हैं, और बातें बीती बातें, यानी कि कुछ यादों की बातें। जी हाँ, अब आप सुनने वाले हैं स्मृति वार्ता, और आज स्मृति वार्ता में भेंट वार्ता है एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी से। भेंट वार्ताकार हैं श्री राम प्रसाद पंडित, भेंट करता हैं कुसुमाकर दुबे।
1: श्रोताओं नमस्कार, आज स्मृति लेख कार्यक्रम में हमारे साथ हैं राम प्रसाद पंडित। आप सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी हैं, आपका स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है राम प्रसाद जी।
2: जी,
1: अपने श्रोताओं के लिए हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप पुलिस विभाग में किस नौकरी में थे।
2: मैं सब इंस्पेक्टर से रिटायर किया।
1: जी, आपने कब अवकाश ग्रहण किया?
2: 1 मार्च 2008 में बाका से सेवानिवृत्त हुए।
1: मतलब 7 साल से अधिक हो गया।
2: जी जी,
1: आपको सेवानिवृत्त हुए। चलिए, आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा है, लंबा शरीर है, चरहरा है, बहुत दुबला।

0: पतले हैं, आपको कोई परेशानी तो नहीं होती है? स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत है?
1: जी नहीं,
0: एकदम फिट?
1: फिजिकल संबंधी में मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल फिट हूँ, जैसे 50 साल पहले मैं था अभी भी वैसा ही अनुभव कर रहा हूँ।
0: बात तो अभी आपकी उम्र तो 67-68 साल हो ही गई
1: है। जी 68 से ऊपर।
0: तो 68 से ऊपर में भी आप इतना फिट हैं, चलिए भविष्य के लिए भी बहुत शुभकामनाएं, आप बहुत फिट रहिए, ऐसे ही प्रेरणा देते रहिए। तो अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई?
1: मेरा जन्म स्थान अकबरनगर है
0: जी।
1: उसके बाद शुरू में मिडिल स्कूल अकबरनगर श्रीरामपुर से पास किया।
0: जी जी।
1: उसके बाद जो है कृष्णानंद हाई स्कूल सुल्तानगंज से मैं मैट्रिक किया।
0: अच्छा।
1: 1964 ईस्वी में
0: जी।
1: उसके बाद फिर प्री किया वहीं पर। उसके बाद जो है मैंने ITI की किया
0: जी,
1: मुंगेर से।
0: जी
1: ITI करके जैसे ही पास हुआ, बस मुंगेर में पुलिस की बहाली थी, मुझे शौक था, बस वहाँ जाकर दौड़ धूप किया, बस सब चीज़ में सेलेक्ट हो गए।
0: अच्छा।
1: बस मैं सीधे कांस्टेबल में ज्वाइन कर लिया।
0: और कांस्टेबल के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए
1: बहुत जल्दी मैं प्रमोशन कर गया। 11 साल मैं ASI में रहा, उसके बाद 24-25 साल तक सब इंस्पेक्टर में रहा। मैं बहुत अच्छा अच्छा काम किया।
0: अच्छा, क्या क्या अच्छा अच्छा काम आपके द्वारा हुआ बताइए।
1: मतलब जहाँ क्राइम कंट्रोल नहीं होता था, SP मेरी पोस्टिंग कर देती थी।
0: अच्छा।
1: और जाते जाते 15 दिन में क्राइम कंट्रोल कर देते।
0: वाह।
1: इवन बेगूसराय में जो कंट्रोल जिला था उस समय,
0: जी जी
1: 84 में ज्वाइन किए थे
0: जी,
1: उस समय DM और SP हमको नाम से जानते थे। जब
0: अच्छा।
1: कोई क्राइम कंट्रोल नहीं होता था तो बोलता था RP पंडित को दो ये ड्यूटी, उनसे पूरा हो जाएगा। तो मैं जो है मैं SP साहब को कह दिया था कि जो भी जिला में असंभव ड्यूटी हो, रात दिन 24 घंटा हमसे ले सकते।
0: अच्छा, तो बेगूसराय में आप शहर में ही रहे, किसी ब्लॉक वगैरह में रहे?
1: नहीं, बेगूसराय टाउन थाना में थे
0: जी।
1: उसके बाद और 3-4 जगह देहात थाना में थे ऑप्शन चार्ज, गढ़हरा में ऑप्शन चार्ज थे, फुलबरिया में ऑप्शन चार्ज थे
0: जी,
1: खुदाबनपुर में थे
0: जी।
1: ऐसे करके बेगूसराय में 11 साल
0: रहने का मौका मिला। तो इस तरह से अब अपराध नियंत्रण के लिए जाने जाते रहे, मान लीजिए, तो आपको अपराधियों की ओर से बहुत चुनौतियाँ भी मिलती होंगी।
1: उसमें अकेले हम चले जाते थे
0: जी,
1: और अकेले अरेस्ट करके लेके चले जाते।
0: हाँ,
1: उस समय इतना पुलिस पर हमला नहीं था
0: जी,
1: और इधर अपराधी जो बेलगाम हो गया, अनेक तरह के अपराध हो गए उस समय।
0: जी जी।
1: ज्यादा अपराध नहीं था, हाउस रोबरी था
0: जी,
1: रोड रोबरी एकदम कम
0: जी,
1: मर्डर बहुत कम, मारपीट मिसलेनियस होते
0: जी, रहता जी जी। आपका सूत्र क्या होता था, आप कैसे अपराध पर नियंत्रण कर लेते थे बहुत जल्दी?
1: वो ऐसा था ना, मेरा भीतर से मनोबल हाई था
0: जी,
1: मैं काफी हेल्दी था, 100 kg वेट उठाता था।
0: अच्छा, अच्छा।
1: जिस थाना में ज्वाइन किया, कसरत वगैरह देख करके लोग हैरान हो जाता था। उसे अपराधी सब मेरे मार के डर से जिला छोड़ के भाग जाता था।
0: अच्छा, ये बात है। कि मतलब ये आ गए हैं श्री राम जी, तो अब हमको बहुत मुश्किल है।
1: अच्छा। जितने अच्छे आदमी थे
0: जी,
1: वो आते थे मेरे थाना में, तो उसको हम बैठाते थे कुर्सी पर
0: जी,
1: और बैठ करके उनको निडर बनाते थे कि निडर बनो और बोलो समस्या क्या है।
0: हाँ।
1: और तुम्हारा समस्या के समाधान के लिए मैं हूँ, और बेहिचक बिना पैरवी के आओ बात करो
0: जी।
1: हाँ। मैं जब मेरा ट्रांसफर हो जाता था
0: जी,
1: तो वहाँ मेरे लिए गरीब और इंसान रोते थे।
0: अच्छा।
1: अपराधी खुश होते थे।
0: अच्छा, तो आपने अपनी नौकरी में पूरी ईमानदारी से अपने काम को निभाया।
1: जी जी।
0: तो और कहाँ कहाँ आप पदस्थापित रहे?
1: इसके पहले मैं CID में रहा 3 साल तक
0: जी।
1: 3 साल CID में रहा, तो उसमें नक्सलाइट शुरू हुआ था
0: जी जी,
1: 93 में
0: जी।
1: तो उसमें मेरा पोस्टिंग हो गया था झारखंड में
0: जी,
1: जगदीशपुर गिरिडीह
0: जी।
1: तो वहाँ पर 6 महीना रहे
0: जी।
1: तो उसके बाद फिर CID में ही मेरा गुड्डा बदली हो गया
0: जी जी।
1: उसके बाद जो है
0: जी
1: फिर पुलिस में हम आ गए।
0: अच्छा।
1: तो पुलिस में हम बाका पुलिस में हम ज्वाइन किए
0: जी जी।
1: तो बाका में कटोरिया थाना में प्रभारी रहे, सुइया में रहे, फिर लास्ट में बाका टाउन थाना से हम रिटायर किए।
0: अच्छा। आपके परिवार में और कौन कौन लोग हैं?
1: मेरे परिवार में मेरे 3 लड़के हैं
0: जी,
1: 1 लड़की है।
0: तो वो सब भी नौकरी में होंगे, सबकी शादी ब्याह सब तो
1: हाँ,
0: हो गया?
1: बिल्कुल बिल्कुल, सब शादी ब्याह हैं, पोता पोती हैं।
0: तो अभी आप गांव पे रहते हैं?
1: अभी हम अकबरनगर गांव में रहते हैं, हमको गांव सबसे प्यारा है
0: जी,
1: इसलिए कि मॉर्निंग में रोड है, वॉक करते हैं 5 किलोमीटर 1 घंटा में।
0: अच्छा।
1: फिर 2 गाय है।
0: अच्छा।
1: गाय को हम सेवा करते हैं, अपने से दूते हैं, नहाते हैं, खिलाते हैं
0: जी जी,
1: और आनंद का अनुभव करते हैं
0: जी।
1: उसके बाद संपूर्ण भारत हम भ्रमण करते हैं।

0: अच्छा
1: संपूर्ण भारत का जितना दर्शनीय स्थान है, तीर्थ स्थान है, ऐतिहासिक स्थान है, सब मैं और पत्नी के साथ आज 20 वर्ष से भ्रमण कर रहा हूँ। मैंने एक भी जगह भारत में बचा नहीं है।
0: वाह, तब तो ये अच्छी बात है कि आप घूमने पे फिर ध्यान देते हैं, पर्यटन पर ध्यान देते हैं। आप भारत के विभिन्न हिस्सों में घूमे तो आपको कैसा लगा, अपना इलाका और भारत का दूसरा सब हिस्सा जब आप जाते हैं?
1: जैसे अपने बिहार से बाहर जाते हैं तो साउथ इंडिया वगैरह में गए
0: जी,
1: या वेस्टर्न में गए, ईस्टर्न में गए, तो उधर अनुशासन ज़्यादा अच्छा
0: है। अच्छा जी,
1: और लोगों में ज़्यादा अशांति नहीं
0: जी,
1: और बड़ी लोग रिगार्ड करते हैं और बढ़िया से बात करते हैं। और जैसे अपने यहाँ सब कुछ ठीक है लेकिन उतना अनुशासन नहीं है, कोई चीज़ पूछिएगा तो यहाँ झुझला के बोलेंगे, लेकिन उधर जो है बहुत बढ़िया से, औरत हो लड़की हो कोई भी हो, खूब बढ़िया से बतावेंगे
0: जी। तो हालांकि फिर भी आपको पूरी दुनिया घूमने के बाद भी अपना गांव सबसे प्यारा लगता
1: है? सबसे प्यारा लगता है इसलिए कि वहाँ की मिट्टी से हम जुड़े हुए हैं।
0: हाँ, ये बात है। और अभी अपने, जैसा कि आपने कहा आप सुबह सुबह टहलते हैं, तो उसके बाद आपकी दिनचर्या में भोजन पानी कैसा होता है?
1: जैसे सवेरे नित्य क्रिया से फुर्सत होकर के मॉर्निंग वॉक करके गाय को दूह करके फुर्सत जब पाए थोड़ा सा हम योगा करते हैं।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है।
1: ऊपर छत पर चले गए, योगा किए खूब 10 मिनट 20 मिनट
0: जी,
1: उसके बाद वहाँ से फुर्सत पाए तो मुँह धो करके नहा लिए, नहा के मैं पूजा करता हूँ। 10 मिनट पूजा के बाद मैं 3 रोटी दाल सब्जी, दोनों टाइम रोटी खाता हूँ, बाहर से कभी कभी खाते हैं
0: जी।
1: और मैं जन्म लिया हूँ अभी तक, होश जब से समा रहे हैं, चाय

आप सुन रहे थे स्मृति संवाद। स्मृति संवाद में भेंटवार्ता का विषय था एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी से भेंटवार्ता। भेंटवार्ताकार थे श्री राम प्रसाद पंडित भेंटकर्ता कुसुमाकर दुबे। आपने इनकी जीवनी के बारे में जाना, इनकी बातों को जाना, कैसे ये अपने जीवन को जीते हैं और साथ ही इनका आरंभिक जीवन कैसा रहा और रिटायर होने के बाद इनका अभी जीवन कैसा चल रहा है, ये सब आपने जाना। और फिलहाल हम चलते हैं छोटे से अंतराल पर और अंतराल के उस पार बहुत सी बातें होने वाली है, बहुत सारी गपशप और बहुत सारा मनोरंजन, बहुत सी जानकारियाँ। बस आप हमारे साथ बने रहिए।

0: Akashvani at 90.
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: एक छोटे से अंतराल के इस पार हमें आपके साथ लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। और मैं आपको वक्त का हाल बता दूं तो वक्त हो चुका है 7:31 और 7:32 बस होने ही वाले हैं और हम हैं अपने कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में। दिन है मंगलवार का, तारीख है 19 मई 2026 और आपने अभी तक तो अपने दिन की यकीनन शुरुआत कर ली होगी। और अभी तो बच्चों के जो स्कूल हैं वो मॉर्निंग स्कूल हैं, वो बिल्कुल सवेरे सवेरे स्कूल चले जाते हैं, अब तक तो वो अपने स्कूल पहुंच चुके होंगे। और अब जब बच्चे जागते हैं तो साथ में घर के अन्य लोगों को भी जागना ही पड़ता है। और ये जो स्कूल का दिन होता है ना, कभी मॉर्निंग के स्कूल हो रहे हैं, कभी नून वाले हो जाते हैं, थोड़ा लेट हो जाते हैं। और ये हमें बचपन में लगता था कि हमें नहा के परेशान किया जा रहा है, हम बस इंतज़ार करते होते थे कि कब गर्मियों की छुट्टियां आएंगी। और गर्मी की छुट्टी भी शुरू हो चुकी है कुछ स्कूलों में और गर्मी की छुट्टी का हमें इंतज़ार रहता था और हम सोचते थे कब जल्दी हम स्कूल से भाग जाएं। लेकिन स्कूल से निकलने के बाद ये एहसास होता है कि वो दिन बहुत ही खूबसूरत थे और अब दिल चाहता है कि काश हम उन्हीं दिनों में वापस जाएं। पर हाँ, वो दिन खूबसूरत थे जब हमें फिक्र नहीं थी, टेंशन नहीं थी। और ये जो जीवन का दौर होता है ये भी खूबसूरत होता है अगर इसे अच्छे से जिया जाए। जीवन का हर दौर खूबसूरत है, वो दिन भी अच्छे थे, ये दिन भी अच्छा है। और दिल हमेशा यही चाहता है कि जो चमकीले दिन हैं वो कभी ना बीते, यारों के जो साथ के दिन होते हैं वो कभी ना बीते। और अगर आप उन्हीं दिनों को वापस लाना चाहते हैं, स्कूल के दिनों को वापस लाना चाहते हैं, तो स्कूल के जो दोस्त होते हैं ना उनके साथ नाता कभी मत तोड़िएगा। वो आपको, चाहे आप उनके साथ बुढ़ापे में भी क्यों ना मिले, वो आपको उन्हीं दिनों की याद दिलाएंगे और वैसे ही, ठीक वैसे ही आपके साथ वर्ताव भी करेंगे, फिर चाहे आप अपने जीवन में कितने भी सफल क्यों ना हो जाएं। और दोस्त जो होते हैं वो वैसे ही रहते हैं। और अभी जो स्टूडेंट लाइफ में हैं, जो स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, उनके जीवन में ऐसा उन्हें एहसास होता होगा कुछ लोगों को कि ये जो दोस्तों के साथ का दिन है ये कभी ना बीते, ये जो खूबसूरत से पल हैं ये कभी ना बीते।

जी हाँ, दिल तो चाहता ही है कि यारों के साथ बस मस्ती वाले दिन बीतते रहें और हम बस आनंद में रहें। लेकिन आनंद जीवन का तभी आता है अच्छा, जब आप ज्ञान से भरपूर रहें और आपके जीवन में कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें होती रहें। अच्छी अच्छी चीज़ें तभी होंगी, आपके आसपास के लोग आपका सम्मान तभी करेंगे जब आप के अंदर बातें अच्छी भरी हो। आइए कुछ अच्छी बातों को आपके अंदर हम भरते हैं, कुछ अच्छी बातों को हम आप तक पहुंचाते हैं और ये बातें होने वाली है आज के इतिहास की। जी हाँ, आइए आज के इतिहास से कुछ सीखा जाए, कुछ जाना जाए, क्या कहता है आज का इतिहास जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम आज के इतिहास के बारे में, उन घटनाओं की जो आज के दिन घटित हुई थी। 19 मई के दिन यानी कि आज के तारीख में 1999 में भारतीय मूल के महेंद्र चौधरी फिजी के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। मेक्सिको में बालकान डिफ्यूजो नामक ज्वालामुखी सक्रिय हो गया था। वहीं साल 2000 में फिजी में भारतीय मूल के प्रधानमंत्री महेंद्र चौधरी की सरकार को 7 नकाबपोश सशस्त्र व्यक्तियों द्वारा तख्ता पलट कर दिया गया था। साल 2002 में पूर्वी तिमोर 4 सदियों की दासता के बाद नई सहस्त्राब्दी के पहले नए राष्ट्र के रूप में विश्व मानचित्र पर उभरा था। जी हाँ, आज ही के दिन साल 2002 में पूर्वी तिमोर। और बात करें साल 2003 की, तो साल 2003 में जिबूती के राष्ट्रपति इस्माइल उमर गुलेह भारत की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे थे 19 मई को। साल 2006 में भारतीय मूल के मलेशियाई उद्योगपति टी रविचंद्रन ने माउंट एवरेस्ट को फतह कर लिया था। साल 2007 में अमेरिकी सीनेट में समग्र आव्रजन सुधार विधेयक पर सहमति हुई थी। साल 2008 में परंपरावादी मराठी थिएटर के पुरोधा विजय तेंदुलकर का निधन हो गया था। वहीं भारत और चीन के बीच नाथुला से व्यापार पुनः शुरू हुआ था साल 2008 में। इसी साल विश्व श्रम संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष असाने ने नई दिल्ली में सामाजिक सुरक्षा पर सम्मेलन का उद्घाटन किया था। साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा ने वर्ष 2007-08 में अपने शुद्ध लाभ में 39.9% की वृद्धि दर्ज की थी। साल 2008 में ही मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद ने सत्तारूढ़ दल से अलग होने की घोषणा की और कैलाश मानसरोवर के लिए चीन ने भारतीय यात्रियों का दौरा स्थगित कर दिया था साल 2008 में। साल 2010 में भारत सरकार को 34 दिनों से चले आ रहे 3G स्पेक्ट्रम की नीलामी से 67,618 करोड़ 95 लाख रुपए का शुल्क मिलना तय हो गया था। बात

करते हैं साल 2011 की, तो साल 2011 में 58वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हुई थी और इस साल के फिल्म पुरस्कार में शामिल था नाम फिल्म मोनेर मानुस का। मोनेर मानुस को राष्ट्रीय एकता के लिए पुरस्कृत किया गया था। वहीं दबंग फिल्म को सर्वाधिक मनोरंजन फिल्म का पुरस्कार मिला था। मलयालम फिल्म एदे माइंते मकान अबू को सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया, जबकि अरुणिमा शर्मा को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला। मलयालम फिल्म एदे माइंते मकान अबू के लिए मलयालम अभिनेता सलीम कुमार और तमिल अभिनेता धनुष संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुने गए थे। मिताली जगताप और सरन्ना पी को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार के लिए चुना गया था साल 2011 के 58वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में। और अब बात उन व्यक्तियों की जिनका आज के दिन हो गया था निधन। साल 1957 में सोमभू मित्रा का निधन हुआ। सोमभू मित्रा फिल्म और रंगमंच अभिनेता थे, निर्देशक थे, साथ ही एक सफल नाटककार भी थे। 1996 में जानकी रामचंद्रन इस दुनिया को अलविदा कह गए। जानकी रामचंद्रन प्रसिद्ध तमिल अभिनेत्री और तमिलनाडु की भूतपूर्व मुख्यमंत्री थीं। बात करें 1904 की, तो 1904 में जमशेद जी टाटा का निधन हुआ। जमशेद जी टाटा टाटा समूह के संस्थापक थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के शीर्ष साहित्यकार थे। उनका निधन 1969 में हो गया था। साल 2008 में विजय तेंदुलकर का निधन हुआ। विजय तेंदुलकर भारतीय नाटककार और रंगमंच कर्मी थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निधन 1989 में हुआ था, 1979 में। और बात करते हैं अब उन व्यक्तियों की जिनका आज के दिन हुआ है जन्मदिन, यानी कि आज उनका जन्म हुआ था और आज के दिन वो मना रहे होंगे अपना जन्मदिन। 1999 में जन्म हुआ था दीपक पुनिया का। दीपक पुनिया भारतीय फ्री स्टाइल पहलवान हैं जो 86 किलोग्राम भार वर्ग में खेलते हैं। 1947 में जन्म हुआ था टीसी योहानन का, जो लंबी कूद के भारतीय खिलाड़ी हैं। पी लीला भारतीय तमिल सिनेमा की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका थी। उनका जन्म 1934 में हुआ था। 1913 में नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति रह चुके थे। 1934 में रस्किन बॉन्ड का जन्म हुआ। रस्किन बॉन्ड अंग्रेजी भाषा के प्रसिद्ध भारतीय लेखकों में से एक थे और इनकी कुछ कहानियां आपने अपनी किताब में ज़रूर पढ़ी होगी। 1938 में जन्म हुआ था गिरीश कर्नाड का। गिरीश कर्नाड कवि, रंगमंच कर्मी, कहानी लेखक, नाटककार, फिल्म निर्देशक और फिल्म अभिनेता थे। 1881 में जन्म हुआ था कमाल अतातुर्क का। कमाल अतातुर्क आधुनिक तुर्की के निर्माता थे। 1824 में नाना साहब का जन्म हुआ। नाना साहब सन 1857 के भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के शिल्पकार माने जाते हैं। ये बात आज के इतिहास की। अब हम वर्तमान में आते हैं और वर्तमान से थोड़ा पहले ही जाते हैं। जी हाँ, आज के इतिहास के दौरान मैंने आपको बताया कि आज ही के दिन साल 2011 में दबंग को सर्वाधिक मनोरंजक फिल्म का पुरस्कार मिला था। वाकई ये फिल्म थी काफ़ी मनोरंजक और साथ ही इस फिल्म के गाने भी बहुत ही कमाल के थे। आइए इसी फिल्म का एक गाना सुनते हैं और गाने के उस पार हम यहीं होंगे।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply.
1: Nexa.
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ।

0: नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर।
2: 8700014242।
3: एक बहुत ही प्यारे से गीत और एक अंतराल के इस पार हमें आपके साथ लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। और आइए अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर नजर डालते हैं। क्या कहता है आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां, क्या कहती है जानते हैं। सम्राट बोले 20 दिन में दो नोटिस, 30 दिन में काम ना हुआ तो सस्पेंड। आज से पंचायतों में सहयोग शिविर शुरू, खुद सीएम सोनपुर की एक पंचायत में रहेंगे। कोर्ट से संबंधित मामले को छोड़ आवेदन को अटकाना नहीं है। कोचिंग संचालक को 10 दिन पहले मिला था नीट का पेपर, गिरफ्तार। अवैध ई फार्मेसी और भारी डिस्काउंट के खिलाफ कल बिहार की दवा दुकानें बंद। 120 दिन में 2130 मरीज भर्ती, इसमें 1178 सड़क हादसे के शिकार हुए। 6 माह में औसतन 300 हादसे, एनएच व सेतु पर ओवरटेकिंग बड़ी वजह। गर्मी बढ़ते ही बिजली संकट गहराया, ट्रिपिंग भी परेशानी का कारण बन रही। आज भी कई इलाकों में गुल रहेगी बिजली। पथ निर्माण विभाग के सचिव ने सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से का निरीक्षण किया। निर्धारित समय सीमा में बेली ब्रिज तैयार करें, सचिव ने कहा। जनभागीदारी अभियान सबसे दूर सबसे पहले थीम पर समीक्षा भवन में गूंजा विकसित भारत का संकल्प। 62 जनजातीय गांवों को मुख्यधारा से जोड़ेगा प्रशासन। भागलपुर प्रमंडल के नए प्रभारी प्रमंडलीय आयुक्त कमिश्नर प्रेम सिंह मीणा ने सोमवार को आधिकारिक रूप से अपना पदभार ग्रहण किया। 4 साल बाद दोबारा मीणा को भागलपुर की कमान। बोले, जाम व यातायात दुरुस्त करना प्राथमिकता। मुख्य सचिव के राज्य स्तरीय समीक्षा में जिले की कामयाबी पर चर्चा। डीएम बोले, कर्मियों को प्रतिबद्धता से समय पर लक्ष्य पूरा हुआ। डिजिटल आर्थिक जनगणना पहले चरण में 81% काम पूरा, भागलपुर राज्य भर में नंबर 1। धरती झुलसी, देश में 6 दिन भीषण गर्मी रहेगी, औसत 45 डिग्री पारा रहेगा। मानसून 22 से 26 मई के बीच केरल पहुंचेगा। केरल में वीडी सतीशन नए सीएम, महिलाओं को फ्री बस यात्रा का ऐलान। गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई की मार झेलते हुए भी लोगों ने बचाया पैसा। बिहारियों ने साल भर में बैंकों में भर दिए 52,000 करोड़ रुपए। जन्मते बच्चे के माथे पर भी 44,000 जमा। 3,70,563 करोड़ लोन देकर बैंकों ने पहली बार बनाया रिकॉर्ड। ट्रेडिंग वॉर में पहली बार किसी अमेरिकी राष्ट्रपति पर सवाल उठ रहे हैं। ट्रंप ने 90 दिन में 3700 शेयर सौदे किए, यानी रोज 40 सौदा, 800 करोड़ रुपए इन सौदों से कमाए। ईरान डील को उत्सुक पर उनके प्रस्ताव नामंजूर, ऐसा ट्रंप ने का कहना। प्रदर्शन 21 मई तक, मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। ठप रही सुरक्षा व्यवस्था, वेतन बढ़ाने की मांग पर 150 गार्ड हड़ताल पर बैठे। आज से गांवों में ही प्रशासनिक समस्याओं का होगा निपटारा। सबौर में मंत्री तो सुल्तानगंज शाहकुंड में सचिव सुनेंगे जनता की शिकायतें। गंगा में यात्रियों से भरी नाव हुई खराब, SDRF की टीम ने रेस्क्यू किया। बीच गंगा में फंसी नाव, सुरक्षित निकाले गए यात्री। ट्यूबवेल का काम अब पंचायती राज नहीं, लघु जल संसाधन विभाग देखेगा। मुख्यमंत्री ने ट्यूबवेल, तालाब, आहर, पाइन और पोखर के रखरखाव की समीक्षा की। अब खेल खेल में पढ़ेंगे बिहार के 40,000 स्कूलों के 5,00,000 बच्चे। कक्षा 1 के बच्चों को भाएगा सरकारी स्कूल का माहौल। एडमिशन के बाद गायब होने वाले 40% छात्रों को रोजाना स्कूल लाने की शिक्षा विभाग ने तैयार किया खाका। जिलों से लेकर सचिवालय तक में नौकरशाही में होगा बदलाव, कवायद। बिहार में आधे से अधिक जिलाधिकारियों को बदलने की तैयारी, अनुभव और विशेषज्ञता की हो रही पड़ताल। सेंसेक्स निचले स्तर से 1,286 अंक रिकवर होकर फ्लैट बंद। बिग शिफ्ट 101% से ज्यादा विदेशी निवेश वाली कंपनियां 4 साल में 900 से 1300 टॉप 10 शेयरों में विदेशी निवेश, आधा अब हाई ग्रोथ स्टॉक्स सेक्टर फोकस में। भारत में बैन के बावजूद सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म एक्टिव आईपीएल मैच में लग रहे बड़े दाव, मनी गेम में सरकार की सख्ती और वीपीएन ब्लॉक की चेतावनी बेअसर रही। आधार फ्री अपडेट की समय सीमा 1 साल बढ़ी। UIDAI ने माई आधार पोर्टल पर मुफ्त आधार दस्तावेज अपडेट सुविधा की समय सीमा 1 साल बढ़ाकर 14 जून 2027 कर दी है। ₹96.20 डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर गुणवीर आरबीआई के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने। अब बात आईपीएल की। दो परिस्थितियों के अनुसार संयोजन नहीं बना पाई पंजाब की टीम अपने दूसरे घरेलू मैदान धर्मशाला में। पिछले 8 मुकाबलों में 7 गंवाएं, पंजाब के लिए मुसीबत बने दो अलग तरह के होम ग्राउंड। 63वें मैच में चेन्नई को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में हैदराबाद गुजरात भी पहुंचा, 1 जीत 2 टीम क्वालिफाई। अंक तालिका की बात करें तो अंक तालिका में पहले नंबर पर मौजूद है बेंगलुरु, दूसरे पर गुजरात, तीसरे पर हैदराबाद, पंजाब, राजस्थान, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, 10वें पर लखनऊ। ये थे आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां। अब हमसे वक्त कह रहा है कि हमें अभी आपसे लेनी चाहिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले कुछ खास बात की, अपना और अपने अपनों का रखें खास ख्याल। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।

आप सुन रहे थे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम से पहले कुछ जरूरी संदेश एवं सूचनाएं।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत ईएफटीए समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट सौंपी। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास

0: करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस हकॉन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनिस गहर स्तुर भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते टीईपीए के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत के हरित परिवर्तन पर बल देते हुए देश के विकास, बढ़ती ऊर्जा मांग, जलवायु प्रतिबद्धताओं और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड अवसंरचना, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार का उल्लेख किया।
1: 2030 तक हमने 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों से नई साझेदारियां बनाने, सहयोग के उभरते क्षेत्रों की पहचान करने और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने का आग्रह किया। शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत तथा नॉर्वे के व्यापार और अनुसंधान समुदायों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने प्रेस वार्ता में इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था में साझेदारी से अधिक निवेश आएगा, रोजगार सृजित होगा और भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सहित सतत ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा।
2: Recognizing the ambitious
3: भारत के महत्वाकांक्षी समुद्री अमृतकाल विजन 2047 को मान्यता देते हुए दोनों नेताओं ने जहाज निर्माण, हरित जहाजरानी, जहाज पुनर्चक्रण, बंदरगाह अवसंरचना का विकास, नाविकों का प्रशिक्षण, मत्स्य पालन, जलीय कृषि और बंदरगाहों के हरितकरण सहित समुद्री अर्थव्यवस्था साझेदारी को बढ़ाने का आह्वान किया है।
2: ग्रीनिंग ऑफ पोर्ट्स।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। अधिक जानकारी ओस्लो से हमारी संवाददाता से।
4: भारत और 5 नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। टीईपीए लागू होने के परिप्रेक्ष्य में यह शिखर सम्मेलन व्यापार और निवेश संबंधों को अधिक मजबूत करने का प्रयास करेगा। वर्तमान में इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य 19 अरब डॉलर है। तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से बातचीत भी करेंगे।
5: रोम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में बसे भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात करेंगे, जिनकी यहां उल्लेखनीय उपस्थिति है। वे भारतीय मूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखेंगे, जिसमें प्रवासी भारतीय समुदाय के बच्चों द्वारा गाया गया एक पंजाबी लोकगीत शामिल है। ये बच्चे रोम के पास स्थित फोंदी कस्बे से आते हैं, जहां उनके माता पिता कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। ये पंजाबी लोक शैली का गीत एक जट किसान के गर्व, शक्ति और उत्साहपूर्ण जीवन का उत्सव मनाता है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीक की प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
8: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले 6 दशकों के दौरान नक्सलवाद के कारण बस्तर को बड़े पैमाने पर जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अगले 5 वर्षों में करेगी। उन्होंने कहा कि अगले 1.5 वर्षों के दौरान बस्तर में स्थापित सुरक्षा बलों के करीब 200 कैंपों में से 70 कैंपों को जन सेवा केंद्रों में बदलकर उन्हें आदिवासी कल्याण का केंद्र बनाया जाएगा। इन सेवा केंद्रों में बैंकिंग, आधार, राशन कार्ड, कौशल प्रशिक्षण सहित केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। एक रिपोर्ट।
9: उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पिछले वर्ष 12 अगस्त को एक समिति का गठन किया गया था। रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में उचित समय पर प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायाधीश जांच समिति के पीठासीन अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य ने श्री बिरला को न्यायाधीश जांच समिति की रिपोर्ट सौंपी। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आधिकारिक आदेश जारी कर निदेशालय को घोष के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। श्री अधिकारी ने कहा कि पूर्व की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इस मामले की जांच प्रक्रिया को लंबे समय तक जबरन और अनैतिक रूप से रोक रखा था। ये मामला एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या से भी संबंधित है। सीबीआई ने 29 नवंबर 2025 को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमरीका ने समुद्र में पहले से मौजूद रूस के तेल पर प्रतिबंधों की छूट की अवधि को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अमरीका के वित्त विभाग ने कल एक आदेश जारी कर 17 अप्रैल या उससे पहले समुद्र में फंसे रूसी तेल पर प्रतिबंधों से मिली छूट की समय सीमा को 17 जून तक बढ़ा दिया है। इससे पहले अमरीका ने 5 मार्च को 1 महीने के लिए रूस का तेल खरीदने पर भारत को प्रतिबंधों से छूट दी थी। कुछ दिनों बाद ये छूट अन्य देशों को भी दी गई, जो 11 अप्रैल को समाप्त हो गई थी। अमेरिका इस वर्ष 30 और 31 अक्टूबर को जॉर्जिया के अटलांटा शहर में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल घोषणा की कि इस बैठक में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के विदेश मंत्री शामिल होंगे, जिससे वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए G20 के मुख्य उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा सकेगा।

0: आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। चेन्नई में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से शाम 7:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में दिन के समय मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है। राजस्थान, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज रात भी गर्मी बने रहने का अनुमान है। जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आज बादल गरजने के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपना शीर्षक बनाया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका प्रतिबंध हटाए या लगाकर रखे, रूस से तेल खरीद जारी रखेगा भारत, सरकार की दो टूक, अपने देश की ऊर्जा जरूरत के हिसाब से तेल खरीदेंगे। हिंदुस्तान ने अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के दावे को प्रमुखता दी है। ईरान का नया शांति प्रस्ताव भी खारिज। पंजाब केसरी ने लिखा है, ट्रंप ने युद्ध पूरी तरह खत्म करने के लिए रखी 5 शर्तें, जवाब में तेहरान ने भी 5 शर्तों की सूची थमाई। देशबंधु की खबर है, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर लागू की नई व्यवस्था, स्ट्रेट के प्रबंधन के लिए नया निकाय बनाने की घोषणा की गई है। नवभारत टाइम्स के अनुसार नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने सोमवार को महाराष्ट्र के लातूर से 10वीं गिरफ्तारी की। सीबीआई का दावा, नीट से 10 दिन पहले मिले थे सवाल। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा पर विश्लेषण दिया है। नए समीकरणों की उम्मीद शीर्षक से पत्र लिखता है, गहरे भू राजनीतिक संकटों और आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की 6 दिवसीय यात्रा सिर्फ औपचारिक राजनयिक दौरा भर नहीं है, बल्कि इसके व्यापक कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक निहितार्थ भी हैं। दैनिक भास्कर की विशेष खबर ध्यान आकर्षित करती है, स्मार्ट से उबे लोग, बेसिक चीजों में सुकून की तलाश, जो गैजेट चुपचाप काम करे अब वही ज्यादा समझदार।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत EFTA समझौते के तहत $100 अरब अमरीके निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्स फॉर $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट एंड 1 मिलियन जॉब्स अंडर इंडिया EFTA एग्रीमेंट एट बिजनेस एंड रिसर्च समिट इन ओस्लो, नॉर्वे। Prime Minister Modi to meet leaders of all 5 Nordic nations at 3rd India-Nordic summit today. Defence Minister Rajnath Singh describes Operation Sindoor as testament to India's transformation into strong, confident and capable nation. Judges Inquiry Committee investigating allegations against Justice Yashwant Verma submits report to Lok Sabha Speaker Om Birla. West Bengal government allows ED to prosecute former principal of RG Corps Medical College Sandeep Ghosh in financial irregularity case. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad secure playoff berth, beating Chennai Super Kings by 5 wickets. Prime Minister Narendra Modi attended the India-Norway Business and Research Summit in Oslo. Crown Prince Haakon and the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre, also participated in the summit. Addressing the business and research community, Prime Minister Modi appreciated the growth in bilateral trade and investments following the entry into force of trade and economic partnership.

0: ने भी सरबराह मीटिंग में शिरकत की। कारोबारी और तहकीकी बिरादरी से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तिजारत और इक्तसादी शराकतदारी समझौते के नफाज के बाद दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी में इजाफे की सताइश की। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि दोनों मुल्कों के शराकतदारों को चाहिए कि वो भारत में 10 लाख रोजगार पैदा करने के नतीजे के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी के हदफ को हासिल करने की कोशिश करें।
1: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
0: जनाब मोदी ने मुल्क के पैमाने, बढ़ती हुई तवानाई की ज़रूरतों, आबोहवा में तब्दीली के तय अज़्म और काबिल तजदीद तवानाई में तेज़ी से उसत, ग्रिड बुनियादी ढांचे, ग्रीन हाइड्रोजन और साफ तवानाई पर जोर देते हुए भारत के उमंगों से भरे माहौल दोस्त तरीक़ेकार की जानिब मुंतकली के एजेंडे का भी जिक्र किया।
1: 2030 तक हमने 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।
0: सरबराह मीटिंग में नॉर्वे और भारतीय कारोबारियों के अलावा तहकीकी बिरादरियों के 250 से ज्यादा शुरका और 50 से ज्यादा कंपनियों के सीईओज ने भी शिरकत की। इससे पहले करीबी ताल्लुकात के तहत खैर सगाली के तौर पर नॉर्वे के इज्जत मआब शाह हेराल्ड वी की तरफ से वज़ीर आज़म मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द नॉर्वियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के एजाज से नवाजा गया। वजारत खारजा में मगरबी मुल्कों के उमूर के शोबे के सेक्रेटरी सीबी जॉर्ज ने वजीर आजम के नॉर्वे दौरे पर कहा कि भारत नॉर्वे के भारत बहरुलकाहिल समुद्री पहल में शामिल होने का खैर मकदम करता है क्योंकि दोनों मुल्क बहरी मुल्कों की सरबराही कर रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ओस्लो में आज भारत और नॉर्डिक के दरमियान तीसरी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे जिसका मकसद टेक्नोलॉजी, काबिल तजदीद तवानाई, दिफा, पायदारी और तजारत जैसे शोबों में शुमाली यूरोप के सभी 5 मुल्कों के साथ भारत की क्लीदी शराकतदारी को मजबूत करना है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: वजीर आजम नरेंद्र मोदी शुमाली यूरोप के सभी 5 मुल्कों के अपने हम मनसबों के साथ आज भारत और नॉर्डिक के दरमियान तीसरी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ये सरबराह कॉन्फ्रेंस भारत और शुमाल यूरोप के मुल्कों के दरमियान बढ़ती हुई शोभा जाती ताउन में मददगार साबित होगी। साबिका सरबराह कॉन्फ्रेंस सन 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में हुई थी। सरबराह कॉन्फ्रेंस में जिन शोभों पर तवज्जो दी जाएगी उनमें तकनीक और इख्तरा, पायदारी, काबिल तरजीह तवानाई और डिजिटाइजेशन शामिल हैं। तिजारत और माशी शराकतदारी समझौते के निफाज के साथ सरबराह कॉन्फ्रेंस में इस बात की कोशिश की जाएगी कि ये सरबराह कॉन्फ्रेंस खित्ते के साथ कसीर रुखी ताउन में भी मददगार साबित होगी और ये आपसी मफाद के आलमी और इलाकाई उमूर पर ख्यालात का तबादला करने का एक मौका फराहम करेगी। वज़ीर आज़म मोदी तीसरी भारत नॉर्डिक समिट के मौके पर डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के वज़ीर आज़म के साथ भी बाहमी मीटिंगें करेंगे। ओस्लो नॉर्वे से संगीता गोड़बोली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: 5 मुल्कों के अपने दौरे के आखिरी मरहले के तहत वजीर आजम नरेंद्र मोदी इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी की दावत पर आज 2 रोजा सरकारी दौरे के सिलसिले में इटली के शहर रोम पहुंचेंगे। वजीर आजम मोदी इटली की वजीर आजम मेलोनी के साथ 2 तरफा बातचीत करेंगे। वो इटली के सदर सर्जियो मैटरेला से भी मुलाकात करेंगे। जनाब मोदी कारोबारी सरबराहों के साथ भी गुफ्तगू करेंगे ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी को फरोग दिया जा सके। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत को एक मजबूत, पुरएतमाद और बासलाहियत मुल्क में बदलने की अलामत करार दिया है। कल हनोई में गैर मुकीम भारतीयों से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने जोर देते हुए कहा कि भारत न्यूक्लियाई हथियारों के पहले इस्तेमाल न करने की अपनी पॉलिसी पर पूरी तरह कारबंद है। वो किसी भी तरह से न्यूक्लियाई ब्लैक मेलिंग में नहीं आएगा और दुश्मन की किसी भी मुहिमजुई का सख्ती से जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हासिल की गई

बेमिसाल तरक्की और कामयाबी की वजह से बैन अलाक्वामी सतह पर भारत की बढ़ती हुई साख को उजागर किया। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर

0: यूनिट ने कहा कि यह दावा फर्जी है। पीआईबी ने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो फर्जी दावों से दूर रहें और मुस्तनद मालूमात के लिए हमेशा सरकारी ज़राए का इस्तेमाल करें। भारतीय महकमे मौसमियात ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज शदीद गर्मी के हालात की पेशगोई की है। आज दिन में साहिली आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में मौसम के गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो कतर, सऊदी अरब और मुतहद अरब अमारात के रहनुमाओं की दरख्वास्तों के बाद ईरान के खिलाफ मनसूबा बंद फौजी कार्रवाई करने से रुक गए हैं, जबकि मुतल्लिका फरीकों के दरमियान संजीदा मुजाकरात जारी हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने मुकर्रर 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स ने 19 ओवर में 5 विकेट खोकर जीत का अपना निशाना हासिल कर लिया। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं जमीर रजवी।
1: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से आज शाये होने वाले ज्यादातर उर्दू अखबारात ने मुख्तलिफ खबरों को नुमाया जगह दी है। रोजनामा इनकलाब ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नॉर्वे के दौरे के दौरान उन्हें नॉर्वे के आला तरीन एजाज से सरफराज किए जाने की खबर को सफे अव्वल पर जगह दी है। वजीर आजम ने कहा कि आलमी अदम इस्तेहकाम के माहौल के दरमियान भारत और यूरोप के ताल्लुकात सुनहरे दौर में दाखिल हो रहे हैं। वहीं अखबार ने ईरान पर हमले की तैयारियों के तेज होने से मुतालिक खबर को सफे अव्वल की चह सुर्खी बनाया है। अखबार ने लिखा है कि मुजाकिरात में तातुल के बाद गुज़िश्ता 2 दिनों में इस बात के इम्कान बढ़ गए हैं कि अमरीका एक बार फिर ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का रास्ता इख्तियार कर सकता है। रोजनामा प्रताप ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के वियतनाम दौरे की खबर को अहमियत के साथ शाये किया है।
0: खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के ओस्लो में कारोबार और रिसर्च समिट के दौरान भारत EFTA मुआहदे के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी और 10 लाख मुलाजमतों की बात कही है। वजीर आजम मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक समिट में शुमाली यूरोप के सभी 5 ममालिक के रहनुमाओं से आज मुलाकात करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत पुरएतमाद और सलाहियतों के हामिल मुल्क में बदलने का गवाह करार दिया है। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इल्जाम की जांच कर रही जजेज इंक्वायरी कमेटी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट पेश की। मगरबी बंगाल हुकूमत ने ईडी को मालियाती बेजाबतगी केस में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत दी है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: इधर आइए, इधर।
2: इधर?
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
3: शुभ वाणी,
2: लाभ वाणी,
1: आकाशवाणी।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल.
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री.
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर. हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर. नया भारत, नया आकाशवाणी.

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। आम लोगों की समस्याओं के त्वरित निपटारे के लिए आज प्रदेश की सभी पंचायतों में हो रहा है सहयोग शिविर का आयोजन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सारण जिले की टुमरी बुजुर्ग पंचायत से करेंगे शिविर की शुरुआत। प्रदेश में राशन कार्डधारी परिवारों की जांच में संदिग्ध पाए गए 35,15,000 से अधिक परिवारों के नाम सूची से काटे जाएंगे। खगड़िया जिले के मानसी थाना क्षेत्र में NH31 पर सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, 6 अन्य घायल। और प्रदेश के विभिन्न भागों में तापमान 40 डिग्री के पार। मौसम विभाग ने आज रोहतास, कैमूर तथा बक्सर जिले में लू की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए आज से पंचायत स्तर पर राज्यव्यापी सहयोग शिविर की शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सारण जिले की टुमरी बुजुर्ग पंचायत में आयोजित कार्यक्रम से शिविर का उद्घाटन करेंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी पटना के नौबतपुर की चिरौड़ा पंचायत में आयोजित शिविर में शामिल होंगे। सभी प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव भी संबंधित जिलों में आयोजित होने वाले शिविर में भाग लेंगे। इन्हें कम से कम 3 प्रखंडों के सहयोग शिविरों में उपस्थित रहने को कहा गया है। इधर हमारी संवाददाता ने बताया कि 7 निश्चय 3 के सबका सम्मान जीवन आसान विजन के तहत इस पहल का मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं और प्रशासनिक तंत्र को सीधे जनता के द्वार तक पहुंचाना है। ये शिविर प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में आयोजित किए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
1: सहयोग शिविरों में जिलाधिकारी, अनुमंडलाधिकारी और पुलिस अधिकारियों सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी खुद मौजूद रहकर स्थानीय स्तर पर मामलों का निपटारा करेंगे। इन शिविरों के माध्यम से राशन, पेंशन, आवास, मनरेगा, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि विवाद, दाखिल खारिज, सीमांकन, जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सरकार ने निर्देश दिया है कि शिविर में प्राप्त शिकायतों का समाधान अधिकतम 30 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाए। ऐसा नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सचिवालय स्तर से भी इन शिकायतों की सीधी निगरानी की जाएगी। जनता की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 1100 और सहयोग पोर्टल भी क्रियाशील कर दिया गया है। समाचार कक्ष से मैं सविता पारीक।
0: इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि सहयोग शिविर के तहत प्राप्त आवेदनों का 30 दिनों के भीतर निष्पादन किया जाना अनिवार्य है। पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करने पर संबंधित अधिकारी 31वें दिन स्वतः निलंबित हो जाएंगे।
2: आपको अटकाना और भटकाना नहीं है। 19 तारीख से यह जब शुरुआत होगा, अगले 20 जून को 31वां दिन होगा साथियों, और जो पदाधिकारी 30 दिन में इसको ऑर्डर नहीं करेंगे, अंतरिम ऑर्डर भी नहीं करेंगे क्योंकि कई चीजें न्यायालय से जुड़े होंगे, तो 30 दिन में जो भी पदाधिकारी आदेश नहीं जारी करेगा वो 31वां दिन स्वयं निलंबित हो जाएगा।
0: केंद्र सरकार ने प्रदेश में राशन कार्डधारी परिवारों की जांच में संदिग्ध पाए गए 35,15,000 से अधिक परिवारों का नाम सूची से काटने का निर्णय लिया है। इनमें 21,10,000 से अधिक

0: परिवारों के नाम काट लिए गए हैं, जबकि 14 लाख से अधिक और संदिग्धों के नाम काटे जाएंगे। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सभी जिलों को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किया है। सबसे अधिक 2,12,000 परिवारों के नाम पटना जिले में कटेंगे। प्रदेश में बैंकों का साख जमा अनुपात सीडी रेशियो पहली बार 60% से अधिक हो गया है। बिहार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में पहली बार 60.21% का सीडी रेशियो हासिल किया है। विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह की अध्यक्षता में पटना में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकिंग समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी गई। बैठक में सरकारी और निजी बैंकों के स्तर से ऋण वितरण तथा प्राथमिकता क्षेत्रों में वित्तीय प्रवाह की स्थिति की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने तेल कंपनियों को पाइप नेचुरल गैस पीएनजी के लंबित आवेदनों के शीघ्र निपटारे का निर्देश दिया है। वर्तमान में पीएनजी के लिए राज्य में 31,774 आवेदन लंबित हैं। मुख्य सचिव ने अतिरिक्त मानव बल और संवेदकों के माध्यम से इन आवेदनों को मिशन मोड में निपटाने का निर्देश दिया। आपदा प्रबंधन समूह की उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव ने पीएनजी कनेक्शन की प्रगति के साथ साथ घरेलू एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति की स्थिति और पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता की भी समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा कि पूरे राज्य में पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी को लेकर किसी भी प्रकार की संकट की स्थिति नहीं है। भूमि विवाद के बढ़ते मामलों और लंबित वादों के त्वरित निपटारे के लिए राज्य सरकार ने बिहार भूमि न्यायाधिकरण में सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 7 कर दी है। साथ ही न्यायाधिकरण में 5 नए न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति भी की गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि फार्मर रजिस्ट्री के लिए चल रहे विशेष अभियान के तहत अब तक 74,434 किसानों का निबंधन हो चुका है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि कृषि विभाग तथा भूमि और राजस्व विभाग के अधिकारी समन्वय बनाकर फार्मर रजिस्ट्री अभियान को गति दे रहे हैं। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन माध्यमों पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है जिसमें कहा जा रहा है कि मंदिरों के स्वर्ण भंडार के बदले सरकार मंदिरों को गोल्ड बॉन्ड जारी करेगी। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि यह दावा पूरी तरह फर्जी है। पीआईबी ने कहा कि सरकार की ओर से ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया गया है। उच्च शिक्षा निदेशक एनके अग्रवाल अंगिका अकादमी और बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। वे विभागीय कार्यों के अतिरिक्त अकादमी के अध्यक्ष पद का दायित्व निभाएंगे। इसके अलावा उच्च शिक्षा विभाग के उपनिदेशक दिवेश कुमार चौधरी को अंगिका अकादमी और बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी के निदेशक के पद पर नामित किया गया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। राज्य के अधिकतर हिस्सों में भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 10 जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। इस अवधि में कयाची और बक्सर में लू की स्थिति बनी रही। इन स्थानों पर तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार कयाची प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बक्सर का अधिकतम तापमान 44.4, डेहरी का 44 और कैमूर का अधिकतम तापमान 43.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं छपरा का 40.4, नालंदा का 40 और पटना का अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इधर मौसम विभाग ने आज रोहतास, कैमूर और बक्सर जिले में लू चलने की आशंका को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है।
2: दिनांक 19 मई राज्य के उत्तर पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के भभुआ, बक्सर एवं रोहतास जिलों में एक दो स्थानों पर उष्ण लहर चलने की संभावना है।
0: खगड़िया जिले के मानसी थाना क्षेत्र में NH 31 पर हुए सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, वहीं हादसे में 6 अन्य घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक तेज रफ्तार ट्रक और ऑटो रिक्शा के बीच हुई टक्कर के कारण ये हादसा हुआ। सभी मृतक ऑटो सवार यात्री थे। हादसे के बाद मौके से भागने के क्रम में ट्रक ने सामने से आ रहे दो अन्य वाहनों को भी टक्कर मार दी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दुर्घटना पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने सभी मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है। इधर रोहतास जिले के धौड़ार थाना क्षेत्र में तिलोथू सासाराम मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 4 अन्य घायल हो गए। घायलों में एक की हालत गंभीर बताई जाती है। पटना स्थित नियोजन भवन में आज पूर्वाह्न 11 बजे से रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। युवा, रोजगार और कौशल विकास विभाग के तत्वावधान में आयोजित मेले में 12वीं पास 18 से 40 वर्ष के अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। गया जिले के कोठी थाना क्षेत्र के रानीपुर टेला में बालू माफिया पुलिस पर हमला कर 2 जब्त ट्रैक्टर छुड़ाकर भाग गए। इस मामले में पुलिस ने 12 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है। इन सभी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। कटिहार जिले के बलरामपुर थाना क्षेत्र के फरसरा गांव में पुलिस ने छापेमारी कर एक महिला समेत 2 तस्करों को मादक पदार्थ स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। आईपीएल क्रिकेट में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं कल खेले गए मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्ले ऑफ में जगह बना ली है। गुजरात टाइटंस भी अंतिम 4 में पहुंच गई है जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पहले ही प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। सीतामढ़ी के जानकी स्टेडियम में खेले जा रहे श्यामल सिन्हा अंडर 16 एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट में गया ने बेगूसराय को 65 रनों से पराजित कर फाइनल में जगह बना ली है। बिहार फुटबॉल एसोसिएशन ने निर्देशों की अवहेलना और संगठनात्मक नियमों के उल्लंघन के आरोप में पश्चिम चंपारण, सीवान, अररिया, गया, बेगूसराय, वैशाली, सहरसा, सुपौल और नालंदा जिला फुटबॉल संघों के सचिवों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश को प्रमुखता देते हुए लिखा है, निर्माण कार्यों के प्राक्कलन की AI से जांच अनिवार्य। दैनिक जागरण ने लिखा है, पटना और सिवान में अपराधियों से मुठभेड़, दोनों के पैर में लगी गोली। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, सम्राट बोले 20 दिन में 2 नोटिस, 30 दिन में काम नहीं हुआ तो सस्पेंड। प्रभात खबर ने राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल के हवाले से लिखा है, बिहार में 3 और सैटेलाइट टाउनशिप बनेगी। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, सहयोग शिविर आज, पंचायत में सुनी जाएगी फरियाद। आज अखबार लिखता है, अब स्कूलों में रोज होगी बच्चों के बैग की जांच, बच्चे का स्कूल बैग उसके शरीर के वजन से 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, आम लोगों की समस्याओं के त्वरित निपटारे के लिए आज प्रदेश की सभी पंचायतों में हो रहा है सहयोग शिविर का आयोजन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सारण जिले की डुमरी बुजुर्ग पंचायत से करेंगे शिविर की शुरुआत।

0: प्रदेश में राशन कार्डधारी परिवारों की जांच में संदिग्ध पाए गए 35,15,000 से अधिक परिवारों के नाम सूची से काटे जाएंगे। खगड़िया जिले के मानसी थाना क्षेत्र में एनएच 31 पर सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, 6 अन्य घायल। और प्रदेश के विभिन्न भागों में तापमान 40 डिग्री के पार, मौसम विभाग ने आज रोहतास, कैमूर तथा बक्सर जिले में लू की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: उपभोक्ता आयोगों में शिकायतों की ई फाइलिंग करना हुआ और भी आसान।
2: घर बैठे ही ई जागृति पोर्टल www.e-jagriti.gov.in पर कहीं से भी खुद से रजिस्टर कर अपना केस दर्ज कर सकते हैं। 5,00,000 रुपए तक के मामलों पर कोई शुल्क नहीं।
1: ई जागृति पोर्टल उपभोक्ताओं का अपना डिजिटल मंच। शिकायत दर्ज करें और त्वरित समाधान पाएं।
2: जागो ग्राहक जागो। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार द्वारा जनहित में जारी।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: इधर आइए, इधर।
5: इधर?
4: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
6: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
5: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
6: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
5: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
6: शुभ वाणी,
5: लाभवाणी,
4: आकाशवाणी।

0: जनमानस की आस्था के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम।
1: राम कथा सुर
2: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज एवं FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। आइए आनंद लें फिल्मी गीतों के कार्यक्रम नगमे नए पुराने का। आरंभ में बोल बच्चन फिल्म का ये गाना हिमेश रेशमिया और श्रेया घोषाल की मिलीजुली आवाज़ों में बोल हैं शब्बीर अहमद के संगीत तैयार किया है हिमेश रेशमिया ने।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: श्रोताओं आइए अब सुने गीतकार गुलजार का लिखा गाना उदित नारायण, सुनिधि चौहान और निहिरा जोशी की आवाजों में। फिल्म बंटी और बबली के इस गीत को संगीतबद्ध किया है शंकर एहसान लॉय ने।
5: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सारी जिंदगी

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर और बाबला मेहता की मिलीजुली आवाजों में। संगीत तैयार किया है शिव हरि ने, बोल हैं आनंद बख्शी के, फिल्म है चांदनी।

श्रोताओं, आज फिल्म संगीत कार्यक्रम नगमे नए पुराने में इतना ही। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब साप्ताहिक कार्यक्रम बज़्मे उर्दू प्रस्तुत करता है मोहम्मद सरशार अहमद।

0: फेयर प्ले डे है।
1: जी जी जी
0: और
1: जी
0: देखिए फहद भाई, आज जो है वर्ल्ड फेयर प्ले डे का जो बुनियादी मकसद है,
1: जी जी जी
0: खेलों में इंसाफ,
1: हाँ
0: ईमानदारी,
1: जी
0: एहतराम और भाईचारे के जज्बे को आम करना है।
1: बेशक बेशक बेशक
0: और फहद भाई, खेल के अलावा भी आम जिंदगी में भी इन तब बातों को अपनी जिंदगी में अमली जामा पहनाना
1: अमली
0: है।
1: जमा पहनाना
0: और
1: जी
0: खास तौर से ये पैगाम दिया जाता है कि हम ईमानदारी, एहतराम और भाईचारे के जज्बे को आम
1: आम
0: करना है।
1: करते हैं जी हाँ
0: इस दिन दुनिया भर में ये पैगाम दिया जाता है
1: जी
0: कि असल कामयाबी सिर्फ मुकाबला जीतने में नहीं
1: जी
0: बल्कि अच्छे अखलाक के साथ खेलने में
1: खेलने
0: है।
1: में है। बड़ी अच्छी बात बताई
0: तो फैज
1: आपने जी
0: भाई,
1: हाँ
0: देखिए खेलने में भी
1: हाँ
0: अखलाक है और कहा जाता है कि डिसिप्लिन ही खेल सिखाता भी
1: जी
0: है।
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: फैज भाई, अगर कोई खिलाड़ी जीत जाए मगर धोखादेही, बदतमीजी या नाइंसाफी
1: नाइंसाफी
0: का
1: का
0: सहारा
1: सहारा
0: ले,
1: हाँ जी हाँ जी हाँ
0: तो ऐसी कामयाबी ज्यादा देर तक इज्जत नहीं दिला सकती,
1: क्या बात है, माने पायदारी नहीं होती है
0: नहीं
1: इसमें
0: होती
1: जी
0: है।
1: हाँ
0: और इसके बरक्स, जो खिलाड़ी उसूल और जवाबित की पाबंदी करते हुए इज्जत और एहतराम के साथ खेलता है,
1: जी जी जी
0: वो लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहता है।
1: और जब देखिए फेयर प्ले का मतलब भी सिर्फ खेल के कवानीन की पाबंदी करना नहीं है बल्कि अपने हरीफ के साथ एहतराम का बर्ताव करना,
0: बिल्कुल,
1: रेफरी के जो अंपायर होते हैं
0: हाँ
1: उनके फैसलों को तस्लीम करना और शिकस्त के बाद भी हौसला बरकरार रखना है। खेल के मैदान में अक्सर ऐसे मनाजिर देखने को मिलते हैं जब एक खिलाड़ी जख्मी हरीफ की मदद करता है
0: बिल्कुल,
1: या अपनी जीत के बावजूद आजिजी और इंकसारी के साथ पेश आता है। यही हकीकी स्पोर्ट्स में स्पिरिट है, उसका जज्बा है। ये जज्बा इंसान को न सिर्फ अच्छा खिलाड़ी बल्कि अच्छा इंसान भी जावेद भाई बनाता है।
0: बनाता
1: ये
0: है,
1: जी
0: बल्कि अच्छा इंसान, और
1: हाँ
0: अच्छा
1: जी हाँ
0: इंसान
1: जी
0: बनने की ज़रूरत भी है फैज
1: जी
0: भाई।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल
0: आज के दौर में खेल आलमी सतह पर बेहद मकबूल हो चुके हैं फैज भाई।
1: बिल्कुल सही है
0: आप
1: बिल्कुल
0: जानते
1: सही
0: हैं,
1: है
0: जैसे फुटबॉल है, क्रिकेट है,
1: जी जी
0: हॉकी
1: जी
0: है, टेनिस है
1: जी जी जी
0: और दीगर समझिए खेलों में लाखों लोग दिलचस्पी लेते हैं।
1: जी जी जी
0: लेकिन फैज भाई, देखिए अफसोस की बात यह है
1: जी
0: कि
1: हाँ
0: बाज़ औकात खेल के मैदान में बदतमीज़ी,
1: जी
0: नस्ल परस्ती,
1: जी
0: नफरत और धोखादेही जैसे वाकयात भी सामने
1: सामने
0: आते
1: आ
0: रहते
1: जाते हैं जी हाँ
0: हैं।
1: जी हाँ ऐसे रवैये खेल की
0: खेल की
1: असल
0: असल रूह को, उसकी
1: हाँ
0: आत्मा को मजरूह कर
1: मजरूह
0: देते
1: कर
0: हैं।
1: देता है जी हाँ जी हाँ
0: इसीलिए वर्ल्ड फेयर प्ले डे की अहमियत ऐसे मौके पर और भी बढ़
1: बढ़
0: जाती
1: जाती
0: है,
1: है जी हाँ
0: ताकि नई नस्ल को यह समझाया जा सके
1: जी
0: कि
1: कि
0: खेल का असल मकसद
1: जी जी जी
0: नफरत नहीं
1: जी बल्कि
0: बल्कि
1: बल्कि ये कहा जाए कि
0: मोहब्बत,
1: हाँ मोहब्बत है
0: ताउन
1: हाँ।
0: और इत्तेहाद को फ़रोग देना है।
1: उस दिन जावेद भाई देखिए मुख्तलिफ ममालिक में सेमिनार, खेलों के मुकाबले और तालीमी तकरीबात भी मुनाक़िद की जाती हैं।
0: बिल्कुल, यानी आज के
1: जी
0: दिन
1: जी जी जी जी स्कूलों और कॉलेजों में तलबा को फेयर प्ले की अहमियत से रोशनास कराया जाता है। कोच हों और असातिज़ा वगैरह नौजवान खिलाड़ियों को ये तालीम देते हैं कि जीत और हार खेल का हिस्सा नहीं बल्कि किरदार सबसे बड़ी कामयाबी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: बाज़
0: हाँ
1: औक़ात एक छोटा सा
0: हाँ
1: अखलाकी अमल हज़ार मेडल से भी ज़्यादा कीमती बन जाता है जावेद भाई,
0: बिल्कुल बिल्कुल, एक छोटा सा अखलाकी अमल,
1: अखलाकी अमल भी जी
0: वाह
1: हाँ जी
0: क्या
1: हाँ
0: बात है। और फैज भाई, देखिए अब मज़हब भी इंसाफ, दयानतदारी
1: जी
0: और हुस्न अखलाक की तालीम
1: तालीम
0: देता
1: देता है
0: है।
1: बेशक देता है
0: अब देखिए कुरान और हदीस में बार बार अदल व इंसाफ पर जोर दिया गया है।
1: जी हाँ
0: अगर खेलों में भी इन्हीं उसूलों को अख्तियार किया जाए
1: जी
0: तो मुकाबले खुशगवार बन सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: खेल इंसान को मुत्तहिद करते हैं, मुख्तलिफ ज़ुबानों, कौमों और मजाहिब के लोग एक मैदान में जमा होकर
1: जी
0: एक
1: जी जी
0: दूसरे
1: जी
0: के करीब आते हैं।
1: जी हाँ
0: यही वजह है कि खेलों को अमन और दोस्ती का जरिया भी कहा जाता है।
1: वर्ल्ड फेयर प्ले डे जो है जावेद भाई हमें ये सबक देता है कि मुकाबला जिंदगी का हिस्सा है
0: बिल्कुल,
1: लेकिन इंसानियत इससे कहीं
0: कहीं
1: ज़्यादा
0: ज्यादा है,
1: अहम
0: बिल्कुल
1: है।
0: बिल्कुल।
1: जी अगर खेलों में फेयर प्ले का जज्बा मजबूत होगा तो माशरे में भी इंसाफ, बर्दाश्त और भाईचारे की फ़ज़ा कायम होगी। नौजवान नस्ल को चाहिए कि वो अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के सिर्फ खेल ही नहीं बल्कि उनके अखलाक और किरदार से भी सीखे।
0: बिल्कुल,
1: असातिज़ा हों, वालदैन और समाजी इदारों की भी ये जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों में ईमानदारी और एहतराम इंसानियत का जज्बा भी पैदा करें।
0: बिल्कुल,
1: जी
0: जज्बा भी पैदा करें।
1: जी
0: और
1: जी
0: फिर

0: देखिए, जैसा कि अभी आपने कहा कि जो नौजवान हैं अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को के सिर्फ खेल को नहीं बल्कि उनके अखलाक और किरदार से भी सबक
1: जी
0: हासिल
1: जी

0: तो यही उसकी सबसे बड़ी फतह होगी,
1: जी जी जी,
0: जीत होगी।
1: जी जी जी, तो सामेन से हम लोग यही गुजारिश करेंगे कि वर्ल्ड फेयर प्ले डे हमें ये पैगाम देता है कि खेल हो या जिंदगी, कामयाबी हमेशा इंसाफ, ईमानदारी और अच्छे अखलाक के साथ ही खूबसूरत लगती है। जब
0: बिल्कुल
1: हमें चाहिए कि हम जीत से ज़्यादा इंसानियत की अहमियत दें, दूसरों के हकूक़ का एहतराम करें और नई नस्ल में मोहब्बत, बर्दाश्त और फेयर प्ले के जज्बे को फ़रोग दें ताकि एक बेहतर महज़्ब और पुरअमन माशरा तश्कील पा सके।
0: और फैज़ भाई देखिए, बहुत अच्छी बात आपने दुरुस्त फरमाया, खेल के मैदान में फेयर प्ले यानी इंसाफ, दयानतदारी और बाहमी एहतराम की जिस खूबसूरत रिवायत का जिक्र किया गया हम लोगों ने किया, वो सिर्फ खेल तक महदूद नहीं बल्कि इंसानी जिंदगी के हर शोबे में इसी जज्बे की जरूरत महसूस होती
1: है। बेशक।
0: और फैज़ भाई, जब मुआशरे में इंसाफ, मसावात और एहसास जिम्मेदारी कमजोर पड़ने लगते हैं तो बेशुमार समाजी मसाइल जन्म लेते हैं।
1: जी जी जी जी जी,
0: तो इन्हीं मसाइल में एक संगीन मसला गुर्बत भी,
1: गुर्बत का भी है। बहुत बड़ी अच्छी बात बताई आपने जावेद भाई, गुर्बत सिर्फ माशी तंगी का नाम नहीं है बल्कि ये तालीम, सेहत, मवाक़े और बेहतर ज़िंदगी से महरूमी का दूसरा नाम है।
0: क्या बात है,
1: आज दुनिया की बड़ी आबादी इस मसले से दोचार है और इसके असरात फ़र्द से लेकर पूरे माशरे तक महसूस किए जा सकते हैं।
0: और क्या भी जा रहा है,
1: जी जी जी,
0: और इस सिलसिले में सरकार भी बहुत सारी तहरीकें, बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं ताकि यहाँ से गरीबी का खात्मा हो सके।
1: जी जी जी।
0: लेकिन ज़रूरत है कि उन बातों पर हम सब अमल करने वाले बन जाए। इस खात्मे को, गरीबी को दूर करने के लिए सबसे अहम चीज़ जो है फैज़ भाई, वो तालीम है।
1: जी,
0: तालीम के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते।
1: तो
0: फैज़ भाई देखिए, इसी अहम और फिक्र अंगेज मौजू पर, जैसा कि अभी हम लोगों ने तज़किरा किया, अब हम सामेन को एक मालूमाती और बसीरत अफरोज मकाला सुनवा रहे हैं।
1: अच्छा, मकाले का उन्वान क्या है?
0: मकाले का उन्वान है गुर्बत के असबाब और हल।
1: जी।
0: और मकाला निगार हैं मोहतरमा शाजिया मुशर्रफ। तो आइए सामेन सुनते हैं ये मकाला।
2: गुर्बत इंसान की फलाह व बहबूद में शदीद महरूमी का नाम है। गुर्बत, जिसे खामोश कातिल भी कहा जाता है, गुर्बत को ज़िंदगी की ज़रूरियात हासिल न करने की हालत कहा जाता है। पूरी दुनिया आज इस वबा का शिकार है। गुर्बत का मतलब ये है कि इंसान के पास इंतखाब और मवाक़े न हों, जो इंसानी वक़ार की खिलाफ वर्जी है। उससे मुराद मुआशरे में मौसर अंदाज में हिस्सा लेने के लिए बुनियादी सलाहियत का फ़ुकदान है। उसमें कम आमदनी और बुनियादी अशिया व खिदमात हासिल न कर सकने की हालत शामिल है, जो इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। दुनिया में हर इंसान सुकून और राहत का मुतलाशी है, मगर मुआशी परेशानी और फिक्र व फाका की हालत में ज़िंदगी गुजारना किसी भी इंसान के लिए सख्त तरीन आजमाइश है, क्योंकि गुर्बत न सिर्फ़ एक फ़र्द की ज़िंदगी को मुतासिर करती है बल्कि पूरे मुआशरे पर उसके मोहलिक असरात मुरतब होते हैं। जहाँ गुर्बत आम हो, वहाँ अखलाकी बुराइयाँ, जराइम, नाइंसाफ़ी और महरूमी भी बढ़ जाती है। एक ऐसा समाज जहाँ लोगों को दो वक्त की रोटी भी मयस्सर न हो, तरक्की और खुशहाली का ख्वाब कैसे देख सकता है। गुर्बत व इफ़लास इंतहाई तकलीफ देह और मुसीबत तरीन समाजी मुश्किल है, जो हमेशा इंसानी मुआशरे के दामनगीर रही है। मुसलसल की जाने वाली कोशिशें और मुख्तलिफ जिद्दोजहद के बावजूद ये इक्तसादी और समाजी मुश्किल हल नहीं हो सकी और उसका खात्मा नहीं किया जा सका। गुर्बत के कई असबाब हैं जो फ़र्द और मुआशरे दोनों की कोताहियों की वजह से वजूद में आते हैं। उनमें से चंद वजूहात हैं: बेरोज़गारी और काहली, सूदी निज़ाम और हराम ज़राए से कमाई, मुआशी नाइंसाफ़ी, तालीम की कमी, गैर ज़रूरी अखराजात और असराफ़, आबादी में बेतहाशा इजाफ़ा, वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम, बदउनवानी, कुदरती आफात, महंगाई, ज़कात व सदक़ात की अदायगी में कोताही या चश्मपोशी करना। गुर्बत की सबसे बड़ी वजह मुआशी नाहमवारी और दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम है। जब वसाइल और सरमाया चंद अफराद के हाथों में सिमट कर रह जाते हैं, गरीबों के लिए तरक्की के मौके मयस्सर न हो, तो समाज दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। नतीजतन अमीर मजीद अमीर और गरीब मजीद पसमानदा हो जाता है। मज़हब ने दौलत की मुनसिफाना तकसीम पर ज़ोर दिया है और ज़कात की शक्ल में एक ऐसा कानून नाफिज किया जो दौलत को गर्दिश में रखता है और उसे चंद अफराद के हाथों में महदूद होने से बचाता है। बशर्ते ये कि हर साहिब निसाब ईमानदारी से ज़कात अदा करे तो मुआशरे में कोई गरीब भूखा न रहे।

की अहम वजह सूदी निज़ाम और हराम ज़राए से कमाई भी है। सूद एक ऐसा हराम फेल है जो मुआशी तबाही का सबब बनता है। जब सरमायादार तबका गरीबों को भारी कीमत पर बेजा शरायतों के साथ सूद पर कर्ज़ देता है तो वो कर्ज़ के बोझ तले दब कर मज़ीद बदहाली और मुफलिसी का शिकार हो जाता है। सूदी मईशत सिर्फ चंद अफराद को फ़ायदा पहुँचाती है जबकि आम आदमी के लिए तबाही का ज़रिया बनती है। मज़हब ने सूद को कतई हराम करार दिया है और हलाल रोज़ी के लिए तजारत, मेहनत और कर्ज़ हसना को फ़रोग़ दिया ताकि दौलत का बहाव मतवाजिन रहे और हर फर्द अपनी ज़रूरियात पूरी कर सके। जब मुआशरे में बेरोज़गारी आम होगी तो लोग बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने से भी आजिज़ होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि बेरोज़गारी की वजह से गुरबत में इजाफा ही नहीं होता बल्कि चोरी, डाकाज़नी, धोखा दही, जुल्म, ज़्यादती, कत्ले आम जैसी दिगर समाजी बुराइयाँ जन्म लेती हैं। इसी तरह काहली और सुस्ती भी गुरबत का एक बड़ा सबब है। जो कौमें मेहनत और जिद्दोजहद से गुरेज करती हैं वो हमेशा दूसरों की मोहताज रहती हैं। तालीम किसी भी कौम की तरक्की और खुशहाली का ज़ामिन है। जो कौमें तालीम से महरूम रहती हैं वो हमेशा तरक्की के दौर में पीछे रह जाती हैं। हम ये भी जानते हैं कि जब किसी इंसान के पास इल्म और हुनर न हो तो वो अच्छे मौके से फ़ायदा नहीं उठा सकता और हमेशा दूसरों पर मुनहसर रहता है। इसलिए तालीम के साथ साथ हुनर पर भी ज़ोर देना चाहिए ताकि इंसान ख़ुद मुख्तार बनकर गुरबत से भी निजात हासिल कर सके। आजकल हम देख रहे हैं कि आज का इंसान इंतहाई फजूल खर्च हो गया है। लोग अपनी आमदनी गैर ज़रूरी अखराजात, फजूल खर्ची, बेजा नामो नमूद की ख्वाहिश, दूसरों से आगे बढ़ जाने की हिर्स इन्हें कर्ज़ में मुब्तला कर देती है और वो गुरबत के दायरे में फंसते चले जाते हैं, जबकि उसके बरक्स हमें एतदाल, म्यानरवी और बेजा इसराफ से बचते हुए ज़िंदगी गुजारना चाहिए, क्योंकि फजूल खर्ची इंसान को मोहताजी और तंगदस्ती की तरफ ले जाती है। जिस तरह आज दुनिया गुरबत और बेरोज़गारी जैसे मसाइल से दोचार है, इसी तरह माजी में भी दुनिया इस मसले से दोचार होती रही है। गुरबत और इफ़लास के इजाफे में अहम तरीन सबब समाजी ताल्लुकात में अदम तवाज़ुन, ज़्यादा की हवस और मालदारों के हाथों में माल और दौलत का ज़खीरा भी है। महंगाई अपनी इंतहा को पहुँच चुकी है। महंगाई के असबाब में से एक ज़खीरा अंदोज़ी है। लोगों की ग़ज़ा, गेहूं, दाल, आटा, चावल, प्याज और रोगन वगैरह ज़खीरा करके उसके महंगे हो जाने के इंतज़ार में रोके रखना ही ज़खीरा अंदाजी है। ये गरीबों पर सरासर जुल्म है। आज हमारे निसाब के मजामीन में ज़रूरी ये है कि तलबा और तालबात को ये पढ़ाया जाए कि हम सालेहा साल गुजरने के बावजूद गुरबत व इफ़लास और जहालत व बेरोज़गारी को ख़त्म क्यों नहीं कर सके। हम आज जदीद दुनिया के साथ चलने के कौमी तकाजे कैसे पूरे कर सकते हैं। तरक्की याफ्ता मुआशरे की जदीद सनत व हिरफत, साइंसी उलूम और महारतें अपने यहाँ कैसे मुंतकिल करें और हम इनसे कैसे इस्तफादा हासिल करें। इसके लिए मंसूबा बंदी की ज़रूरत है। उसके अलावा यकसा और मेयारी तालीम के फ़रोग के लिए भारी सरमायाकारी दरकार है जिसकी सिमत भी दुरुस्त हो। यह हकीकत है कि हम तालीम की तरफ से मुजरबाना तगाफुल बरत रहे हैं। वक्त का तकाजा ये है कि साइंसी और तकनीकी उलूम के लिए मेहनत की जाए, लिहाजा मुल्क अज़ीज़ को बाहमी इश्तराक से साइंसदानों की एक ऐसी खेप तैयार करनी होगी जिन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी के हर मैदान में आला तरीन मेयार हासिल करने के लिए अपने आप को वक्फ कर रखा हो। दुनिया में तरक्की की रफ़्तार को अपने साथ बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि हम भी असरी उलूम पर दस्तरस हासिल करें। इंसानी ज़िंदगी के तमाम मज़ाहिर में इल्म को फ़ौकियत हासिल है। मज़हब कायनात के सरबस्ता राज़ों पर हर तरह की तहक़ीक की भरपूर दावत देता है ताकि इंसान अपनी अक्ल व जस्तजू के ज़रिया नित नए ईजादात करके मुआशरे को खुशहाली और अमन का गहवारा बनाए। क़ुरान सबसे पहले यह नज़रिया पेश किया कि कायनात की तमाम चीज़ें आफ्ताब व महताब से लेकर जर्रा जर्रा तक अपनी असली साख्त और मकसद के लिहाज से इंसान की खिदमत गुजारी के लिए पैदा हुई हैं और इंसान को खालिक़ कायनात ने यह अहलियत दी कि वो अक्ल व तजुर्बा की रहनुमाई से उन पर काबू हासिल करके अपने इस्तेमाल में ला सके। खालिक़ कायनात ने सबसे पहले आदम को मौजूदात की तरफ तवज्जो दिलाकर उसका इल्म हासिल करने की तरगीब दी। इंसान को सबसे पहले जो इल्म अता किया गया वो इल्म अशिया है, यानी तमाम मौजूदात आलम की खसूसियात व इम्तियाजात का इल्म। इसको हम मुख्तसर तौर पर इल्म असमा या इल्म मुज़ाहिरे कायनात भी कह सकते हैं। मौजूदा दौर में साइंस जिन चीज़ों से बहस करती है वही मौजूदात आलम हैं। गोया साइंसी इल्म मौजूदात पर तहकीक का नाम है। यह दौर साइंसी तरक्की और फ़न्नी उरूज का है। नौजवान नस्ल जब तक जदीद दौर के फ़न्नी महारत से लैस होकर मैदान अमल में नहीं उतरेगी वो गुरबत का मुकाबला नहीं कर सकेगी। ये हमारी महरूमी है कि हमारे बासलाहियत नौजवान तख्लीक

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रेश, ट्रेश और बाल्टी बॉय।
4: While some just go through the day, you could live the grand life with the Grand Vitara. As you move from city streets to open escapes, the strong hybrid keeps up seamlessly. No matter where the road takes you, you're always breathing in freshness with auto purify and PM2.5 display. And when every moment feels this grand, safety comes standard with 6 airbags. Visit your nearest Nexa showroom to live the grand life with the Grand Vitara Strong Hybrid. Nexa.
5: Javed bhai, isse pehle hum log सामईन को एक मकाला सुनवा रहे थे।
6: मकाले का उन्वान क्या था फैज भाई?
5: मकाले का उन्वान था गुर्बत के असबाब और हल। और मकाला निगार थी मोहतरमा शाजिया मुशर्रफ।
6: तो फैज भाई, ये मकाला तो नहायत उम्दा और काफ़ी मालूमाती अक्का।
5: जी
6: लेकिन ज़रूरत है कि उन तमाम बातों पर भाई अगर हम लोग अमल करने वाले बन जाएं,
5: जी
6: तो यकीनन हम उम्मीद करते हैं कि गुर्बत का खात्मा।
5: और उन्होंने जो इसकी वजह बताई, असबाब जो बताए, बड़े अच्छे सब नुकात
6: है, लेकिन उसमें सबसे अहम और बुनियादी नुकात
5: तालीम और इसके हल का भी उन्होंने रास्ता बताया।
6: हल का भी रास्ता बताया।
5: जाहिर है कि ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। अब हम लोगों को ये चाहिए कि हम उस पर अमल करें और अगर हम लोग अमल करने वाले बन जाएंगे तो यकीनी तौर पर हमारी ज़िंदगी कामयाब
6: हो सकती है। और फैज भाई देखिए, गुर्बत के खात्मे के लिए सरकार भी बहुत सारी
5: मनसूबे
6: चला रही है,
5: बहुत सारे,
6: ताकि लोगों का इसमें फलाह हो और गरीबी का खात्मा हो जाए। अब जैसे हमारे वजीर आजम का जो अकलियतों की फलाह बहबूद के लिए नया 15 नुकाती प्रोग्राम है, अकलियत की जो मेयार जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है, ताकि उनकी सोच है, हमारे वजीर आजम की सोच है कि हमारे मुल्क का जो कौमी धारा है उसमें ये बराबर के शरीक हो सके। और इस तरह से खात्मा होगा तो हमारा मुल्क के मजीद तरक्की की राहों पर गामजन
5: होगा।
6: इसलिए हम सबको चाहिए कि मोहतरमा शाजिया मुशर्रफ ने जो बातें बताई हैं,
5: जी
6: उन बातों पर हम लोग अमल करने वाले बन जाएं,
5: बल्कि मकाला
6: और समझिए कि तभी हम हर मकाम पर कामयाब हो सकते हैं।
5: और
6: फैज भाई देखिए, मकाला जो अभी मोहतरमा शाजिया मुशर्रफ ने सबको सुनाया, तो ये मकाला हमें सोचने, समझने और जिंदगी के मसाइल पर गौर व फिक्र की दावत देता है। दावत तो फैज भाई जब देता है,
5: जी,
6: तो हम सबको दावत कबूल भी कर लेना चाहिए और उस पर अमल भी होना चाहिए। और फैज भाई देखिए, जबकि अफसाना इन्हीं हकीकतों को जज्बात, किरदारों और वाकयात के हसीन पैराए में हमारे सामने पेश करता है,
5: जी
6: अल्फाज जब तखय्युल का रूप इख्तियार करते हैं फैज भाई,
5: जी
6: तो क्या बन जाता है?
5: कहानी बन जाती है। जी हां,
6: और यही कहानी कभी दिल को छू लेती है, टच कर देती है,
5: जी,
6: तो कभी जिंदगी का कोई नया जाविया हमारे सामने रोशन कर देती है।
5: तो जावेद भाई, अब हम सामईन को अदब की इसी दिलनशीन फिजा में लिए चलते हैं।
6: हाँ बिल्कुल,
5: जहाँ एहसासात की नरमी, वाकयात की दिलकशी और जिंदगी की धड़कन एक साथ महसूस होती है।
6: क्या बात है, वाकयात की दिलकशी और जिंदगी की धड़कन
5: एक साथ महसूस होती है।
6: तो फैज भाई जब महसूस होती है,
5: जी
6: तो देर किस बात की।
5: जी सामीन को सुनवाया जाए,
6: सुनवाते
5: जाए।
6: खूबसूरत अफसाना,
5: जी
6: उन्वान है सोच का फर्क,
5: जी
6: और अफसाना निगार हैं जनाब बिलालुद्दीन। तो आइए सामीन सुनते हैं ये अफसाना।
7: रागनी ने लड़के की ख्वाहिश में एक के बाद एक 3 बेटियां जन्म दे दी। फिर तो मोहल्ला टोला और सबसे बढ़कर सास नानन के रोज़ के ताने भरे बातों को सुन सुनकर तबीयत में एक अजीब सी एहसास कमतरी होने लगी थी। वहीं गुलशन भी रागनी को बुरा भला कहने से बाज नहीं आता था, कभी तो इसे जानवर की तरह मारता। बेचारी रागनी सब कुछ सह कर तीनों बेटियों का पालन पोषण करती रही। गुलशन हमेशा रागनी से एक बात कहता, जानती हो आजकल समाज में जो रस्म और रिवाज है तिलक का, फिर दहेज और सबसे बढ़कर पढ़ाई लिखाई, इस महंगाई के दौर में 3 बेटियों का परवरिश करना कोई मामूली बात नहीं है। जब हम लोगों की उम्र ढल जाएगी तो हमारे लाठी का सहारा कौन बनेगा? ये सुन सुन कर रागनी को लगता कि जैसे वो कोई गुनाह कर ली हो और इसका खून मानो पानी हो गया हो। तभी रागनी को गुलशन ने कहा कि मलाई और काजू बेटी को रखो, ये बड़ी हो गई है, और मिट्टिया बेटी को मिट्टी में मिला दो। नहीं जी, आपको मिट्टिया भारी लग रही है, तो मारने से अच्छा है कि इसे आप कहीं छोड़ दें, ये किसी के हाथ लग जाएगी, कोई इसे पोस लेगा और ऐसे ही इसकी परवरिश हो जाएगी। दुनिया बहुत बड़ी है और ऊपर वाला कोई रास्ता निकाल देगा। इसे मारने का इतना बड़ा पाप मैं आपको नहीं करने दूंगी। मलाई काजू आप कुछ समझने लगी है, इसकी आप अच्छे से परवरिश कर दें। तभी गुलशन ने रागनी से कहा, आप बहुत सोचते हैं, घबराएं नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मेरी बेटी देखने सुनने में बड़ी अच्छी है, आप हिम्मत रखिए, अच्छे से अच्छा घर मिल जाएगा। इधर सावन का महीना ख़त्म हो गया था और भादों का मेला शुरू होने वाला था। मेला देखने के बहाने गुलशन, रागनी और मिट्टिया बेटी को लेकर निकले इंटरसिटी पकड़ने के लिए। इधर गाड़ी में बैठते हुए रागनी सोच रही थी कि मिट्टिया अब 4 वर्ष की हो चुकी है, अब ये लड़खड़ा लड़खड़ा कर चलने भी लगी है, बहुत प्यारी बच्ची है। जब रेल अपने पूरे रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ रही थी, तभी गुलशन ने सोचा कि जैसे गाड़ी आने वाला स्टेशन छोड़ेगी, मिट्टिया को किसी प्लेटफॉर्म पर बैठा कर गाड़ी पकड़ लेंगे, लेकिन इसे ऐसा करने का मौका नहीं मिला। और इसी सब उधेड़बुन में पटना इंटरसिटी पटना घुसने ही वाली थी, फिर ये लोग पटना उतर कर चाय नाश्ता किया और सोचने लगे कि क्या किया जाए। तभी गुलशन ने प्लेटफॉर्म पर बिक रहे बिस्कुट को देखकर जल्दी से 1 5 का सिक्का निकाला और मिट्टिया को देते हुए बोले, वो बिस्कुट ले आओ। वो जैसे बिस्कुट लाने गई, इधर ये दोनों मिट्टिया को छोड़कर गायब हो गए। बिस्कुट लेकर जब मिट्टिया लौटी, माँ बाप को नहीं देखकर मिट्टिया ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और इसका रो रो कर बुरा हाल हो गया। इसी दरमियान अचानक एक जोड़े की नज़र इस बच्ची पर पड़ी और इन लोगों ने इस बच्ची को अपने गोद में उठा लिया और इसे चुप कराने लगे और ये लोग अपने साथ इस बच्ची को ले गए। और इधर रागनी का दिल ये कह रहा था कि हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये लोग जब पटना घूम कर वापस आए, ये सोचते हुए कि अगर कोई नहीं ले गया होगा तो इसे भी घर ले चलेंगे, पर इन लोगों को मिट्टिया कहीं नज़र नहीं आई। फिर ये लोग दूसरी गाड़ी पकड़ कर घर लौट आए और सबको कह दिया कि मिट्टिया मेला में हेरा गई, बहुत ढूंढा मगर कहीं नहीं मिली। बहुत लोगों को पता वगैरह देकर आए हैं, अगर मिल गई तो वो लोग खबर कर देंगे। ये सब कहकर झूठी तसल्ली घर वाले लोगों को देते रहे। इधर जो शख्स मिट्टिया को लेकर गए थे, वो बहुत बड़े दौलत और शोहरत वाले थे। ये लोग औलाद के सुख से महरूम थे। ये मियाँ बीवी अपने को खुश नसीब समझ रहे थे और अपना सब कुछ इस पर निछावर कर दिया। अच्छे से अच्छा तालीम दी और इस बच्ची को कोई कमी होने नहीं दिया। फिर इसने मुकाबला जाती एग्ज़ाम में क्वालिफाई होकर CEO बनकर ब्लॉक ज्वाइन कर ली। और इधर मिट्टिया की यादें सबके दिलो दिमाग से निकल चुकी थी। मोहल्ला टोला अपने रिश्तेदार और सब लोग इसे भूल चुके थे। इधर गुलशन भी मलाई और काजू की शादी करके सुबुकदोस्त हो चुके थे और रागनी भी एक दिन डिप्रेशन का शिकार होकर चल बसी। अब गुलशन की ज़िंदगी में हर तरफ खिजा ही खिजा दिखाई पड़ रहे थे। तभी किसी ज़मीन के सिलसिले में गुलशन जी को ब्लॉक जाने का मौका मिला। जैसे CEO के चैम्बर में दाखिल हुए, इन्हें मिट्टिया बेटी की याद ताज़ा हो गई और इन्हें एहसास से नदामत होने लगी और इन्हें लगा कि अगर बिटिया रहती तो वो भी ऐसे ही नज़र आती। तभी CEO ने कहा कि आप चुप क्यों हैं, बताएं किस काम से आए हैं। तभी CEO को भी लग रहा था कि ये शख्स को मैंने कहीं देखा है, पर कहाँ और कब। तभी गुलशन ने तिलमिज़ाती खामोशी को तोड़ते हुए बोल ही दिया कि मैं कुछ ज़मीन के काम से आया हूँ। ठीक है, आप 1 घंटा बाद आएँ, अभी कलर किसी काम से बाहर गए हुए हैं। और गुलशन CEO के चैम्बर से निकलते वक्त टकरा कर गिर गए। तभी CEO मैडम ने डॉक्टर को फ़ोन किया और बेहतरीन इलाज करवाया और डॉक्टर के सारे पैसे खुद दिए। गुलशन ने मिट्टिया के पेशानी के कटे हुए से पहचान लिया था और दिल ही दिल में बड़बड़ाने लगा, मैं किस मुँह से कहूँ कि मैं वही बदनसीब बाप हूँ।
1: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt-hour battery and a range of 543 kilometer, the horizon is finally yours. Own it for rupees 10.99 lakh with a battery EMI of just rupees 3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric.
2: Nexa.
8: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
9: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
8: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
9: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
8: डायल कीजिए 8700014242।
9: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: जावेद भाई, इससे पहले हम लोग सामईन को एक अफसाना सुनवा रहे थे।
1: अफसाने का उन्वान क्या था?
0: अफसाने का उन्वान था सोच का फर्क।
1: सोच का फर्क
0: जी, और अफसाना निगार थे जनाब बिलालुद्दीन।
1: तो वाकई फैज भाई, अफसाना सुनने के बाद आपने महसूस किया होगा
0: जी जी जी
1: कि जनाब बिलालुद्दीन साहब के मकाले में अफसाने के जो किरदार होते हैं,
0: जी जी जी,
1: एहसासात और वाकयात, यकीनन हमारे सामीन को दिल को छू लिया होगा।
0: छू लेते हैं, यकीन।
1: और फैज भाई, अदब की यही खूबसूरती कभी कहानी के सूरत में फिक्र को ऊंचा मेयार अता करता है।
0: क्या बात है जी,
1: और
0: जी,
1: कभी
0: शायरी के
1: आहंग में दिल की आवाज बन जाती है।
0: तो सामीन को अब हम लोग लफ्जों की उस दिलनशीन दुनिया में एक और हसीन रंग शामिल करते हैं।
1: माने एक रंग में एक हसीन रंग शामिल करते हैं,
0: यानी शायरी। शायरी तो हम लोग सामीन को जावेद भाई सुनवाते ही हैं। कलाम शायर के तहत आज हम लोग डॉक्टर नईमुद्दीन अंसारी से उनका कलाम सुनवाएंगे।
1: बिल्कुल, तो आइए सामीन सुनते हैं ये कलाम।
2: हजरत, कौमी एकता के उन्वान से चंद अशआर समाअत फरमाएं। ए वतन,

चंद अशआर देखे कि जुनून इश्क का ये भी कमाल देखेंगे, जुनून इश्क का ये भी कमाल देखेंगे, उरूज देख चुके हैं जवाल देखेंगे, और किसी मिसाल को शायद कबूल वो कर ले, किसी मिसाल को शायद कबूल वो कर ले, हजार तरह की देकर मिसाल देखेंगे, किसी मिसाल को शायद कबूल वो कर ले, हजार तरह की देकर मिसाल देखेंगे, और ख्याल है ये हमारा कि वो हमारे हैं, ख्याल है ये हमारा कि वो हमारे हैं, कभी टटोल के उनका ख्याल देखेंगे, कभी टटोल के उनका ख्याल देखेंगे, अब इसका जो भी हो अंजाम देखा जाएगा, अब इसका जो भी हो अंजाम देखा जाएगा, हमें भी जिद है कि तेरा जमाल देखेंगे, हमें भी जिद है कि तेरा जमाल देखेंगे, और वफा की राह पे चलकर तो हमने देख लिया, वफा की राह पे चलकर तो हमने देख लिया, नहीं अब तो जमाने की चाल देखेंगे। और दूसरी गजल का एक मतलब देखेंगे, वो साजिशों को अगर हादसा बनाएगा, वो साजिशों को अगर हादसा बनाएगा, तो हादसा ही कोई रास्ता बनाएगा, और भटक रहे हो कहाँ पत्थरों के साए में, भटक रहे हो कहाँ पत्थरों के साए में, ये आईना ही तुझे आईना बनाएगा, ये आईना ही तुझे आईना बनाएगा, और कफन भी दे दे जमाना तो शुक्रिया उसका, कफन भी दे दे जमाना तो शुक्रिया उसका, कि ये गरीब उसी को रिदा बनाएगा, कि ये गरीब उसी को रिदा बनाएगा। और ये शेर खास तौर पर देखेंगे कि वो कह रहा है अंधेरा मिटा के छोड़ूंगा, वो कह रहा है अंधेरा मिटा के छोड़ूंगा, खुदा ही जाने वो कैसा दिया बनाएगा, खुदा ही जाने वो कैसा दिया बनाएगा, और ये सोचता हूँ कभी जालिमों के बारे में, ये सोचता हूँ कभी जालिमों के बारे में, किसी की आह को कैसे दुआ बनाएगा, किसी की आह को कैसे दुआ बनाएगा, और हमेशा माँ का कदम तुमको चूमना है नईम, हमेशा माँ का कदम तुमको चूमना है नईम, कदम ये माँ का तुझे क्या से क्या बनाएगा, कदम ये माँ का तुझे क्या से क्या बनाएगा, वो साजिशों को अगर हादसा बनाएगा तो हादसा ही कोई रास्ता बनाएगा। एक गजल का एक चंद अशआर देखे कि अभी से क्यों झिझकते हो हमारे साथ चलने में, अभी से क्यों झिझकते हो हमारे साथ चलने में, अभी तो साथ चलना है समुन्दर के किनारों तक, अभी तो साथ चलना है समुन्दर के किनारों तक, और कभी मायूस मत होना खुशी की खस्ता हाली पर, कभी मायूस मत होना खुशी की खस्ता हाली पर, खिजां से पार होकर ही गुजरना है बहारों तक, खिजां से पार होकर ही गुजरना है बहारों तक, और इसी को जिंदगी कहिए यही जीने का आलम है, इसी को जिंदगी कहिए यही जीने का आलम है, अभी शबनम की ठंडक से गुजरना है शरारों तक, अभी शबनम की ठंडक से गुजरना है शरारों तक, और किसी भी हाल में यारो ना अपना हौसला टूटे, किसी भी हाल में यारो ना अपना हौसला टूटे, थपेड़े खा के मौजों के चलेंगे उन किनारों तक, थपेड़े खा के मौजों के चलेंगे उन किनारों तक, और अभी के दौर में यारो इसी को प्यार कहते हैं, अभी के दौर में यारो इसी को प्यार कहते हैं, इशारों से इशारों तक, नज़ारों से नज़ारों तक, और सहारा किस से मांगोगे, सहारा किस से मांगोगे, सहारा कौन देता है, मेरा पैगाम पहुंचा दो नईम उन बेसहारों को, मेरा पैगाम पहुंचा दो नईम उन बेसहारों को, अभी से क्यों झिझकते हो हमारे साथ चलने में, अभी तो साथ चलना है समुन्दर के किनारों तक।

0: AIR at 90.
1: दादा जी, इससे पहले हम लोग सामईन को अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ में शमीम जयपुरी का कलाम सुनवा रहे थे।
2: बिल्कुल।
1: और इन्हीं की आवाज़ में एक और कलाम सुनवाते हैं,
2: बेकल साज़ो नगमा के तहत।
1: जी हाँ, साज़ो नगमा के तहत बेकल उत्साही बलरामपुरी का एक और ये कलाम।
2: बिल्कुल, ताइए सामईन सुनते हैं ये कलाम।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: फैज भाई
2: जी, जी
1: इससे पहले हम लोग सामीन को साज़ो नगमा के तहत
2: जी जी
1: अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ में
2: जी जी
1: बेकल उत्साही का कलाम सुनवा रहे थे।
2: जावेद भाई देखिए हम लोग तो वक्त की बंदिश में भी आ गए हैं।
1: हाँ हाँ बिल्कुल।
2: चलने
1: बिल्कुल।
2: से पहले इजाज़त लेने से पहले कम से कम इतना ज़रूर बता दें कि इस प्रोग्राम की जो पेशकश थी वो
1: यानी प्रोग्राम बज़्म उर्दू की
2: जी जी मोहम्मद सरशार अहमद की थी। तो सामीन इसी के साथ आज की बज़्म से फैज़ रहमान
1: और जावेद अनवर को इजाज़त दें।
2: खुदा हाफिज़।

आप सुन रहे थे बज़्मे उर्दू। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब आपके लिए प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम। लोकगीतों के कार्यक्रम में आज कलाकार हैं विवेकानंद ठाकुर। आइए इनकी आवाज़ में सर्वप्रथम सुने ये देवी गीत।

0: लोकगीत आपने सुना विवेकानंद ठाकुर के स्वर में, प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। श्रोताओं, हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
1: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take

मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। घड़ी में दिन के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नई फिल्मों से। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति फिल्म नाम से। आवाजें हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की। गीत रचना समीर की है, संगीतकार हैं हिमेश रेशमिया।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म क्रैक से। गायक कलाकार हैं मिथुन, गीतकार मनोज मुंतशिर और संगीतकार मिथुन।

0: आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से। उमंग,
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नई फिल्मों से। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद फैज के स्वर में। गीतकार हैं समीर अनजान, संगीतकार आदेश श्रीवास्तव और फिल्म है मिस्टर एंड मिसेस माही।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: While some just go through the day, you could live the grand life with the Grand Vitara. As you move from city streets to open escapes, the strong hybrid keeps up seamlessly. No matter where the road takes you, you're always breathing in freshness with auto purify and PM2.5 display. And when every moment feels this grand, safety comes standard with 6 airbags. Visit your nearest Nexa showroom to live the grand life with the Grand Vitara Strong Hybrid. Nexa.
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
4: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है, आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
5: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नई फिल्मों से। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया जा रहा है। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं विशाल मिश्रा और सचिन जिगर के युगल स्वर में। गीत अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हैं, इसे संगीतबद्ध किया है सचिन जिगर ने और फिल्म है स्त्री 2।

इस गीत के साथ ही संपन्न होता है कार्यक्रम नई फिल्मों से। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गुलदस्ता।

नमस्कार दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आज के गुलदस्ता कार्यक्रम में। दोस्तों, आज का गुलदस्ता समेटे है भारत की एक बहुत ही समृद्ध संस्कृति, परंपरा, या फिर कह सकते हैं कि एक ऐसा विरासत जिसे हम हर घर में पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। आज हम बातें करेंगे अपने स्वाद और सुगंध के लिए जो प्रसिद्ध है, हमारा जो हर घर में, हर लोगों के दिल में बसता है, भारतीय मसाले की। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहाँ सारी अलग अलग तरह की मिट्टी पाई जाती है, अलग अलग जलवायु है यहाँ, और इसी वजह से ये हो जाता है बेहद ख़ास, क्योंकि यहाँ हर तरह के चीज़ हमें मिलते हैं। आप ये भी कह सकते हैं दोस्तों कि अगर आपको पूरी दुनिया घूमने को अगर नहीं मिला हो तो आप कम से कम पूरे भारत की सैर कर लें। इससे होगा ये कि आपको पूरे दुनिया का ऐसा कोई भी कोना महसूस नहीं होगा जो आपने नहीं घूमा हो। उस तो बात फिर वहीं पहुंच जाती है कि भारत में हम कई सारी विविधताएं पाते हैं, यहाँ कई सारे स्वाद हैं, कई सारे सुगंध हैं, कई सारी प्राकृतिक छटाएं हैं जो बनाते हैं हमारे देश को खास। दोस्तों, आज के इस गुलदस्ता कार्यक्रम को हम महका रहे हैं भारतीय मसाले की खुशबू से। दोस्तों, भारतीय रसोई में बसती है हर वो खुशबू जो जाती है सीधे हमारे मन मस्तिष्क तक और करती है हमें तरोताज़ा, क्योंकि जब बात खाने की हो तो हर कोई खुश हो ही जाता है। दोस्तों, जब इस तरह की बातें हो रही हो तो भारतीय रसोई में जो स्वाद बनते हैं, जो भारतीय थाली में जो खाने परोसे जाते हैं, उसमें मसाले

की जो खुशबू होती है वो बेहद ख़ास बनाती है उसे। भोजन का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ हमारी परंपरा, संस्कृति और स्वास्थ्य से जुड़ा होता है। ये मसाले जो होते हैं वे सिर्फ हमारे स्वाद को ही नहीं बढ़ाते हैं बल्कि हमें सेहतमंद भी रखते हैं। कई सारे ऐसे मसाले हैं जिनका औषधीय अपना एक औषधीय गुण है जिसकी वजह से वे बेहद खास होते हैं। तो दोस्तों, भारतीय मसाले की बात जहाँ तक हो हम कर रहे हैं, तो भारतीय रसोई में मसाले केवल खाने के काम में नहीं आती है। कई सारे औषधीय गुण के साथ साथ कई सारे जो जिसे हम कह सकते हैं कि फर्स्ट एड, जब हमें तुरंत चोट लग जाए तो हल्दी का उपयोग करते हैं हम, और उसी तरह से कई सारे ऐसे चीज़ जैसे कि आपको अगर कोई त्वचा से जुड़ी समस्या हो तो आप कपूर का प्रयोग कर सकते हैं उसके लिए। तो इसी तरह से बहुत सारी ऐसी बातें अभी हम आगे भी करेंगे। दोस्तों, हल्दी, जीरा, धनिया, दालचीनी, काली मिर्च, इलायची, लौंग, ये सभी मसाले अपने भीतर इतिहास और सेहत का खजाना समेटे हुए हैं। तो दोस्तों, हमारा देश भारत कई सारे विविधताओं, कई सारे परंपराओं को समेटे हुए बन जाता है एक बेहद ही खास जगह, जहाँ की संस्कृति में, यहाँ की मिट्टी में तरह तरह की खुशबू बसती है।

तो दोस्तों बातें कर रहे हैं हम अपने देश की विविधता की और हमारे देश में जो अलग अलग तरह के वातावरण पाए जाते हैं जिसकी वजह से हमारा देश हो जाता है बेहद ख़ास। और यहाँ उपजते हैं कई सारे ऐसे स्वादिष्ट मसाले जो बनाते हैं हमारे खाने को बेहद ही खुशबूदार, स्वादिष्ट और सेहत से भरा हुआ। दोस्तों हमारा देश भारत अपने समृद्ध और विविध मसालों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। कई सारे जलवायु और मिट्टी होने के कारण यहाँ मसालों की खेती बेहद ही अच्छी होती है जो कि खाने को अच्छा बनाने के साथ साथ, खुशबूदार बनाने के साथ साथ कई सारे औषधीय गुणों से भी भरपूर होती है। दोस्तों भारत में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख मसालों की जब हम बात करते हैं तो बात आती है सबसे पहले हल्दी की। इसे गोल्डन स्पाइस भी कहते हैं। यह हर भारतीय रसोई का मुख्य हिस्सा है जो भोजन को पीला रंग और एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर कर देती है। दोस्तों हल्दी को भारतीय रसोई का सबसे महत्वपूर्ण मसाला माना जाता है। इसका पीला रंग भोजन को आकर्षक बनाता है। भारतीय परंपराओं में हल्दी का विशेष महत्व है। मित्रों विवाह की रस्मों में हल्दी समारोह का भी किया जाता है, हल्दी समारोह किया जाता है और माना जाता है कि हल्दी का जो रंग है वो इतना शुभ होता है कि किसी विवाह जैसे जो अच्छे काम होते हैं, जो एक परंपरा से दूसरी परंपरा में जाने की जो शुरुआत जो कह सकते हैं हम कि हल्दी से ही विवाह के कार्यक्रम की शुरुआत होती है, तो शुरुआत अगर हल्दी जैसे शुभ और पवित्र चीज से की जाए तो जीवन जो होता है वो उसी तरह से सुनहरा और हरा भरा पीला बना रहेगा। तो ये तो हुई दोस्तों बात हल्दी के गुणों की। घरेलू नुस्खों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो इसका जो एंटीबायोटिक गुण होता है वो बेहद ही खास होता है। और इसे घरेलू नुस्खों में हल्दी वाला दूध जब किसी को सर्दी खांसी जैसा महसूस

उस हो रहा हो तो कहा जा रही, या फिर आप कहीं से काम करके थक के आए हो तो हल्दी वाला दूध आपको थोड़ा राहत पहुंचाएगा और आपको तरोताज़ा महसूस कराएगा। और अगर आपको चोट लग जाती है तो फिर हल्दी का लेप इसका उपयोग किया जाता है। भारतीय परंपरा में देखा जाता है कि हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक जो ये माना गया है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा हल्दी का उत्पादक देश है दोस्तों। तो दोस्तों अभी तो शुरुआत ही है, अभी बहुत सारे ऐसे मसाले हैं जो कि हमारे देश में और सिर्फ हमारे ही देश में पाए जाते हैं। काली मिर्च की जहाँ तक बात करें दोस्तों, तो भारतीय मसालों का राजा कहा जाता है इसे। यह तीखी और सुगंधित होती है जिसका उपयोग सूप, सलाद और लगभग सभी व्यंजनों में होता है। और आजकल जो चाइनीज़ व्यंजन कहा बहुत ही लुभा रहे हैं लोगों को, तो उसमें इस मसाले का बेहद ही अहम रोल है। और दोस्तों

है ना दोस्तों, बेहद खास ये मसाला। और फिर बात आती है जीरे की। इसे भारतीय व्यंजनों की आत्मा माना जाता है। तड़का लगाने और पाचन क्रिया को सही रखने के लिए इसका व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। और धनिया का जिक्र अगर हम कहते तो इसे हम हर्ब्स के रूप में भी ले सकते हैं और लेते हैं हमारे खाने को खुशबूदार। जब धनिया की पत्ती किसी खाने में डाल दी जाए तो उसे उसे लजीज बन जाता है कोई भी व्यंजन। और जब इसका पाउडर और साबुत दोनों तरह से हम इसकी इसका इस्तेमाल करते हैं। जब इसके पाउडर को हम खाने में डालते हैं उसे, तो उससे गाढ़ापन आता है हमारे खाने में। और साबुत धनिया भी हम इस्तेमाल करते हैं कई सारे व्यंजनों में। तो दोस्तों, बातें अभी मसालों की बहुत सारी करनी है आपसे, लेकिन गीत संगीत से जुड़े रहना भी तो ज़रूरी है। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

तो दोस्तों, बातें हम कर रहे हैं मसालों की। दोस्तों, माना जाता है कि जो हमारे यहाँ केरल का मलाबार क्षेत्र है, वो काली मिर्च के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। प्राचीन समय में विदेशी व्यापारी इसे खरीदने के लिए भारत आते थे। और दोस्तों, कई सारे ऐसे मसाले हैं जो हम जिसकी खुशबू खुशबू हमारे जेहन को तरोताज़ा कर देती है। उसमें आती है बात इलायची और लौंग की। अगर चाय की खुशबू बढ़ानी हो तो इलायची और लौंग से बेहतर कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। दोस्तों, इलायची को मसालों की रानी भी कहा जाता है। मिठाइयों, खीर, चाय और कई व्यंजनों में इसका हम प्रयोग करते हैं। और लौंग अपनी तेज़ स्वाद और सुगंध के लिए जाना जाता है। अगर आपके दांत में दर्द हो तो इसे आप घरेलू उपचार के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जब आपको सूखी खांसी हो रही हो, खांसी रुक नहीं रहा हो और कोई भी आपको रास्ता नहीं नज़र आ रहा हो खांसी रोकने का, तो आप बस दो लौंग अपने मुंह में रखें। थोड़ी देर के बाद आपकी खांसी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो है ना दोस्तों, कई सारे स्वाद और सेहत के खजाने का राज हमारे देश में पाया जाने वाला मसाला।

दोस्तों, दालचीनी की मीठी खुशबू चाय और मिठाइयों को और बिरयानी में अलग ही स्वाद जोड़ती है और तेजपत्ते को भी बेहद खास स्थान है भारतीय व्यंजनों में। भारतीय मसालों में खास स्थान रखने वाला तेजपत्ता अपने कई एक इसकी जो खुशबू होती है व्यंजनों को बनाती है बेहद खास। तो दोस्तों, बहुत सारी बातें है। एक कार्यक्रम बहुत ही छोटा है इस विषय पर आगे बढ़ने के लिए, तो हम फिर किसी दिन अपने कार्यक्रम के जरिए बातें करेंगे भारतीय मसालों की। दोस्तों, भारत लगभग 75 प्रकार के मसालों का उत्पादन करता है। केरल को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारतीय मसालों की मांग दुनिया के कई सारे देशों में है। गरम मसाला कई मसालों का मिश्रण होता है मित्रों, जिसमें जो कि हमारे भारतीय राज्यों में ही पाए जाते हैं। तो दोस्तों, हम आगे किसी कार्यक्रम में फिर से बातें करेंगे इस विषय पर। तो आप सुनिए ये गीत और कार्यक्रम से दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गुलदस्ता। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है नारीलोक कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं श्री पार्वती के।

पहले हम आपको बता दें कि आज क्या खास है। बहनों, आज हम सुनेंगे भेंटवार्ता। आज की इस भेंटवार्ता का विषय होगा महिलाएं और ऑटो इम्यून रोग। भेंटवार्ताकार होंगी शहर की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वर्षा सिन्हा। इसके अलावा बहनें, फिल्म संगीत का आनंद भी हम उठाएंगे। आइए बहनों, आरंभ करते हैं अब आज की चर्चा। बहनों, आज हम विश्व खेल मेला दिवस मना रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 मई को आधिकारिक तौर पर विश्व निष्पक्ष खेल दिवस घोषित किया है। इसका मुख्य उद्देश्य खेलों में मित्रता, सम्मान, एकजुटता, समानता और निष्पक्षता की भावना को बढ़ावा देना है। यह दिन जीत की लालसा से अधिक सत्य निष्ठा, नियमों का पालन और प्रतिद्वंद्वी के सम्मान के मूल्यों को स्थापित करने के लिए समर्पित है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य खेलों में जाति, लिंग या धर्म का भेदभाव मिटाकर ईमानदारी और मित्रता के साथ खेलने की भावनाओं को प्रोत्साहित करना है। इस दिन की शुरुआत पेनेथलॉन इंटरनेशनल और इंटरनेशनल कमिटी फॉर फेयर प्ले और यूरोपियन फेयर प्ले मूवमेंट द्वारा की गई थी। इस वर्ष की थीम है खेल सेतु निर्माण और बाधाएँ तोड़ना है। यह थीम तेजी से खंडित हो रही दुनिया में जुड़ाव, समावेश और शांति को बढ़ावा देने के लिए खेल की अनूठी क्षमता को रेखांकित करती है। बहनों, खेल हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाता है, बल्कि मानसिक विकास, अनुशासन और टीम भावना जैसे गुणों का भी विकास करता है। नियमित रूप से खेल खेलना हमारे शारीरिक क्षमता को बढ़ाता है। यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर करता है। खेलकूद हमारे रक्त संचार को बेहतर करता है। इससे हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं और मोटापा जैसी बीमारियां दूर रहती हैं। यह व्यायाम का सबसे बेहतरीन और आनंददायक स्रोत है। इससे खेलने, सोचने, समझने की क्षमता बढ़ती है और निर्णय लेने की शक्ति मजबूत होती है। टीम के साथ खेलने से सहयोग और नेतृत्व जैसे गुण विकसित होते हैं। बहनों, अपनी चर्चा से यहीं विराम लेते हैं और लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: AIR at 90.
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।
1: ओ 8700001424242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424242 पर।
3: बहनों आइए अब सुनते हैं प्यारा सा गीत। बहनों संगीत की दुनिया बहुत ही रंगीन है, हम इसे सुनकर आनंदित तो होते ही हैं, सकारात्मक भी होते हैं और जीवन के प्रति उम्मीदों से भर जाते हैं। आइए बहनों सुनते हैं ऐसा ही प्यारा सा मधुर गीत।

0: आइए बहनों, अब बात स्वास्थ्य की करते हैं। तो हम महिलाओं को अपने स्वास्थ्य का ख्याल हमेशा ही रखना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य ही असली धन है। कहावत भी है कि पहला सुख निरोगी काया, और खासकर महिलाओं को अपने स्वास्थ्य का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि पूरे घर की जिम्मेदारी उन्हीं पर होती है। तो आइए बहनों, आज हम सुनते हैं स्वास्थ्य से संबंधित भेंट वार्ता। आज की इस भेंट वार्ता का विषय है महिलाएं और ऑटो इम्यून डिजीज। भेंट वार्ताकार हैं इस शहर की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वर्षा सिन्हा। आइए इनसे हम इस विषय में खास जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार, हम आपको समय समय पर स्वास्थ्य से संबंधित भेंट वार्ता सुनवाते रहे हैं। इसी क्रम में आज हम आपको महिलाएं और ऑटो इम्यून रोग के विषय पर खास भेंट वार्ता सुनवाने जा रहे हैं। इसके लिए आज हमने अपने स्टूडियो में शहर की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वर्षा सिन्हा को आमंत्रित किया है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का विषय है महिलाएं और ऑटो इम्यून रोग, तो इस विषय में सबसे पहले हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि ऑटो इम्यून रोग क्या है।
1: सबसे पहले तो मैं आभारी हूँ आकाशवाणी की, जो आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया है और बार बार बुलाते रहते हैं। तो ये कुछ ऐसा विषय है
0: जी,
1: सबसे अलग हटके। मुझे जब ये टॉपिक बताया गया कि इस पर आप लोग कुछ डिस्कशन करना चाह रही हैं, तो मैं ये सोचने पड़ गई कि ये टॉपिक क्यों चुना गया, ऑटो इम्यून रोग, जो बहुत अलग हटके है। आमतौर पे जब भी स्त्री रोग विशेषज्ञ आती हैं तो उनसे जो एक कॉमन तरह के सवाल हैं वो पूछी जाती हैं, पर मुझे खुशी है कि एटलीस्ट इस बारे में जागरूकता तो लाने की ज़रूरत है। सुनने में ये बहुत अजीब सी बीमारी लगती है, पर एक्चुअली बहुत कॉमन है, जो हम लोग समझ नहीं पाते हैं, पेशेंट समझ नहीं पाते हैं और डॉक्टरों तक पहुंचते हैं। जब तक ये पहुंचते हैं तो लगता है कि जैसे कोई कोई आम बीमारियां होती हैं, उस तरह से इसका सिम्टम्स रहता है। तो डायग्नोसिस में भी डिफ़िकल्टी होती है, तुरंत में हम लोग कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते हैं। अब रहा व्हाट इज़ ऑटो इम्यून डिजीज़, क्या तात्पर्य है, आप लोग जानना चाहेंगे ही कि ये ऑटो इम्यून रोग होता क्या है। तो ये ऑटो इम्यून का मतलब है सबके शरीर में आपके पास जो बोलते हैं रोधक क्षमता वाली, जिसमें रोग प्रतिरोधक जो क्षमता रहती है, जिसको इम्यूनिटी बोलते हैं। हम लोग वैक्सीन्स लेते हैं, बीमारियां होती हैं, हमारी इम्यूनिटी डेवलप करती है। जैसे कोविड हुआ तो वैक्सीन्स पड़े ताकि हम लोग उस बीमारी से इम्यून हो जाएं। तो ये हो गई बाहरी शक्ति, बाहरी शक्ति से बचाव। बचपन में सभी को वैक्सीनेशंस पड़ते हैं, लड़कियों को कैंसर सर्विक्स के लिए वैक्सीनेशंस पड़ती हैं। तो ये बाहरी वायरस हो, बैक्टीरिया हो, उसके अगेंस्ट में बॉडी को लड़ने की क्षमता पहले से तैयार की जाती है, जो पूर्व रूप में बॉडी में नहीं होती है, तो उसको हम लोग डेवलप करते हैं। तो ये होती है इम्यूनिटी। तो बाहरी रोगों से तो लड़ सकते हैं, जैसे घर में हम बोलेंगे कि बाहर के लोगों से तो हम लोग लड़ सकते हैं, घर में अगर कोई विभीषण हो जाएगा तो कैसे लड़ेंगे।
0: जी जी,
1: ठीक है। तो उसी तरह से है कि ये शरीर जो है, जो हमारी इम्यूनिटी है, दो चीज़ें पहचानती है, एक बाहर की चीज़ों को जिनको आने नहीं देती हैं हमारे पास बीमारियों को, दूसरी है अंदर की भी चीज़ें हैं, कभी कभी वो उसको भी पहचानने से इनकार कर देती है, तो उनको समाप्त करने की कोशिश करती है, उसके सेल्स को समाप्त करने की कोशिश करती है। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम्स आती है कि कुछ भी किसी भी शरीर के ऑर्गन में हो सकती है। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा कुछ लोग जो होते हैं बड़ी फोटो सेंसिटिव होते हैं, कहने का मतलब धूप में जाएंगे तो चेहरा एकदम लाल हो जाएगा, बर्दाश्त नहीं होता है, स्किन में डिजीजेस हो जाती हैं,
0: तो किन्हीं का चेहरा काला भी पड़ जाता है,
1: काला, ये सब वो तो है कि दैट इज सनबर्न, अगर काला पड़ गया तो सनबर्न, लेकिन आपके धूप में जाने से, हल्की धूप में भी जाने से आपके में बदन में रैशेस आ जाती है, लालीपन आने लग जाती है, चेहरे पे लालीपन आने लग जाती है और काफ़ी देर परसिस्ट करता है,
0: या खुजलाहट तुरंत
1: करने लग जाता है। तो ये समझ नहीं आती ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा रैशेस क्यों आ रहा है। सेकेंडली, और भी अगर ऑर्गन्स की बात करें, थायराइड की प्रॉब्लम है, थायराइड में दोनों तरह की, चाहे हाइपरथायरॉयडिज्म हो या हाइपोथायरॉयडिज्म, ये अपने ही थायराइड ग्लैंड को जो है डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है, इम्यून सेल्स कि उसको नहीं पहचानने से इनकार कर देता है, जैसे इनकार करेगा तो उसको मारने की कोशिश करेगा उसकी सेल्स को, तो उसमें कभी थायराइड बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। अभी जैसे मैं डायबिटीज़ की बात करें, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 जो है ये कॉमन आमतौर पर उम्र होने पर ये डायबिटीज़ होती है, वो टाइप 2 डायबिटीज़ है, लेकिन टाइप 1 ये अर्ली एज

0: में होते हैं। बच्चों में भी ये टाइप 1 डायबिटीज़ मिलता है यंग एज में, 15 से 20 साल के लड़कों में मिल रहा है, लड़कियों में मिल रहा है। क्यों? क्योंकि बॉडी ने उसके सेल्स को, जो बीटा सेल्स पैनक्रियाज में होते हैं जो इंसुलिन प्रोड्यूस करती है, उसको वो ख़त्म कर देता है। नतीजा क्या होता है? इंसुलिन नहीं बनता है और ज़िंदगी भर आपको इंसुलिन पर डिपेंडेंट रहने पड़ती है।
1: मैम एक बात मैं पूछती हूँ, ये सब चीज़ आजकल ही इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है?
0: जी
1: जैसे
0: नहीं,
1: बच्चों में डायबिटीज़ की समस्या, थायराइड इतना महामारी की तरह फैल रहा है, ये आजकल ज़्यादा सुनने में आ रहा है।
0: सुनने इसलिए आ रहा है कि हम लोग ज़्यादा जागरूक हो गए हैं, हमारे पास डायग्नोस्टिक एमिनिटीज़ इतने सारे हो गए हैं, तो इस वजह से हमें चारों तरफ सुनने मिलते हैं। हम लोग बहुत जागरूक हो गए हैं। अब पहले के ज़माने, एक छोटा सा मैं उदाहरण देती हूँ कि पहले के ज़माने में हमारे पास जो प्रेगनेंसी के लिए कितने कितनी लोग जो थी वो डॉक्टर्स के पास जाती थी, कितनी डिलीवरीज जो है हॉस्पिटल में हुआ करती थी। मैक्सिमम घर में एक
1: घर
0: कमरा
1: में
0: रहता था
1: होती
0: जहाँ पर डिलीवरियाँ होती थी, एक कमरा बना दिया जाता था, चमैन आती थी वो करती थी डिलीवरी। अभी देखिए, एक या दो बच्चे होते हैं हार्डली, हमने कितने सारे टेस्ट हैं, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो ये सब जो बदलाव आया ये कैसे आया? पहले टेटवेक की सुई भी नहीं पड़ती थी, अब तो टेटनिस की सुई तो आम बात है, ऐसे भी पड़ जाएंगी सबको।
1: जी
0: तो ये धीरे धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं जो हम लोग अब इस चीज़ को समझने लगे हैं। तो हमारे पास डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ होने की वजह से हम लोग उस एंगल से सोचने लगे हैं।
1: मैम जैसा कि आज का विषय है, इस रोग से महिलाओं का क्या संबंध है? और ऐसा जानने में आता है कि सबसे ज़्यादा महिलाएं ही इससे पीड़ित होती
0: हाँ
1: हैं।
0: जी, इसमें है जेंडर प्रेफरेंस है, फीमेल्स के में जो एक्स क्रोमोसोम है ये जीन्स कैरी करती है इसके लिए, तो इसलिए इसमें फीमेल्स में ज़्यादा मिलती है। प्लस हमारे बॉडी की जो हार्मोन है ये डिफरेंट है मेल्स से, तो इसीलिए फीमेल्स मोर प्रीडिस्पोज्ड हैं। कहने का मतलब इनमें होने की संभावना ज़्यादा होती है, तो इसलिए। और इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो बीमारियां अभी मैंने डिस्कस की ये मेल्स में भी मिलेंगी, फीमेल्स में भी मिलेगी, पर फीमेल्स में एक स्पेशल चीज़ जो है जो हम लोगों से कंसर्न है वो है इनफर्टिलिटी। कहने का मतलब बच्चा नहीं होना,
1: जी
0: है ना, जो हम लोग इस विषय पर आ रहे हैं कि बच्चा होने में दिक्कत होती है। सेकेंडली, अगर बच्चा रहता है तो बार बार एबॉर्शंस हो जाते हैं,
1: जी
0: किसी किसी के 3, 4, 5, 6 बार बार एबॉर्शंस होते हैं विदाउट एनी रीज़न। तो और होता क्या है, कभी कभी प्री टर्म डिलीवरी हो जा रही है, मतलब 6 महीने 7 महीने में बच्चे हो जा रहे हैं, या ख़त्म हो जाते हैं बच्चे, IUD हो जाती है, कहने का मतलब स्टिल बर्थ हो जाता है, बच्चा पेट में ही ख़त्म हो जाता है। तो ये सब जो है, दिस इज़ रिलेटेड टू हमारे ऑटो इम्यून डिजीज़, ये
1: जी
0: हमारा है, इसको ध्यान में रखना, स्पेशली अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में,
1: जी
0: कहने का मतलब शुरू के 3 महीने में अगर बार बार एबॉर्शंस हो रहे हैं और कोई हमें फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स में, मतलब यूट्रस में कोई डिफेक्ट नहीं है, तो पहला कारण हमारा आता है कि ये रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से है,
1: जी
0: जिसको हम लोग ट्रीट करते हैं।
1: जी
0: तो इसीलिए ये हम लोग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है।
1: जी तो मैम ये बताइए कि महिलाएं इससे कैसे बचें?
0: हाँ जी बिल्कुल, महिलाएं क्या कि सभी को बचना चाहिए, महिलाओं को तो बचना ही चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिस जो हमें बार बार तंग कर रहा है और कारण नहीं मिल रहा है, तो हमारा ध्यान ऑटो इम्यून डिजीज़ की तरफ जाना चाहिए। जैसे अगर पेट की समस्या है, नहीं ठीक हो रही है, या फीवर आ रहा है, अनएक्सप्लेन कॉज फीवर का है, कोई कारण नहीं मिल रहा है, जो टेस्ट भी करवा रहे हैं तो कोई कारण नहीं मिल रहा है कभी भी, तो उसमें हमें अलर्ट होना चाहिए कि देर इज़ समथिंग रॉन्ग। थायराइड का ऐसा प्रॉब्लम जो बहुत हाइपर या हाइपो स्टेट में है, क्यों है, तो उसको भी हम लोग को सीव आउट करना पड़ता है। स्किन में रैशेज हैं या सोरियासिस डेवलप कर रहा है, जिसमें स्किन का ऊपर का परत जो है झरने लग जाता है, स्केल्स टाइप से हो जाते हैं, स्केली हो जाती है स्किन, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये सभी चीज़ें, क्योंकि ये स्किन को भी अफेक्ट करता है, आपके ब्रेन को भी, इन सेल्स को अफेक्ट करता है, आपके इंटेस्टीन को भी अफेक्ट करता है, मेमोरी लॉस हो रहा है, हेयर लॉस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो देर इज़ समथिंग रिलेटेड ऑटो इम्यून। और अगर आप इस प्रेगनेंसी स्टेट में हैं तो फीमेल्स को भी अलर्ट रहना चाहिए, अगर आपके पास ऐसे कुछ सिम्टम आ रहे हैं तो इसकी ट्रीटमेंट की जाती है। पहले से ही आप उस लाइन में चले जाइए कि आपकी ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ये हम लोग डायग्नोज कर देंगे कि हाँ ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तो उसके बाद उस लाइन से ट्रीटमेंट हम लोग परहेज और इससे कर सकते हैं।
1: जी तो मैम इसका क्या मतलब, मेनोपॉज से भी इसका रिश्ता है?
0: मेनोपॉज से कोई खास रिश्ता नहीं है, फीमेल्स में है, मैंने बोला ना एक्स क्रोमोजोम जिम्मेदार है इसके
1: जी,
0: लिए
1: जी, जी.
0: तो हमारे में तो दो एक्स क्रोमोजोम है, मेल्स में एक्स वाई है।

0: जी
1: मेल्स में तो XY क्रोमोसोम्स है, उनके पास भी जाता है एक्स क्रोमोसोम, तो इसलिए वी हैव डबल एक्स क्रोमोसोम। तो ये प्रॉब्लम्स जो हैं मेनोपॉज के बाद भी फ्लेयर अप करता है, कि अगर प्रॉब्लम्स पहले आपके नहीं आए तो बाद में भी आ सकता है। उस समय हार्मोन्स बॉडी से विड्रॉ होते हैं, पर फिर भी ये सिम्टम्स आपके रहेंगे, क्योंकि ऑटोइम्यून है, खुद के सेल्स को मारना है। अब किस सेल को मारना है, ये बॉडी उसमें जग जाएगा और उस एरिया को वो डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है।
0: तो मैम क्या बच्चे भी प्रभावित होते हैं?
1: बिल्कुल, बच्चे क्यों नहीं प्रभावित होंगे, बच्चे भी प्रभावित होते हैं। तभी जैसे डायबिटीज़ वाली समस्या जो मैंने आपको बताया, टाइप 1 डायबिटीज़ है, थायराइड की समस्या है, पेट की समस्या है, जोग्रन सिंड्रोम एक और होता है जिसमें आईज में ड्राइनेस हो जाती है। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखना होता है कि इज इट रिलेटेड। बच्चों में तो खासकर ध्यान देना चाहिए कि अगर आपका कोई इन्फेक्टिव कॉज नहीं है, कहने का मतलब कि कोई इन्फेक्शंस को कोरिलेट नहीं कर रहे हैं, हमारे डायग्नोसिस में जो रूटीन टेस्ट करवाते हैं उसमें हमारे सब चीज नेगेटिव आ रहे हैं, थिंक ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज, उसके बारे में सोचना चाहिए कि देयर मस्ट बी कुछ भी बच्चों में ऐसा ऑटो इम्यून डिजीज हो सकता है। और शुरुआत से ही अगर इस पर ध्यान दें, ट्रीटमेंट करें, तो उनकी लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव करने लग जाती है।
0: मैम तो बच्चों में ऑटो इम्यून डिजीज हो ही नहीं, इसके लिए क्या करें?
1: ये तो जेनेटिक कॉज है, आपके जेनेटिक एनवायरमेंटल सब मिक्स्ड कॉजेज हैं। एनवायरमेंटल का जहाँ तक है थोड़ा बहुत हमारे कंट्रोल में है कि वी शुड गुड टेक गुड केयर ऑफ आवर डाइट, हेल्थ,
0: पॉल्यूशन से भी है
1: उससे भी है। हर चीज़, कोई भी इंसाइटिंग एजेंट बाहर से आ जाता है, पॉल्यूशन में तो पॉल्यूटेंट्स तो सभी डेंजरस हैं, हार्मफुल केमिकल्स हैं, तो वो कभी भी किसी भी मोड़ पर जो है ये सेल्स के रिकग्निशन को कम कर सकते हैं। सो ये मिक्स टाइप का हमारे पास, हम लोग तो ऑलरेडी पॉल्यूटेड एनवायरमेंट में रहते हैं, खान पान में भी हर चीज़ एडल्ट्रेटेड है, क्या करें? तो उसका उपाय यही है कि यू टेक बैलेंस डाइट, जंक फूड खाना बंद करें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें। और मैं तो सबको सलाह देती हूँ कि अब आप वक्त आ गया है कि पुराने ज़माने में लौट जाइए, कि आपने रूटीन को आप उस हिसाब से फॉलो कीजिए। सुबह जगना, जल्दी जगना, रात में जल्दी सोना, सुबह कुछ व्यायाम या कसरत किसी भी फॉर्म का आप ज़रूर करिए। खुद आपको फील होगा कि आप इम्प्रूव कर रहे हैं, आपकी हेल्थ इम्प्रूव कर रही है, रेजिस्टेंस बॉडी का इम्प्रूव कर रहा है, हमें खुद से लड़ने की शक्ति जो है हमारी इम्प्रूव करें। हमें क्या करना है, अंदरूनी शक्ति को जगाना है। योगा मेडिटेशन वेरी हेल्पफुल, हम हमेशा रेकमेंड करते हैं गो फॉर योगा, गो फॉर मेडिटेशन, इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। तो ये क्या करता है, आपकी सारी शक्तियों को समेट कर, अपार्ट फ्रॉम मेडिकल साइंस, ये आपकी सारी चीज़ों को समेट कर एक जगह एकत्रित करता है और उसको ज़्यादा प्रभावी बनाता है कि आप खुद से लड़ सकते हैं। अपने आप से लड़ना है, हमें दूसरे से नहीं लड़ना, बाहरी शक्तियों से नहीं लड़नी है, अपने आप से लड़ना है, तो अपने आप को मजबूत करनी होगी।
0: मैम महिलाओं में कौन से ऑटो इम्यून डिजीज मतलब सबसे ज़्यादा दिखते हैं या आम हैं?
1: हाँ देखिए, हम एक चीज़ तो हमने आपको बताया, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, माने बार बार प्रेगनेंसी का खराब होना, ये एक इंडिकेशन है कि देर इज़ ऑटो इम्यून डिजीज़। सेकेंडली, फीमेल्स में स्किन डिजीजेज बहुत मिलती हैं। स्किन में अगर आप देखिए, भाई मैंने रैशेस की बात की, फोटो सेंसिटिविटी रहती है कि आपको धूप जरा सा भी बर्दाश्त नहीं होगा।
0: महिलाओं में स्किन की समस्या तो ज़्यादा
1: बहुत है, बाल झड़ने की, मेमोरी लॉस होने की, पेट की समस्या, थायराइड की समस्या, समस्याओं का अंत नहीं है। बट कोई भी चीज़ अगर लीक से हटके है तो हमेशा आप सोचिए कि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, एंड आपको डॉक्टर से सलाह लेनी ही पड़ेगी। ये आप बैठ नहीं सकते हैं, ये आपको अपनी क्वालिटी इम्प्रूव करनी है लाइफ की।
0: मैम तो डॉक्टर के पास जाने के बाद क्या इसका समाधान होता है?
1: बहुत हद तक होता है। कुछ ऐसी मेडिसिंस हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आती हैं जिसमें जो इन्फ्लेमेशन है, जैसे कि आप निकले तुरंत बॉडी आपका रिएक्ट करने लग गया है, तो उसको रोकने के लिए मेडिसिंस आती हैं जिसको हम लोग कंट्रोल करके रखते हैं। कुछ स्टीरॉयड्स भी कभी कभी दी जाती है, जिसमें स्टीरॉयड भी एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, मतलब इन्फ्लेमेशन को रोकती है, बॉडी की जो हमारी प्रतिक्रिया है उस बॉडी की वो कम करने लग जाता है, तो उससे हम जो है अपने आप की शक्ति से लड़ सकते हैं। तो ये सब कुछ कुछ दवाइयाँ हैं, और जो है आपकी जो कुछ इम्पॉर्टेंट विटामिन्स हैं, जैसे विटामिन सी है जिसको बोलते हैं कि हमेशा खाइए, आंवला का सेवन कीजिए, नींबू का रस लीजिए, नारंगी लीजिए,
0: तो वो खाने से पूरा किया जा
1: सकता है। इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है आपको, तो हमको वैसे इम्यूनिटी बूस्ट ड्रग्स को लेना है ताकि आपकी इन्फ्लेमेशन को कम कर सके। एंटी इन्फ्लेमेटरी रहती है ये सब दवाइयाँ क्या आप मैंने नेचुरल चीज़ भी कह सकते हैं, नेचर में भी सभी चीज़ें हैं, बस उनको पहचानना है और लेना स्टार्ट करना है। जब हमारा उससे नहीं पूरा होता तब दवाइयों के फॉर्म में उसी चीज़ों को दिया जाता है।

0: तो इससे हम लोग पूरा कर सकते हैं।
1: मैम, सबसे अंत में आप श्रोता बहनों से क्या कुछ कहना चाहेंगी?
0: सवाल इतना आपका गूढ़ है कि ऑटो इम्यून डिजीज़, कम से कम हम अपनी श्रोता बहनों को ये बता सकते हैं कि ये कोई अजनबी बीमारी नहीं है, हमारे शरीर के अंदर की ही बीमारी है, लड़ना हमें ही है। तो उसके लिए हम तैयार हो जाएं, अपने आप को जागरूक करें, और कभी भी ऐसे लक्षण बच्चों में भी अगर दिखाई देते हैं तो उसको नज़रअंदाज मत करें। अगर छोटी छोटी चीज़ जो आपके वहाँ पे लोकल डॉक्टर्स हैं नहीं संभाल पा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो करना होगा।
1: जी डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आई और अपने मूल्यवान विचारों से हमें अवगत कराया, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे निमंत्रण देने के लिए। थैंक यू सो मच।
2: अभी बहनें सुन रही थीं भेंटवार्ता। आज की इस भेंटवार्ता का विषय था महिलाएं और ऑटो इम्यून रोग। इस विषय पर हमसे बातचीत कर रही थीं डॉक्टर वर्षा सिन्हा। इन्होंने इस विषय पर हमें काफ़ी अच्छी जानकारियां दी। आइए बहनों, अब चलते चलते सुनते हैं प्यारा सा गीत।

नारीलोक कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है NCERT प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: दंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं उमंग कार्यक्रम में।
3: और मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जो हमें भेजा है पुराना तालाब डुमराओं से वलीउल्लाह अंसारी और बेबी पूजा मलिक जी ने।
2: शिक्षा जितनी रोचक होगी सीखना भी उतना ही रोचक और मनोरंजक होगा।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
3: नमस्ते।
2: उमंग कार्यक्रम में कहानी जुर्माना सुनी, कहानी पसंद आई। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जी पर केंद्रित कार्यक्रम बेहद पसंद आया। कार्यक्रम प्रस्तुति ने दिल जीत लिया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। उमंग कार्यक्रम का हर एपिसोड जरूर सुनते हैं। ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है। कहानी लालची कुत्ता, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी पर केंद्रित मेरी माँ एवं सम्राट अशोक पर प्रसारित कार्यक्रम सुने और पसंद आए। देश विदेश की जानकारी के साथ ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
2: साथ ही साथ हमें संदेश प्राप्त हुआ है जालंधर से संदीप कौर, प्रभा कौर और राधिका कौर।
3: और डोंडिया खेड़ा से प्रभा जटोलिया ने लिखा है, चेतक कविता बहुत अच्छी लगी, आपको बधाई।
2: चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा लिखते हैं, ये भी जानिए के तहत उड़ान का इतिहास और कल्पना चावला पर जानकारी बेहद अच्छी लगी। आज का कार्यक्रम दिल छू गया। परीक्षा कहानी बहुत अच्छी लगी। विमलेश चौधरी जी और अजीत होरो जी को बहुत बहुत बधाई।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है दिल्ली से रेशमा अंसारी, शकीला अंसारी और सईद अंसारी जी का। और साथ ही साथ बागपत से सुंदर और सुंदरी और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का। धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए।
2: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए मैं। तो आइए करते हैं शुरुआत एक कविता से।
3: श्रोताओं अंदाजा जरूर लगाइएगा कि ये कविता किस विषय पर है। आइए सुनते हैं कविता।
2: घने पत्तों की छाया गहरी, जंगलों की श्रृंखला घनेरी, प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत।
3: प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत। श्रोताओं आपने अंदाजा जरूर लगा लिया होगा कि हम एक ऐसे जंगल या वन की बात कर रहे हैं जहां अक्सर वर्षा होती रहती है। तो विमलेश जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
2: जी अजीत जी, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी समुद्र की, आज हम चर्चा करेंगे ऐसे वनों की जहाँ वर्षा होती रहती है, जिन्हें हम वर्षा वन कहते हैं। अजीत जी, अब ये सवाल उठता है कि वर्षा वन किसे कहते हैं, या दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा क्या है?
3: जी विमलेश जी, देखिए तकनीकी रूप से वर्षा वन या रेन फॉरेस्ट उसे कहते हैं जहां साल भर बहुत अधिक वर्षा होती रहती है
2: जी,
3: और जहां हर समय नमी पाई जाती है, और साथ ही साथ घने सदाबहार पेड़ पौधों के साथ वन्य जीवन भी बहुत ही समृद्ध होता है
2: जी। एक बात और जोड़ दूं इस सूचना में कि यहां वर्षा सालाना औसतन 70 से 80 इंच तक होती है। पृथ्वी के कई वर्षा वन तो ऐसे भी हैं जहां साल भर लगातार वर्षा होती रहती है, कभी कभी ही रुकती है।
3: लेकिन एक और प्रश्न है विमलेश जी मेरे मन में कि वर्षा वनों में इतनी बारिश क्यों होती है, अन्य जगहों पर क्यों नहीं होती?
2: श्रोताओं को बता दें कि इसकी वजह है वर्षा वनों का भूमध्य रेखा या इक्वेटर के पास होना।
3: तो जरा श्रोताओं को बताइए ना कि इससे फर्क क्या पड़ता है?
2: फर्क ये पड़ता है कि भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में सूरज की किरणें क्षेत्रों पर सीधी पड़ती हैं
3: जी,
2: जिससे भूमि और जल दोनों बहुत गर्म हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं इससे क्या होता है।
3: तो इससे होता यह है कि इस क्षेत्र में भाप बहुत अधिक बनती है, समुद्रों और नदियों से बहुत अधिक भाप बनती है, जो भाप आकाश में जाकर बादल बनाती है
2: जी।
3: और जब बादल भारी हो जाते हैं तो वर्षा होती है, इसीलिए इस क्षेत्र में गर्मी और नमी के कारण वर्षा बहुत अधिक होती है।
2: लेकिन श्रोताओ, जरूरी नहीं है कि सभी वर्षा वन भूमध्य रेखा के पास ही हों। इसके अलग अलग कारण हैं, लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षा वन सबसे अधिक भूमध्य रेखा या पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षा वन सबसे

0: अधिक भूमध्य रेखा यानी पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। आइए अब जानते हैं वर्षा वनों की और कुछ रोचक बातें।
1: तो श्रोताओ, एक बड़ी रोचक बात है वर्षा वनों के बारे में, और वो ये है कि समुद्र के बाद वर्षा वनों को धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है।
0: जी,
1: ऐसा इसलिए कि सदाबहार पेड़ पौधों के कारण ये वन भारी मात्रा में प्राणवायु यानी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसके कारण हम सुगमता से सांस ले पाते हैं। वर्षा वन तो क्या, हमें पृथ्वी की सारी वनस्पतियों के प्रति हमेशा आभारी होना चाहिए।
0: जी, यही कारण है अजीत जी के चारों वेदों और पुराणों में वनस्पति की स्तुति की गई है, उन्हें नमन किया गया है। पुराणों में विशेषकर पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वृक्षारोपण को पुनीत कार्य बताया गया है
1: जी।
0: और इससे पूर्व भी आदि मानव और जनजातियां प्रकृति की पूजा करती रही हैं। हड़प्पा संस्कृति में भी वृक्षों को विशेष आदर दिया गया है। चलिए श्रोताओं, अब जानते हैं अजीत जी से वर्षा वनों की एक और बहुत रोचक बात।
1: जी विमृषि, श्रोताओं, एक और रोचक बात वर्षा वनों की ये है कि ये जैव और वनस्पति विविधता के अद्भुत भंडार हैं। यानी जितने पेड़ पौधे, जीव जंतु और अनोखे सूक्ष्म जीव इन वर्षा वनों में पाए जाते हैं, उतने कहीं और नहीं पाए जाते।
0: जी,
1: तो अब एक और रोचक बात जानते हैं विमृष जी से।
0: जी श्रोताओं, आपने ऊंचे से ऊंचे पेड़ देखे होंगे, लेकिन वर्षा वनों के पेड़ों की ऊंचाई का तो कहना ही क्या। कुछ वर्षा वनों के पेड़ 40 से 60 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं, और हाँ, ये पृथ्वी के तापमान और जलवायु को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं।
1: तो श्रोताओं, ये थी सामान्य जानकारी वर्षा वनों की। श्रोताओं, वर्षा वन तो क्या, सभी वनों का यही संदेश है कि हमें ना काटो।
0: जी,
1: जितना हो सकता है पेड़ लगाओ, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें शुद्ध हवा के लिए और फिर सांस लेने के लिए भी तरसना होगा।
0: जी हाँ, कल नहीं परसों नहीं, लेकिन आज ही अवसर है संभलने का और पेड़ों को बचाने का। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
1: तो आज का प्रश्न है, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लें।
0: अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
1: 8800440559 यानी हमारे IVRS नंबर, और audio@cit.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें एक प्यारे डॉगी की रोचक कहानी है। वो एक पेड़ के नीचे सो गया था और जब जगा तो उसने देखा कि उसका सारा शरीर बैंगनी रंग का हो गया है, लेकिन क्यों? आइए जानते हैं एक मजेदार कार्यक्रम के माध्यम से।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है NCERT की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
2: जोजो एक सफेद कुत्ता था। वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था। वो जग गया।

0: बादल बादल, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
1: नहीं, मैं तो सफेद हूं। बादल हट गया।
2: जोजो ने ऊपर सूरज को देखा।
0: सूरज सूरज, क्या तुमने मुझे दिए बैंगनी धब्बे?
1: नहीं, मैं तो पीला हूं।
0: कौवे कौवे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? नहीं नहीं, मैं तो काला हूं।
3: गुब्बारे गुब्बारे,
0: क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
1: नहीं, मैं तो लाल हूं।
0: घास घास, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
4: नहीं, मैं तो हरी हूँ।
2: बेचारा जोजो।
0: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
5: आहा, तो वो जामुन का पेड़ था।
6: तो बच्चों, सुना आपने? अब जरा याद कीजिए कि जोजो किस किस के पास गया। और कुछ फलों के नाम लिखिए और उनका रंग बताइए। बैंगनी जोजो, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक तनु गुप्ता तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और साथ ही हमारे ईमेल पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है audio@cieet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। बैंगनी जोजो, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम। श्रोताओं, और प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री।
7: इस कार्यक्रम में महान पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के जीवन और पर्यावरण बचाने में उनके प्रसिद्ध अभियान चिपको आंदोलन की जानकारी दी गई है। ये कार्यक्रम हमें उत्तराखंड के रमणीक राज्य में ले चलता है और वहाँ की पर्वतीय संस्कृति की झलक भी प्रस्तुत करता है।
2: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश।

0: भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाटा। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
1: लाटा गांव के ग्रामीण खेती बाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
0: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।
2: मारो, मारो, ठीक से निशाना लगाओ।
3: अरे इस बार भी नहीं लगी। अरे
2: नहीं लगा ना? लाओ लाओ, रुको रुको रुको।
4: तुम लोग इस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो।
2: हाँ?
4: अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद, तुम तो सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते?
2: अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया, पेड़ ही तो है ना। देखो।
4: मैंने मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है।
3: तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो।
4: मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी।
2: बड़ी आई रोकने वाली। हाँ, वही करेंगे।
0: तो साथियों, ये था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं।
1: समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के मेहरबान सिंह के साथ हो गई।
0: सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थी। गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
1: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं के रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
5: बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें।
4: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
5: अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई इसने।
6: लेकिन मेरा आदमी तो अभी काम ही पे नहीं जाता।
5: आप तो काम करती है ना?
6: हाँ मैं करती हूँ, लेकिन उसे होता क्या है?
5: मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा।
0: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है। चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गांव रैणी और आसपास के गांवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
1: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगू का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए।
0: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। अंगू पेड़ों की लकड़ी से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांवों के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
1: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने जिला मुख्यालय चमोली चले गए।
0: इधर पुरुषों की अनुपस्थिति में 100 से भी अधिक मजदूर रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। गौरा देवी उस समय गांव में ही महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थी। उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
1: और तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी।
4: गौरा माँ,
5: क्या बात है चंपा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहाँ से आ रही हो?
4: गौरा माँ, वो लोग आ रहे हैं।
5: कौन लोग आ रहे हैं? अरे कहाँ आ रहे हैं, कुछ तो कहो।
4: गौरा माँ,
5: हाँ?
4: पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।
5: क्या?
4: हाँ गौरा माँ, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ, रस्सियाँ और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4 ट्रक आकर रुके। उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
5: अच्छा, तो ये बात है बहनों।
7: हाँ गौरा माँ, हाँ गौरा माँ।
5: चलो हम सब तैयार हो जाएं।
8: बिल्कुल,
5: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
7: हाँ, हाँ सब तैयार है,
8: किसी भी हाल में जंगल कटने नहीं कटने देंगे।
4: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
0: और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की 27 स्त्रियां थीं। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ऊंच था।
5: ये है जंगल के उपकार,
7: मिट्टी पानी और बयान,
5: मिट्टी पानी और बयान।
1: और अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।
5: अरे ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे, जिस जंगल ने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली। शर्म आनी चाहिए तुझे।
9: आगे बढ़ो।
8: अरे कहां
9: से? तुम इनकी बातों में मत आओ। मैंने तुम्हें पेशगी दी है, पेशगी इस काम के लिए। बोलो शुरू।
8: पेड़ों से चिपक जाएंगे, चिपक जाएंगे, ऐसा नहीं होने देंगे।
5: आगे बढ़कर तो दिखाओ तुम। एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे, आज
4: नहीं लगाने देंगे।
5: बहनों आगे बढ़कर चिपक जाओ पेड़ों से।
8: हाँ, हम चिपक जाएंगे।
9: ठीक है तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
0: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
1: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
9: ठीक है, तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
0: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में यह आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
1: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।
0: जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।
1: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
10: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है। यहां से हमें फल, फूल और सब्जियां मिलती हैं। अगर यहां के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी।
0: चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था जिसमें ग्रामीणों और गढ़वाल की बहनों ने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया। इस महान पर्यावरण नेत्री को हमारा नमन।
11: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार बाबला कोचर, पूनम एस कुदेसिया, ममता मलकानी, प्रज्ञा, प्रवीण शर्मा और गीतांजलि, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी। आशा है श्रोताओं ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.3

7.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.1 मेगा हर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन का 1 बजा है। प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम लोकरंग। आज लोकरंग की गायिका है संगीता कुमारी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इनके गाए देवी गीत से।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: आप सुन रहे हैं लोक गीतों का कार्यक्रम लोकरंग। आज लोकरंग की गायिका है संगीता कुमारी। इनसे अब हम आपको सुनवाते हैं शिव भजन।

पास हाथ चढ़ल शिव लगी गेल।

0: लोकरंग कार्यक्रम को हम देते हैं थोड़ी देर के लिए विराम। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 1:10 हुए हैं। आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से।
1: प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा और उर्वरकों के संतुलित उपयोग के प्रति जागरूकता के लिए 1 जून से देश भर में चलेगा खेत बचाओ अभियान। भुवनेश्वर में जोनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस आज। झारखंड उच्च न्यायालय ने रांची नगर निगम में नक्शा पास की व्यवस्था पर जताई नाराजगी। कहा कार्यपालक अभियंता की जगह असिस्टेंट टाउन प्लानर नक्शा के लिए अधिक उपयुक्त। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे लगातार 17वीं बार प्रतिष्ठित संसद रत्न पुरस्कार के लिए चयनित। नई दिल्ली में जुलाई में होने वाले समारोह में होंगे पुरस्कृत। JBVNL ने शुरू किया जन समस्या निवारण केंद्र। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक बिजली से जुड़ी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे उपभोक्ता। और ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की हुई घोषणा। कप्तान सलीमा टेटे समेत झारखंड की निक्की प्रधान और दीपिका सोरेंग भी टीम में शामिल। और अब समाचार विस्तार से। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और उर्वरकों के संतुलित उपयोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कृषि विभाग और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से 1 जून से देश भर में खेत बचाओ अभियान चलाया जाएगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अभियान के अंतर्गत वैज्ञानिक गांवों में जाकर मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर किसानों को संतुलित खाद उपयोग के लिए जागरूक करेंगे।
2: कृषि विभाग ने ICR ने फैसला किया खेत बचाओ अभियान चलाने का, और उस अभियान के अंतर्गत हमारे वैज्ञानिक गांव में जाएंगे और गांव में जो मिट्टी है उस मिट्टी में जो तत्व है उसके आधार पर किसानों को संतुलित खाद डालने की सिफारिश करेंगे।
1: इसे लेकर ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में आज जोनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक हफ्ते से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपए है। इस बढ़ोतरी के बाद झारखंड की राजधानी रांची में पेट्रोल की कीमत 101.76 रुपए और डीजल की कीमत 96.52 रुपए प्रति लीटर हो गई है। यह वृद्धि 15 मई को हुई। 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी के कुछ दिनों बाद हुई है। यह बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होमुज जल डमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल डीजल LPG और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
3: कमर्शियल LPG की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 PNG कनेक्शंस को गैसिफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने PNG कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
1: झारखंड उच्च न्यायालय में रांची नगर निगम में नक्शा पास से जुड़े मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने कहा कि रांची नगर निगम में प्रति नियुक्ति पर तैनात कार्यपालक अभियंता के स्थान पर सहायक नगर नियोजक यानी ATP को नक्शा पास का कार्य सौंपा जाना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 29 जून को होगी। झारखंड के प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजीव कुमार की अध्यक्षता में रांची में हुई राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को ग्रामीण जनता को वनों से जोड़ने और संयुक्त वन प्रबंधन समिति के साथ वन सुरक्षा

0: मजबूत करने के निर्देश दिए गए। इस बैठक में उन्होंने एलिफेंट कॉरिडोर पुनर्जीवित करने, मुआवजा मामलों का त्वरित निपटारा करने, लैंड बैंक बनाने और फॉरेस्ट क्लियरेंस में तेजी लाने के साथ वन भूमि अतिक्रमण व अवैध खनन रोकने पर जोर दिया। साथ ही इको टूरिज्म, बुनियादी ढांचा विकास और मानव पशु संघर्ष कम करने के लिए ठोस कदम उठाने को कहा गया, ताकि वनों और वन्य जीवों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को लगातार 17वीं बार प्रतिष्ठित संसद रत्न पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। संसद रत्न अवार्ड समिति ने संसद में जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने, सक्रिय भागीदारी और उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर उनका चयन किया है। सांसद निशिकांत दुबे ने इस सम्मान को गोड्डा और झारखंड की जनता के विश्वास और आशीर्वाद का सम्मान बताते हुए इसे क्षेत्र की जागरूक और संघर्षशील जनता को समर्पित किया है। संसद रत्न पुरस्कार समारोह जुलाई में नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड JBVNL ने उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए निगम मुख्यालय स्तर पर रांची में जन समस्या निवारण केंद्र की शुरुआत की है। उपभोक्ता मोबाइल नंबर 9031110120 पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ऊर्जा सचिव के श्रीनिवासन ने बताया कि इस केंद्र के शुरू होने से उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
1: बिजली विभाग के जन समस्या निवारण केंद्र आज कुसई कॉलोनी रांची में हम लोग शुभारंभ किए। ये राज्य स्तर के हम लोग इसको तैयारी किए हैं, आज से ये संचालन शुरू हो गया है। इसमें हमारे बिजली विभाग के संबंधित कितने भी आपका सुझाव है, समस्या है, जो भी आपके जानकारी आप दे सकते हैं, उसका तुरंत जल्दी से जल्दी हम यहाँ पर हल कर सकते हैं।
0: टाटा स्टील वित्तीय वर्ष 2026-27 तक डिजिटलीकरण और AI आधारित कार्य कुशलता के जरिए 7100 करोड़ रुपए की लागत कम करेगी। कंपनी के MD व CEO TV नरेंद्रन ने बताया कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च और ऑटो सेक्टर की मजबूती से मांग बेहतर बनी हुई है। कंपनी गैल्वेनाइज्ड पैकेजिंग, ट्यूब और वायर जैसे डाउनस्ट्रीम व वैल्यू एडेड स्टील उत्पादों में विस्तार कर रही है। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने भू माफियाओं के अवैध कब्जे की शिकायतों पर हर हाल में रोक लगाने का निर्देश दिया है। उन्होंने राजस्व और सब रजिस्ट्रार कार्यालय के अधिकारियों को जमीन दलालों पर कानूनी कार्रवाई करने और सोना हाथों निवासी प्रकाश कुमार महतो को जमीन के पंजीदों में सुधार नहीं होने की शिकायत पर जल्द निष्पादन का निर्देश दिया है। खलारी के NK क्षेत्र में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ CISF ने KDH और डकरा इलाके में विशेष अभियान चलाकर लगभग 3 टन अवैध कोयला जब्त किया है। CISF अधिकारियों ने कहा कि कोयला चोरी राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के साथ उत्पादन व्यवस्था के लिए भी खतरा है, इसलिए तस्करी के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा। खूंटी जिले के साइको थाना क्षेत्र से पुलिस एक युवक और युवती का शव बरामद किया है। खूंटी के DSP वरुण रजक ने बताया कि दोनों युवक युवती छौ नृत्य देखने गए थे और देर रात से लापता थे।
2: विशु पाहन और सोमी मुंडू जो कि जिवरी के रहने वाले हैं, अन्य लोगों के साथ छौ नृत्य देखने गए थे रात में। सुबह सूचना मिला कि ये दोनों घर नहीं आए हैं, गायब हैं। खोजबीन के उपरांत मेला से कुछ दूरी पर जंगल झाड़ी में दोनों का लाश बरामद हुआ। दोनों की उम्र करीब 17-18 साल है और इन लोगों के सिर और गर्दन में धारदार हथियार से हमला किया गया। धारदार हथियार का निशान है मार करने का।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.3% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 335 अंक की वृद्धि के साथ 75,657 जबकि निफ्टी 111 अंक बढ़कर 23,762 पर कारोबार कर रहा था। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 लाख

0: 47,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,76,000 रुपए प्रति किलो है। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा कर दी गई है। इस टीम में झारखंड की 3 खिलाड़ी कप्तान सलीमा टेटे, निक्की प्रधान और दीपिका सोरेंग भी शामिल हैं। तीनों खिलाड़ियों के चयन से राज्य के खेल प्रेमियों और हॉकी खिलाड़ियों में उत्साह का माहौल है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा और उर्वरकों के संतुलित उपयोग के प्रति जागरूकता के लिए 1 जून से देश भर में चलेगा खेत बचाओ अभियान। भुवनेश्वर में जोनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस आज। झारखंड उच्च न्यायालय ने रांची नगर निगम में नक्शा पास की व्यवस्था पर जताई नाराजगी। कहा, कार्यपालक अभियंता की जगह असिस्टेंट टाउन प्लानर नक्शा के लिए अधिक उपयुक्त। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे लगातार 17वीं बार प्रतिष्ठित संसद रत्न पुरस्कार के लिए चयनित। नई दिल्ली में जुलाई में होने वाले समारोह में होंगे पुरस्कृत। JBVNL ने शुरू किया जन समस्या निवारण केंद्र। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक बिजली से जुड़ी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे उपभोक्ता। और ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की हुई घोषणा। कप्तान सलीमा टेटे समेत झारखंड की निक्की प्रधान और दीपिका सोरेंग भी टीम में शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। प्रादेशिक समाचार से पहले आप सुन रहे थे लोक गीतों का कार्यक्रम लोकरंग। आज की गायिका है संगीता कुमारी। इनके स्वर में अब आपको हम सुनवाते हैं लोक भजन।

But

पीड़ा देवी की गाय इस झूमर के साथ ही संपन्न होता है लोक गीतों का कार्यक्रम लोकरंग। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 1:30 हुए हैं।

0: AIR at 90. आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है रेडियो धारावाहिक पोषण नींव पर स्वास्थ्य महल। लेखिका हैं डॉक्टर आरती स्मिथ एवं प्रस्तुत करता है नाओमी शांति हेम्ब्रम।
1: स्वास्थ्य संदर्भों में हमारी चेतना या जागरूकता अब भी हमारी जीवन शैली को अधिकांशतः प्रभावित नहीं कर पाई है, क्योंकि यदि हम पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित आवश्यक बातों को अपने दैनंदिन की व्यावहारिकता में शामिल कर लेंगे तो हमें लगता है कि जीवन में मज़ा और सुख का आस्वादन हम नहीं कर पाएंगे। भोजन करने की अवैचारिक आदतें और अनियमितता, साथ ही मिर्च मसाला वाले चटखारेदार भोजन हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को किस तरह प्रभावित या यूं कह लें कुप्रभावित करते हैं, इस विषय पर हम शायद ही गंभीरता से सोचते हैं। हमारा शरीर विज्ञान हमारी ऐसी अप्राकृतिक आदतों के बारे में क्या कुछ बताता है, इन सब बातों से अवगत कराता है हमारा धारावाहिक पोषण नींव पर स्वास्थ्य महल। इसकी पिछली कड़ी में आपने सुना।
2: भोजन से हमें दो प्रकार के पोषक समूह की प्राप्ति होती है। पहले पोषक समूह में है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी कि व्यापक पोषक तत्व, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और जल है। दूसरे प्रकार के जो समूह हैं वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व, इसमें विटामिन है और मिनरल है। हम सब बगैर भोजन के एक सप्ताह तक रह सकते हैं, क्योंकि शरीर की मांसपेशियों एवं एकत्रित वसा के द्वारा इसकी क्षतिपूर्ति हो सकती है, लेकिन जल के बिना कुछ दिनों में ही हम मरण के कगार पर पहुंच जाते हैं। प्रोटीन शरीर का अनिवार्य पोषक तत्व है, जो ग्रीक शब्द प्रोटोज से बना है, जिसका अर्थ है प्रथम। इसे बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। ये 22 अमीनो एसिड का संपूर्ण चक्र है।
3: प्रत्येक जल कोशिकाओं की बाहरी एवं भीतरी परत प्रोटीन से निर्मित होती है। हमारे पाचन क्षेत्र में कोशिकाएं केवल एक या दो तीन एमिनो एसिड को स्वयं में समाहित कर पाती हैं। इसलिए भोजन से प्राप्त प्रोटीन एंजाइम के द्वारा अपने तत्व एमिनो एसिड में टूटता है। शरीर की आवश्यकता अनुसार प्रोटीन निर्मित करने हेतु 22 अमीनो एसिड की जरूरत होती है। इनमें से 9 अमीनो एसिड अनिवार्य कहलाते हैं, क्योंकि इसे शरीर नहीं बना पाता है। इन्हें भोजन के द्वारा लेना हमारे लिए अनिवार्य होता है।
2: शेष 13 अमीनो एसिड को नॉन अनिवार्य या नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाता है। हमारा शरीर वसा, कार्बोहाइड्रेट एवं अन्य अमीनो एसिड की सहायता से इसे बनाने में सक्षम है।
3: अनिवार्य अमीनो एसिड के नाम इस प्रकार हैं: हिस्टोडिन, आइसोलुसिन, लुसिन, लाइसिन, मेथायोनिन, फेनिल अलानिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफेन, वेलिन।
2: 9 अनिवार्य अमीनो एसिड के नाम इस प्रकार हैं: अलानिन, अर्जिनिन, अस्पारागिन, अस्पार्टिक, सिस्टेन, ग्लूटामिन, ग्लाइसिन, प्रोलिन, सीरिन, टायरोसिन, सिस्टाइन, ऑर्निथिन और ग्लूटामिक एसिड।
1: पिछली कड़ी की बातें आपको स्मरण हो आई होंगी। अब आगे क्या कुछ बातें आती हैं हमारे स्वास्थ्य और पोषण के संदर्भों में।

0: 2 ग्राम,
1: एक कप पकी सब्जी, 2 ग्राम, एक पीस ब्रेड, 3 ग्राम भोजन में परोसा जाने वाला एक बार का औसत चावल, 4.4 ग्राम, और 2 रोटी यानी कि 6 ग्राम।
0: यदि हम पर्याप्त भोजन नहीं लेते हैं तो प्रोटीन की कमी से सबसे पहले हमारे शरीर के ऊतक कमजोर होने लगते हैं, जहां इसकी सबसे अधिक जरूरत होती है।
1: प्रोटीन की कमी से बच्चों का विकास अवरुद्ध हो जाता है।
0: इतना ही नहीं, हमारे पाचन क्षेत्र प्रबंधन का स्तर प्रत्येक 1.5 दिन पर पुनर्निर्मित होता है। हमारे लाल रक्त कण केवल 120 दिन सक्रिय या जीवित रहते हैं।
1: प्रोटीन की कम मात्रा लेने से कोशिकाएं कमजोर हो जाती हैं और व्यक्ति रक्तल्पता का शिकार हो जाता है।
0: प्रोटीन की कमी से ये भी देखा जाता है कि भूखे या कुपोषित बच्चों का पेट बढ़ जाता है, या बाल झड़ने लगते हैं, या पेशियां समृद्ध नहीं हो पाती हैं। शरीर के ऊतक से प्रोटीन का क्षय होने लगता है।

0: प्रोटीन की कमी से उत्पन्न दो महत्वपूर्ण बीमारियों की जानकारी और उसके लक्षण बताए जा रहे हैं जो इस प्रकार हैं।
1: पहला है मेरिस्मस, अपर्याप्त भोजन ग्रहण करने, कुपोषण अथवा अपौशोषण के कारण शिशु में अवत्वक वसा तथा पेशियों का क्षय हो जाना, साथ ही बढ़ोतरी रुक जाती है तथा वजन घट जाता है। इसे सूखा रोग या सुखंडी भी कहते हैं।
0: जैसे कि पहले भी बताया गया है कि ये उपवास रखने वाले या भूखे रहने वाले बच्चों में अधिक होता है।
1: इसका प्रभाव 6 से 18 माह के बच्चों में अधिक दिखता है। पेशियों के क्षय के साथ ही किलो कैलोरी की अल्पता दृष्टिगोचर होती है।
0: ताप में नियमन में कमी आ जाती है, मस्तिष्क का विकास अवरुद्ध हो जाता है और याददाश्त में भी कमी आ जाती है।
1: शिशु निष्क्रिय प्रतीत होता है तथा भोजन के प्रति बहुत कमजोर दिखता है। त्वचा में पिगमेंट का क्षय, इलास्टिसिटी एवं नमी में कमी नजर आती है।
0: शारीरिक मानसिक विकास दर में कमी के साथ साथ चेहरे पर रेखाएं उभरने लगती हैं, एड़ी में दर्द रहने लगता है,
1: गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रदेश के स्तर में ह्रास होने लगता है।
0: शरीर ऐसे किसी भी भोजन को सोखने या अवशोषित करने में अक्षम हो जाता है जिनसे रक्त प्रोटीन या हेमोग्लोबिन बनता है।
1: रक्त अल्पता के विकास के परिणाम स्वरूप कमजोरी का अनुभव होने लगता है। संक्रमण का प्रभाव रोकने की क्षमता में कमी आ जाती है। 3 में से 2 मृत्यु संक्रमण के कारण होती है।
0: दूसरी बड़ी बीमारी है क्वाशियोकोर। ये बीमारी भी बच्चों में ही पाई जाती है और इसका मूल कारण भी प्रोटीन की बहुत अधिक कमी होना है।
1: ये 1 से 3 साल के बच्चे पर अधिक प्रभावी है। फ्लूट को सही अनुपात में बनाए रखने के लिए प्रोटीन जरूरी होता है।
0: पेट की सूजन या लीवर का मोटा होना प्रोटीन की कमी से होता है।

0: एक प्रश्न उभरता है कि क्या हम अधिक प्रोटीन ले सकते हैं? उत्तर है हाँ, किंतु यदि कोई चिकित्सीय अवस्था में है तो डॉक्टर की सलाह से ही लें।
1: सक्रिय व्यक्ति यदि अधिक प्रोटीन लेता है तो अतिरिक्त प्रोटीन ऊर्जा में बदल जाता है, किंतु यदि कोई निष्क्रिय व्यक्ति लेता है तो वो ट्राइग्लाइसराइड में तब्दील हो जाता है।
0: ट्राइग्लाइसराइड शरीर में जमा होने वाला एक प्रकार का वसा है। आइए अब हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या है।
1: कार्बोहाइड्रेट का अर्थ है कार्बन।

0: और जल। ये शर्करा यानी कि ग्लूकोज का यौगिक है जो पौधों के द्वारा निर्मित होता है। जब पौधे प्रकाश में रक्षित रहते हैं, शर्करा बनने के इस मिश्रित रूप के बनने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं।
1: कार्बोहाइड्रेट तीन प्रकार के होते हैं, सरल कार्बोहाइड्रेट, जटिल कार्बोहाइड्रेट और फाइबर यानी रेशा।
0: सरल कार्बोहाइड्रेट को हम दो विभागों में विभाजित कर सकते हैं। शर्करा की एक इकाई वाले कार्बोहाइड्रेट को एकल कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, इसे मोनोसैचुराइड यानी एक शर्करा भी कहते हैं।
1: शर्करा के दो इकाई वाले कार्बोहाइड्रेट को दोहरी शर्करा या डाईसैचुराइड कहते हैं, मोनो यानी एक, डाई यानी दो, तथा सैचुराइड यानी शर्करा या ग्लूकोज होता है।
0: कार्बोहाइड्रेट परिवार के अंतर्गत सरल कार्बोहाइड्रेट में एकल शर्करा की प्राप्ति ग्लूकोज फ्रुक्टोज यानी फल शर्करा, ग्लैक्टोज यानी कि दुग्ध शर्करा से होती है।
1: दोहरी शर्करा के अंतर्गत सुक्रोज यानी चीनी, लैक्टोज या दुग्ध शर्करा एवं माल्टोज यानी बार्ली से प्राप्त माल्ट शर्करा को रखा गया है।
0: जटिल कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत श्वेत सार या स्टार्च को रखा गया है, इसमें अनेक शर्कराओं का योग होता है।
1: इसके अतिरिक्त फाइबर या रेशे को भी जटिल कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में रखा गया है। ये श्वेत सार रहित और अनेक शर्करा का योग होता है।
0: फाइबर को दो प्रकार का माना गया है, घुलनशील और अघुलनशील। नाम से ही स्पष्ट है, एक जल में पूरी तरह घुल जाता है और जल के समान पारदर्शी हो जाता है, जबकि दूसरा जल में थक्के की तरह जम जाता है।
1: ग्लाइकोजन जटिल कार्बोहाइड्रेट है जिसमें अनेक शर्करा का योग है, किंतु ये कार्बोहाइड्रेट का खाद्य स्रोत नहीं है।
0: अनेक शर्करा का योग या पॉलीसैचुराइड के नाम से ही स्पष्ट है कि जटिल कार्बोहाइड्रेट में दो से अधिक इकाई वाली शर्करा एक दूसरे से संबद्ध होती है।
1: कुछ खाद्य पदार्थ जैसे पाव रोटी, अनाज, पास्ता, फल एवं सब्जियों में जटिल कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में मिलता है। फाइबर एवं श्वेत सार भी खाद्य माने गए हैं। फाइबर कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त एक अपाच्य पदार्थ है। इसका उपयोग शरीर में ऊर्जा बढ़ाने के लिए भी नहीं होता है, किंतु ये शरीर से अनुपयोगी पदार्थों के निष्कासन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
0: ये आंत संबंधी समस्याओं को कम करता है और पूर्णता का एहसास बढ़ाता है, क्योंकि ये शरीर को पोषित नहीं करता, ना ही पोषण पर विचार करता है, किंतु ये ऐसा भोज्य पदार्थ है जो अनेक दूसरे तरीके से हमारे स्वास्थ्य में मददगार साबित होता है।
1: जैसा कि पहले भी बताया गया है कि फाइबर के दो प्रकार होते हैं, पहला अघुलनशील फाइबर और दूसरा घुलनशील फाइबर। अघुलनशील फाइबर पाचन क्रिया में मददगार होते हैं, जैसे कि रफेज।
0: ऐसे रेशों के समूह हैं सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, लिग्विन। ये हमें पौधे के कोशिकीय दीवार से मिलते हैं, जैसे गेहूं की बालियों में अघुलनशील रेशे अधिक मात्रा में हैं।
1: घुलनशील फाइबर के कुछ सुरक्षात्मक लाभ हैं, कोमल और घुलनशील पदार्थ भी फाइबर हो सकते हैं।
0: घुलनशील फाइबर खाद्य पदार्थ को आकार नहीं देता है, बल्कि उसमें घुलमिल उसे लसीला एवं श्यान बना देता है।
1: इसका उपयोग कम वसा वाले पदार्थ एवं बिना वसा वाले पदार्थ में भी होता है। गोंद एवं पेक्टिन घुलनशील रेशे हैं।
0: फाइबर के विभिन्न प्रकार के स्रोत कार्य एवं प्रकार इस प्रकार हैं। घुलनशील फाइबर हमें फल जैसे सेब, बार्ली एवं आधा रत्ती जैसे खाद्य पदार्थों से मिलता है।
1: ये भोजन को शर्करा में बदलने में विलंब करवाता है। शर्करा के अवशोषण में विलंब करता है, रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करने में सहायता करता है।
0: अघुलनशील फाइबर जैसे गेहूं के छिलके, अनाज, सब्जियां आदि मल को ढीला करता है, शर्करा के अवशोषण में विलंब करता है। सेल्यूलोज अनेक हेमी सेल्यूलेज, लिग्विन आदि अघुलनशील फाइबर हैं।
1: हमारा शरीर शर्करा पर गतिशील होता है। कोशिकीय परमाणु ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन, वसा एवं अल्कोहल भी हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, जो कैलोरी के रूप में होता है।
0: प्रोटीन भी हमें ऊर्जा प्रदान करता है, पर ग्लूकोज से ऊर्जा में रूपांतरित होने में लंबा समय लगता है। शरीर में ऊर्जा देने का सबसे अधिक कार्य कार्बोहाइड्रेट करता है।
1: कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। यही ऊर्जा हमारी पेशियों, मस्तिष्क एवं अंगों को क्रियाशील बनाए रखती है।
0: आइए अब हम जानें कि कार्बोहाइड्रेट का उपयोग कैसे किया जाता है। पाचन योग्य सभी कार्बोहाइड्रेट हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। इस भोजन से हमें या तो तुरंत या रूपांतरित होकर ग्लूकोज मिलता है।
1: ये ग्लूकोज इंसुलिन की मदद से कोशिकाओं में पहुंचाए जाते हैं। इंसुलिन एक हार्मोन है जो पैंक्रियाज से निकलता है।
0: पाचन क्रिया के दौरान कार्बोहाइड्रेट शर्करा कण में विखंडित होता है। शर्करा शरीर का सबसे प्रभावी और तैयार ऊर्जा स्रोत होता है।
1: ये रक्त धारा में प्रवेश करता है और मस्तिष्क, अंगों तथा पेशीय ऊतकों को पोषित करता है। शर्करा की बहुत कम मात्रा लीवर तथा पेशी में जमा होती है, जिसे ग्लाइकोजन कहते हैं।
0: भोजन से कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति प्रति ग्राम 4 कैलोरी होती है। नवीन शोध से पता चला है कि आम व्यस्क 50-60% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करते हैं।
1: एक सवाल उभरता है कि हमारे शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार मददगार है। दरअसल हमारा शरीर ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट की बड़ी मात्रा जमा कर सकता है।
0: इससे हमें लगभग आधे दिन तक की ऊर्जा मिल जाती है। यदि हम अधिक कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो हमारे शरीर या तो इसका उपयोग करता है या इसे जमा कर सकता है।
1: बहुत अधिक मात्रा में जमा होने पर यह वसा में परिवर्तित हो जाता है। रक्त धारा में बहुत अधिक शर्करा होने या उच्च मधुमेह होने पर वे इंसुलिन निर्माण की प्रक्रिया बढ़ाने हेतु उत्तेजित करते हैं अथवा उद्दीपन का कार्य करते हैं।
0: इंसुलिन का कार्य शर्करा को शक्तिशाली क्रमांकन गति देने की है। इस बिंदु पर शरीर अतिरिक्त ग्लूकोज को वसा में परिवर्तित कर देता है।
1: अनेक विशेषज्ञ प्रतिदिन 3 बार बहुत खाने की अपेक्षा 4-6 बार थोड़ा थोड़ा खाने की सलाह देते हैं।
0: इससे एक वारगी अधिक कार्बोहाइड्रेट शरीर में जमा नहीं हो पाता और वो सही रूप में ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है।
1: इसके बाद अब तीसरे वृहद पोषक तत्व की बात करेंगे और ये है वसा। जब वसा शब्द उच्चारित होता है तब हम क्या सोचते हैं?
0: क्या हमने कभी पीठ, कमर या जंघा पर

0: सही रूप में ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है।
1: इसके बाद अब तीसरे वृहद पोषक तत्व की बात करेंगे और ये है वसा। जब वसा शब्द उच्चारित होता है तब हम क्या सोचते हैं?
0: क्या हमने कभी पीठ, कमर या जंघा पर

0: स्वास्थ्य महल। लेखिका थी डॉक्टर आरती स्मिथ और प्रस्तुतकर्ता थी नाओमी शांति हेम्ब्रम।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 2 बजने वाले हैं। आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे पटना केंद्र से।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए आज से पंचायत स्तर पर राज्यव्यापी सहयोग शिविर का आयोजन शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्वयं सारण जिले के डुमरी बुजुर्ग पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होकर राज्यव्यापी अभियान का उद्घाटन किया। श्री चौधरी ने कहा कि शिविर में प्राप्त शिकायतों का समाधान अधिकतम 30 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाए। ऐसा नहीं करने पर संबंधित अधिकारी 31वें दिन स्वतः निलंबित हो जाएंगे। सहयोग शिविरों में प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की प्रगति की मुख्यमंत्री सचिवालय स्तर से सीधी निगरानी की जाएगी। उन्होंने बताया कि जनता की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 1100 और सहयोग पोर्टल भी क्रियाशील कर दिया गया है। सहयोग शिविर का आयोजन प्रत्येक माह के पहले और तीसरे मंगलवार को किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने पटना के दानापुर अनुमंडल के सरारी पंचायत में सहयोग शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM समेत अन्य वरीय अधिकारी मौजूद रहे। बेगूसराय जिले के प्रभारी मंत्री सह सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने बरौनी प्रखंड अंतर्गत भरत उच्च विद्यालय पिपरा देवस में सहयोग शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर तेघरा के विधायक रजनीश कुमार, जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री, पुलिस अधीक्षक मनीष समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। इधर दरभंगा जिले में 24 स्थानों पर सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। जिले के प्रभारी मंत्री सह पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेन्द्र ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कटिहार में आयोजित सहयोग शिविर के माध्यम से 2975 शिकायतों का निष्पादन किया गया। जिले के

0: प्रभारी मंत्री सह कला संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने सदर प्रखंड के भवाड़ा पंचायत में सहयोग शिविर का उद्घाटन किया। वहीं अरवल जिले के करपी प्रखंड के परियारी पंचायत में जिले के प्रभारी मंत्री सह पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने शिविर का उद्घाटन किया। अन्य जिलों में भी विभिन्न पंचायतों में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। राजधानी पटना में अब पेट्रोल का मूल्य 110.02 रुपये प्रति लीटर और डीजल का मूल्य 94.97 रुपये प्रति लीटर हो गया है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आगामी 25 मई को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय

उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री दिया जाएगा, जबकि डोमकच्छ नृत्य को मुख्य धारा में लाने वाले लोकप्रिय कलाकार विश्व बंधु को मरणोपरांत पद्मश्री सम्मान दिया जाएगा। राज्य के अधिकतर हिस्सों में भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 10 जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। इस अवधि में गया जी और बक्सर में लू की स्थिति बनी रही। इन स्थानों पर तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार गया जी प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पटना का अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इधर मौसम विभाग ने आज रोहतास, कैमूर और बक्सर जिले में लू चलने की आशंका को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। शेखपुरा जिले के अरियरी प्रखंड अंतर्गत प्रसार गांव में एक तालाब में बोरे में बंद दो किशोरों का शव बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि मामले की जांच की जा रही है। दरभंगा जिले के पतौर थाना क्षेत्र अंतर्गत चंदन पट्टी गांव में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों पर जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना में चारों की मौत हो गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

0: आकाशवाणी एट 90। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 2:15 होने वाले हैं। आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व के आदेश को वापस लेने से इनकार और मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा, सतत विकास और व्यापार जैसे क्षेत्रों में नॉर्डिक देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के अलावा डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने आज ओस्लो में आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्टन म्योल फ्रॉस्डॉटर और फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटरी ओर्पो के साथ द्विपक्षीय बैठक की। और जानकारी के लिए बात करते हैं नॉर्वे में मौजूद हमारी संवाददाता संगीता गोडबोले से। संगीता, नॉर्वे के साथ साझेदारी भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है?
2: कनकलता, नॉर्डिक देश अपनी 90% से अधिक बिजली ग्रीन स्रोतों से उत्पन्न करते हैं। भारत का अपना एक महत्वाकांक्षी ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्य है। इसी विषय में नॉर्डिक तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने में हो जाएगा। हरित भागीदारी की दिशा में उठाया गया सबसे ठोस कदम कल था। इससे नॉर्वेजियन कंपनियां हरित हाइड्रोजन, नीली अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में नवाचार और निवेश कर सकेंगी। भारत एक डेडिकेटेड पवेलियन के साथ नॉर शिपिंग 2027 में भी भाग लेगा। कल व्यापार शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25% करने का विजन साझा किया है।
1: धन्यवाद संगीता। भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे।
3: इस लेख में दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस बात का जिक्र किया है कि इस समय जब संयुक्त राष्ट्र अपनी 80वीं वर्षगांठ मना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षवाद का महत्व और भी अधिक स्पष्ट हो गया है। दोनों नेताओं ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभु समानता पर आधारित नियमों से संचालित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ने दशकों तक स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है। लेख में ये भी बताया गया है कि एक प्रमुख विकास इंजन और ग्लोबल साउथ की जिम्मेदार आवाज के तौर पर निकट भविष्य के लिए भारत के दो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। पहला 2047 तक विकसित देश का दर्जा हासिल करना और दूसरा 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 का ये दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के व्यक्तिगत निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं। और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारी संवाददाता सुपर्णा भाटिया से जो इस समय रोम में मौजूद है। सुपर्णा, प्रधानमंत्री का आज इटली में क्या क्या कार्यक्रम है?
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली पहुंचने वाले हैं जो उनके 5 के दौरे का अंतिम चरण है। इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। मुझे यहाँ भारतीय प्रवासी समुदाय से बात करने का भी अवसर मिला, जो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित हैं।
1: जानकारी के लिए धन्यवाद सुपर्णा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग से मुलाकात के लिए चीन की यात्रा पर हैं। क्रेमलिन के अनुसार दोनों नेता आर्थिक सहयोग और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित की गई है। ये वार्ताएं ऐसे समय में हो रही हैं जब वैश्विक भू राजनीतिक तनावों के बीच चीन, अमरीका और रूस दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। यूक्रेन संघर्ष को लेकर पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद चीन रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और रूसी तेल तथा गैस का प्रमुख खरीदार बना हुआ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। एक रिपोर्ट।
5: न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और राह चलते लोगों पर कुत्तों की हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि यह समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: भारतीय रेलवे ने जम्मू श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा खंड पर 238 करोड़ रुपए की लागत से महत्वपूर्ण ढलान स्थिरीकरण, सुरंग पुनर्निर्माण और पुल संरक्षण कार्यों को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये कार्य देश के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण भूभागों में सुरक्षित और विश्वसनीय संपर्क सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे क्यूल झाझा तीसरी लाइन प्रोजेक्ट को 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर पर क्षमता को बढ़ाएगा और रेल सेवाओं की समय की पाबंदी और ऑपरेशन लचीलेपन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को स्मार्ट पावर का एक सटीक उदाहरण बताया है। वे आज राष्ट्रीय राजधानी में सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज में सुरक्षा से समृद्धि सतत राष्ट्रीय विकास के लिए स्मार्ट पावर विषय पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे।
6: ऑपरेशन सिंदूर डिलीवर्ड मिलिट्री प्रिसिशन इंफॉर्मेशन कंट्रोल।
7: ऑपरेशन सिंदूर ने सटीकता, सूचना नियंत्रण, कूटनीतिक संकेत और आर्थिक संकल्प को सुसंगत राष्ट्रीय कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किया। इसने दुश्मन पर गहरा प्रहार किया और आतंक

0: ढांचे को ध्वस्त कर दिया तथा एक लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक धारणा को भी तोड़ दिया। सेना ने फिर इसके बाद सोच समझकर विवेक सम्मत ढंग से अपनी कार्रवाई रोक दी। 88 घंटे चला ऑपरेशन सिंदूर स्मार्ट पावर का सबसे पूर्ण और सटीक उदाहरण था।
1: स्मार्ट पावर इन इट्स मोस्ट कंप्लीट एक्सप्रेशन।
2: मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर लाल रोजामा ने कहा कि संशोधन प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि अधिकारी सीधे तौर पर मतदाता सूचियों का काम संभालेंगे। उन्होंने अधिकारियों से पूरी ईमानदारी, सटीकता और सतर्कता के साथ काम करने का आग्रह किया, ताकि मिजोरम के वास्तविक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपये प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपये है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपये और डीजल 94.08 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रुपये और डीजल की 96.07 रुपये दर्ज की गई, जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रुपये और डीजल की 96.11 रुपये प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और हुर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भुवन चंद्र खंडूरी का आज एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। सेना के पूर्व मेजर जनरल रहे श्री खंडूरी ने 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भी रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को एक अपूर्णीय क्षति बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री खंडूरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार और मराठवाड़ा में भी आज ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले 5 दिन तक लू चलेगी। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिन के लिए भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार दिन के समय दिल्ली में कुछ स्थानों पर भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। एक रिपोर्ट।
3: विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कल मौसम विभाग के रिज क्षेत्र स्टेशन पर 44.6 डिग्री सेल्सियस, सफदरजंग स्टेशन पर 43.4 डिग्री सेल्सियस, लोदी रोड स्टेशन पर 43.8 डिग्री सेल्सियस और पालम स्टेशन पर 43.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
2: उत्तर प्रदेश में अगले सप्ताह भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बांदा 47 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ लगातार दूसरे दिन भी देश का सबसे गर्म स्थान रहा।
4: आज भी राज्य भर में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। बुंदेलखंड और अन्य इलाके तेज धूप और झुलसा देने वाली हवाओं की चपेट में हैं। धीमी हवा के कारण उमस और बढ़ गई है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। वहीं राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग ने 33 जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की है। राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में अगले सप्ताह तक लू के हालात बने रहेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि धरती माँ के लिए पूरी मानवता एक परिवार है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संपूर्ण विश्व एक घर की तरह है, जहाँ हर संस्कृति का अपना महत्व और सम्मान है। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 136 अंक की वृद्धि के साथ 75,451, जबकि निफ्टी 42 अंक बढ़कर

0: 1692 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व आदेश को वापस लेने से इनकार। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले तीन दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 2:30 बजे हैं। प्रस्तुत है चित्रपट से कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म रिफ्यूजी से। गायक कलाकार हैं सोनू निगम और अलका याग्निक। गीत जावेद अख्तर के हैं, संगीतकार हैं अनु मलिक।

का प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया जा रहा है। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ पर।

Akashvani at 90. Akashvani at 90. 90 साल

0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: आप सुन रहे हैं क्षेत्रफल से कार्यक्रम। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया जा रहा है। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मुस्कान से। आवाज़ें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की। गीत समीर ने लिखे हैं, इसे संगीतबद्ध किया है निखिल विनय ने।
3: जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से चुपके तुमने ऐसी बात कही, दिल मेरा खो गया।

0: AIR at 90.
1: आप सुन रहे हैं चित्रपट से कार्यक्रम। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मोहरा से।

और कार्यक्रम के अंत में आपको हम सुनवाते हैं उदित नारायण एवं अलका याग्निक का गाया ये गीत, फिल्म है राजा, गीतकार समीर और संगीतकार हैं नदीम श्रवणन।

चित्रपट से कार्यक्रम संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में अपराह्न के 3 बजे हैं। प्रस्तुत है तरंग कार्यक्रम। आज तरंग के गायक कलाकार हैं जसवंत सिंह। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं

0: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: आप सुन रहे हैं तरंग कार्यक्रम। अगला गजल प्रस्तुत है शादाब लाहौरी की, इसे आवाज दी है जसवंत सिंह ने।

जसवंत सिंह की आवाज़ में। आइए आपको सुनवाते हैं वसीम बरेलवी की ये रचना।

जसवंत सिंह की गाई इस गजल के साथ ही संपन्न होता है तरंग कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में अपराह्न के 3:20 हुए हैं। प्रस्तुत है समूह स्वर में देशभक्ति गीत।

अभी आप सुन रहे थे समवेत स्वर में देशभक्ति गीत। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है, मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.1 मेगा हर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में अपराह्न के 3:25 हुए हैं। अब से संध्या 5 तक मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.1 मेगा हर्ट्ज पर आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। संध्या 5 से आप सुनेंगे आकाशवाणी भागलपुर के कार्यक्रम।

0: मनाली, मैं देख रही हूँ कि इस गीत को सुनते सुनते कुछ संदेश पढ़ के आप जैसे कुछ भावनात्मक हो गए हो।
1: जी, हमारे एक साथी ने लिखा है कि भाई मेरी माँ ये गाना हमेशा गुनगुनाती थी और मैं 5 बहनों में इकलौता भाई हूँ, तो मैं अपनी मम्मी की आंख का तारा था।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: तो जो बच्चे होते हैं ना, माँ की आंख के तारे होते हैं, फिर बेटी हो बेटा हो, पर जो हम बच्चे होते हैं ना, कभी कभी हम अपनी माँ को दुखी कर देते हैं कि क्यों इस तरह से हमारे पीछे क्यों पड़ी हो, या क्यों हमें हमेशा लेक्चर देते रहती हो,
0: या कुछ कोई खास चीज खाने के लिए मम्मी बोलती है ना, थोड़ा सा खा लो थोड़ा सा खा लो, अब हमारा मन नहीं होता और हम बोलते हैं कितना आप बोल रही हो, नहीं खाना भाई, हम झुंझला के उनको कभी कई बार
1: गुस्सा हो जाते हैं।
0: हाँ, और कुछ कड़वे बोल भी बोल देते हैं, माँ दुखी हो जाती है, लेकिन उनकी आंखों का तारा बनने में हमारी कोई कमी नहीं होती, उनके लिए हम वैसे ही बने होते हैं।
1: और फिर क्या होता है कि एक वक्त के बाद हमें ऐसा लगता है अरे मैंने फालतू में माँ का दिल दुखा दिया, और हम अपराध बोध से ग्रस्त भी हो जाते हैं।
0: हाँ बिल्कुल,
1: माँ तो हमारी इतनी प्यारी है, वो कहती है कि देर रात तक ना जागो, पर हम जागते हैं, ये मत खाओ वो मत खाओ, ऐसा करो ऐसे कपड़े पहनो इस तरह के कपड़े पहनो, मम्मी डांटती है। और फिर कभी
0: और जब हाँ कुछ सालों के बाद जब हम उस पे चिंतन करते हैं तो हमें लगता है कि माँ कितना सही कहती थी और हम कितना चिढ़ गए उस वक्त, और फिर वो एक मन में ना कहते हैं ना हम जैसे कि पछतावा होने लगता है।
1: और अगर माँ ना हो इस दुनिया में, हाँ, तब तो और भी बुरा लगता है ना?
0: बिल्कुल सही कहा। और बात तो तुमने बहुत गंभीर शुरू कर दी है सोनाली, लेकिन वक्त हो गया एक अंतराल का, तो अंतराल लेके इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं।

0: सोनाली, आप क्या बात कर रही थी अपराध बोध के लिए?
1: ये अपराध बोध शब्द ही ऐसा है ना कि जिसको पढ़ते ही अपराध बोध आ जाता है दीपा। जब हम मन की बात कहते हुए बोल देते हैं ना कि मुझे गिल्ट खा रहा है या पछताव हो रहा है, ऐसी मानसिक स्थिति जो इंसान को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खोखली करती जाती है। अतीत में हुई किसी गलती, गलत फैसले या किसी को अनजाने में पहुंचाए गए कष्ट के कारण ऐसी भावना पैदा होती है। हालांकि कुछ हद तक अपराध बोध हमें अपनी गलतियों को सुधारने के लिए प्रेरित भी करता है, लेकिन जब ये लंबे समय तक मन में घर कर जाए ना तो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को तबाह कर देता है।
0: बिल्कुल सही कहा, अतीत को देखो बदला नहीं जा सकता सोनाली, लेकिन जो वर्तमान है आज है उसको संभाल कर भविष्य को जरूर संवारा जा सकता है। इसलिए खुद को माफ करना, अपराध बोध के जाल से बाहर निकलना बेहद जरूरी है।
1: और यदि हम किसी बात को लेकर ग्लानी या अपराध बोध से जूझ रहे हैं तो कुछ तरीकों को अपनाकर खुद को मुक्त कर सकते हैं। जैसे गलती को स्वीकार करना अपराध बोध से बचने का पहला कदम है कि ये मानना कि हमसे गलती हो गई है। गलती को छुपाने या उससे भागने के बजाय उसे स्वीकार करने से मन का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। और परिस्थितियों का विश्लेषण करना चाहिए, खुद से पूछे कि जब वो गलती हुई तब क्या हम सचमुच किसी बुरे इरादे से काम कर रहे थे। कई बार हालात, अधूरी जानकारी या सामाजिक पारिवारिक दबाव के कारण गलतियां हो जाती है। खुद को हर बात में विलन ना बनाए, यानी खुद को अरे इतना मैं इतनी तो बुरी नहीं हूं पर मुझसे गलती हो गई है तो हो गई है।
0: बिल्कुल सही कहा। और माफी मांग सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। वो कैसे? अगर गलती से किसी दूसरे को ठेस पहुंची है तो बिना किसी अहंकार के उनसे सीधे माफी मांग लेनी चाहिए। यदि संभव हो तो उस नुकसान की भरपाई करने की भी कोशिश कर सकते हैं, और ये करके देखें आपके मन को बहुत गहरी शांति देगा। फिर आत्मक्षमा अपनाना चाहिए। हम ना दूसरों को तो कर देते हैं क्षमा, लेकिन कभी कभी अपने ही किसी किए के लिए बार बार बोलते ना, मैं उसके लिए खुद को माफ नहीं कर सकती, मैं अपनी ये वाली बात को बिल्कुल भूल नहीं सकती। इस तरह की बातें अक्सर आती हैं, हम अपने लिए सोचने लग जाते हैं। और अक्सर हम दूसरों को बहुत आसानी से माफ तो कर देते हैं, लेकिन खुद के प्रति इस तरह से हम कठोर हो जाते हैं। लेकिन इंसान गलतियों का ही पुतला है, फिर देखो है कि नहीं सही बात। और खुद को एक इंसान के रूप में देखें जिसने गलती की, न कि खुद को ही एक बुरा ही इंसान मान लेते हैं बिल्कुल कि हाय मैं बहुत बुरी इंसान हूँ। इस तरह की बातें भी कभी कभी निकल आती हैं।
1: और ऐसे में क्या होता है, हम निराशा की खाई में ही गिरे रहते हैं हमेशा। अगर ऐसी बातें हमारे दिमाग में आती हैं तो हम उदास रहते हैं, निराशा में रहते हैं, और उससे क्या होता है, जाने अनजाने में हमारा स्वास्थ्य पूरी तरह से बिगड़ जाता है, बीमारियों का घर बन जाता है। तो अतीत की उस घटना को एक कड़वी याद के रूप में ना देखकर एक सबक के रूप में अगर हम देखें ना, तो बहुत हद तक हम आगे भविष्य में दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। और हमारी गलतियां हमें फिर गिल्ट में नहीं बल्कि व्यक्तिगत विकास में आगे बढ़ने में भी मददगार होगी। जो बीत गया उसे पर अब हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, जो आएगा वो हमें पता है नहीं। इन्हीं बातों की उलझन में हम अपना वर्तमान क्यों बिगाड़े? और फिर देखिए ना, अन्य चिंता में वर्तमान के खूबसूरत पल हमारे हाथ से रेत की तरह फिसलते चले जाएंगे। तो क्यों ना अपनी ऊर्जा को आज सुधारने संवारने में बिताए, एक सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ना जरूरी है।
0: बिल्कुल, हम अपने अतीत में की गई गलतियों से कई बड़े हैं सोनाली, और कई बेहतर भी हैं। खुद को कोसना बंद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर नया दिन खुद को सुधारने का एक नया मौका लेकर आता है।
1: और हमारे श्रोताओं ने भी इस विषय में बहुत सारे कमेंट्स लिखे हैं। एक साथी लिखते हैं, अपराध बोझ से बचना जरूरी है, खुद को क्षमा करना आसान नहीं होता है, इसके लिए साहस चाहिए। जो व्यक्ति कभी गलती नहीं करता वो शायद नया प्रयास भी नहीं करता है। जीवन का उद्देश्य निर्दोष बनना नहीं बल्कि सीखते हुए बेहतर बनना है। गलती को स्वीकार कीजिए, उससे कुछ सीखिए, लेकिन उसे अपना स्थायी पहचान मत बनाइए। इंसान गलती से छोटा नहीं होता, वो तब छोटा होता है जब सीखना छोड़ देता है।
0: बिल्कुल सही कहा, बहुत सुंदर बात। और इसी तरह का एक और देश कहता है कि अपराध करने के बाद दिल दिमाग पर एक बोझ महसूस होना स्वाभाविक है। आपसे ये अपराध जानबूझकर के नहीं हुआ है तो खुद को कोसने के बजाय शांत चित्त पूर्वक आत्मचिंतन करें, भविष्य में इससे इसके प्रति जागरूक रहें। अतीत के गलियारों में घूमने के बजाय परिवार के साथ हंसी खुशी भरा माहौल बनाए रखें, वर्तमान आपका ऐसा ही होना चाहिए।
1: एक साथ ही लिखते हैं, जाने अनजाने हमसे गलतियां होती रहती है, मन से उसे मान लेना ही समझदारी है। नहीं तो जब तक मान न लूं हमेशा अपराध बोध से मैं ग्रस्त रहती हूं, क्योंकि कोई ना कोई आपकी गलती पकड़ ही लेते हैं। मुझे लगता है कि बेहतर है मान लिया जाए। साथ

0: एक और साथी ने लिखा है कि अपराध बोझ से बचना जरूरी है, खुद को क्षमा करना आसान नहीं होता, इसके लिए साहस चाहिए। जो व्यक्ति कभी गलती नहीं करता वो शायद नया प्रयास भी नहीं करता। इसी तरह की बातें और भी हमारे साथियों ने लिखी है।
1: भाई देखो दिल की बात कहीं किसी को कह देनी चाहिए, कोई दोस्त को, कोई ऐसा आपका भाई होते हैं ना, हमारे कजिन्स भी होते हैं जिनके हम बहुत करीब होते हैं, तो अगर आप अपने दिल की किताब कहीं खोल देंगे तो मन शायद कुछ इस तरह से हल्का हो सकता है।

0: सोनाली, मुझे बताओ, एक संदेश बहुत गहराई से पढ़ रही हो तुम।
1: जी, हमारे एक सखी ने लिखा है कि कभी कभी अनावश्यक रूप से अपराध बोध पालकर अपना आत्मविश्वास खो बैठते हैं। हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं। कुछ लोगों को तो अगर जागने में देर हो जाए तो भी अपने आप को कोसने लगते हैं, भाई आप जरा देर तक सो लेंगे तो दुनिया थोड़ी रुक जाएगी। किसी से खाने में नमक ज्यादा पड़ गया तो परेशान हो जाएंगे। आप ही तो

0: कितने खुश आप है ना ये सुनकर और ये पढ़ के आपका संदेश, हमें भी बहुत खुशी मिल रही है। और भाई इसका परिणाम तो देखिए बहुत अच्छा है, लेकिन परीक्षा के परिणाम में कभी कभी घर में मार भी पिट जाती है और कभी कभी उपहार भी मिल जाता है।
1: पर ऐसा होता है ना दीपा कि उस वक्त भी अपराध बोध से हम ग्रस्त हो जाते हैं कि कभी परीक्षा में हमें कम नंबर मिल गए, तो खासकर लड़कियां क्योंकि सब लोग बोलते ना कि अरे हमारी बेटी तो बहुत अच्छे नंबर लेकर आती है, हमेशा फर्स्ट आती है, और कभी तीसरा चौथा नंबर आ गया तो उस बेटी को बड़ा बुरा लगता है कि अरे मैंने ऐसे क्यों कर दिया, मैंने अच्छे से पढ़ाई क्यों नहीं की, और फिर उन्हें मन ही मन वो खाते भी रहता है वो।
0: बिल्कुल, लेकिन इस तरह से होना नहीं चाहिए। हम अब तो बच्चों को बहुत समझाते हैं भाई पहला और दूसरा नहीं, तुम अच्छे से पढ़ाई करो, नंबर के पीछे ना भागो, ये हमें भी सिखाया जाता था। लेकिन हाँ कभी कभी कहीं कहीं ऐसा होता है कि एक माता पिता को एक एक्सपेक्टेशन होती है हमसे कि भाई ये इतने नंबर तो लेकर ही आएगी या लेकर ही आएगा, तब और नहीं ला पाते तो कहीं हमें मन में वो कसोसता है। लेकिन भाई अगली बार आप मेहनत करके, हम उसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन तब छोटे होते हैं ना तो ये सारी बातें नहीं समझ आती। लेकिन आज देखते हैं कि संदेश क्या कहते हैं। पहला संदेश है परीक्षा परिणाम, उपहार कभी नहीं मिला, बचपन में पापा की मार जरूर पड़ी है लेकिन हर बार मम्मी बचा लेती थी। तो देखो मम्मी तो यहाँ भी काम आई
1: है, तारा होते ना बच्चे
0: इसीलिए।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं कभी मार तो कभी मिले उपहार, हमारे जमाने में तो परीक्षा के परिणाम के बारे में तो हम फिक्र ही नहीं करते थे, ना माता पिता करते थे, प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई के आगे पढ़ना नहीं था, पढ़ना ये हमारे रिजल्ट के आने के बाद पता चल जाता था, क्योंकि उन दिनों हमारे परिवार में पढ़ाई से ज्यादा काम धंधे पर ध्यान दिया जाता था। अगर फेल हो गए तो गृह उद्योग यानी कारखाना हमारा स्वागत करते तैयार रहता था। मुझसे बड़े सभी भाइयों का ऐसे ही स्वागत हुआ था, पूरे परिवार में मैं अकेला ही है जो ग्रेजुएशन तक पहुंच सका हूं। क्या बात है।
0: और एक हमारे साथी ने भेजा है संदेश कि मेरे दादाजी हम बच्चों को जिसका भी रिजल्ट 1 से 5 के बीच में रैंक में आता था उनको मतलब उस जमाने में 5 रुपए देते थे। वो 5 रुपए हम तीनों भाई बहनों को मिलता ही मिलता था। क्या बात है भाई। और उस जमाने में यानी कि 40-50 साल पहले की बात होगी, 5 रुपए बहुत मायने रखता था। जी बिल्कुल रखता था। और कुछ मिलना ही हमारे लिए ये मतलब मिल जाए बहुत बड़ी बात होती थी। मैं तो SSC में सेंटर का फर्स्ट था और मैथ्स में 100 में से 90 मार्क्स, क्या बात है। और मुझे 100 रुपए का इनाम भी मिला था।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं परीक्षा परिणाम की बात चली तो बता दे कि जूनियर हाई स्कूल तक पिताजी के गाइडेंस में मैं पढ़ता था। मैं अपने जमाने में उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी पढ़े थे और हमारी किताबें समझते थे। आगे की पढ़ाई में उनका निर्देशन नहीं रहा तो भी पास होने भर के मार्क लाता रहा। BA तक ये सिलसिला चला जब तक मैं मनबढ़ हो चुका था। हर हफ्ते फिल्में देखना, घूमने जाने लगा, शादी भी हो चुकी थी और पत्नी घर में आ चुकी थी। हाँ, इधर 2 नाती अपनी परीक्षा परिणामों को लेकर चिंतित रहते हैं। इंटर में 1 ने 93% और 1 ने 87% मार्क लाए, फिर भी वे संतुष्ट नहीं है। ये आजकल का जमाना है, यहाँ पर तो 99 भी मिल जाए तो कहते कि भी 1% कहाँ चला गया।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक संदेश कहता है कि ये वो शब्द है जो दिल की धड़कनें बढ़ा देता है। भले ही हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन बोर्ड एग्जाम या फाइनल रिजल्ट के दिन वो गुड़गुड़ वाली, वो घबराहट वाली जो एक फीलिंग रहती है ना, वो सबको याद रह ही जाती है। भाई बिल्कुल सच बात है। एक समय सच में भावनाओं का ये वो समय है जब भावनाओं का एक रोलर कोस्टर होता है, कभी खुशी, कभी गम, कभी मार डांट तो कभी उपहार। तो इन खट्टी मीठी यादों को ताजा करते हुए वो बताते हैं कि रिजल्ट वाले दिन का माहौल तो सुबह में ही घर में सन्नाटा हो जाता, मम्मी भगवान की पूजा कर रही होती है, पापा अखबार पढ़ने का नाटक करते हैं जबकि नजरें घड़ी पर होती है। परिणाम अच्छा हो अगर हुआ तो घर में दिवाली जैसा माहौल, मिठाई बांटी जाती है, रिश्तेदार फोन करते हैं, पड़ोसी हेलो बोलने आते हैं। परिणाम खराब तो घर में बिल्कुल ऐसा सन्नाटा जैसे पता नहीं क्या ही हो गया है। टीवी बंद, आवाज धीमी, सब ऐसे व्यवहार करते जैसे किसी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कभी पड़ी मार तो जब नंबर कम आते थे तो लगता था कि अब तो बस धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। और पापा का यह डायलॉग हमेशा होता, बगल वाले शर्मा जी के बेटे को देखो, ये जुमला तो लगता है हर बच्चे का दुश्मन रहा होगा। भाई बिल्कुल सही कहा आपने। और मम्मी का डायलॉग रहता, सारा दिन मोबाइल में खेल में लगे रहोगे तो अब भुगतो उसका नतीजा। और 1 हफ्ते के लिए टीवी खेलना बंद, टीवी बंद और एक्स्ट्रा ट्यूशन की धमकियां मिलती, इस तरह की बातें होती। और अगर उपहार के रूप में उन्हें ये होता था कि जब मेहनत रंग लाती थी तो डर लगता था कि हमसे बड़ा सिकंदर कोई नहीं। और डिमांड पूरी हो जाती थी, पापा से नई साइकिल या नया फोन या मनपसंद गेमिंग कंसोल की डिमांड पूरी हो जाती थी। तो भाई उन्होंने तो बहुत ही जबरदस्त

0: लेखा जोखा लिख दिया
1: और बिल्कुल आंखों के सामने ऐसा लग रहा है हमारा बचपन भी कहीं ना कहीं सामने लेकर आए हैं। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं कि आपने बहुत सारे लोगों की आज यादें ताजा की होगी।
0: और तो, अब गाना सुन ले
1: चलिए।

0: भाई देखो, कितने लोगों को पढ़ने में दिल भले ही नहीं लगता हो, लेकिन यहाँ पे जो संदेश आ रहे हैं उसको देख के तो ऐसा लगता है कि पढ़ने में बहुत मन लगता था।
1: एक हमारे सखी ने लिखा है दीपा, हमारे जमाने में सेवंथ बोर्ड होता था, एक स्कूल होने के चलते हम आसपास के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक आते थे, जिससे हम सभी उनके साथ बैठकर पढ़ते थे। पड़ोस में एक बच्चे को का नंबर कम आया, ट्यूशन पढ़ने वाले टीचर आए तो गार्जियन ने शिकायत किया। उस समय तो उनने सिल लिया, बड़ी अकड़ के साथ हमें सुनने लगे कि मुझे कम नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाये, नया नया कबीर का दोहा पढ़ना शुरू कर दिया। जो टीचर ट्यूशन पढ़ाने आते थे उन्होंने कान पकड़कर बोला, सिर्फ पढ़ने की भी खाने में भी, खाने में हो तो कम हो जाएगा तो बहुत हल्ला करते हो।
0: और एक और संदेश कहता है कि परीक्षा परिणाम का दिन बच्चों से ज्यादा शायद माता पिता के लिए डर और उत्सुकता लेकर आता है। इस बार मेरी बेटी ने 10वीं की परीक्षा दी थी, सच बताऊं तो उससे ज्यादा घबराहट मुझे हो रही थी उसके कितने मार्क्स आएंगे। जब उसका परिणाम आया तो उसने 90% अंक प्राप्त किए तो मन गर्व और खुशी से भर गया। अब उसकी एक प्यारी सी इच्छा है, उसे गिफ्ट में मोबाइल चाहिए। अभी हमने उसे दिलाया नहीं है, लेकिन आजकल वो बड़े प्यार से दूसरे बच्चों के स्टेटस दिखा रही है हमें और कहती है, मम्मी देखो ये उसके पेरेंट्स ने उसे ये गिफ्ट दिया है। तो सच कहूं तो रिजल्ट के साथ जुड़ी ये सारी छोटी छोटी बातें जीवन की सबसे सुंदर यादें बनकर रह जाती है। तो भाई अगर आपने वादा किया है तो अब आपको अपनी बिटिया को गिफ्ट तो देना ही पड़ेगा और हमें भी आपको गिफ्ट देना होगा।

0: तुम कौन सा संदेश पढ़ने का कह रही थी?
1: हमारे एक साथी ने लिखा है कि परीक्षा परिणाम वैसे तो किसी के प्रतिभा को आकलन करने का मापदंड तो है नहीं, पर जो परंपरा चली आ रही है उसका निर्वहन तो होता ही है। स्कूल जाएंगे, क्लास में पढ़ेंगे तो परीक्षा भी होगी, परिणाम आने पर घर पर उसके अनुकूल ट्रीटमेंट भी मिलेगा। पर मेरा अनुभव तो अच्छे वाले ट्रीटमेंट का ही है, तब उपहार वगैरह मिलने का जमाना तो था नहीं, पर क्लास में फर्स्ट सेकेंड आने वाले बच्चों को स्कूल की तरफ से पुरस्कार जरूर दिया जाता था। मुझे तो फर्स्ट प्राइज ही मिल जाता था, जो भी मिलता था अनमोल होता था। क्या बात है, बहुत अच्छी बात लिखी है। एक साथ ही लिखते हैं कि परीक्षा के परिणाम उपहार या डांट मुझे तो याद नहीं, हमारे जमाने में ऐसा कुछ होता था। नंबर कम आया तो गार्जियन समझाते थे, लेकिन अच्छे नंबर आने पर घर में कभी मिठाई मिल जाती थी, कभी अठन्नी चवन्नी मिल जाते थे। आजकल के गार्जियन बच्चों के लिए परीक्षा फल के परिणाम के लिए कुछ ज्यादा संशय में रहते हैं। आजकल कंपटीशन कुछ ज्यादा टफ है, नए नए रोजी रोटी और पढ़ने के आयाम भी खुले हैं। अगर कुछ कम है तो कुछ दूसरे रास्ता भी ढूंढ लेंगे। उन्हें डराया जाता है कि अगर नंबर कम आएंगे तो अगली बार फिर उसी क्लास में दो बार पढ़ना पड़ेगा, जो कि बड़ा ही अपमानजनक शब्द होता था। पर भैया हम तो इतना कोशिश कर देते कि अगले साल नए क्लास में ही जाए।
0: सही बात है। और एक और संदेश है, कहता है परिणाम परीक्षा के बाद चली तो बता दे कि जूनियर हाई स्कूल तक पिताजी के गाइडेंस में भी पढ़ता था। वे अपने जमाने में उर्दू संस्कृत अंग्रेजी पढ़ाते थे, आगे की पढ़ाई में उनका निर्देशन नहीं रहा तो पास भर होने का मार्क लाता रहा। बीए तक ये सिलसिला चला और बाद में तो ये है कि हर हफ्ते फिल्में देखना, घूमने जाना, शादी भी हो चुकी थी, पत्नी घर आ चुकी थी। हाँ, इधर हमारे दो नाती और अपने परीक्षा परिणाम को लेकर चिंतित रहते हैं। इंटर में एक ने 93% लाए हैं और एक ने 87% मार्क्स लाए, फिर भी वे लोग देखिए संतुष्ट नहीं है। और अब हम किस बात से संतुष्ट होंगे?
1: एक गाना सुन के
0: चलो।

0: दोस्तों, सेलुलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आज हम आपको मिलवा रहे हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका कमल बारोट से। आपसे बातचीत की है कमल शर्मा ने।
1: दोस्तों, अगर हम वक्त का दामन थामकर अतीत में लौटें, तो फिल्म संगीत की वादियों में गूंजने वाली एक जानी पहचानी सी मीठी और मधुर आवाज बरबस ही हमारा ध्यान खींच लेती है। कभी सेल्यूलॉइड के पर्दे के उस पार से, कभी टीवी के जरिए हवाओं पर सवार होकर ये आवाज आपको आवाज देने पहुंचती रही है। जी हां दोस्तों, हम जिक्र कर रहे हैं गायिका कमल बारोट का, जो आज के स्टूडियो में। कमल बारोट जी, बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
2: सुनने वालों को कमल बारोट का प्यार भरा नमस्कार।
1: वाह, आपकी आवाज में वाकई इतना प्यार घुला है, इतनी मिठास घुली है
2: कि वो आपकी जरा नवाजी है, आपका प्यार है।
1: लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता और मैं सच बोल रहा हूँ, ये दिल की आवाज है कि वो प्यार जो है पहुंच गया हमारे सुनने वालों तक। अब कमल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपकी संगीत यात्रा जो है वो कब, कैसे और कहां से शुरू हुई?
2: देखिए, मेरा जन्म तो हुआ ईस्ट अफ्रीका में, टेंजानिया में, और बचपन से ही पिताजी को संगीत का, घर में संगीत का माहौल था, ऐसे समझ लीजिए। मेरी माताजी भी गाती थी, पिताजी दिलरुबा बजाते थे और घर में महफिल सजती थी। हालांकि क्लासिकल महफिल होती थी जहाँ से मैं भाग जाती थी, क्योंकि मुझे उस वक्त क्लासिकल म्यूजिक से इतना, बहुत छोटी थी मैं, एक लगाव नहीं था। तो वो कहते हैं ना, वो माहौल तो बचपन से ही मिला था। और जब मैं कॉलेज के लिए हिंदुस्तान आई तो सोफिया कॉलेज में सब लड़कियों को पकड़ के मैं कहती थी मेरा गाना सुनो जबरदस्ती, क्योंकि सीखा नहीं था कुछ, सारे गमा का कुछ पता ही नहीं था। तो ऐसे गाती थी और उसमें से मैं साइगल मेमोरियल कॉन्टेस्ट के लिए चली गई, लड़कियों ने मेरा फॉर्म भर के, और वो मैं कॉन्टेस्ट जीती और वहां से एक किस्म से ये यात्रा शुरू हुई।
1: अच्छा, तो यानी ये हम माने कि जैसे किसी को मंत्र दीक्षा दी जाती ना कान में हौले से
2: जी, जी।
1: तो वैसे ही संगीत की पहली जो दीक्षा थी मंत्रों की, वो तो आपको घर में ही मिली?
2: घर में ही मिली, बिल्कुल सही।
1: लेकिन बाद में उसका जो सफर है थोड़ा सा और आगे जाकर के शुरू हुआ।
2: जी,
1: अच्छा
2: जी।
1: लेकिन कहते हैं कि यदि संगीत के क्षेत्र में आपको गुरु मिल जाए तो आपकी ये जो यात्रा है या जो भी विद्या आप सीखना चाहते हैं उसमें और अच्छाइयां आ जाती हैं, तो संगीत में आपके भी कोई गुरु रहे?
2: जी, मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब थोड़ा सा रेडियो पे मेरा गाना बजा और कहते ना पता चला कि ये कॉन्टेस्ट जीती है, तो बहुत जगह से लोगों ने बुलाना शुरू किया और कहते ना पब्लिक आई में एक किस्म से आना। तो कल्याण जी आनंद जी हमारे फैमिली फ्रेंड थे और उनका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, कल्याण जी आनंद जी नाइट, और इतना बड़ा ये प्रोग्राम हुआ था कि रंग भवन में ये प्रोग्राम हुआ था, तो मेट्रो तक, कहते हैं ना गाड़ियों की, लोगों की उस जमाने में क्यू थी। उस प्रोग्राम में मुझे मुकेश जी के साथ गाने का मौका मिल गया।
1: अच्छा,
2: और लता जी भी वहां थी और उन्होंने ये कार्यक्रम सुना और बाद में उन्होंने कहा कि सेवा सदन करके उनकी जो स्कूल थी उनके लिए उन्होंने मुझे ये प्रोग्राम में इनवाइट किया। एंड आई वाज एन आर्डेंट फैन ऑफ लता मंगेशकर। मैं दीदी को इतना चाहती थी कि जब भी मैं आती थी तो उनको मिलने जाती थी। और एक बार ऐसे ही संडे में उनके घर चली गई, तो वो तो जा रही थी कोल्हापुर और कल्याण जी भी आ गए डेट लेने के लिए, और तो उन्होंने कहा कमल जी को तो सुना है मैंने, इससे गवा लो, ये ड्यूएट गाना है। आप यकीन माने, वहां से मैं कल्याण जी भाई के म्यूजिक हॉल पे गई और वहां आनंद जी भाई ने मस्ती मजाक में मुझे एक गाना सिखा दिया। दूसरे दिन पता नहीं कैसे रिकॉर्डिंग भी हो गई, रिकॉर्ड भी हो गया, फिल्म थी ओ तेरा क्या कहना, और गाने के बोल थे दिल लेके जाते हो कहां।
1: वाह वाह वाह, भाई ऐसा
2: कहां
1: है,
2: कहां से कहां ये बात, देखिए
1: आपने जो गाना गाया है दिल लेके जाते हो कहां। लेकिन ये एक चीज है कि जब जब इस गाने को हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये गाना वाकई दिल लेके कहीं जा रहा है, तो क्यों ना हम ये गाना।
2: ये तो आप सब लोगों का प्यार है, लेकिन मुझे भी उस वक्त पता नहीं

0: कि ये गाना इतना पॉपुलर होगा और यहाँ से एक कसम से फिल्म यात्रा शुरू हुई।
1: ठीक है, हम आगे बातचीत का सिलसिला बढ़ाएंगे, लेकिन ये जो गाना है आपका जो बहुत ही पॉपुलर हुआ और आज भी सदाबहार है, इसके जरिए हम क्यों ना एक बार फिर से अपने सुनने वालों के दिलों को छुएं और उन पर दस्तक दें।
0: सुनाइए।
2: दिल लेके जाते हो कहां, हम तो खड़े हैं यहाँ।

0: तो कमल बारोट जी, इस तरह से आपके पार्श्व गायन की शुरुआत हुई
1: जी।
0: लेकिन चूंकि वो पहला गाना था आपका और बड़े संयोग से और अचानक ही आपको वो गाना मिल गया था, तो पहला गाना और पहली सफलता हर आदमी की जिंदगी में बहुत अहम होती है। कैसा आप महसूस कर रही थी और आपको आपके जो सहयोगी कलाकार थे, संगीतकार थे, उन सबका सहयोग कैसा मिला?
1: देखिए, उस जमाने की बात मैं आपको बताऊं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ये जो सिंगर्स थे, म्यूजिक डायरेक्टर्स और सिंगर्स, ऐसा लगता था जैसे एक बड़ी हैप्पी फैमिली है
0: जी।
1: मैं आप बताऊं, मेरा दूसरा गाना लता जी के साथ ही हुआ और म्यूजिक डायरेक्टर वही थे, कल्याण जी आनंद जी। तो जब रिकॉर्डिंग के दिन मैं गई वहां, तो जाहिर है कि मैं बहुत ही नर्वस थी, हिंदुस्तान की इतनी बड़ी गायिका के साथ उसी
0: लेवल
1: पे बैठ के गाना, तो वो देख समझ गई। वैसे सहेली दीदी तो थी, सहेली भी थी, तो कहने लगी, देखो कमल, जब भी आज इतने सालों के बाद माइक्रोफोन फेस करती हूँ तो मुझे लगता है जैसे मेरा ये आज इम्तिहान का दिन है, और एवरी टाइम मैं गाना गाती हूँ तो वो एक इम्तिहान ही लगता है। तो सबके लिए एक ही बात, उन्होंने मेरा माइंड इतना एटीज कर दिया कि वो गाना भी ऐसे हो गया, अकेली मोहे छोड़ना जाना बराबर की लाइनें थी, और म्यूजिक भी, म्यूजिक के हिसाब से भी बहुत अच्छा रहा, पॉपुलरिटी के हिसाब से भी बहुत अच्छा रहा।

0: जहाँ तक हौसला अफजाई की बात है, जैसे अभी आपने बताया कि लता जी ने आपका हौसला बढ़ाया, आपको ढांढस बनाया, इसमें घबराने की कोई बात नहीं
1: जी,
0: है
1: जी।
0: तो ऐसे और भी कलाकार होंगे, गायक गायिकाएं
1: जी। अब आप रफी साहब को ले लो, कितने बड़े महान कलाकार थे, उनके साथ जब गाते थे तो वो भी वही अंदाज से पेश आते थे और माइंड इतना ईज कर लेते थे और माहौल ऐसा बना के रखते थे कि जैसे गाना रिकॉर्ड हो जाता। मैं अपने आप को बड़ी खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैंने तकरीबन सभी बड़े बड़े कलाकारों के साथ गाना गाया है और मेरे साथ बहुत अच्छी तरह ये पेश आए हैं।
0: कमल जी, आप जिस जमाने का जिक्र कर रही हैं
1: जी,
0: कुछ देर के लिए हम भी उसी जमाने की तरफ जाना चाहते हैं। आज सब कुछ बदल चुका है। आप जिस जमाने में पार्श्व गायन के क्षेत्र में सक्रिय थी, उस दौर को आप किस रूप में याद करती हैं?
1: एक ऐसा दौर था कि जो गान बनाने वाले जो म्यूजिक डायरेक्टर थे वो भी जैसे कोई रिसर्च करते हैं ना, वो एक भी डेडिकेटेड म्यूजिक डायरेक्टर्स थे और जो गाने वाले थे वो भी। अभी मेरा एक गाना हुआ था, फिल्म बरसात की रात का गाना था, म्यूजिक डायरेक्टर रोशन थे। आप यकीन माने इतने बड़े वो म्यूजिक डायरेक्टर मुझे रिहर्सल कराने आते थे।
0: अच्छा।
1: हाँ, वो एक दिन नहीं आए, वो मेरे ख्याल में 10-12 दिन आए, क्योंकि कह रहे थे ये राग पर आधारित है गाना और कमल को कुछ छोटी सी ताने भी कहलवानी है, क्योंकि मेरा कोई क्लासिकल म्यूजिक का कोई बैकग्राउंड नहीं था। तो इतनी दिलचस्पी, आप बताइए आज कैसे कौन ले सकता है, समय की का कितना अभाव है कि आज तो गाने मैंने सुना ऐसे बनते हैं कि बहुत
0: इंस्टेंट फूड की तरह
1: बनते हैं। तो वो गानों में बात भी फिर ऐसी आती थी क्योंकि माहौल ही ऐसा था
0: जी, इतना पेशेंस रखते थे लोग और उसमें और बारीक से बारीक काम जितना तराश सके।
1: इंग्लिश में कहते हैं ना, पेस भी थोड़ा स्लो था, जिंदगी का पेस मजा था एक, यू नो, जिंदगी का कहते हैं ना, हर चीज में डिस्कशन वो लेवल पे, रिहर्सल हम लोग पहले रिहर्सल करते थे, फिर रिहर्सल म्यूजिक हॉल में रिहर्सल हुआ करती थी, फिर स्टूडियो में जाते थे, फिर वहाँ म्यूजिशियन के साथ पूरा गाना खड़ा रह के गाना।
0: रिहर्सल फाइनल रिकॉर्डिंग से पहले का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है।
1: जी जी।
0: तो उस जमाने में आप लोग कितने घंटे रिहर्सल किया करते थे, कितने दिन तक? हालांकि आपने थोड़ा सा इसका संकेत दिया है, एक गाने के बारे में बताया है
1: जी। कोई गाने ऐसे होते थे जैसे अभी मैंने बताया वैसे, तो उसमें मैंने सुना है लता दीदी भी रिहर्सल के लिए जाया करती थी, जैसे हमारे एक म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे सज्जाद करके, वो बहुत कड़क माने जाते थे और उनको बड़े बड़े सिंगरों को, मंझे हुए आर्टिस्ट को भी जब रिहर्सल की जरूरत पड़ती थी, तो मैं तो एकदम नई थी, मैं तो चाहती थी कि मुझे रिहर्सल कराएं और रिहर्सल होता था, बाकायदा होता था।
0: तो चलिए इसी बात पर एक, अब हम रिहर्सल रूम से बाहर आते हैं और एक आपकी पसंद का और गाना सुनते हैं। आप बताइए कौन सा गाना सुनवा रहे हैं
1: आप? अभी आप सुनिए फिल्म घराना का गाना सुनिए, दादी अम्मा मान जाओ।

0: दादी अम्मा दादी अम्मा मान जाओ भाई। कमल जी, आपने इस बहाने इस गीत के जरिए दादी अम्मा को मनाने का एक सूत्र जो है वो बहुत सारे लोगों के हाथ में पकड़ा दिया कि अगर दादी माँ रूठी है तो ये
1: कैसे
0: गाना
1: मनाया जाए उनको, है कि नहीं?
0: इस गाने से जुड़ा कोई रोचक वाक्या हो तो बताइए।
1: नहीं, क्या हुआ, जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ तो आपको जैसे मैंने बताया, आशा मेरी बहुत अच्छी सहेली है, रिहर्सल के लिए साथ में गई थी, तो मैंने ऐसे मजेदार एक वाक्या सुनाती हूँ। मैंने कहा देख, मुझे मंडे जाना है, अपना अहमदाबाद में एक कॉलेज का फंक्शन है। तो कहती थे सब कौन चल रहा है, हम लोग ऐसे ही बात करते हैं। तो मैंने कहा मैं अकेली जा रही हूँ, मेरे साथ शायद कोई फैमिली मेंबर चलेगा, मैं चलूँ? मैं कहा तू कैसे चल सकती है, तू तो इतनी मशहूर सिंगर है, तुझे सब पहचानेंगे। कहने लगी नहीं चलते, मजा आएगा, मैं कोकिला बहन बन के आऊंगी। यकीन मानो मेरे साथ आई, उस जब इतनी बड़ी कॉलेज में फंक्शन में मैं गा रही हूँ, मेरी किताबें लेके बैठी हैं। अब बोली आज कैसे, ये माहौल कैसा था, है कि नहीं मजेदार? और किसी ने पहचाना भी नहीं, वो ऐसे चुपचाप बैठी रही, मुझे हंसी भी आए और मुझे बोलती रहती चुप बोलो मत। तो उतने में गुजरात के बड़े मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर अविनाश व्यास आए और उन्होंने देख के बोले आशा तुम यहाँ? फॉरन प्रिंसिपल कॉलेज स्टूडेंट सबको पता लग गया आशा भोसले बैठी है, बड़ा मजा आया। लेकिन ये आजकल मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है।
0: और आपकी ये दोस्ती
1: अभी भी कायम है?
0: अच्छा।
1: जी हाँ।
0: तो अब जब आप आती हैं तो मिलती हैं अपने पुराने दोस्तों से, जो मतलब जो भी आपके?
1: बिल्कुल बिल्कुल, वही हमारे वही ग्रुप है बस जिसके साथ ये यात्रा शुरू की थी, बिल्कुल अभी तक वही फ्रेंडशिप है, बहुत अच्छे लोग हैं। मुश्किल से जिंदगी में अच्छी कहते हैं ना मित्रता मिलती है।
0: कमल जी, मैं समझता हूँ कि मातृभाषा तो आपकी गुजराती
1: है। जी।
0: लेकिन अभी तक जो हम बात कर रहे हैं वो हिंदी गानों की बात हो रही है, तो हिंदी से हटकर भी आपने दूसरी भाषाओं की फिल्मों के लिए गीत गाए?
1: जी, मैंने गुजराती फिल्म के लिए गाना गाया, फिर अपना भोजपुरी, पंजाबी, और गुजराती फिल्म के लिए तो मुझे गुजरात गवर्नमेंट का 2 साल के लिए बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर्स का अवार्ड मिला।
0: अच्छा।
1: जी हाँ। फिल्म बनी थी लीलूड़ी धरती, फर्स्ट टेक्निकलर फिल्म इन गुजराती, जिसका म्यूजिक पुरुषोत्तम उपाध्याय ने दिया था, और उसका एक गाना था मारू नाम पाड़ियू छे संतूरंगीली। अब ये गाना जब बजता था तो कहते हैं लोग कॉइन फेंकते थे, इतना मशहूर हुआ था ये गाना।
0: लेकिन एक चीज है, आपने तो हमारी प्यास जगा दी और अधूरी आपने सिर्फ एक लाइन गुनगुनाई है। अच्छा। हाँ। वैसे बहुत अच्छा लगा,
1: अच्छा लगा
0: और बहुत देखिए ऐसा है कि मीठी और मधुर आवाज वो कहीं भी गूंजे वो गानों में
1: बहुत शुक्रिया
0: हमेशा घूलेगी। कमल जी, ऐसा कहते हैं कि गीतकार के शब्द, संगीतकार की अच्छी धुन, गायक गायिका की आवाज जो है एक गीत को अच्छा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है, आप इस बारे में क्या कहेंगी?
1: नहीं, बिल्कुल सही फरमाया आपने, क्योंकि क्या होता है कि जब सिचुएशन के मुताबिक कवि लिखता है तो म्यूजिक डायरेक्टर उसको सोच समझ के कि भाई ये शब्द कैसे हैं, अगर उसमें पैथोस हैं तो ऐसे रागों का इस्तेमाल होता है जो उन चीजों को उभार के ला सके, और जब फिर वो गाना बन जाता है तो वो कलाकार के सामने रखा जाता है, फीमेल प्लेबैक सिंगर के सामने या मेल प्लेबैक सिंगर के सामने, और वो फिर समझ के इसको अपनी एक ऐसी अनोखी अदा से गाता है कि वो जिस अंदाज से गाना लिखा गया है उसका मकसद पूरा होता है, और ये आना चाहिए तभी आके गाने की सफलता हो सकती है।
0: तो जब आपने गायन के क्षेत्र में कदम रखा, रियाज कितने घंटे किया करते?
1: अच्छा, शुरू में क्या हुआ था कि मेरा कोई रियाज नहीं था, मेरी एक रो आवाज थी, और शायद वो क्वालिटी की क्लियर कट आवाज है, एकदम सीधी सादी आवाज है, उसमें कोई वो बात नहीं थी। तो मुझे कहा गया कि आप अभी उसमें कुछ गुरु से शिक्षा लो, तो मेरे पहले गुरु थे अब्दुल रहमान खान साहब, उनसे थोड़े दिन सीखने के बाद पंडित लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले आए, उन्होंने कण मुरक का एक अभ्यास कराया कि जो आवाज कैसे मुलायम होती है, उसमें लोच कैसे आती है, ये सारी बातें बताई। उसके बाद आए ताज अहमद खान साहब, जो कि गजलों के बड़े माहिर थे, और कल्याण जीवे का कहना ऐसा था वो मेरे रियाज में बहुत दिलचस्पी लेते थे, क्योंकि उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था फिल्म लाइन में, तो वो कहते थे कि हमें क्लासिकल सिंगर पूरा नहीं बनना है तो इस टाइप की सिंगिंग के लिए एक खास रियाज चाहिए, तो कभी कभी मेरे रियाज में आके वो बैठते थे। तो ताज अहमद खान साहब ने मुझे वो बात सिखाई, और इन ये सब, और उसके बाद एक गुरु आए थे, उन्होंने भी बहुत मेहनत की मेरे पे, खान साहब गुलाम मुस्तफा खान साहब, तो इन सब के आशीर्वाद से जो कुछ पाया हमने वो आपके सामने हाजिर है। मेरा एक गाना ऐसे आया था कि मैं शाम को गेस्ट्स को एंटरटेन कर रही थी और एन दत्ता साहब का मैसेंजर आ गया कि भाई आप रात को 7 बजे एक गाना होने वाला है, फिल्म बादशाह का। गाना भी बहुत अच्छा था, आशा जी गाने वाली थी।
0: अच्छा।
1: वो भी जानती हैं, उनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी तो गाना तो उनको दूसरे दिन पिक्चराइज करना था। तो क्या है कि ऐसा है कि जैसे एग्जाम के लिए आप हर वक्त तैयार रहो, हाँ, वो मूड भी बना लो, वो आवाज़ भी अच्छी रखो, वो म्यूजिक डायरेक्टर के गाइडलाइन में आप गाओ, और ये सब बातों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता था। वो गाना हुआ, आज हमको हंसाए ना कोई, आज रोने को जी चाहता है। और ये गाना मैं यहाँ इसका स्पेशल जिक्र करूँगी कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो गई थी तो आपका ये रेडियो स्टेशन जब कुछ मॉर्निंग पीरियड के बाद गाने बजाता है ना, तो इस गाने से उन्होंने शुरुआत की थी।
0: अब मैं एक सवाल, हालांकि पहले सोचा कि पूछूं ना पूछूं आपसे, लेकिन लग रहा कि पूछ ही लेना चाहिए। वो ये कि एक गाने की रिकॉर्डिंग के बाद, एक गाने के लिए आपको, मतलब कलाकार को कितने पैसे मिल जाया करते थे?
1: मुझे 300 रुपये मिलते थे। उस जमाने में जब लता जी को 500 या 600 मिलते थे तो हमको आधे मिलते थे और बड़ी खुशी से हम ले लेते थे। और कभी कभी तो ऐसा भी इंसिडेंट हुआ है, अब ये आपको ताज्जुब होगा कि गाना हो गया, एक मेरा और आशा का ड्यूट था और मैंने ड्यूट्स ज्यादा गाए हैं, तो हम लोग बाहर आ गए, पैसे वैसे कुछ नहीं लिए, तो बेचारे वो प्रोड्यूसर भागे भागे आए, दोनों के हाथ में एक एक लिफाफा दे दिया और कहा कि कुछ नहीं है आपका, बस कहते ना पेट्रोल मनी है ना, हम उससे हमें कोई खेद होता था ना खुशी इतनी कि भाई हमको क्यों कम पैसे दिए गए। आई थिंक पैसों का इतना उस जमाने में नहीं, अहमियत इतनी नहीं थी बनिस्पत के गाना अच्छा मिले।
0: ये एक जो सेटिस्फेक्शन, जो क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन की जिसकी हम बात करें, मैं समझता हूँ कि हर कलाकार में, आप ही क्या, सभी के मन में इस किस्म की चीज
1: होती है।
0: तो आपने अंदाजन कितने गीत गाए होंगे?
1: मैंने तकरीबन 300 फिल्मों में गाने गए हैं।
0: अच्छा
1: जी।
0: और मेजर ब्रेक जिस फिल्म के हिसाब से आपको मिला वो कौन सी थी?
1: सबसे पहले तो मेरे ख्याल में मेरा पारसमणि का हंसता हुआ नूरानी चेहरा बड़ा, कहते ना, टॉप पे रहा काफी दिनों तक। और यही नहीं, जहां भी मैं गई मुझे इस गाने से लोगों ने बड़ा पहचाना। जैसे लंदन गई मैं, हॉलैंड गई, स्टैफ्रिका गई मैं, जिम्बाब्वे गई, तो कहते थे आपका ये गाना तो रेडियो स्टेशन से हमेशा बजता है।
0: और चूंकि आपने कहा है कि आपने डुएट बहुत ज्यादा गाए हैं, ये गाना भी बहुत पॉपुलर हुआ है और रेडियो से भी बजता रहा है, तो आज एक बार फिर से क्यों ना रेडियो से
1: जरूर सुनाइए।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब, उन्होंने भी बहुत लंबी पारी खेली है और आज भी उनकी पारी चल रही है। उनके साथ आपने कितनी फिल्में अंदाजन की होंगी?
1: उनके साथ भी मैंने काफी गाने गाए हैं और पारसमणि का गाना है, उसके बारे में ये कहूँ कि ये फिल्म भी म्यूजिक की वजह से इतनी सुपर हिट रही कि लक्ष्मी भाई ने अपने बंगलों का नाम भी पारसमणि रखा है।
0: तो देखिए, उस जमाने का तो ये था कि टीवी उतना पॉपुलर हुआ नहीं था, लोग फिल्मों से जब फिल्में देखते थे तब गाने देख लिया करते थे और सुन लिया
1: बाद
0: करते
1: में रेडियो
0: थे,
1: पे सुनते थे,
0: बाद में रेडियो पे सुना करते थे। तो वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आप क्या कहेंगे, फिल्म म्यूजिक को पॉपुलर करने में, लोकप्रिय बनाने में रेडियो का कितना हाथ रहा?
1: बहुत बड़ा हाथ, मैं कहती हूँ बहुत बड़ा हाथ। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं इतनी खुशकिस्मत थी कि रेडियो के जरिए मुझे लोगों ने, मुझे एक इंस्टेंट पहचान मिल गई। कैसे? जब मैंने ये आपको शुरू में जिक्र किया कि मैं साइगल मेमोरियल कॉन्टेस्ट के द्वारा आई, तो एक प्रोग्राम हुआ करता था फुलवारी करके, अपने पड़ोसी देश का रेडियो था वो, और उस प्रोग्राम में मुझे सुधा मल्होत्रा को और महेंद्र कपूर को, बाल गोविंद श्रीवास्तव जी वो किया करते थे प्रोग्राम, और उसमें हमें बुला के उन्होंने काफ़ी गवाया और हमारा नाम, कहते हैं ना, रेडियो के जरिए बहुत ही मशहूर हो गया। फिल्मों का तो प्रवेश बाद में हुआ, बट पहले रेडियो ने हमें ये पॉपुलैरिटी दी। हाँ, तो रेडियो तो हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखता है।
0: आप वाकई गायिका बनना चाहती थी या कुछ और?
1: एक्सीडेंटली हो गई। नहीं, गाने का शौक था, लेकिन मैंने पहले जैसे बताया कि अगर मैं गायिका बनना चाहती तो मैं पूरी तैयारी करके आती, लेकिन मैंने ना तो मेरे पास कोई क्लासिकल तालीम थी, कुछ ऐसा नहीं था। और जब छोटे होते हैं तो इंसान के ड्रीम्स होते हैं, डॉक्टर बनेंगे, लॉयर्स बनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मेरी जिंदगी में शायद गायिका बनना था और हिंदुस्तान के लोगों ने बहुत प्यार दिया। मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि मैं बन गई और बहुत ढेर सारा प्यार मिला।
0: पछतावा तो नहीं होता?
1: बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं।
0: और अगर दोबारा आपको जन्म लेने का मौका मिल जाए, क्या बनना चाहेंगे आप?
1: अब तो मैं पूरी तरह से कहूंगी कि मैं पार्श्व गायिका या गायिका बनूंगी।
0: अच्छा, आज जबकि सक्रिय पार्श्व गायन से, प्लेबैक सिंगिंग से आप करीब करीब संन्यास ले चुकी हैं
1: जी,
0: तो मैं ये जानना चाहूंगा कि संगीत से अब किस रूप में आप जुड़ी हैं, क्या कर रही हैं इन दिनों?
1: जी, मैं बैठ तो नहीं सकती, जरूर मुझे स्टेज से बड़ा लगाव है। मेरी जिंदगी की शुरुआत स्टेज से हुई, फिर अपना रेडियो आया, फिर फिल्में आई। मेरी एक कंपनी है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, और उसके तहत मैंने मराठी सीरियल्स बनाई हैं। पहले मैंने लाइफ मेंबर बनाई, चिरंजीव बनाई, और उसके बाद हद पार, और उसमें सब में मैंने थॉट प्रोवोकिंग सब्जेक्ट्स लिए हैं और सबको, तीसरी वाली को तो यहाँ के गवर्नमेंट ने बेस्ट श्रेष्ठ सीरियल का अवार्ड दिया है, और आजकल मैं बना रही हूँ नई जावाई शोध।
0: तो कैसा काम चल रहा है ये?
1: अच्छा चल रहा है, अब भी मैंने पायलट सबमिट किया है और अच्छी कहानी है।
0: लेकिन ये संगीत का मामला एकदम अलग है और ये एकदम अलग, इस फील्ड में मजा रहा
1: है? हाँ, आपको बताऊँ, मेरा जो भाई है ना, वो डायरेक्टर है, चंद्रा बारो, जिन्होंने डॉन बनाई थी, और वो आजकल जब भी मैं बाहर से आती हूँ तो कहता है कि दीदी आप अपने पुराने गानों का आजकल कुछ रीमिक्स ऐसा कुछ करते हैं, अभी तक मैंने उस पर बड़ा ध्यान नहीं दिया है, कि एक गाना मेरा HMV का बहुत ही मशहूर हुआ था, हम तुम्हें तो कभी ना भूलेंगे, और इसकी भी एक मजेदार कहानी है। जब ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था तो किशोर देसाई ने इसको स्वरबद्ध किया है, हसरत जयपुरी ने लिखा है, और इस गाने में आजकल जो मशहूर जो संतूर बजाते हैं ना, शिव कुमार शर्मा, वो नए नए आए थे कश्मीर से ये इंस्ट्रूमेंट लेके, तो इन्होंने संतूर बजाया है, राम नारायण जी ने सरंगी बजाई है, और मेरी रिकॉर्डिंग के टाइम पे श्री रामचंद्र जी भी आए थे, और ये गाना अभी लोगों ने बहुत पसंद किया। सुनिए।

0: कमल बारोड़ जी, पूरी दुनिया में फिल्में बनती हैं
1: जी,
0: आप तो पूरी दुनिया घूम चुकी
1: जी
0: हैं। और फिल्मों में गीत संगीत एक बहुत ही अहम पक्ष होता है, लेकिन हमारी भारतीय फिल्में जो हैं वो जरा अलग हटकर के हैं, उनकी क्या खासियत है?
1: देखिए, हमारा जो देश है ना, मैं ऐसे देखती हूँ कि बहुत रिच है कल्चर में, हेरिटेज में। फोकलोर हमारा ले लो, हमारी संस्कृति ले लो, हमारी भाषाएं ले लो अलग अलग प्रांत की। और आप अगर संगीत देखो डिफरेंट डिफरेंट जगह का, गुजरात का ले लो, साउथ का ले लो आप, नॉर्थ, इवन कश्मीरी म्यूजिक में एक बात है हर जगह की। तो मैं समझती हूँ हमारा संगीत बहुत रिच है, और इसी वजह से मैं जहाँ भी जाती हूँ हमारा संगीत सब जगह सुना जाता है। कुछ तो कशिश है उसमें। मेरा एक ऐसा एक इंसिडेंट आया लाइफ में कि मैं 60s में, मैंने जैसे कहते हैं ना गोपी कृष्णा और सितारा दीदी को प्रेजेंट किया अफ्रीका में, 70s में मैं पाकिस्तान जाके मेहदी साहब को यहाँ ले आई। और उस जमाने में इतना हंगामा बॉम्बे में हुआ, तो जो भी अभी जानते हैं कि एक ऐसा दौर आया था कि सब गजल सुनते थे और मेहदी साहब के दीवाने थे। पहला शो हमने लता जी के हाथ से ओपन कराया था, दूसरा शो हमने राज कपूर साहब और नौशाद साहब के हाथ से कराया था। और मैं ये कोई कहना नहीं चाहूंगी, लेकिन उसके बाद हिंदुस्तान में ऐसा गजलों का एक दौर शुरू हुआ कि बहुत सारे नाम उभर आए और अभी तक वो दौर चला।
0: कम से कम एक अच्छी शुरुआत जो भी करता है और उसका कोई अनुसरण करता है तो ये तो
1: अच्छी बात है ना। और मुझे, मैं इतनी खुशकिस्मत रही कि इस दौरान जब मैं लाहौर गई तो वहां के ये मायने मेरे चार गाने किए, और मुझे मशहूर शायर का कलाम गाने का मौका मिला, जैसे फैज अहमद फैज, नदीम कासमी, अली रजा और अहमद फराज। यहाँ मैं चाहूंगी कि ये मेरे पति देव का भी बड़ा पसंदीदा गाना है, आप जरूर सुनवाइए। फैज अहमद फैज की ये रचना और बोल है, आज यूं मौज दर मौज गम थम गया।

0: कविंद बारोट जी, आपने बहुत सारे गीतकारों की रचनाएं गाई हैं, लेकिन किस गीतकार से आप सबसे ज्यादा प्रभावित हुई?
1: इंदिवर जी से। इंदिवर जी बहुत ही अच्छा लिखते थे और फिल्मों के लिए तो लिखते ही थे, लेकिन जब हम ऐसे प्राइवेट महफिल में बैठते थे या कहीं कहीं डिनर में मिलते थे तो हम इंदिवर जी को कहते थे, आप फिल्मी कविताएं सब छोड़ो, ये गाने छोड़ो, आप अपनी जो खास चीजें आपने लिखी जो छुपा के रखी हैं वो कविराज निकालिए और हमें सुनाइए। और वो आप तज्जुब करेंगे, ऐसी ऐसी रचनाएं हमें सुनाते थे कि हमारी तो शाम बन जाती थी। बहुत अच्छा लिखते थे और बहुत पढ़ते थे, उनके पास इतनी बड़ी लाइब्रेरी है और उसमें इतनी सारी किताबें रखी हैं, तो फिल्मी गीत तो बहुत सहजता से अच्छे बोल लाके वो जो कहना सिचुएशन कहना चाहती थी वो कह पाते थे, लेकिन उनके प्राइवेट कलेक्शन में भी उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी हैं।
0: मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या खाली वक्त में, भाई संगीत का तो आनंद आदमी कभी भी ले सकता है, खाली वक्त में जब आपको मौका मिलता है तब आप किस तरह का संगीत सुनना पसंद करती हैं?
1: मुझे थोड़ा क्लासिकल बेस वाला संगीत हमेशा पसंद है और इसीलिए मैं गजलों को ज्यादा सुनती हूँ। अच्छा, गीतनुमा गजलें लाइट सुनने के लिए ठीक रहती हैं, लेकिन जिसको गजल कहा जाए उसमें जब तक कुछ मुश्किलें थोड़ी बातें ऐसी ना हो, बोलों की भी सुंदरता हो, रागों का भी उसमें जो ढलना प्रॉपर हो, तो वो मैं घंटों सुन सकती हूँ, वो मुझे बहुत आनंद देता है।
0: ये बात तो सही है कि अच्छा संगीत इंसान घंटों सुन सकता है और तृप्ति नहीं होती, और इसीलिए

0: कमल बारूड जी, आपने बहुत सारे संगीतकारों के निर्देशन में गीत गाए हैं, तो कोई रोचक संस्मरण आपको याद आता है?
1: कभी कभी हम 3-4 गाने भी दिन में रिकॉर्ड करते थे। मेरी भी जिंदगी में ऐसा हुआ है कि मैं भी इतनी, मतलब लोग कहते हैं हमने 7 गाने गाए, 10 गाने गाए, लेकिन मैंने एक बार 4 गाने गाए थे, तो 2 गाने एक तरफ था, फिर जब शाम को आके 2 गाने यहाँ किए, और एक गाना ऐसा था जिसमें हम लता जी, रफी साहब थे, मुकेश जी थे, और मैं, फिल्म थी मैं शादी करने चला, अपने म्यूजिक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो गाने का माहौल इतना सुंदर हुआ था और इतने एक ही साथ सब सिंगर्स के साथ, मैं कभी भूल नहीं सकती वो। और मुकेश जी का तो ऐसा था, मुझे बहुत छेड़ते थे और मुझे कहते थे कि, अभी पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहते थे कि हमारी इंडस्ट्री में कम खूबसूरत सिंगर्स हैं, उसमें से कमल जी है। मेरा चेहरा लाल हो जाता था और हमेशा छेड़ते रहते। बहुत अच्छे इंसान थे, जितने अच्छे गायक थे उतने ही अच्छे वो इंसान थे।
0: शुरू में आपने जिक्र किया स्टेज का
1: जी,
0: के आपने बहुत सारे आर्टिस्ट, हालांकि बहुत नामी ग्रामी आर्टिस्ट हैं, लेकिन स्टेज पर उनको इंट्रोड्यूस करने की परंपरा भी आपने शुरू की
1: जी।
0: तो ये सिलसिला अंदाजन कितने सालों से चल रहा है और क्या अभी भी आप?
1: 30-35 साल से चल रहा है भैया। मैं मॉरिशस गई थी तब, मैं कहते ना कि बहुत ही छोटी थी, लेकिन उस जमाने में हमने 60 शोज किए, और आज लोग जो मॉरिशस जाते हैं विजिट करते हैं उनको पता है कि इतना छोटा आईलैंड है, 40 माइल्स लॉन्ग आईलैंड है, और उस जमाने में छोटे छोटे छोटी छोटी जगहों में जाके हमने शो किया था। लेकिन एक था कि नहीं इंडियन और क्लासिकल सब डांस और पाए का शो, ये नहीं कि ऐसे कुछ एंटरटेन करने के लिए शो बना दिया, बाकायदा छह महीने शो की तैयारियां होती थी।
0: अच्छा।
1: आजकल का शो उस जमाने का शो में ये फर्क है। आज क्या होता है कि आर्टिस्ट खुद स्टेज पे आके डांस करते हैं, उस जमाने में हीरोइन नहीं आती थी, तो हमें वो आर्टिस्ट स्टेज के पसंद करके रिहर्सल करा के फिर उसी पॉपुलर गाने की रिहर्सल उनपे करा के वो गाने हम वहाँ पेश करते थे।
0: तो हम ये कह लें कि आप हमारे सांस्कृतिक दूध का काम बरसों से कर रही हैं। तो
1: बड़ी अच्छी बात कही आपने,
0: इंडियन म्यूजिक को, इंडियन आर्ट को,
1: फिल्म से रही है।
0: तो अंदाजन कितने मुल्क आप घूम चुके होंगे, कौन कौन से मेजर जो कंट्रीज हैं?
1: जी मैं इंग्लैंड बहुत सारे शो हमने किए हैं, फिर हम हॉलैंड गए हैं, फिर हम जिम्बाब्वे गए हैं, ईस्ट अफ्रीका में हमने शो किए हैं, मॉरिशस में किए हैं, हिंदुस्तान में सब जगह किए हैं। तो ये तो चालू है, अभी भी बात चल रही है, शायद हम ईस्ट अफ्रीका जाएं कोई अच्छे कलाकार के साथ।
0: तो कैसा रिस्पांस रहता है लोगों का?
1: बहुत अच्छा रहता है, और वो जो स्टेज का जो एक ओवेशन है ना, मैंने आपको बताया कि मैं आशा जी को 78 में आरडी बर्मन और आशा जी को लेके गई थी, और उस जमाने में पहली बार हमने ये प्रयोग किया था मेरे पति देव ने कि हम लाइटिंग के साथ, उस वक्त नया नया था ये सब, आजकल तो कहां बात लेजर और सब पहुंच गई है। हमने इतना अच्छा शो बनाया था कि उस वक्त वहां पे हिंदुस्तान के जो फिल्मी इंडस्ट्री के नामी लोग हैं वो शूटिंग के लिए वहां आए हुए थे, और शो में आए आशा जी का। और यश चोपड़ा ने मेरे पति देव को कहा था कि आपने तो पोएट्री खड़ी कर दी स्टेज पे, आई थिंक इट वॉज अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट। तो ये एक नशा है।

0: स्टेज का एक नशा है अच्छी चीज पेश करने का है, और आरडी भी कह रहे थे कि इट्स हैपनिंग ऑन द स्टेज, यू नो।
1: कमल जी, अभी आपने अपने पति का जिक्र किया, मैं जानना चाह रहा हूँ कि जीवन साथी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है जिंदगी में, और खासतौर से जब वो कलाकार हो तो वो ऐसे ही जीवन साथी चाहता है कि जो उसकी कला को समझे और उसको कदम कदम पर उस तरह का सपोर्ट करे कि वो जिस फील्ड में उसमें और आगे जा सके।
0: मैं बहुत लकी रही हूँ, उन्होंने हमेशा मेरी जो विश है उनको सराहा है, और इसीलिए मैं ज्यादातर 6 महीना यहाँ 6 महीने वहां रहती हूँ। इसका यही कारण है कि वो कहते हैं कि तुम एक कलाकार हो और तुम ज्यादा दिन बाहर नहीं रह सकती हो। उन्होंने 15 साल तो मेरे साथ रहे कि हमने सारी कहते ना हमारी एक्टिविटीज रखी, और अभी भी वो कहते हैं कि जहां तुम्हारी खुशी वहां मेरी खुशी।
1: अब ये मुझे बताइए कि संगीत तो आपका पहला शौक हो गया
0: जी,
1: उसके बाद में दूसरे शौक और कौन कौन से हैं?
0: बहुत सारे हैं, मैं पढ़ती बहुत हूँ। अच्छा। और बचपन में तो मुझे तैरने का बड़ा शौक था, और कुकिंग का इतना शौक नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बना लेती हूँ मैं तो, समझे ना। तो और कुछ बनाने का, कुछ कहते हैं ना क्रिएशन का शौक है, बस स्टेज पे करूं मैं या स्मॉल स्क्रीन पे करूं या खुद गाऊं। अगर आवाज साथ नहीं देती है तो मैं फिर ऐसी प्रवृत्ति में रहती हूं कि जहां मेरे मन को एक कहते हैं ना खाना मिले।
1: तो ये बताइए मुझे, आपने अपनी बातचीत में जिक्र किया बार बार ईस्ट अफ्रीका का
0: जी,
1: तो वहाँ कौन सी जगह जहाँ आपका बचपन बीता है, क्या पैदाइश आपकी वहीं की है?
0: जी, मैं दार इस्लाम की रहने वाली हूँ, और आपको बताऊँ कि दार इस्लाम इतनी खूबसूरत जगह है कि लोग टहिटी बहामास छुट्टियों में जाते हैं ना, हमारी वहाँ का जो हमारा समुंदर है, नीला पानी, सफेद रेत, पाम ट्रीज, एक किस्म से स्वर्ग है वो, इतनी खूबसूरत जगह है।
1: कमल जी, फिल्मों में तो आपने गाया ही, लेकिन पार्श्व गायन से हट करके गैर फिल्मी रचनाएं भी गाई होंगी, उनके बारे में बताइए।
0: बहुत सारे गाने गाए हैं मैंने, पहले तो यहाँ मैं ये जिक्र करूंगी कि मेरा पहला LP म्यूजिक इंडिया ने किया था, वो पुरुषोत्तम उपाध्याय ने बनाया था, और वो LP का नाम था झनकार, उसमें 8 रचनाएं थी। और दूसरा मैंने थोड़े कुछ 8 साल पहले एक एल्बम निकाला था आदाब, जो शेखर सेन ने म्यूजिक दिया था, उसकी एक रचना आप सुनाइए। और बोल है निगाहें नीची किए,

0: कमल जी, जिंदगी में पुरस्कारों का और प्रोत्साहन का बहुत महत्व होता है, वाहवाही का, शाबाशी का, इन सब के अपने अपने महत्व हैं
1: जी।
0: तो आपको पुरस्कार भी मिले होंगे और उपलब्धियां भी रही होंगी जिंदगी में।
1: ढेर सारे मिले हैं, बहुत खुशकिस्मत हूँ। मेरे ख्याल में गलत व्यक्ति को इन्होंने दे दिया है, लेकिन मिला जरूर है मुझे। अच्छा। मैं 5 साल की थी तब मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। जब मैं दारुस्सलाम में थी तो मुझे गोल्ड मेडल मिला था, फिर मैं जब यहाँ आई तो मुझे साइकिल कॉन्टेस्ट में मुझे बड़ी शील्ड मिली, और वो भी एक किस्म का प्राइस था। फिर सुरसिंगार संसद की तरफ से फिल्म तानसेन बनी थी, जिसमें मैंने महेंद्र कपूर के साथ एक क्लासिकल ड्यूएट गाया था, उसके लिए मुझे एक ट्रॉफी मिली थी। और लीलोड़ी धरती के लिए मुझे गुजरात गवर्नमेंट का 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला।
0: अब चूंकि ये प्रोग्राम का आखिरी पड़ाव आ चुका है
1: जी,
0: आप क्या कहना चाहेंगी, कोई बात मन में रह गई हो जो आप हमारे सुनने वालों से कहना चाहती हैं?
1: जी, मैं जरूर ये कहना चाहूंगी कि अवार्ड्स तो लाइफ में मिलते रहते हैं, शायद और भी मिलेंगे आगे, लेकिन सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूंगी कि भाइयों और बहनों, आप मेरे गानों को सुनिए, जैसा पहले आप मुझे प्यार देते थे वैसा ही प्यार अब भी दीजिए, तो शायद कुछ और गाने गाने का मेरा दिल करेगा और आपके सामने मैं वो पेश कर सकूं।
0: क्या बात है, इस वक्त तो आपके किसी गीत में खोने को जी चाहता है।
1: बॉम्बे में जब भी मॉनसून का मौसम होता था, काले काले बादल मुंबई शहर पे आ जाता था, तो आपका रेडियो स्टेशन ये गाना जरूर बजाता था। और वो गाना है गरजत बरसत सावन आयो।

कमल बारोड़ जी, आपने हमारे इस प्रोग्राम के लिए, सेल्यूलॉइड के सितारे के लिए वक्त दिया और इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत और दिलचस्प बातचीत आपसे हुई, इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और यही शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं आपके प्रति कि जो सक्रियता आपने कला के क्षेत्र में अभी भी बनाए रखी है वो इसी तरह से बनी रहे।

0: और इसी तरह से आपको सफलताएं मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपने मुझे आज स्टूडियो में बुलाया, इतना सारा मान दिया, सम्मान दिया, लोगों के सामने फिर से बोलने का मौका दिया, तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद।

सेल्युलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका कमल बारोट से कमल शर्मा की बातचीत। तकनीकी सहयोग था माणिक राव गायकवाड का और विविध भारती के लिए इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड के 110.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज चुके हैं। प्रस्तुत है युवा वर्ग को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युवानी।

नमस्कार, आप सभी युववाणी के प्यारे प्यारे ऊर्जावान युवा साथियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युवाओं की वाणी युववाणी में। और आज के खास कार्यक्रम के साथ हाजिर है आपकी साथी कंचन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी श्रोता स्वस्थ होंगे और हमारे दैनिक कार्यक्रम का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। तो आइए अब बिना समय को गवाए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के कार्यक्रम में क्या क्या खास और अनोखा होने वाला है। दोस्तों, आज के कार्यक्रम की शुरुआत दिन विशेष की चर्चा के साथ होगी और उसके बाद कार्यक्रम में विज्ञान वार्ता में सुनेंगे एक खास वार्ता को। साथ ही विज्ञान चर्चा में जानेंगे कुछ खास और संगीत पहेली में पूछेंगे आपसे सुरमय सवालों को और अंत में समसामयिकी की चर्चा को सुनकर कार्यक्रम से विदा लेंगे। और इस शानदार कार्यक्रम को और बेहद यादगार और खुशनुमा बनाने के लिए हम सुनेंगे ढेर सारे फिल्मी गीतों को। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और शुरुआत में सुनते हैं इस सुंदर से गीत को, फिल्म तेरे इश्क में। इस गीत के गायक कलाकार हैं AR रहमान। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस गीत को।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल

0: AIR at 90.
1: इस सुंदर से गीत के बाद और छोटी सी चर्चा सुनने के बाद हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं आज के दिन विशेष की चर्चा को। आज का दिन क्यों खास है? दोस्तों, आज हम ऐसे दिवस की चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, खेल। खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि अनुशासन, एकता, सहयोग और ईमानदारी का शिक्षा देने का सबसे बड़ा माध्यम है। और खेलों में निष्पक्षता और खेल भावना को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष आज के दिन यानी 19 मई को विश्व फेयर प्ले दिवस मनाया जाता है। ये दिन खिलाड़ियों और युवाओं को ईमानदारी और सम्मान के साथ खेल खेलने की प्रेरणा देता है। आजकल खेलों में प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ गई है। कई बार खिलाड़ी जीतने के लिए गलत तरीकों का उपयोग करते हैं और जिससे नियमों का उल्लंघन और खेल की गरिमा कम होती है। विश्व फेयर प्ले दिवस का उद्देश्य लोगों को यह संदेश देना है कि खेल में ईमानदारी, अनुशासन और सम्मान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इस दिवस की शुरुआत 1 जुलाई 2024 को संयुक्त राष्ट्र के 78वें सत्र में इसे आधिकारिक मान्यता मिली। वर्ल्ड फेयर प्ले डे हमें यह सीख देता है कि खेल का असली उद्देश्य केवल जीतना नहीं बल्कि ईमानदारी, सम्मान और अनुशासन के साथ खेलना है। इसी के साथ आज के दिन विशेष की चर्चा यहीं समाप्त होती है। आशा है कि श्रोताओं को ये चर्चा पसंद आई होगी। तो आइए अब कार्यक्रम में आकाशवाणी के डेली ट्रिविया के आज के खास प्रश्न को जानते हैं कि आज का सवाल क्या है। आकाशवाणी के जनक कौन है? तो साथियों, आज का प्रश्न है यही। आप इस प्रश्न के जवाब को हमारे साथ साझा करें। तो आइए अब कार्यक्रम में विज्ञान वार्ता में आज एक खास वार्ता को सुनते हैं और कुछ नया सीखते हैं। विज्ञान वार्ता में आज का विषय है क्या है स्टेम सेल और इसके वार्ताकार हैं पीयूष राज। तो आइए सुनते हैं इस खास वार्ता को।

क्या है स्टेम सेल तकनीक? स्टेम कोशिका या मूल कोशिका ऐसी कोशिकाएं होती है जिनमें शरीर के किसी भी अंग को कोशिका के रूप में विकसित करने की क्षमता मिलती है। साथ ही ये अन्य किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में बदल सकती है। वैज्ञानिक के अनुसार इन कोशिकाओं को शरीर की किसी भी कोशिका की मरम्मत के लिए प्रयोग किया जा सकता है। अपने मूल सरल रूप में स्टेम सेल ऐसे अविकसित कोशिका हैं जिनमें विकसित कोशिका के रूप में विशिष्टता अर्जित करने की क्षमता होती है। क्लोनन के साथ जैव प्रौद्योगिकी ने एक और क्षेत्र को जन्म दिया जिसका नाम है कोशिका चिकित्सा। इसके अंतर्गत ऐसी कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है जिसमें वृद्धि, विभाजन और विभेदन कर नए ऊतक बनाने की क्षमता हो। सर्वप्रथम रक्त बनाने वाले ऊतकों से इस चिकित्सा का विचार व प्रयोग शुरू हुआ था। अस्थिमज्जा से प्राप्त ये कोशिकाएं आजीवन शरीर में रक्त का उत्पादन करती हैं और कैंसर आदि रोगों में इनका प्रत्यारोपण कर पूरी रक्त प्रणाली को पुनर्संचित किया जा सकता है। ऐसी कोशिकाओं को स्टेम कोशिका कहते हैं। इन कोशिकाओं का स्वस्थ कोशिकाओं को विकसित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। 1960 में कनाडा के वैज्ञानिक अनस्टर ए मुकलॉक और जेम्स इटिल की खोज के बाद स्टेम सेल के प्रयोग को बढ़ावा मिला। स्टेम सेल को वैज्ञानिक प्रयोग के लिए स्नोत के आधार पर भ्रूणीय, वयस्क तथा कार्ड ब्लंड में बांटा जाता है। वयस्क स्टेम सेल का मनुष्य में प्रयोग लगभग 30 वर्षों के लिए किया जा सकता है। अधिकांशतः स्टेम सेल कोशिकाएं भ्रूण से प्राप्त होती है। ये जन्म के समय ही सुरक्षित रखनी होती है। मानव के लिए आवश्यक तत्व विटामिन सी को इलाज के उद्देश्य से स्टेम कोशिका पैदा करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है जिससे क्षतिग्रस्त अंगों को मरम्मत भी की जा सकती है। स्टेम सेल मानव के लिए महत्वपूर्ण कोशिका है। मानव शरीर में सैकड़ों तरह के सेल होते हैं जो हमारे दैनिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये सेल प्रतिदिन हमारे शरीर को चलाने, हृदय की धड़कन, मस्तिष्क के सोचने, किडनी के द्वारा खून साफ करने, त्वचा के पुराने सेल को नए सेलों में बदलने आदि कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं। ये सारे सेल बनाने का कार्य केवल स्टेम सेल ही कर सकते हैं। स्टेम सेल की नए सेलों को प्रदान करते हैं। जब स्टेम सेल विभाजित होते हैं तो नए स्टेम सेल बनते हैं या दूसरे नए सेल बनते हैं। उदाहरण के लिए त्वचा के स्टेम सेल अतिरिक्त त्वचा के स्टेम सेल या त्वचा में विशेष कार्य करने वाले सेलों को बनाते हैं। जब हम बीमार होते हैं या चोट लगती है तब हमारे सेल क्षतिग्रस्त हो जाते हैं या मर जाते हैं, तो ऐसा होने से स्टेम सेल जागरूक हो जाते हैं, क्षतिग्रस्त सेलों को सुधारने और मरे हुए पर नए सेल प्रदान करने के स्टेम सेल ही करते हैं। इस तरह स्टेम सेल हमें स्वस्थ रखते हैं तथा समय की से पूर्व वृद्ध होने से बचाते हैं। स्टेम सेल हमारी सूक्ष्म डॉक्टरों की सेना की तरह है। स्टेम सेल कई तरह के होते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे शरीर में हर अंग में अपना विशेष तरह का स्टेम सेल होता है। उदाहरण के लिए हमारा रक्त हीमेटोपाइटिक नामक रक्त स्टेम सेल से बनता है। स्टेम सेल मानव विकास के प्रारंभ के चरणों में ही भी उपस्थित रहते हैं। वैज्ञानिक इन स्टेम सेल को प्रयोगशालाओं में विकसित करते हैं और इन्हें एम्ब्रायनिक स्टेम सेल कहते हैं। एम्ब्रायनिक स्टेम सेल का प्राकृतिक कार्य शरीर के प्रत्येक अंग को बनाने का है। इस कारण वैज्ञानिक एम्ब्रायनिक स्टेम सेल को लेकर उत्साहित हैं। एम्ब्रायनिक स्टेम सेल कुछ बदलाव के द्वारा लगभग सभी सैकड़ों तरह के विभिन्न सेल बनाने की क्षमता रखते हैं। उदाहरण के लिए रक्त स्टेम सेल केवल रक्त बना सकता है जबकि एम्ब्रायनिक स्टेम सेल रक्त, हड्डी, त्वचा, मस्तिष्क आदि बना सकती है। इसके अलावा एम्ब्रायनिक स्टेम सेल को प्रकृति से
तंतु और अंग बनाने की क्षमता रखते हैं जो कि वयस्क स्टेम सेल द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। इसका मतलब ये होता है कि एम्ब्रायनिक स्टेम सेल में बीमार अंगों को सुधारने की बहुत ज़्यादा प्राकृतिक क्षमता होती है। उर्वरक्त इलाज में बचे हुए भ्रूण से एम्ब्रायनिक सेल प्रयोगशालाओं में बनाए जाते हैं। स्टेम सेल के बीमार या कुछ

0: वृद्ध सेलों की जगह ले जा ले सकने की प्रकृति के कारण वैज्ञानिक कई विभिन्न चिकित्सा परिस्थितियों में स्टेम सेल के प्रयोग की कल्पना करते हैं। स्टेम सेल या स्टेम सेल से बने दूसरे सेल देने से स्टेम सेल की सेल सुधार प्रकृति के कारण स्वस्थ बनाया जा सकता है। जैसे दिल का दौरा पड़ने वाले रोगी को स्टेम सेल प्रत्यारोपण चिकित्सा के रूप में दिए जाने से दिल में बहुत क्षति को सुधारा जा सकता है। हम सभी शरीर में प्राकृतिक रूप से उपस्थित स्टेम सेल में क्षति सुधारने की क्षमता सीमित होती है। अगर किसी व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ता है तो दिल के अपने स्टेम सेल क्षति सुधारने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, परंतु लाखों स्टेम सेल प्रत्यारोपण करने से क्षति सुधारने का कार्य प्रभावशाली तरीके से किया जा सकता है। इसलिए रोगियों को स्टेम सेल प्रत्यारोपण द्वारा शरीर की क्षति सुधार क्षमता को सक्षम बनाया जाता है। स्टेम सेल चिकित्सा को आम बनाने से पहले सुरक्षा सहित अन्य चुनौतियों को संबोधित करना जरूरी है, क्योंकि स्टेम सेल से ट्यूमर बनने और प्रतिरक्षा अस्वीकृति का संकट है। स्टेम सेल से चिकित्सा परिवर्तन की संभावना है, और शायद सिर्फ एक या दो दशकों में हम स्वयं स्टेम सेल प्रत्यारोपण का लाभ उठाएंगे या ऐसे व्यक्तियों को जानेंगे जिन्हें इनका लाभ प्राप्त हुआ है। स्टेम सेल द्वारा मानवों में प्रचलित बीमारियां जैसे कैंसर, हृदय रोग, पार्किंसन, स्ट्रोक, हंटिंसन, रीढ़ की हड्डी का चोट और अन्य कई बीमारियों के उपचार की संभावना है। वर्तमान में ऐसी कुछ स्टेम सेल प्रत्यारोपण चिकित्सा उपलब्ध है जिनको वैज्ञानिक ने सुरक्षित और प्रभावशाली प्रमाणित किया है। बोन मैरो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, परंतु कुछ वैज्ञानिक और डॉक्टर आमतौर पर इन चिकित्साओं को ना कराने की सलाह देते हैं, क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि इस चिकित्सा से लाभ होगा और इनका प्रयोग सुरक्षित है। इन चिकित्साओं से कई लोगों की मृत्यु भी हो गई है, इसलिए इस चिकित्साओं को अंतिम विकल्प के रूप में लाना चाहिए। भारत में कई शोध कार्यक्रम हैं जो कि स्टेम सेल और उनके फ़ायदों के ऊपर किए जा रहे हैं, और भारत के पास काबिलियत है कि यह रेजेनरेटिव मेडिसिन में सबसे आगे निकल सकता है। स्टेम सेल तकनीक महत्वपूर्ण तकनीकों में से एक है, और इस तकनीक की और भी सफल प्रयोग होने पर मानव इस तकनीक का भरपूर प्रयोग करेगा।
1: तो दोस्तों, हम सुन रहे थे विज्ञान वार्ता क्या है स्टेम सेल, और इसके वार्ताकार थे पीयूष कुमार। आशा है कि श्रोताओं को ये वार्ता पसंद आई होगी और आपने इसे बहुत कुछ सीखा होगा और ये जाना होगा कि स्टेम सेल क्या है और ये किस तरह से कार्य करती है। तो आइए अब कार्यक्रम में विज्ञान चर्चा में आज कुछ खास सुनते हैं। विज्ञान चर्चा का विषय है सीन गैस या सिंथेटिक गैस। यह गैस एक बहुमुखी ईंधन और रासायनिक अग्रदूत है जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड से बनी होती है। इसका उत्पादन कोयला, बायोमास या अपशिष्ट जैसे कार्बन समृद्ध पदार्थों की गैसीकरण द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, आपको विज्ञान चर्चा कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। तो आइए अब कार्यक्रम में संगीत पहेली को शुरू करते हैं और जानते हैं पिछले सप्ताह के संगीत पहेली के जवाबों को। तो हमारा पिछले सप्ताह का प्रश्न था, ओ राम जी के गीत के गायक कलाकार कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है कुमार सानू और अनुराधा पोडवाल। आशा है कि श्रोताओं के जवाब सही होंगे। तो आइए अब आज के संगीत पहेली के सवाल को सुनने से पहले इस सुंदर से गीत को सुनते हैं। दोस्तों, गीत के बोल को ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए सुनते हैं सुंदर से गीत को।

तो आज की संगीत पहेली है, ये जो गीत हमने अभी सुना उसके गायक कलाकार कौन है और ये गीत किस फिल्म से लिया गया है। तो दोस्तों अपने जवाब को जरूर भेजें। तो आइए अब कार्यक्रम में समसामयिकी की चर्चा को सुनते हैं और जानते हैं देश विदेश की खास खबरों को। मई 2026 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन देश का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया। जैनिक सिनर ने रोम में आयोजित इटालियन ओपन 2026 का खिताब जीता। गांधीनगर में आयोजित एशियन भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में भारत ने 10 पदक जीते। नेशनल एआई डॉक्टर्स मिशन नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। पीजीए चैंपियनशिप 2026 जीतने वाले भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी आरोन रॉय बने। इसी के साथ समसामयिकी की चर्चा यहीं समाप्त होती है। आशा है कि श्रोताओं को ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। तो आइए अब आकाशवाणी के कुछ रोचक तथ्य को जानें फन फैक्ट्स में। क्या आप जानते हैं कि वर्तमान में आकाशवाणी 551 स्टेशनों का संचालन करता है और 23 भाषाओं और 146 बोलियों में प्रसारण करता है। और हमारे डेली ट्रिविया के प्रश्न का सही जवाब है आकाशवाणी के जनक डॉक्टर एमवी गोपाल स्वामी है। आशा है कि श्रोताओं को यह सारी जानकारी पसंद आई होगी। तो आइए अब कार्यक्रम में इस आखिरी गीत को सुनते हैं फिल्म तुम मिले से। इस गीत के गायक कलाकार

तो श्रोताओं, इसी के साथ आज के कार्यक्रम का सिलसिला यहीं खत्म होता है। आशा है कि श्रोताओं को कार्यक्रम में खूब आनंद आया होगा। तो अब हम मिलते हैं इसी कार्यक्रम में शाम के 5 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपनी रेडियो साथी कंचन को दे विदा। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे युवा वर्ग को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं राहत फतेह अली खान की आवाज़ में फिल्म कलयुग का ये गाना।

श्रोताओं, फिल्म संगीत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और चलिए अब सुनते हैं फिल्म कभी अलविदा ना कहना का ये गाना, जिसे आवाज़ दी है सफाकत अमानत अली ने और उनके साथ हैं कैरालिसा मॉन्टेरियो।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
0: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
2: श्रोताओं, फिल्म संगीत कार्यक्रम में अब सुनिए आदेश श्रीवास्तव और शशि की आवाज़ में फिल्म राजनीति का ये गाना। इस गाने के बोल लिखे हैं समीर ने, संगीत है आदेश श्रीवास्तव का।

श्रोताओं, फिल्म संगीत कार्यक्रम में अब सुनिए रेखा भारद्वाज और जावेद अली की आवाज़ में फिल्म रावण का ये गाना। इस गाने के बोल हैं बुल्ले शाह के और संगीत है ए आर रहमान का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब आइए कार्यक्रम विवरण में जानते हैं हमारी आज की सभा के शेष और हमारी कल की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा और उनका प्रसारण समय। अब से कुछ ही पलों बाद यानी कि शाम 6 बजे से आप सुनेंगे ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम। आज शाम 7:10 से आप सुनेंगे हमारा पर्यावरण कार्यक्रम में पर्यावरण का अलंकार जैव विविधता विषय पर डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद राय से वार्ता। आज शाम 7:52 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी में आप सुनेंगे कलाकार नरेंद्र सिंह को। आज रात 8 बजे से आप सुनेंगे रजनीगंधा फिल्म संगीत कार्यक्रम। रात 9:30 पर आप सुनेंगे नाटक ये हवा आंधी तो नहीं, इसकी लेखिका हैं डॉक्टर आभा कुमारी पूर्वे और इसके प्रस्तुतकर्ता होंगी नवमी शांति हेमरम। आज रात 10 बजे से आप सुनेंगे अंगिका लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम गूंजे बिहार। आज रात 10:30 पर आप सुनेंगे गीत गजलों पर आधारित कार्यक्रम भावगीत। श्रोताओं, अब एक नज़र हमारी कल की सभा की ओर। हमारी कल की सभा आरंभ होगी प्रातः 5:48 पर, जिसमें 5:55 पर आप सुनेंगे खेत खलिहान कार्यक्रम। 6:05 पर आप सुनेंगे चिंतन मनन कार्यक्रम। 6:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कल प्रातः 6:35 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आप सुनेंगे बदलते मौसम में होने वाली बीमारियों से जो सावधानियां रखनी है उन पर डॉक्टर गौर मोहन मजूमदार से भेंट करता होंगे सचिन कुमार। कल प्रातः 6:40 पर रामचरितमानस गान पाठ आप सुनेंगे। उसके बाद 7 बजे से लेकर 7:55 तक आप सुनेंगे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला, जिसमें आप जानेंगे मौसम का मिजाज, रेल सूचना, समाचार पत्रों की सुर्खियां और कल का इतिहास। साथ ही कार्यक्रम रसरंग कार्यक्रम में आप सुनेंगे रंजीत कुमार पाठक से सुगम संगीत। कार्यक्रम में आगे 7:20 पर काव्यांजलि में आप सुनेंगे कृष्ण मोहन सिन्हा से कविता पाठ। 7:30 से आप सुनेंगे फिल्मी गीत। कल दिन के 9:06 से आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने। 9:30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत कार्यक्रम, जहां कलाकार होंगे सुनील कुमार मिश्र। कल दिन के 10 बजे से आप सुनेंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। कल दिन के 10:30 से आप सुनेंगे लोकगीत कार्यक्रम, जहां कलाकार होंगी शर्मिला गुप्ता। 10:45 पर आप सुनेंगे हमारा समन्वित कार्यक्रम आओ साथ चलें हमारे पटना केंद्र से। कल दिन के 11 बजे से आप सुनेंगे फिल्म संगीत नई फिल्मों से। 11:30 पर आप सुनेंगे कंपेयरिंग आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गुलदस्ता। कल दोपहर 12 बजे से आप सुनेंगे नारी लोक कार्यक्रम, जहाँ इसकी प्रस्तुतकर्ता होंगी श्री पार्वती के। कल दोपहर 1 बजे से आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम।

रंग कलाकार होंगे तेज नारायण चौधरी और उनके साथी। दोपहर 1:30 से आप सुनेंगे घर आंगन कार्यक्रम। इसके प्रस्तुतकर्ता होंगे अतुल कुमार प्रियदर्शन। कल दोपहर 2:30 से आप सुनेंगे फिल्म संगीत चित्रपट से। दोपहर बाद 3:00 से आप सुनेंगे रविंद्र संगीत कार्यक्रम, जहां कलाकार होंगी लोपा मुद्रा मित्र। कल शाम 5:00 से आप सुनेंगे युववाणी कार्यक्रम। 5:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम। कल शाम 6:00 से आप सुनेंगे ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम। कल शाम 7:10 पर आप सुनेंगे श्रमिक जगत कार्यक्रम। इसके प्रस्तुतकर्ता होंगे अतुल कुमार प्रियदर्शन। कल शाम 7:52 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम, सुरलहरी कलाकार होंगे शंकर मिश्र नाहर। कल रात 8:00 से आप सुनेंगे रजनीगंधा फिल्म संगीत कार्यक्रम। कल रात 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है, इसका प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कल रात 10:00 से आप सुनेंगे कंपेयरिंग आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक फनकार। कल रात 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत पुरानी फिल्मों से। श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम विवरण यहीं संपन्न हुआ। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, कृपया प्रतीक्षा करें।

ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी।

0: ग्राम जगत कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को रामू का नमस्कार
1: और सभ्य श्रोता भाई बहन का राधा के भी नमस्कार। रामू भाई अपनों का नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार और हार्दिक स्वागत राधा बहन। और सब बताइए क्या हाल समाचार है?
1: आरो हाल चाल तो ठीक छे रामू भाई, लेकिन यही 4-5 दिनों से गर्मी इतना बढ़ाए दिल छे कि एकदम हालत खराब हो गलो छे।
0: ये तो प्रकृति है ना, मौसम है, ये तो परिवर्तनशील होता ही है राधा बहन, है कि नहीं? और सब मौसम का अपना अपना अलग मजा है, है कि नहीं?
1: हाँ, लेकिन अभी जो गर्मी है बढ़ाए ना छे रामू भाई, तो यही समय में अपना सेहत के ध्यान रखे के बहुत जरूरत छे।
0: बिल्कुल,
1: जना कि कम तेल मसाला वाला खाना खाना चाहिए और ताजा खाना खाना चाहिए, और जितना हुआ पारा पानी पीना चाहिए। नींबू पानी, सत्तू, बेल के शरबत, आम पन्ना, हेसनी के सेवन जरूर करना चाहिए। आरो जब भी घरों से निकलो, बहुत जरूरी काम हुआ तभी घरों से निकलना चाहिए। आरो जब भी घरों से निकलो तो एक बोतल पानी और छाता तो जरूर साथ में रख ही लेना चाहिए।
0: निश्चित रूप से ये सब बात जो बताए आप, ये तो इसका पालन करना ही चाहिए। और हमारे जो भी श्रोता भाई बहन हैं वो बहुत जागरूक हैं भी इस मामले में, है कि नहीं? और देखिए, हर मौसम का अपना अपना अलग आनंद है, मजा है, उसका आनंद लेते रहना चाहिए। क्योंकि ठंड में, मान लीजिए कि ठंडा का मौसम में ठंड नहीं पड़ेगा तो क्या होगा?
1: हाँ,
0: राधा बहन,
1: हाँ।
0: अब गर्मी का दिन है तो इसमें तो गर्मी होना ही है। तो जरूरी क्या है कि हम लोग को जो परहेज करना चाहिए उन चीजों को ध्यान में रखना है, है कि नहीं?
1: हाँ।
0: और अब देखिए, ये गर्मी का समय है तो हर ऋतु में, हर मौसम में अलग अलग फसल भी होते हैं, फल भी होती है, सब्जियां भी होती है, है कि नहीं? तो अगर ये गर्मी नहीं होगा, ठंडा नहीं होगा, तो हम लोग इसका भी आनंद कैसे ले पाएंगे, है कि नहीं?
1: अरे रामू भाई, ये छे अभी की देखिए गर्मी तो छेबे करे, लेकिन अपना जैसा कि अभी बच्चा सी के गर्मी छुट्टी हो गलो होते या बूढ़ा बुजुर्ग है तो मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक या योगा कुछ भी, या बच्चा से जना खेल कूद करे छे, तो वो सब भी जरूरी है
0: एकदम।
1: हाँ।
0: और खेलने से तो सिर्फ शरीर ही स्वस्थ नहीं रहता है राधा बहन
1: जी,
0: तन मन सब स्वस्थ रहता है उससे। और एक समय था जब पहले ये हम लोग कहावत सुना करते थे कि लोग कहते थे कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। लेकिन अब वो बात नहीं है।
1: हाँ, अब मतलब खेल में भी इतना अथी छे कि अभी देखो कितना बड़ा नाम करी रहा है, चाहे क्रिकेट में हुआ कि कबड्डी में हुआ या ओलंपिक में हुआ, जे अथी में देखो तो खिलाड़ी सब अपना नाम करी रहा है देश दुनिया में,
0: निश्चित रूप से
1: जी।
0: और सबसे बड़ी बात क्या है कि खेल से आप में अनुशासन भी आता है,
1: हाँ,
0: है कि
1: हाँ,
0: नहीं?
1: हाँ।
0: और इसीलिए हर साल जो है राधा बहन, 19 मई को विश्व खेल निष्पक्ष दिवस मनाया जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य है खेलों और जीवन में ईमानदारी, सम्मान, एकजुटता और समानता के मूल्यों को बढ़ावा देना और भेदभाव को मिटाना, है कि नहीं? और देखिए, वर्ष 2025 से शुरू होकर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 मई को आधिकारिक रूप से विश्व निष्पक्ष खेल दिवस घोषित किया है। और यह निर्णय जो है वो खेलों की भूमिका को वैश्विक स्तर पर मान्यता देता है राधा बहन।
1: हाँ, तो ठीक बोलो रामू भाई, जैसे निष्पक्ष खेल प्रतिभागियों के बीच आपसी सम्मान का बढ़ावा दे छे, जेकरा से हमरा सनी में एक दूसरा के प्रति सम्मान करे छे आरो आदर करे लस सीखेल मिले छे।
0: बिल्कुल,
1: इस समानता का बढ़ावा दे छे, सांस्कृतिक मतभेदों का कम करे छे और युवाओं का ई दिखाए का सशक्त बनावे छे कि खेल केना का सामाजिक परिवर्तन लानते है और मजबूत अधिक एकजुट समुदाय के निर्माण कर पारते। ई दिन के कहना खास छे रामू भाई
0: जी,
1: आय के समय में जीत के लिए लोग कभी कभी गलत तरीका भी अपनाए ले छे।
0: बिल्कुल,
1: यही लिए ई दिन ई याद दिलावे छे कि खेल के मकसद खाली मेडल नहीं छिके, खेल हमरा सनिकर टीम भावना, अनुशासन और एक दूसरा का सम्मान करेला सिखावे छे
0: जी। मूल रूप से अगर हम कहें राधा बहन, तो खेल केवल प्रतिस्पर्धा का माध्यम नहीं है
1: जी,
0: बल्कि एकता, अनुशासन और सम्मान को बढ़ाने का एक प्रभावशाली साधन भी है। और इस दिवस की स्थापना इस गहरी समझ से हुई है कि खेल और शारीरिक गतिविधियां केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं है, बल्कि अलग अलग संस्कृतियों और विचारधाराओं के बीच अनुशासन, धैर्य और आपसी सम्मान को बढ़ावा देना भी है कि नहीं। और देखिए, ये जो दिवस हम लोग मनाते हैं तो उसका कुछ उद्देश्य होता है। तो विश्व निष्पक्ष खेल दिवस का मूल उद्देश्य है कि एक बेहतर विश्व के निर्माण के लिए वैश्विक गतिविधियों को इन मूल्यों से जोड़ना, जैसे ईमानदारी उसमें होना चाहिए सबसे पहले, उसके बाद सम्मान, समान अवसर और खेलों में कानून के पालन का सिद्धांत, है कि नहीं।
1: हाँ, जाने छो रामू भाई, निष्पक्ष खेल के तीन मिसाल छे
0: जी।
1: क्रिकेट, अगर बल्लेबाज जाने छे कि वो आउट छे पर एम्पायर ने नॉट आउट दिलके, तब खुद पवेलियन चल जाए छे,
0: बिल्कुल
1: एकरा वॉक करना कहे छे। आरो स्कूल रेस, कोई बच्चा दौड़ते दौड़ते गिरी जाए छे त बाकी बच्चा रुकी का होकरा उठाना चाहिए,
0: ये
1: असली जीत होते। आरो जाने छो ओलंपिक 2016 जे होलो रहे, न्यूजीलैंड और अमेरिका के धावक टकराए का गिरी गेले, त दोनों ने एक दूसरा का उठेल के आरो साथ में रेस पूरा कर लके। रामू भाई, मेडल नहीं मिलले लेकिन पूरे दुनिया के दिल जीती लेलके।
0: बिल्कुल, ये सबसे जरूरी चीज है राधा बहन। और देखिए, इसी सिद्धांत को अपना कर खेल विकास और मेल मिलाप का माध्यम भी बनते हैं, जो एक अधिक सशक्त, न्यायपूर्ण और समावेशी समाज की ओर अग्रसर करते हैं। और यह दिवस जो है वो खेल और रोजमर्रा की जिंदगी दोनों में नैतिक आचरण, सम्मान और अखंडता को बढ़ावा भी देता है। और यह केवल नियमों के पालन करने से परे है राधा बहन, यह सभी प्रतिभागियों के बीच ईमानदारी, सहयोग और समानता की भावना को भी प्रोत्साहित करता है, है कि नहीं।
1: हाँ, खेल निष्पक्ष दिवस के मेन मतलब कुल मिलाए का ये बात छे रामू भाई, कि खाली मैदान में नहीं होई छे, बल्कि क्लास में नकल नहीं करना, लाइन में धक्का नहीं देना, छोटो सा झूठ नहीं बोलना, ये सब भी फेयर प्ले ही छिके।
0: बिल्कुल
1: जी।
0: और देखिए, इसलिए खेलों के मैदान पर उत्कृष्ट खेल भावना दिखाने वाले व्यक्तियों और संगठनों को अंतर्राष्ट्रीय निष्पक्ष खेल समिति द्वारा प्रत्येक साल जो है वो विश्व निष्पक्ष खेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है राधा बहन, है कि नहीं
1: जी।
0: और देखिए, खेल का मानव जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है कि नहीं। और यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को दुरुस्त रखते हैं, बल्कि मानसिक विकास, अनुशासन और टीम भावना जैसे आवश्यक जीवन कौशल भी सिखाते हैं। इसलिए खेल हम लोगों को जीवन में हार जीत को

0: सहज रूप से स्वीकार करके निरंतर आगे बढ़ना सिखाते हैं, है कि नहीं। चलिए, ये तो अभी हम लोग विश्व खेल निष्पक्ष दिवस पर चर्चा कर रहे थे राधा बहन, और संध्या बेला है, तो एक बढ़िया सा देवी गीत से हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं।
1: देवी के स्तुति करे छे
0: जी।

0: जी
1: हाँ बड़ी बढ़िया, ये देवी गीत सुन लिए रामू भाई।
0: पूरा माहौल एकदम
1: हाँ
0: भक्तिमय हो गया,
1: भक्तिमय
0: है
1: हो
0: कि
1: गया
0: नहीं?
1: जी
0: और देखिए, जब गीत संगीत की बात होती है, भजन की बात होती है, और
1: जी
0: संध्या वेला में अगर हम लोग देवी गीत सुन लेते हैं तो मन भी प्रसन्न हो जाता
1: हाँ
0: है
1: जी
0: कि नहीं? और
1: जी
0: जब चित्त शांत होगा तो काम करने में भी मन लगता है कि नहीं?
1: जी
0: और देखिए, जब हम लोग कविता की बात करते हैं राधा बहन, तो कविता का मतलब है कि किसी भी काव्य को लय, स्पष्टता, उचित हाव भाव और स्वर के उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना है कि
1: जी
0: नहीं?
1: जी
0: और इसका उद्देश्य जो होता है वो केवल शब्दों को पढ़ना ही नहीं है, बल्कि कविता के छिपे हुए भावों और अर्थों को आम लोगों तक पहुंचाना है कि
1: जी
0: नहीं?
1: जी
0: तो आइए हम लोग विस्तार से थोड़ा एक पूर्व प्रसारित स्वरचित कविता सुनते हैं, और इसके कवि हैं नरेश कुमार ठाकुर।
1: ठीक
0: आइए हम
1: है।
0: लोग ध्यानपूर्वक सुने।
2: तो ही धरती के भगवान, तो ही धरती के भगवान, धन्य छो तह किसान, तो ही धरती के भगवान, सीधापन तोरो पहचान, तोरी के घर द्वार अगोरे छो बथान, धन्य छो तो किसान, धन्य छो तो किसान, सीधापन तोरो पहचान, छोड़ी के घर द्वार अगोरे छो बैहार, जय पर तोरा गुमान, धन्य छो तो किसान। महल अटारी से नहीं काम, और महल अटारी से की काम, खेतों में रहे छो सुबह शाम, खेतों के कोना कोना से उपजाई छो तो सोना, दुखों सुखों में भी मुस्कान, देवो के तोहरा वरदान, धन्य छो तो किसान, तो ही धरती के भगवान। ओ अपना ले टुटलो खटिया, अपना ले टुटलो खटिया, चले लूक बहे पछिया, बरसा में भीजी भीजी, गर्मी में सीजी सीजी, बचा छो सबके जान, धन्य छो तुह किसान, तो ही धरती के भगवान।

भगवान धन्य छ तहां किसान। धरती के भगवान कहावै छै किसान, और धरती के भगवान कहावै छै किसान, खेतो के ज्योति कोड़ी, रोड़ा पत्थर तोड़ी फोड़ी, मिट्टी से उपजाई छै सोना, मिट्टी से उपजाई छै सोना, मेहनत रो बंसी पर छेड़े छै तान, धन्य छो तो किसान, धन्य छो तो किसान, सीधा अपन तोरो पहचान, धन्य छो तो किसान। दूसरा छे कि हम मानव छका तो मानवता अपनावो, मानव छका तो मानवता अपनावो, मानवता के पाठ सबका पढ़ावो, मानव छका तो मानवता अपनावो, मानवता के पाठ सबके पढ़ावो, कानला के हसावो, कानला के हसावो, गिरला के उठावो, अपनो प्यार सब पर लुटावो, मानव छका तो मानवता अपनावो, और भूखला के भरपेट खिलाए, भूखला के भरपेट खिलाए, जाति वाति के भेद भुलाए, सबके गला लगावो, जाति पाति के भेद भुलाए, सबके गला लगावो, निरक्षर के भी साक्षर बनाए, निरक्षर के भी साक्षर बनाबो, मानवता के पाठ पढ़ाबो, मानव छका के मानवता अपनाबो, और तिलक दहेज के तिलांजलि दक, तिलक दहेज के तिलांजलि दक, नारी रो सम्मान बढ़ाबो, तिलक दहेज के तिलांजलि दक, नारी रो सम्मान बढ़ावो, काली दुर्गा समझी हुनका, काली दुर्गा समझी हुनका, हुनका ओत मान बढ़ावो, मानव छका त मानवता अपनावो, मानव छका त मानवता अपनावो, मानवता के पाठ सबके पढ़ावो, घरे घर शिक्षा दीप जलावो, घरे घर शिक्षा दीप जलावो, अज्ञानों के अंधकार मिटाए के, बेटा बेटी के भेद हटावो, मानव छका त मानवता अपनावो, मानव छका त मानवता अपनावो। आरु छै

0: और शौचालय चलिए और शौचालय चलिए मिली जुली रहबे करबे नव निर्माण, शौचालय चलिए मिली जुली रहबे करबे नव निर्माण, जाति पाति के भेद मिटा के करबे जग में नाम, और शौचालय चलिए मिली जुली रहबे करबे नव निर्माण, जाति पाति के भेद मिटा के करबे जग में नाम, करबे जग में नाम, करबे देशों के निर्माण, करबे जग में नाम। और एक देहो के दोनों अंग, एक देहो के दोनों अंग दाया पाया हाथ, एक देहो के दोनों अंग दाया बाया हाथ, और दुख सुख मिली जुली का काटबे, दुख सुख मिली जुली का काटबे दिन अरु रात हो, सोचले चलिए मिली जुली रहबे करबे नव निर्माण हो। और डेग डेग पर खतरा बनलो, और डेगो डेगो पर खतरा बनलो, होते केना नव निर्माण हो, हत्यारा के जात न होई छे, हत्यारा के जात न होई छे, तल्लो हरदम हैवान हो, सोचले चलिए मिली जुली के रहबे करबे नव निर्माण हो, सोचले चलिए मिली जुली रहबे करबे नव निर्माण हो। और मातृभूमि के क्रिया खेबे, मातृभूमि के क्रिया खेबे दुश्मन का आगू बढ़ा न देबे, मातृभूमि के क्रिया खेबे दुश्मन का आगू बढ़ा न देबे, देशवा खातिर सबे मरबे हसी हसी के देबे जान हो, सोचले चलिए मिली जुली रहबे करबे नव निर्माण हो।
1: जी, तो अभी हम लोग बहुत अच्छी कविता सुने राधा बहन
2: जी,
1: और इसके लिए कवि नरेश कुमार ठाकुर को बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं
2: जी।
1: कार्यक्रम में आगे और भी बातों की चर्चा हम लोग करेंगे, पहले कुछ जरूरी संदेशों को सुन लेते हैं।
3: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie New Age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the New Age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply. Nexa.
4: Namaskar, ye Akashvani hai. 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
5: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
4: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी, आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: AIR at 90.
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: जी, जरूरी संदेशों के बाद एक बार फिर से स्वागत है सभी श्रोताओं का कार्यक्रम ग्राम जगत में। और अब राधाभन, कुछ मौसम की भी जानकारी दे दीजिए।
4: जी, मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के अनुसार 20 से 24 मई के दौरान जिला में एक दो स्थान पर गरज चमक के साथ आंधी चले के आरो हल्का वर्षा होए के अनुमान छे।
3: जी,
4: अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड आरो न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहे के संभावना छे। सापेक्ष आर्द्रता भोर में 70 से 75% आर दोपहर में 20 से 25% रहे के संभावना छे। पूर्व अनुमान के अवधि में 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से पूर्वा हवा भी चले के संभावना छे। रामोबा
3: जी,
4: तारो अब तो कुछ खेती बाड़ी के भी सलाह दे दो किसान भाई का।
3: बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बहुत जरूरी है
4: जी,
3: है कि नहीं
4: जी।
3: और देखिए, अभी मूंग और उड़द की फसल में रस चूसक कीट माहू, हरा फुदका, सफ़ेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी करना है
4: जी।
3: और बचाव के लिए मेलाथियन 50 EC या डाईमेथोएट 30 EC का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव वर्षा न होने की स्थिति में करना है किसान भाइयों
4: जी।
3: ये ध्यान रखना है कि जब बारिश नहीं हो तब इसका छिड़काव करना है। और तोरी के लिए है कि फल मक्खी लत्तर वाली सब्जियां जैसे नेनुआ, करेला, लौकी और खीरा फसल को क्षति पहुंचाने वाला प्रमुख कीट है। और इस कीट का प्रकोप शुरू होते ही 1 किलोग्राम छोआ, 2 लीटर मैला

0: काठियान 50 ईसी को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिनों के अंतराल पर दो बार छिड़काव वर्षा न होने की स्थिति में करना है। इसके साथ ही आम के बागों में फल मक्की के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप स्थापित करना है और प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमोन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रबंधित किया जा सकता है और इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए और एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखना है और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखना है और ट्रैप की आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में भी नहीं बांधना चाहिए। ट्रैप बाग में अस्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए और ट्रैप बांधने की अवस्था जो है वो फल पकने से 60 दिन से पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। ये तो कुछ किसान भाइयों के लिए विशिष्ट सलाह थे राधा बहन
1: जी।
0: निश्चित रूप से अगर इस तरह से हमारे किसान भाई अगर करते हैं अपना कृषि कार्य जो है तो उनको बहुत अच्छा फायदा भी होगा, है कि नहीं
1: जी।
0: और चलिए अब एक बढ़िया सा हम लोग कृषि गीत सुनते हैं।
1: ठीक जी।

0: आरो तबा अबा कुछ हम
1: हाँ,
0: से
1: खेती
0: बाड़ी सा
1: गृहस्थी की बात हम
0: हाँ
1: लोग कुछ कर लेते
0: कर
1: हैं। देखिए, गर्मी में जो सब्जी उगाई जाती है, जैसे कि मान
0: जी
1: लीजिए भिंडी है, लौकी
0: हाँ
1: है,
0: हाँ
1: करेला है, खीरा है, उन सब में भी कीटों का प्रकोप होता है
0: जी
1: राधाबन,
0: बिल्कुल
1: है कि
0: हाँ
1: नहीं?
0: हाँ
1: और इसमें जैसे है कि रस चूसने वाले कीट, जैसे सफ़ेद मक्खी, हरा तेला, थ्रिप्स
0: जी
1: और चेपा। उसके बाद फल और तना छेदक कीट में फल मक्खी जो फलों के अंदर छेद करके उन्हें सड़ा देती है।
0: जी
1: तो इन कीटों का प्रबंधन करना बहुत ही अधिक जरूरी है अगर हमको इस सब्जी को ठीक है, उसके फसल को अच्छा रखना है।
0: जी
1: तो एक पूर्व प्रसारित वार्ता के माध्यम से हम लोग और विस्तार से जानते हैं कि गर्मा सब्जियों में कीट प्रबंधन कैसे करें। वार्ताकार हैं डॉक्टर तमोहन साहा, आइए इनकी बातों को हम लोग ध्यानपूर्वक सुने।
0: ठीक
2: बिहार राज्य में सब्जी की खेती बड़े पैमाने पर होती है। खाद्यान्न की अपेक्षा सब्जी की खेती से अधिक पैदावार तथा प्रति इकाई लागत के अनुपात

सब्जी की खेती में लत्तर वाली सब्जियों सबसे प्रमुख है। ये गर्मी के मौसम की प्रमुख सब्जी का समूह है। इससे नेनुआ, कद्दू, करेला, भिंडी, झिंगली, परवल, खीरा इत्यादि मुख्य है। अन्य सब्जियों को की तरह गर्मा सब्जियों में भी कीड़े के आक्रमण होता है, इसलिए कद्दू, करेला, खीरा इत्यादि पर लगने वाले कीड़े की पहचान, आक्रमण से उत्पन्न लक्षण तथा इनके नियंत्रण की भी पूरी जानकारी रखना चाहिए। इन हानिकारक कीटों में लाल कद्दू भृंग, धब्बेदार भृंग, फल मक्खी, जैसीट एवं लाल अष्टपदी जिसे रेड स्पाइडर माइट भी कहता है। लाल कद्दू भृंग जिसे रेड पम्पकिन बीटिल भी कहते हैं। इसके वयस्क की शरीर नारंगी लाल रंग के चमकता हुआ होता है। इसकी निचली भाग काला होता है। इसके पिल्लू पीलापन लिए सफ़ेद रंग का होता है। पिल्लू पौधे की जड़ों, जमीन के अंदर की तनों एवं जमीन के छूते हुए फलों में प्रवेश कर उन्हें क्षति पहुंचाता है। प्रोहरो कीट फलों एवं पत्तियों को खाकर छेद कर देता है। इसके आक्रमण मार्च से अक्टूबर के बीच होता है। लाल कद्दू भृंग के नियंत्रण के लिए खेत के आसपास को मेर को साफ सुथरा रहना चाहिए। खेत खरपतवार से मुक्त होना चाहिए। बुआई के समय प्रति लाल फुरादन दाना का 3 g का 1 g प्रति 4 से 6 पत्ती वाले पौधों के मिट्टी में प्रयोग करना चाहिए। निकलने के बाद इस कीट का आक्रमण दिखाई पड़ता है। सुबह में वयस्क और पिल्लुओं को हाथ से चुनकर केरोसिन तेल मिले पानी में डाल के मार देना चाहिए। गौनर या लकड़ी के राख में केरोसिन तेल मिलाकर सुबह में भुरकाव करना चाहिए। इसके लिए 1 kg राख में 20 मिलीलीटर केरोसिन तेल मिला देना चाहिए या क्लोरोपाइरीफॉस 20 cc दवा का 2 ml प्रति लीटर पानी के दर से घोलकर छिड़काव करना चाहिए। अधिक क्षति पहुंचाने की अवस्था में सेभिन 50% घुलनशील चूर्ण का 0.5 g 1 l पानी में घोलकर छिड़काव करें। धब्बेदार भृंग जिसे एपिलकना बीटिल भी कहते हैं, ये भी लत्तर वर्गीय सब्जी का एक महत्वपूर्ण हानिकारक कीट है जो 2 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के भृंग के अगले पंखों का रंग तांबे की तरह होता है और प्रत्येक पंखों पर 6 काले धब्बे होते हैं, जो कि दूसरे तरह के कीट का रंग लाल होता है तथा पंखों पर 7 से 14 काले धब्बे होते हैं। दोनों प्रकार के भृंग के शिशु पीले रंग के होते हैं जिनके शरीर पर काटाए रेखाएं होते हैं। इस कीट के वयस्क भृंग और शिशु दोनों ही पत्तियों को ऊपरी एवं निचली सतहों को खाते हैं। ग्रसित पत्तियों भूरी होकर सूख जाती है। इन कीटों का आक्रमण मार्च अप्रैल के बाद ही प्रारंभ हो जाता है। इस कीट के नियंत्रण हेतु वयस्क एवं शिशु की संख्या कम होने उन्हें पकड़कर मार देना चाहिए। खेतों में जगह जगह पर टी आकार के डंडे गाड़ देना चाहिए ताकि चिड़िया उस पर बैठे तथा शिशु कीट को चुन चुन कर खा जाए। कीट की जन अधिक आक्रमण होते क्विनल फॉस 25 cc दवा का 2 l 1000 l पानी में घोलकर प्रति हेक्टर के दर पर छिड़काव करना चाहिए। फल मक्खी का आक्रमण प्राय सभी लत्तर वर्गीय सब्जी पर होता है। ये घरेलू मक्खी से थोड़ी छोटी होती है। मादा फल मक्खी लाल रंग की चॉकलेटी भूरे होते हैं एवं लत्तर वाली सब्जी को फूलों या फलों के कोमल छिलकों में सफ़ेद अंडे अकेले या 4 से 10 के समूह में देती है। जिस स्थान पर ये अंडा देती है वो स्थान करा हो जाता है तथा हल्का छोटा निशान बना देता है। लगभग 1 सप्ताह में अंडे से धुमेला सफ़ेद रंग के पिल्लू निकलकर फलों के गुद्दे में प्रवेश कर जाते हैं और इन्हें खाकर

0: नष्ट कर देता है, जिससे फसल पीला, कमजोर, छोटा हो जाता है तथा बढ़ना भी रुक जाता है। तत्पश्चात फल सड़कर गिर जाते हैं, जो किसी काम के भी नहीं होते हैं। ये फल मक्खी सालों भर क्रियाशील रहता है, परंतु बरसात के समय इसका आक्रमण अधिक हो जाता है। फल मक्खी के नियंत्रण हेतु खेतों में फेरोमोन ट्रैप, जो नोमेड नामक कंपनी का है, इस ट्रैप में क्यू लियोर करके दवा आता है। उस दवा का 10 ट्रैप प्रति हेक्टर के दर से फूल आने के समय खेतों में प्रयोग करना चाहिए। क्षतिग्रस्त फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर डाल देना चाहिए। अधिक आक्रमण की अवस्था में 1 किलोग्राम चूहा तथा 2 लीटर मेलाथियन 50 cc दवा का 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर देना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर 15 दिन के अंतराल पर दूसरा छिड़काव करना चाहिए। चूँकि कीट अपनी कोशिकीय अवस्था में मिट्टी में बिताती है, अतः फसल काटने के बाद खेत की जुताई कर देना चाहिए, जिसे इस कीट की कोशिकीय अवस्था ही में मर जाए और धूप से सड़ जाए एवं चिड़िया की शिकार भी हो जाए। जैसीट, जिसे लीफ हॉपर भी कहते हैं, ये जैसीट हरे पीले रंग के होते हैं। ये पत्तियों पर हमेशा ही तिरछी चलती है, यही इनके पहचान है। इसके शिशु एवं वयस्क दोनों ही लत्तर वाली सब्जियों को पत्तियों की निचली सतह से रस चूस के उसे पत्तियों को पीला कर देती है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोरोपिट 17.8 SL दवा का 1 ml 3 लीटर पानी में तथा थायोमिथाकजाम 25WG दवा का 1 ग्राम प्रति 3 लीटर पानी में तथा नीम आधारित अचूक, निमार्क, निमगौड, ये इसमें से कोई भी एक दवा का 3 ml प्रति 1 लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल में छिड़काव करना चाहिए। रेड स्पाइडर माइट, जिसे लाल अष्टपदी भी कहा जाता है, शुष्क मौसम तथा बीच बीच में हल्की वर्षा इनके बढ़ोतरी का प्रमुख कारण है। इसके आक्रमण अप्रैल माह में प्रारंभ हो जाता है। इसके शिशु एवं वयस्क पत्तियों को निचली सतहों से रस चूसते हैं, जिसके कारण ऊपरी सतहों पर पीले धब्बे दिखाई देता है। इसके नियंत्रण के लिए शुरू की अवस्था में आक्रांत पत्तियों को तोड़कर जला देना चाहिए। जिन फसलों पर माइट का संख्या कम होता है, केवल पानी के छिड़काव करने ही से नियंत्रण किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही मुलायम शरीर वाले शुष्क आकार के कीट हैं। माइट की संख्या अधिक रहने पर डाइकोफॉल 18.5 cc दवा का 2 ml प्रति लीटर पानी में तथा वेटेबल सल्फर दवा का 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, बिना कीट लगी लत्तर वर्गीय सब्जी पर जहरीली दवा का प्रयोग ना करें, क्योंकि जहर की प्रभाव से किसान भाई मित्र कीट की मर जाता है। दवा कम से कम तथा आवश्यकता पड़ने पर ही प्रयोग करना चाहिए। इन जहरीले दवाओं का स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। दवा की छिड़काव करने से पहले सब्जियों को तोड़ लेना चाहिए तथा 3 से 10 दिन के बाद सब्जी को उपयोग में लाना चाहिए।
1: जी, निश्चित रूप से गर्मा सब्जियों में कीट प्रबंधन, इस विषय पर इतनी अच्छी और ज्ञानवर्धक जानकारी देने के लिए डॉक्टर तमोहन साहा जी को बहुत बहुत धन्यवाद
2: जी।
1: और एक लगे हाथ बढ़िया सा कृषि गीत हम लोग सुनते हैं राधा पान।
2: ठीक जी।

0: जी बहुत ही अच्छा कृषि गीत अभी सुने हम लोग, राधा भवन है कि
1: जी
0: नहीं।
1: जी
0: और देखिए, जब कृषि मौसम अच्छा रहेगा, मौसम की जानकारी होगी, तो
1: जी
0: किसान भाई अच्छा से खेती भी करेंगे,
1: जी
0: और जब खेती करेंगे तो खेत में रेडियो चला भी देते हैं और उसमें कृषि गीत का अपना अलग ही आनंद है कि नहीं। और अब देखिए, पशुपालक भाइयों के लिए भी कुछ सलाह है कि ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम प्रतिदिन दें, और दूध देने वाले पशु को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से देना है, और गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन, और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से देना है, और हरा चारा 20 से 25 किलो प्रति पशु प्रतिदिन जरूर खिलाना है ना।
1: अच्छा
0: और इसके साथ ही साथ आम, लीची और फलदार वृक्षों के लिए खोदे गए जो गड्ढे हैं, उसमें मिट्टी के साथ अनुशंसित मात्रा में खाद, उर्वरक और कीटनाशी दवा जो है देकर ऊपर तक भर देना चाहिए, है ना।
1: जी
0: और जैसा कि हम लोग चर्चा भी किए कि अभी आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप स्थापित करना है, और ट्रैप को कभी भी सूर्य की रोशनी में नहीं रखना है ना।
1: जी
0: तो चलिए, ये तो अभी कुछ किसान भाइयों के लिए जानकारी थी राधा बहन,
1: जी
0: और इसी के साथ श्रोताओं, अब हमारा आज का ग्राम जगत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। सबको रामू का नमस्कार।
1: सभ्य का राधा के भी नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: पहुंचाएं आपका विज्ञापन आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की देश से नक्सलवाद के पूर्ण खात्मे की घोषणा। पूर्व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के संपूर्ण विकास के लिए लॉन्च किया नया वैज्ञानिक प्रारूप। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की पूर्वी क्षेत्रीय कृषि कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता। झारखंड समेत 5 राज्यों के प्रतिनिधि हुए शामिल। किसानों की आय बढ़ाने पर जोर। राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मिले रेलवे जीएम। राज्य में रेल सेवाओं के विस्तार, यात्री सुविधाओं को मजबूत करने और विभिन्न रेल परियोजनाओं को लेकर हुई चर्चा। भाजपा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश दौरों को बताया बेअसर। निवेश और रोजगार पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग। और राज्य में अगले 7 दिनों तक बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं का अलर्ट जारी। कल बोकारो और धनबाद में 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में देश को नक्सल मुक्त घोषित किया। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद से पीड़ित रहे क्षेत्रों के संपूर्ण विकास के लिए नए वैज्ञानिक प्रारूप लॉन्च किया जा रहा है। इसके तहत मुक्त हुए इलाकों में शिक्षा, बैंकिंग और रोजगार से बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा।
2: सुरक्षा बलों के पराक्रम, साहस और उनके बलिदान के कारण 31 मार्च 2026 की जो तिथि तय हुई थी उसके पहले देश से नक्सलवाद का संपूर्ण उन्मूलन हो चुका है। और चौथी तिथि 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है।
1: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुरी में क्षेत्रीय कृषि कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की। इसमें झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार और पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि शामिल हैं। मंत्री ने बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, किसानों की आय बढ़ाना और दाल तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देकर छोटे खेतों को लाभदायक बनाना है।
3: हमारी रीजनल कॉन्फ्रेंस है कृषि की और 5 राज्य उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, कृषि मंत्रीगण, कृषि से संबंधित पूरे वरिष्ठ अधिकारीगण भुवनेश्वर में बैठेंगे। हमारा लक्ष्य है भारत के 140 करोड़ जनता के लिए कभी खाद्यान्न की कमी ना हो, अन्न के भंडार हम भरपूर करें और अन्न उत्पादित करने वाला किसान अन्नदाता नहीं जीवन दाता है, उसको सुखी कर पाए, उसकी आय बढ़ा पाए।
1: रांची के लोक भवन में आज राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार जैन ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान राज्यपाल ने रांची से मुंबई के लिए प्रतिदिन रेल सेवा और

0: दिल्ली के लिए अतिरिक्त ट्रेनें चलाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने रांची लखनऊ रेल सेवा को भी शीघ्र प्रारंभ करने का अनुरोध किया। दूसरी ओर महाप्रबंधक अनिल कुमार जैन और रांची रेल मंडल के DRM करुणानिधि सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी उनके आवासीय कार्यालय में मुलाकात की। इस बैठक में राज्य में यात्री सुविधाओं को सुदृढ़ करने और लंबित रेल परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने पर गंभीर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज रांची में CII झारखंड के प्रतिनिधिमंडल ने भी मुलाकात की। CII स्टेट काउंसिल के अध्यक्ष दिलू पारिख और टाटा स्टील के उपाध्यक्ष डीबी सुंदर रमन ने दावोस आर्थिक मंच 2026 में झारखंड को मिले मजबूत निवेश प्रस्तावों के लिए मुख्यमंत्री को बधाई दी और राज्य के औद्योगिक विकास में सहयोग की इच्छा जताई। इस बीच रांची में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने संवाददाता सम्मेलन कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विदेश यात्राओं पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के स्पेन, स्वीडन और दावोस दौरों को कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन राज्य में एक भी कंपनी ने निवेश नहीं किया है।
1: 1,30,000 करोड़ के निवेश की गारंटी लेकर आए थे माननीय मुख्यमंत्री जी और उनका भारी भरकम प्रतिनिधि मंडल। निवेश में एक वर्ष बीत जाने के बाद भी स्वीडन और स्पेन गए, एक वर्ष बीत गया, डावोस गए, कई महीने बीत गए, एक रुपए का निवेश है जो जमीन पर नहीं दिख रहा है। अब हमें लगता है हेमंत सरकार की टूर एंड ट्रैवल पॉलिसी से यहाँ के युवाओं को ना तो नौकरी मिलने वाली है ना उनका कोई फायदा होने वाला है।
0: उन्होंने कहा कि दावोस यात्रा के बाद झारखंड को AI और डेटा साइंस का हब बनाने का दावा किया गया था, जो जमीन पर विफल रहा। भाजपा ने इन यात्राओं के परिणामों पर श्वेत पत्र की मांग की है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस ने ईंधन की बढ़ती कीमतों, नीट पेपर लीक और चुनाव आयोग के SIR अभियान को लेकर रांची में आज प्रेस वार्ता की। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने चुनाव आयोग पर मतदाताओं का नाम काटने का आरोप लगाया। वहीं विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने देश में जाति आधारित जनगणना कराने की मांग दोहराई।
2: जाति जनगणना केवल काउंटिंग नहीं है, वह समाज का एक्सरे जो बताएगा कि आजादी के 75 साल बाद भी विकास में किस जाति किस समूह के लोग कितनी दूरी तय किया है विकास में, उनकी भागीदारी कितनी रही है सरकारी ऑफिस में या फिर अन्य कामों में, तमाम चीजों की जानकारियां जुटानी चाहिए और फिर उस मापदंड को सामने लाके आगे विकास का मॉडल तय करना चाहिए।
0: सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के पुनर्वास और नसबंदी से जुड़े अपने पुराने आदेश में बदलाव की सभी याचिकाएं खारिज कर दी है। जस्टिस विक्रमनाथ की पीठ ने स्पष्ट किया कि शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और स्टेशनों से आवारा कुत्तों को हटाने के निर्देश जारी रहेंगे। एक रिपोर्ट।
3: न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और राह चलते लोगों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि यह समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुँच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: रांची यातायात पुलिस ने पुलिस स्टूडेंट संवाद श्रृंखला के तहत एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। मनन विद्या मंदिर में आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के 500 से अधिक NCC कैडेट्स ने हिस्सा लिया। पुलिस अधिकारियों ने छात्रों को सड़क सुरक्षा नियमों, हेलमेट और सीट बेल्ट के नियमित उपयोग तथा ट्रैफिक सिग्नल के पालन के प्रति जागरूक किया। जामताड़ा में साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने बताया कि वर्ष 2026 में जनवरी से अब तक 27 मामले दर्ज कर 63 अभियुक्तों को जेल भेजा गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2000

0: 2023 से अब तक कुल 706 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए जा चुके हैं।
1: वर्ष 2026 जनवरी से लेकर अब तक कुल 27 मामले दर्ज किए, जिसमें 63 प्राथमिकी अभियुक्तों को जेल भेजा गया है। और न केवल जेल भेजा गया बल्कि इनके अनुसंधान को लगातार मेरे स्तर पर और हमारी टीम के द्वारा इसका मॉनिटरिंग किया जा रहा है, सो दैट कि इनके बेल वगैरह और इनकी डायरीज इतनी स्ट्रांग हो, प्रोसिक्यूशन इतना मजबूत हो कि इनको सजा हम लोग करा पाए और ये कार्रवाई और तेजी से और मजबूती के साथ आगे जारी रहेगी।
0: और अब मौसम का हाल। राज्य में अगले 7 दिनों तक मौसम बदला रहेगा। पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक 50.3 मिलीमीटर बारिश सिमडेगा के ठेठई टांगर में दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में वज्रपात और 50 से 60 किलोमीटर रफ्तार की हवाओं को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बोकारो धनबाद में ऑरेंज अलर्ट जबकि रांची सहित कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 23 मई को रांची, हजारीबाग और चतरा समेत 7 जिलों में तेज हवा और वज्रपात की चेतावनी है। रांची के साउथ रेलवे कॉलोनी मैदान में 22 मई से विशेष ग्रीष्मकालीन क्रिकेट शिविर का आयोजन होगा। रेलवे यूथ स्पोर्ट्स अकादमी के इस शिविर में बालक बालिकाओं को बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग सिखाई जाएगी। बीसीसीआई के सीनियर वीडियो एनालिस्ट चंद्रदेव सिंह के मार्गदर्शन में खिलाड़ियों का वीडियो एनालिसिस के जरिए प्रशिक्षित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की देश से नक्सलवाद के पूर्ण खात्मे की घोषणा। पूर्व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के संपूर्ण विकास के लिए लॉन्च किया नया वैज्ञानिक प्रारूप। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की पूर्व क्षेत्रीय कृषि कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता। झारखंड समेत 5 राज्यों के प्रतिनिधि हुए शामिल। किसानों की आय बढ़ाने पर जोर। राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मिले रेलवे जीएम। राज्य में रेल सेवाओं के विस्तार, यात्री सुविधाओं को मजबूत करने और विभिन्न रेल परियोजनाओं को लेकर हुई चर्चा। भाजपा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश दौरों को बताया बेअसर। निवेश और रोजगार पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग। और राज्य में अगले 7 दिनों तक बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं का अलर्ट जारी। कल बोकारो और धनबाद में 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने की चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड के 110.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा पर्यावरण कार्यक्रम। कार्यक्रम में सुनिए पर्यावरण का अलंकार जैव विविधता पर डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद राय से ये वार्ता।
3: पर्यावरण इस ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ा स्वनियंत्रित स्थायी तंत्र है जिसका जैव विविधता महत्वपूर्ण भाग होता है। पर्यावरण की दो महत्वपूर्ण पारिस्थितिकीय विधियाँ ऊर्जा बहाव और बायोजियोकेमिकल चक्र इन्हीं के द्वारा संपादित होती है, जिसके कारण यह पदार्थ की तरह नियत बनी रहती है। जियोलॉजिकल टाइम और स्केल में यही जैव विविधता पर्यावरण के भौतिक वातावरण से अंतर्क्रिया कर पृथ्वी के तापक्रम को कम करने में सहायक हुई है और जीवों के लिए वासीय हैबिटेबल बनाया है। अतः जैव विविधता पृथ्वी के तापक्रम को कम करने में सहायक हुआ है, लेकिन विकास की गति और प्रगति जैव विविधता के क्रियाकलापों में भारी बदलाव लाया है। इस पारिस्थितिकीय बदलाव के कारण पृथ्वी के तापक्रम में उत्तरोत्तर वृद्धि के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। इसका मुख्य कारण जैव विविधता का विनाश होना बताया जा रहा है, जिसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेटिक चेंज, ओजोन डिप्लीशन, फोटोकेमिकल स्मॉग आदि जैसी पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। जैव विविधता द्वारा ही ऊर्जा और पदार्थ का बहाव होता रहता है और ब्रह्मांड में सतत क्रियाशीलता बनी रहती है। अतः जैव विविधता के बिना पर्यावरण असंतुलित और असहनीय हो जाएगा। जैव विविधता शब्द सबसे पहले 1982 में ब्रूस ए विलकॉक्स अपने एक लेख जिसका अनुमोदन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN द्वारा हुआ था, इसी में यह उद्धृत किया गया था। इस लेख में जैव विविधता की परिभाषा दिया गया था, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ लाइफ एट ऑल लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स। तदुपरांत 1992 में संयुक्त राष्ट्र के पृथ्वी सम्मेलन में, जिसका आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था, जैव विविधता की परिभाषा पूर्ण रूप से दिया गया। बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग बींग्स एंड द इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस इन विच दे अकर। अतः जैव विविधता जीवों के प्रकार और उनके शारीरिक विभिन्नताओं के साथ पारिस्थितिकीय जटिलताएं जिनमें वो निवास करते हैं को भी सम्मिलित किया गया है। अतः जैव विविधता संपूर्ण पारितंत्र इकोसिस्टम का सूचक होता है, इसलिए इस परिभाषा को यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD द्वारा अनुमोदित किया गया। सरल भाषा में यह सारे जीवों का योग है, जैसे पौधों, जंतुओं, कवक, बैक्टीरिया, वायरसेस तथा अन्य सूक्ष्म जीव किसी वास स्थान में रहते हैं। अतः जैव विविधता का बहुत बड़ा क्षेत्र है जो जीन्स से लेकर इकोसिस्टम तक फैला हुआ है। जीन जैव विविधता का सबसे छोटा स्तर है, जबकि इकोसिस्टम उसका सबसे बड़ा स्तर है। बायोलॉजिकल हायरार्की में जीन्स सबसे निम्न स्तर बनाते हैं, जबकि इकोसिस्टम सबसे बड़ा स्तर बनाते हैं। जैव विविधता की संकल्पना यह दर्शा रहा है कि सभी जीव, पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव आपस में संबंधित और अंतरक्रियाशील हैं और एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं। जैव विविधता में प्लांट डाइवर्सिटी, एनिमल डाइवर्सिटी, फैमिली डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी, पॉपुलेशन डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी और जेनेटिक डाइवर्सिटी हो सकते हैं जो आपस में मिश्रित हैं और इनके बीच कोई अलगाव की सीमा नहीं है। उदाहरण स्वरूप मनुष्य के विकास को लिया जा सकता है। मनुष्य और चिंपांजी दोनों के जीनोम में लगभग 98.4% की समानता होती है, जबकि केवल 1.6% ही जीनोम में अंतर होता है जो मनुष्य के विकास की प्रक्रिया में कुछ 100 साल में अर्जित हुआ है। अतः यह दर्शाता है कि मनुष्य और चिंपांजी दोनों विकास की सीढ़ी में एक दूसरे के बहुत निकट हैं। सभी जैव विविधता आनुवंशिक रूप से एक दूसरे से संबंधित हैं और विकास की प्रक्रिया का एक एक स्तर बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव जीनोम प्रोजेक्ट इंटरनेशनल ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने जानकारी दी है कि संपूर्ण मानव का जीनोम लगभग 99.9% एक समान होता है, जबकि 0.01 ही विभिन्नताएँ, उपजातियाँ, रेसेस और प्रजातियां स्पीसीज में पाई जाती हैं। संपूर्ण मानव के जीनोम में जीनोटाइप यूनिटी 99.9% हो रही है, जबकि इसमें जीनोटाइप डाइवर्सिटी केवल 0.01% होती है। इस विश्लेषण के आधार पर विश्व के सारे मानव मूल रूप से एक ही हैं। जैव विविधता का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, किसी खास क्षेत्र में जीवों के प्रकारों को ही जैव विविधता कहा जाता है। जैव विविधता का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, इस पृथ्वी पर या एक खास क्षेत्र में समान यूनिफॉर्म नहीं होता है। किसी एक क्षेत्र, रीजन या पारितंत्र इकोसिस्टम में जैव विविधता का जमाव बहुत ही अधिक होता है तो दूसरे में यह बिल्कुल ही विरल या अनुपस्थित होता है। वैसा क्षेत्र जहाँ जैव विविधता का जमाव कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है उसे हॉटस्पॉट कहते हैं। उदाहरण स्वरूप नम भूमि पारितंत्र वेटलैंड इकोसिस्टम में जैव विविधता अधिक पाई जाती है, जिसके कारण इसे दुनिया के प्रमुख उत्पादक पारितंत्र, हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड की श्रेणी में रखा गया है। मरुभूमि पारितंत्र डिजर्ट इकोसिस्टम सरल और विरल, सिंपल और रेयर होता है, क्योंकि इसमें जैव विविधता कम पाई जाती है। उच्च तापीय पारितंत्र, हाई टेम्परेचर इकोसिस्टम, जैसे गर्म झरना, थर्मल स्प्रिंग्स में जैव विविधता अनुपस्थित होता है। अतः यह जैव विविधता का वितरण भौतिक, रासायनिक और जैविक कारणों पर निर्भर करता है। भौगोलिक कारक, जियोग्राफिकल फैक्टर भी इसके वितरण को प्रभावित और नियंत्रित करते हैं। हुटेकर नामक वैज्ञानिक ने 1970 में रचनाकार स्वभाव और पारिस्थितिकी के आधार पर जैव विविधता को 3 श्रेणियों में बांटा है। पहला अल्फा बायोडाइवर्सिटी, दूसरा बीटा डाइवर्सिटी, तीसरा गामा डाइवर्सिटी। अल्फा डाइवर्सिटी किसी एक वास स्थान या समुदाय, कम्युनिटी के बीच जीवों के विविधता के अध्ययन को अल्फा डाइवर्सिटी कहते हैं। बीटा डाइवर्सिटी किसी दो वास स्थानों या दो समुदाय, कम्युनिटीज के बीच जीवों के विविधता और उनके तुलनात्मक अध्ययन को बीटा डाइवर्सिटी कहते हैं। गामा डाइवर्सिटी या जीवों के विविधता की बड़ी प्रणाली का वर्णन करता है, जिसमें स्पीसीज के किसी भौगोलिक क्षेत्र में बदलाव होने की क्रिया प्रदर्शित होती है। जीवों के बाह्य और आंतरिक आकार और आवासीय स्थिति, उनके कार्य की फिजियोलॉजी, उनकी रचना विभिन्नताएं जिससे इनका अनुवांशिक संगठन, हेरिडिटी ऑर्गेनाइजेशन भी भिन्न हो जाता है। अतः जैव विविधता अनुवांशिक, प्रजाति और पारिस्थितिकी आधार पर 3 प्रकार की होती हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरा स्पीसी डाइवर्सिटी, तीसरा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी, आनुवंशिक विविधता, आनुवंशिक विविधता जीवों की प्रजातियों के बीच आनुवंशिक पदार्थों की विभिन्नता को प्रदर्शित करती है।

0: डीएनए जीवों का अनुवांशिक पदार्थ होता है। यह एक बृहद अणु है। इसके कई अणु आपस में मिलकर जीन्स का निर्माण करते हैं और एक ही प्रजातियों के विभिन्न समूहों में या एक ही समूह के अलग अलग स्पीसीज के बीच पाए जाने वाले जीन्स में विभिन्नता हो सकती है। सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर उच्च वनस्पतियों जंतुओं तक की समस्त जातियों में अनुवांशिक पदार्थों की बहुत बड़ी मात्रा संग्रह होती है। इन्हीं अनुवांशिक पदार्थों और वातावरण के अंतर क्रिया के कारण ही नई नई प्रजातियां उत्पन्न होती हैं तथा जीव बदलते हुए वातावरण में अनुकूलित होते हैं। अनुवांशिक पदार्थ का आंकड़ा समस्त जैव विविधता में के प्रजातियों का प्राप्त है। आंकड़ा बताता है कि वायरस में 100 जीन्स, माइकोप्लाज्मा में 450 से 700 जीन्स, ई कोलाई नामक जीवाणु में 4000, ड्रोसोफिला बेलोनोगास्टर फल मक्खी में 13000, धान और ओराइजा सेटाइवा में 31000 जीन्स पाए जाते हैं। वातावरण में परिवर्तन होने से ही जीन्स प्रणाली में विभिन्नता उत्पन्न हो जाती है। विभिन्नता जीवों के वातावरण में अनुकूलन के लिए आवश्यक होती है। अनुवांशिक विविधताओं के कारण प्रजातियों के समूह स्पीसीज पॉपुलेशन स्वयं को वातावरण के अनुरूप बना लेती है। अधिक विविधता वाली प्रजातियां स्पीसीज स्वयं को वातावरण के परिस्थितियों के अनुसार अपने को अच्छी तरह व्यवस्थित कर लेती है। किसी प्रजाति में कम विविधता की उपस्थिति उसे एक रूपता होमोजैगोसिटी प्रदान करती है जो विकास इवोल्यूशन के लाभप्रद नहीं होती है। बिना अनुवांशिक विविधता वाली एक जाति यद्यपि अधिक उत्पादक प्रोडक्टिव हो सकती है किंतु जब इस पर किसी रोग पैथोजेंस का आक्रमण होता है तो यह पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। इस प्रकार का उदाहरण समान अनुवांशिकी वाली कृषि फसलों एग्रीकल्चर क्रॉप्स की एक धान्य खेती मोनोकल्चर में देखने को मिलती है। जब किसी एक नाशक कीट इंसेक्ट पेस्ट या कवच जन्य रोग पैथोजेनिक फंजाय का खेत पर आक्रमण होता है तब पूरी फसल को खतरा उत्पन्न हो जाता है। अतः अनुवांशिक विविधताएं प्रकृति में ऐसे रोगों को उत्पन्न करने वाले हानिकारक जीवाणुओं और कवकों से रक्षा करती है। प्रजातीय विविधता स्पीसी डाइवर्सिटी जीवधारियों की प्रजातियों में पाए जाने वाली विविधता को प्रजातीय विविधता कहते हैं। प्रजातीय विविधता कृषि क्षेत्र में प्रजाति स्पीसीज की किस्म वैरायटी का संकेत देती है। प्रजाति स्पीसीज जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी की महत्वपूर्ण इकाई होती हैं। प्रजातीय विविधता में प्रजातियों स्पीसीज की संख्या नंबर्स प्रकार वैरायटी उनकी उपस्थिति और परस्पर संबंध का अध्ययन किया जाता है। अतः प्रजातीय विविधता जीवों के प्रजातियों की संख्या को उनके प्रकार के बीच के परस्पर संबंध को दर्शाती है। प्रजातीय विविधता के दो पहलू हैं। पहला प्रजातीय इवेननेस ऑफ स्पीसीज यह किसी क्षेत्र में प्रजातियों के वितरण की समानता से संबंधित होती है जबकि प्रजाति संबंधताओं स्पीसीज रिचनेस प्रति इकाई क्षेत्र में प्रजातियों की संख्या को बताती है। यदि किसी क्षेत्र में प्रजातीय इवेननेस ऑफ स्पीसीज ज़्यादा पाया जाता है तो इससे यह पता चलता है कि प्रजातियों के बीच समानता और उनका वितरण समान रूप से वातावरण में है। उसी तरह किसी क्षेत्र में कुछ ही प्रजातियों की संख्या अधिक पाई जा रही हो तो ऐसे में प्रजातीय विविधता कम होगी और प्रजातीय संपन्नता स्पीसीज रिचनेस ज़्यादा होगी। इस तरह के उदाहरण वातावरण के सूचक इंडिकेटर होते हैं। यदि किसी वातावरण में प्रजातियों की संख्या कम हो लेकिन उनकी संख्या ज़्यादा मिल रही हो तो ऐसा पारितंत्र इकोसिस्टम अस्थायी सरल और प्रदूषित पॉल्यूटेड हो सकता है। जबकि किसी क्षेत्र या पारितंत्र में प्रजातियों का प्रकार ज़्यादा हो और दूसरी ओर संख्या कम हो तो ऐसे पारितंत्र इकोसिस्टम स्थिर स्टेबल जटिल कम्प्लेक्स और अप्रदूषित नॉन पॉल्यूटेड हो सकते हैं। ऐसा पारितंत्र यह संकेत देता है कि प्रजातियों के बीच आपसी मुकाबला कंपटीशन ज़्यादा है और वातावरण में बने रहने के लिए सभी प्रजातियों को समान अवसर अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सभी प्रजातियों का समान संसाधन रिसोर्स मुहैया कराया जा रहा है। जीवों में अनेक उदाहरण हैं जैसे बाघ पैंथेरा टिग्रिस, शेर पैंथेरा लियो और स्नो लेपर्ड पैंथेरा यूनिसिया समान वंश जीनस पैंथेरा के हैं लेकिन इनकी स्पीसीज अलग अलग हैं। उसी तरह मछली में रेहू लेबियो रोहिता कालबसु लेबियो कालबसु का जीनस लेबियो होता है लेकिन इनकी स्पीसीज अलग अलग होती हैं। उसी तरह पौधों में बैंगन ब्रिंजल सोलेनम मिलोंजिना मकोए सोलेनम नाइग्रम आलू सोलेनम ट्यूबरोसम एक ही वंश जीनस सोलेनम के हैं लेकिन इनकी प्रजातियां स्पीसीज अलग अलग होती हैं। पारितंत्र में प्रत्येक प्रजातियों स्पीसीज की अपनी अपनी उपयोगिता यूटिलिटी होती है। यदि किसी पारितंत्र में किसी एक प्रजाति स्पीसीज की संख्या कम हो जाए या विलुप्त हो जाए तो वैसा पारितंत्र असंतुलित अनबैलेंस्ड हो जाता है। जैसे आजकल पर्यावरण में गिद्धों वल्चर्स और अन्य सर्वभक्षी ओमनिवोर्स की संख्या में कमी आ गई है जिससे वातावरण में प्रदूषण की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। उसी तरह उभयचर एम्फीबिया और सरीसृप रेप्टिलिया की संख्या में कमी के कारण नासिक कीटों इंसेक्ट पेस्ट की संख्या में भारी वृद्धि हो रही है। अतः प्रजातीय विविधता पारितंत्र में संतुलन बैलेंस बनाए रखने में सहायक होते हैं। पारिस्थितिक विविधता, यह जैव विविधता की बड़ी स्तर होती है। यह जीवों के भौगोलिक वितरण ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर निर्भर होता है। किसी क्षेत्र में वास स्थानों हैबिटेट्स और पारितंत्रों इकोसिस्टम की संख्या ही जैव विविधता का मानक पैरामीटर्स बनती है। विभिन्न प्रकार के पारितंत्रों इकोसिस्टम और वास स्थानों हैबिटेट्स जैसे स्थलीय टेरिस्ट्रियल जलीय एक्वेटिक आदि वातावरण में विभिन्नताएँ लाती हैं। जलीय पारितंत्र दो प्रमुख प्रकारों अलवण या मीठे पानी फ्रेश वाटर और मेरीन समुद्री पानी में बंटा होता है। मीठे पानी पारितंत्र फिर दो भागों बहता पानी या लोटिक जल तथा स्थिर पानी या लेंटिक पानी में बंटा हुआ होता है।
1: श्रोताओं, अभी हमारा पर्यावरण कार्यक्रम में आप सुन रहे थे पर्यावरण का अलंकार जैव विविधता पर डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद राय से वार्ता। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे पटना केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। अभी आप सुन रहे थे चौपाल और खेती गृहस्थी, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। कुछ ही देर बाद अब प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: इधर आइए, इधर
1: इधर।
0: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
2: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
2: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222502।

0: हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
1: शुभ वाणी,
0: लाभ वाणी,
1: आकाशवाणी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश भर में आज से सहयोग शिविर की शुरुआत। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सारण जिले से राज्यव्यापी अभियान का किया शुभारंभ। राज्य में भूमि संबंधी मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए बिहार भूमि न्यायाधिकरण के सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। राजद के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के मुद्दे पर पार्टी करेगी आंदोलन। और राज्य में औद्योगिक विकास को देखते हुए नबीनगर एनटीपीसी परियोजना का होगा विस्तार। 800 मेगावाट की 3 इकाइयां लगाई जाएंगी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए आज से पंचायत स्तर पर राज्यव्यापी सहयोग शिविर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्वयं सारण जिले के डुमरी बुजुर्ग पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होकर राज्यव्यापी अभियान का उद्घाटन किया। श्री चौधरी ने कहा कि शिविर में प्राप्त शिकायतों का समाधान अधिकतम 30 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सहयोग शिविर का आयोजन प्रत्येक माह के पहले और तीसरे मंगलवार को किया जाएगा।
1: और ये कार्यक्रम 2 बार महीने में पंचायतों के स्तर शिविर लगेगा और 2 बार पहली मंगलवार और तीसरी मंगलवार को। आपके सहयोग के लिए सरकार जारी है, चाहे वो अंचल का काम हो, शिक्षा विभाग का काम हो, चाहे वो ब्लॉक का हो या थाना का काम हो, जिसमें भी रुकावट है वो 30 दिन में नहीं करेगा, उसके पदाधिकारी को निलंबित करने का काम हमारी सरकार करेगा।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि सहयोग शिविरों में प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की प्रगति की मुख्यमंत्री सचिवालय स्तर से सीधी निगरानी की जाएगी। उन्होंने बताया कि जनता की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 1100 और सहयोग पोर्टल भी क्रियाशील कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने पटना के दानापुर अनुमंडल के सरारी पंचायत में सहयोग शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM समेत अन्य वरीय अधिकारी मौजूद थे। बेगूसराय जिले के प्रभारी मंत्री सह सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने बरौनी प्रखंड अंतर्गत भरत उच्च विद्यालय पिपरा देवस में सहयोग शिविर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर तेघड़ा के विधायक रजनीश कुमार, जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री, पुलिस अधीक्षक मनीष समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। इधर दरभंगा जिले में 24 स्थानों पर सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। जिले के प्रभारी मंत्री सह पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेंद्र ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कटिहार में आयोजित सहयोग शिविर के माध्यम से 2975 शिकायतों का निष्पादन किया गया। जिले के प्रभारी मंत्री सह कला संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने सदर प्रखंड के भवाड़ा पंचायत में सहयोग शिविर का उद्घाटन किया। वहीं अरवल जिले के करपी प्रखंड के परियारी पंचायत में जिले के प्रभारी मंत्री सह पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने शिविर का उद्घाटन किया। अन्य जिलों में भी विभिन्न पंचायतों में शिविर का आयोजन किया गया। सुपौल जिले के प्रभारी सह योजना एवं विकास

0: मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने सदर प्रखंड अंतर्गत पंचायत सरकार भवन में आयोजित सहयोग शिविर में शामिल होकर आम जनों की समस्याओं और शिकायतों को सुनने के लिए शिविर के निष्पादन के लिए पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। औरंगाबाद जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत बसडीहा स्कूल मैदान में प्रभारी मंत्री रमा निषाद ने सहयोग शिविर का उद्घाटन किया। बिहार भूमि न्यायाधिकरण के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 7 कर दी गई है। इसके साथ ही न्यायाधिकरण में 5 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने आज पत्रकारों से बातचीत में बताया कि आम लोगों को शीघ्र न्याय उपलब्ध कराने और भूमि संबंधी मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए यह निर्णय लिया गया है। राजद के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने राज्य सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर खानापूर्ति करने का आरोप लगाया है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री यादव ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं और सरकार केवल बयानबाजी कर रही है। उन्होंने कहा कि राजद महिलाओं के मुद्दे को लेकर सड़क से सदन तक आंदोलन करेगा।
1: लगातार ये सरकार महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करती है, जो सच्चाई है बिहार की। अपराधी जो है हमारी माताओं बहनों पर बेटियों पर कहर बन करके टूटे हैं, इसमें सम्राट चौधरी जी की सरकार पूरी तरीके से फेल होते नजर आ रही है। प्रशासन कहीं नहीं नजर आ रहा है और ये गंभीर समस्या बन गई है बिहार के लिए, और खास तौर पे जो आम बिहारी है वो बहुत चिंता में है।
0: बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने लोहार जाति को फिर से अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल किए जाने के विषय को लेकर बिहार राज्य लोहार समन्वय समिति के प्रतिनिधियों के साथ आज बैठक की। समिति ने विधानसभा अध्यक्ष को इस संबंध में दस्तावेज सौंपते हुए सहयोग का आग्रह किया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से जुड़े इस मामले में संसद के माध्यम से ही पहल संभव है। श्री कुमार ने कहा कि दस्तावेजों के आधार पर केंद्र और राज्य सरकार से पत्राचार किया जाएगा। औरंगाबाद जिले के नबीनगर में स्थित एनटीपीसी की सुपर थर्मल पावर परियोजना का विस्तार किया जाएगा। कंपनी के परियोजना प्रमुख एलके बेहरा ने प्रेस वार्ता में बताया कि राज्य में औद्योगिक विकास को देखते हुए बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता है। इसे पूरा करने के लिए नबीनगर परियोजना के स्टेज 2 के तहत 800 मेगावाट की 3 इकाइयां स्थापित की जा रही हैं।
2: ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का कल्याण में आएगा, बिहार देश का हित में ही आएगा। ये बिजली तो अपन बाहर देश को तो नहीं जा रहा है, हम लोग देश में ही बिजली के लिए हम लोग का तो इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, क्योंकि इकोनॉमी बढ़ेगा तो उसी का पाई किसी न किसी का पे बैक होता है। उसी तरह का हम लोग का जो ये पावर प्लांट होने के कारण जो लोग रोजगार मिल रहा है वो सर्कुलर इकोनॉमी में ही कंट्रीब्यूट कर रहा है।
0: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: कहाँ चलती है, इधर तो आओ।
4: इधर आइए, इधर।
5: इधर?
4: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
6: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
5: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
6: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
5: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
6: शुभ वाणी,
5: लाभ वाणी,
6: आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने विभिन्न कानूनी मंचों पर विचाराधीन मामलों का समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। श्री मांडविया ने नई दिल्ली में पत्र

0: पत्रकारों से बातचीत में कहा कि निधि आपके निकट कार्यक्रम के तहत मामलों की पहचान कर उनके निपटारे की प्रक्रिया शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि ईपीएफओ व्हाट्सएप अपनाने की योजना बना रहा है ताकि संपर्क सुविधा को बढ़ाया जा सके। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ने ई फार्मेसी और ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ कल देश भर में हड़ताल की घोषणा की है। बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट संघ ने भी हड़ताल का समर्थन किया है। संघ के अध्यक्ष प्रसन्न कुमार सिंह ने कहा कि 20 मई को प्रदेश की दवा दुकानें बंद रहेंगी। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन कंपनियां नकली, नशीली और अवैध दवाओं की बिक्री कर रही हैं, जिससे समाज को बड़ा नुकसान हुआ है। दवा विक्रेताओं ने ई फार्मेसी प्लेटफॉर्म पर अंकुश की मांग को लेकर आंदोलन करने का निर्णय लिया है। भारतीय रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबी क्यूल झाझा तीसरी रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि हावड़ा दिल्ली मार्ग पर क्षमता बढ़ाने के लिए 962 करोड़ रुपए की लागत से इस रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना के पूरा हो जाने से इस अति व्यस्त रेलखंड पर यात्रियों और मालगाड़ियों की आवाजाही अधिक सुगम और समयबद्ध हो सकेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि इससे हावड़ा दिल्ली मार्ग पर परिचालन क्षमता बढ़ेगी और क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को मजबूती मिलेगी। रेलवे ने पटना और उड़ीसा के खोरधा रोड जंक्शन के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन की परिचालन अवधि में विस्तार किया है। पटना खोरधा रोड स्पेशल ट्रेन प्रत्येक गुरुवार की सुबह 8:45 पर पटना जंक्शन से खुलेगी और अगले दिन 3:35 पर खोरधा रोड पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन प्रत्येक शुक्रवार को खोरधा रोड से दोपहर 3:15 पर खुलकर अगले दिन सुबह 10:45 पर पटना पहुंचेगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीएलएड संयुक्त परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। समिति के द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 8 जून से 22 जून तक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ये परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी। परीक्षा के लिए सभी प्रमंडलीय मुख्यालयों में केंद्र बनाए जाएंगे। बोर्ड ने कहा है कि अभ्यर्थी 28 मई से प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। समिति की वेबसाइट form.bsab.deled.com से इसे डाउनलोड किया जा सकता है। राज्य के अधिकतर हिस्सों में भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज भभुआ और रोहतास जिले में लू के कारण जनजीवन प्रभावित रहा। पिछले 24 घंटों के दौरान गया जी राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि रोहतास, भभुआ, बक्सर समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में अगले कुछ दिनों तक गर्मी से राहत के आसार नहीं हैं। वहीं चक्रवातीय परिसंचरण का क्षेत्र बनने के कारण राज्य के उत्तरी भागों में मौसम में परिवर्तन की संभावना है। इस दौरान पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, मधुबनी, सुपौल, अररिया समेत राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व भागों में आंधी बारिश हो सकती है।
1: दिनांक 20 मई राज्य के उत्तर पूर्व एवं उत्तर मध्य भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्वी भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर भीषण गर्मी के मद्देनजर कैमूर जिला प्रशासन ने 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को 23 मई तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी नितिन कुमार सिंह ने इस संबंध में आज आदेश जारी किया। तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। राजधानी पटना में अब पेट्रोल का मूल्य 110.02 रुपये प्रति लीटर और डीजल का मूल्य 94.97 रुपये प्रति लीटर हो गया है। सारण पुलिस ने नशा मुक्त सारण अभियान के तहत जिले के विभिन्न भागों में छापेमारी कर भारी मात्रा में देशी विदेशी शराब जब्त की। इस संबंध में 14 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। शिवहर जिले में आयोजित भाजपा के 2 दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान का आज समापन हो गया। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे समापन सत्र में शामिल हुए। सुपौल जिले के बलुआ स्थित पुनर्वास स्कूल में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के तहत मेडिकल जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 6 से 7 वर्ष के बच्चों में संक्रमण की स्थिति के आकलन के लिए TAS1 जांच की गई। सुपौल जिले के वीरपुर में भारत नेपाल सीमा के समीप एसएसबी जवानों ने जांच अभियान के दौरान एक नाबालिग लड़की को मानव तस्करों से मुक्त करा लिया। जांच अभियान के दौरान भारी मात्रा में नेपाली शराब

0: शुभारंभ। राज्य में भूमि संबंधी मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए बिहार भूमि न्यायाधिकरण के सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। राजद के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के मुद्दे पर पार्टी करेगी आंदोलन। और राज्य में औद्योगिक विकास को देखते हुए नबीनगर एनटीपीसी परियोजना का होगा विस्तार, 800 मेगावाट की 3 इकाइयां लगाई जाएंगी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है, प्रस्तुत है अररिया जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता गौतम सिंह सहगल।
5: अररिया जिले में आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए राज्य सरकार के निर्देश पर सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। जिले के 12 पंचायतों में इसका भव्य शुभारंभ जिला पदाधिकारी विनोद तुहन ने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को शिविरों के सफल संचालन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्री तुहन ने कहा कि जन शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निवारण के उद्देश्य से प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को नियमित रूप से इस शिविर का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिविरों में केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी आम लोगों को दी जा रही है, ताकि समाज के अंतिम पायदान तक अधिक से अधिक लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सके। जिले में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य तेजी से किया जा रहा है। यह अभियान 2 मई से शुरू हुआ है, जो आगामी 31 मई तक जारी रहेगा। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में मकान सूचीकरण का कार्य लगातार प्रगति पर है और अब तक लगभग 71.45% कार्य पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि जनगणना के तहत नियुक्त प्रगणनक घर घर जाकर मकानों से संबंधित आवश्यक जानकारियां एकत्र कर रहे हैं। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि जब प्रगणनक उनके घर पहुंचे तो उन्हें सही और पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं, ताकि जनगणना कार्य को सफलतापूर्वक एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न कराया जा सके। इधर जिले में संभावित बाढ़ और सुखाड़ की पूर्व तैयारी को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित परमान सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कार्यों को लेकर विभिन्न विभागों की तैयारी की विस्तृत समीक्षा की गई। जिले के फारबिसगंज रेलवे स्टेशन से अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने अमृतसर न्यू जलपाईगुड़ी अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस एक्सप्रेस के परिचालन से सीमांचल क्षेत्र में रेल विकास को नई गति मिली है।
6: प्रधानमंत्री जी को और रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं कि लगातार हमारे जिले में नई ट्रेनों का सौगात 6 महीना में मिलते रहता है और आने वाला दिन में और भी कई ट्रेनों का सौगात हमारे जिला को मिलने वाला है।
5: अररिया व्यवहार न्यायालय में वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुंजन पांडे और जिलाधिकारी विनोद दुहन ने संयुक्त रूप से लोक अदालत का उद्घाटन किया। इस दौरान ट्रैफिक चालानों के निष्पादन को लेकर भारी भीड़ उमड़ी। लोक अदालत में लगभग 1,227 मामलों का आपसी सहमति के आधार पर ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया, जिनमें 148 ट्रैफिक चालान शामिल हैं। अररिया जिले में बीते दिनों नागरिक सुरक्षा अभियान के तहत ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। निर्धारित कार्यक्रम के तहत जिले के सभी नगर निकाय क्षेत्रों में शाम 7 बजे से 7:15 तक बिजली बंद कर ब्लैकआउट किया गया। इस दौरान चौक चौराहों पर सायरन बजाकर हवाई हमले की प्रारंभिक चेतावनी दी गई। जिसके बाद

0: नागरिकों और संबंधित एजेंसियों ने निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया। जिलेवासियों ने निर्धारित अवधि तक घरों, प्रतिष्ठानों और अन्य संस्थानों की रोशनी बंद रखकर आपातकालीन तैयारी में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई। जिला मुख्यालय स्थित नियोजनालय संयुक्त श्रम भवन परिसर में एक दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन किया गया। इस जॉब कैंप में कई पदों के लिए आवेदन लिए गए। इस दौरान निजी कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की गई। निर्धारित योग्यता रखने वाले जिले के सैकड़ों युवाओं ने जॉब कैंप में भाग लिया। चयनित अभ्यर्थियों को कंपनी की ओर से ऑफर लेटर प्रदान किया गया। जिला पदाधिकारी विनोद दुहन की अध्यक्षता में चमकी बुखार, दिमागी बुखार की रोकथाम और जन जागरूकता को लेकर जिला टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की समीक्षा की गई। इस दौरान सदर अस्पताल में 10 बेड का पीकू वार्ड, अनुमंडलीय अस्पताल फॉरबिसगंज में 5 बेड का वार्ड तथा सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चमकी बुखार, दिमागी बुखार के मरीजों के लिए 2-2 बेड आरक्षित किए गए हैं। जिलाधिकारी ने जीविका और आंगनबाड़ी कर्मियों के माध्यम से चमकी बुखार से बचाव को लेकर जन जागरूकता फैलाने का निर्देश दिए। साथ ही पशुपालन विभाग को बड़े सूअरों को रिहायशी इलाकों में दूर रखने के भी निर्देश दिए। अररिया जिले में वट सावित्री पूजा का पर्व पारंपरिक आस्था के साथ मनाया गया। इस दौरान अखंड सुहाग की कामना को लेकर सुहागिन महिलाओं ने निर्जला व्रत रखा। सुबह से ही शहर के विभिन्न मंदिरों और वट वृक्षों के आसपास बड़ी संख्या में महिलाएं पूजा अर्चना के लिए पहुंची और पारंपरिक रीति रिवाज के साथ पूजा की। महिलाओं ने वट वृक्ष के चारों ओर धागा बांधकर पति की दीर्घायु की कामना की।
1: अभी आप सुन रहे थे अररिया जिले के हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता गौतम सिंह सहगल।

मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्ज और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी और आज के हमारे कलाकार हैं नरेंद्र सिंह। आइए कार्यक्रम में इनसे सुनते हैं कबीर का लिखा ये भजन।

कलाकार थे नरेंद्र सिंह। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है, प्रस्तुत है रजनीगंधा फिल्म संगीत कार्यक्रम। श्रोताओं, कार्यक्रम में आइए, सुनते हैं सबसे पहले फिल्म आ अब लौट चलें से अलका याग्निक की आवाज़ में ये गाना, जिसके बोल लिखे हैं समीर ने, संगीत है नदीम श्रवण का।

0: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply.
1: श्रोताओं, रजनीगंधा कार्यक्रम में आप सुनिए सपना अवस्थी जसपिंदर नरूला और अनु मलिक की आवाज़ में फिल्म बादल का ये गाना, जिसके बोल लिखे हैं समीर ने, संगीत है अनु मलिक का।

0: और कास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: श्रोताओं, रजनीगंधा कार्यक्रम में अब सुनिए चंदना दीक्षित और अभिजीत की आवाज में फिल्म कूली नंबर 1 का ये गाना, जिसके बोल लिखे हैं समीर ने, संगीत है आनंद मिलन का।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: श्रोताओं, रजनीगंधा कार्यक्रम में अब सुनिए फिल्म दिल से का ये गाना सुखविंदर सिंह और सपना अवस्थी की आवाज में। इस गाने के बोल हैं गुलजार के, संगीत है ए आर रहमान का।

श्रोताओं, इसी के साथ सुनिए रजनीगंधा कार्यक्रम का अंतिम गाना फिल्म नाजायज से। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में इस गाने के बोल लिखे हैं इंदिवर ने, संगीत है अनु मलिक का।

0: भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: श्री मोदी ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्नत भागीदारी के जरिए प्रत्येक नॉर्डिक देश की विशेषज्ञताओं का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं।
1: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत है कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है। नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
0: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत के राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सुश्री राव ने बताया कि यह यात्रा समुद्री सुरक्षा, मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं, व्यापार साझेदारियों और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ठोस परिणाम देने का लक्ष्य रखती है और इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण समझौतों की घोषणा होने की उम्मीद है। इटली में भारतीय समुदाय के बारे में बात करते हुए भारत की राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय ने डेयरी और कृषि सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय की गतिशीलता और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान चर्चा हो सकती है। सुपर्णा भाटिया, रोम से।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आंग्यू बेक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे।

दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों की तलाश करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। श्री प्रधान ने कहा कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सुरक्षित, बिना किसी रुकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाश अभियान चलाकर कथित नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा करा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों के औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है।
2: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के 7 जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकसित भारत की दिशा में देश की प्रगति के लिए उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने ये बात कही।
3: हम दुनिया की भू राजनीतिक परिस्थितियों और उनसे जुड़े जोखिमों को तेज सुधारों के अवसर में बदलेंगे। खुद को अधिक मजबूत और लचीला बनाने की तैयारी करेंगे, अपनी सप्लाई चेन को और सशक्त करेंगे और दुनिया जो भी अवसर दे रही है तथा भारत जो अवसर दुनिया को प्रदान कर रहा है उसके पूरे लाभ उठाएंगे। उदाहरण के तौर पर वे 38 देश जो एक के बाद एक मुक्त व्यापार समझौते के ढांचे में शामिल हो रहे हैं।
1: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का लक्ष्य 2030-31 तक 350 अरब डॉलर का कपड़ा बाजार बनाना है। इसमें 100 अरब डॉलर का निर्यात शामिल होगा। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि टिकाऊ और प्राकृतिक फाइबर ही कपड़ा क्षेत्र के भविष्य को आगे बढ़ाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। ओडिशा के भुवनेश्वर में श्री चौहान ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दे दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी का दुष्कर्म मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। इससे पहले इस मामले में सियालदह सत्र अदालत ने संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने आज फालता विधानसभा क्षेत्र में होने वाले आगामी पुनर्मतदान से अपना नाम वापस लेने की घोषणा की है। भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार के विशेष पैकेज की उन्होंने सराहना की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस ने बताया है कि श्री पुतिन 12 और 13 सितंबर को सम्मेलन में शामिल होंगे। एक साल के अंदर श्री पुतिन की ये दूसरी भारत यात्रा होगी। इससे पहले वो दिसंबर 2025 में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आए थे। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में कारीगरों और बुनकरों के एक समूह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी प्रतिभा दर्शाने के लिए मंच प्रदान करने पर राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने कारीगरों और बुनकरों को सहायता देने की जरूरत पर बल दिया ताकि उनका हुनर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 32 अंक लुढ़ककर 23,618 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 18 पैसे कमजोर होकर 96.53 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
1: मौसम विभाग ने गुरुवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की आशंका है। अगले 2 से 3 दिन के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, यानम, मराठवाड़ा और ओडिशा में लू चलने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि 21 मई तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गंगा के मैदानी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में गरज के साथ तेज हवाओं का अनुमान है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एकदिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बना लिए हैं। राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says investments from Nordic countries in India rose by 200% in past decade, attends third India-Nordic summit in Oslo with counterparts from Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark. Education Minister Dharmendra Pradhan reviews preparation for NEET UG re-examination to be held next month. Supreme Court allows euthanasia for rabid and dangerous stray dogs to protect human life. Russian President Vladimir Putin to attend New Delhi BRICS summit in September this year. IMD warns of severe heatwave conditions in northern India, forecast heavy rainfall in southern region. In cricket, Shubman Gill to lead Indian squads in Test and ODI series against Afghanistan. India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo today.
4: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
3: Prime Minister Narendra Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade.
4: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
3: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements, including trade and economic partnership and India-EU free trade deal. On terrorism, Mr. Modi said the two sides have a clear and united stand, no compromise, no double standards.
4: आज हम सब ने मिलकर ग्लोबल इश्यूज पर भी विचार साझा किए। वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत है कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी, और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
3: Speaking on the occasion, the prime ministers of Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark reiterated their commitment to shared values of democracy, a rules-based global order and urgent reforms in multilateral institutions in today's changing world. Acknowledging India's global stature, they stressed the need for enhanced cooperation with New Delhi as countries sharing similar values, particularly to address the challenges of conflict and global disruptions. Prime Minister Modi has since left for Italy on the fifth and final leg of his five-nation tour after concluding his visits to Norway, Sweden, the Netherlands and UAE. Mr. Modi is set to arrive in Italy's capital, Rome, later tonight. We have more from our correspondent covering the Prime Minister's visit.
5: Talent and innovation exchange between India and Italy is expected to grow in the coming years. Speaking ahead of Prime Minister Narendra Modi's visit, which forms the final leg of his five-nation tour, Indian Ambassador Vani Sarraju Rao said the trip would provide an important opportunity to address issues related to the mobility and welfare of the Indian community. Ms. Rao noted that the Migration and Mobility Agreement signed in 2023 is already operational between the two countries. She expressed optimism that the movement of Indian students, currently around 5,000 in Italy, as well as academicians and researchers, is likely to increase in the near future. She further highlighted trade, defense, mobility, maritime security and port-related cooperation as key priority areas for bilateral discussions.
6: Defense will be an important area where we are going to see how we can boost industrial partnerships. Both countries attach a great deal of importance to maritime security, and we are looking at strengthening our respective supply chains, building resilient trade partnerships, energy security, and also to ensure that the industrial ecosystems of the two countries become competitive globally.
5: This is Suparna Bhatia from Rome.
3: Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today called for deeper collaboration between industry and government to advance ease of doing business, enhance India's competitiveness, and accelerate the country's journey towards Viksit Bharat. The minister was speaking at the India Business Reform Summit in New Delhi. Mr. Goyal said the present global situation and geopolitical uncertainties should be viewed as an opportunity for India to strengthen supply chains.
7: That we will convert the current situation and the risks associated with the geopolitics around the world into an opportunity for faster reform, into preparing ourselves for greater resilience, make our supply chains stronger, and use every bit of opportunity that the world provides, that India is offering to the world. For example, the 38 countries which are now one after the other coming in within the framework of free trade agreements.
3: Union Home and Cooperation Minister Amit Shah today said Bastar Division of Chhattisgarh will emerge as the country's most developed tribal region within the next 5 years. Mr. Shah was addressing the media in Jagdalpur. He said that after making Bastar free from Naxalism, the center and the Chhattisgarh government have jointly prepared a scientific roadmap for the region's development.
8: I want to assure all the citizens of Bastar on behalf of the Government of India and the Prime Minister Narendra Modi that there is no longer any need to live in fear. A new dawn has arrived here. Even though it has taken so many years after independence, the path of development is now being paved. The tribal youth and women here should now move forward with confidence. The Government of India and the Government of Chhattisgarh are with you.
3: Earlier, the Union Home Minister chaired the 26th meeting of the Central Zonal Council in Jagdalpur. Chief Ministers of Chhattisgarh, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Uttarakhand, along with senior police and administrative officials, attended the meeting. Union Education Minister Dharmendra Pradhan today chaired a high-level meeting in New Delhi to assess preparations for the forthcoming NEET UG re-examination for admission to undergraduate medical education to be held on the 21st of next month. Mr. Pradhan directed that all gaps identified in the earlier examination process must be comprehensively addressed and eliminated. The minister emphasized that re-examination must be conducted in a secure, seamless and foolproof manner under stringent security protocols. During the meeting, directions were issued to hold coordination meetings with district magistrates and superintendents of police across states to ensure robust monitoring and effective implementation of examination arrangements. Union Minority Affairs Minister Kiran Rijiju has said that India remains one of the safest and most inclusive homes for minorities. Mr. Rijiju stated this while addressing the Conference of State Minorities Commissions organized in New Delhi today. Mr. Rijiju said, when we look at neighboring countries in the Indian subcontinent, we often see minority communities facing existential challenges and seeking refuge in India. He said, from Afghanistan to Sri Lanka, minorities from across the region have looked towards India as a place of shelter, security and dignity. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the new News on Air app. Welcome back. The Supreme Court today for the first time allowed euthanasia for rabid, incurably ill or demonstrably dangerous stray dogs, citing the need to protect human life and public safety. The Apex Court issued a series of directions aimed at addressing the growing stray dog population across the country. The order came in a Suomoto case initiated on 28th of July last year, following media reports highlighting incidents of stray dog bites and rabies cases, especially among children in the national capital. Meanwhile, the top court dismissed pleas seeking a recall of its earlier order on the relocation and sterilization of stray canines. Trinamool Congress candidate from West Bengal's Falta Assembly constituency, Jahangir Khan, announced the withdrawal of his nomination ahead of by-election on the seat on Thursday. The Election Commission had earlier declared the polling held on 29th April in Falta void over allegations of large-scale malpractice and ordered a fresh poll in all 285 booths. The counting of votes will take place on the 24th of this month. The Kremlin today confirmed that Russian President Vladimir Putin will attend the BRICS summit scheduled to be held in September this year in New Delhi under India's chairmanship. The Russian embassy in South Africa, in a social media post, cited an aide to President Putin, Yuri Ushakov, as saying that the Russian president will attend the summit on 12th and 13th of September. This will be Putin's second visit to India in less than a year. Defense Minister Rajnath Singh reached Seoul today on a three-day official visit to South Korea after concluding his Vietnam tour. In South Korea, Defense Minister Singh will hold bilateral talks with his counterpart, Ahn Kyu-baek. Union Health Minister Jagat Prakash Nadda has reiterated India's steadfast commitment to equitable, inclusive and people-centric health care under the guiding principle of health for all. Addressing the plenary session of the 79th World Health Assembly in Geneva, Mr. Nadda said, India is accelerating towards universal health coverage by expanding access to quality and affordable health care. The India Meteorological Department has warned of severe heatwave conditions in northern India. The weather agency forecasts heavy rainfall in southern region. The IMD has issued a red alert for warm night conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha till Thursday. The weather agency has forecast heatwave to severe heatwave conditions over Delhi, Punjab, Haryana and Chandigarh for tomorrow. Meanwhile, the weather agency has forecast heavy rainfall over Andaman and Nicobar Islands, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, Kerala, Mahe and Lakshadweep till the 21st of this month. In cricket, the Indian men's squads for upcoming one-off test and three-match ODI series against Afghanistan were announced today. Shubman Gill will continue to lead India in both formats. Wicketkeeper batter KL Rahul has been named the new vice-captain of the test team, replacing Rishabh Pant, who has also been dropped from the ODI squad. Shreyas Iyer returns to the ODI side as vice-captain. Spinner Manav Suthar and pacer Gurnoor Brar have received maiden test call-ups, while Prince Yadav has been included in the ODI squad for the first time. Pace spearhead Jasprit Bumrah and senior all-rounder Ravindra Jadeja have been rested for the series. In IPL cricket, Lucknow Super Giants were 213 for 2 in 18.4 overs against host Rajasthan Royals in Jaipur when reports last came in. Earlier, Rajasthan Royals won the toss and opted to bowl. Royal Challengers Bengaluru, Gujarat Titans and Sunrisers Hyderabad have already qualified for the playoffs. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says investments from Nordic countries in India rose by 200% in past decade. Attends third India-Nordic summit in Oslo with counterparts from Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark. Education Minister Dharmendra Pradhan reviews preparation for NEET UG re-examination to be held next month. Supreme Court allows euthanasia for rabid and dangerous stray dogs to protect human life. Russian President Vladimir Putin to attend New Delhi BRICS summit in September this year. IMD warns of severe heatwave conditions in northern India, forecast heavy rainfall in southern region. In cricket, Shubman Gill to lead Indian squads in test and ODI series against Afghanistan. That's all in the news at 9. Good night.
9: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में नॉर्डिक ममालिक की सरमायाकारी पिछली एक दहाई में 200% बढ़ गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने ओस्लो में नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के अपने हम मनसबों के साथ तीसरे भारत नॉर्डिक समिट में हिस्सा लिया। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी के अगले माह दोबारा होने वाले इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इंसानी जानों के तहफ्फुज़ के लिए खतरनाक आवारा कुत्तों को जान से मारने की इजाजत दी है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन इस बरस सितंबर में नई दिल्ली ब्रिक्स समिट में शिरकत करेंगे। महकमे मौसमियात ने शुमाली हिंद में गर्मी की इंतहाई शदीद लहर से खबरदार किया है। उसने जुनूबी खित्ते में बहुत तेज बारिश की पेशगोई की है। और क्रिकेट में अफगानिस्तान के साथ भारत की टेस्ट और एक रोजा मैचों की सीरीज में शुभमन गिल टीम की सरबराही करेंगे। अब खबरें तफसील से। भारत और यूरोप के नॉर्डिक ममालिक ने, जिनमें नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड शामिल हैं, अपने बाहमी ताल्लुकात को मजीद बढ़ाकर ग्रीन टेक्नोलॉजी और इख्तराती कलीदी शराकतदारी की सतह तक पहुंचा दिया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आज तीसरे भारत नॉर्डिक समिट में शिरकत के बाद नॉर्डिक मुल्कों के लीडरों के साथ एक मुश्तरका प्रेस मीटिंग से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने यह ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में नॉर्डिक ममालिक की सरमायाकारी पिछली एक दहाई में 200% बढ़ गई है।
4: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
9: जनरल मोदी ने कहा कि पिछले 10 बरस में भारत और नॉर्डिक मुल्कों के दरमियान बाहमी तिजारत बढ़कर 4 गुना हो गई है।
4: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
9: जनाब मोदी ने इस बात का यकीन दिलाया कि भारत और नॉर्डिक मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात एक नए सुनहरे अहद की सूरत में इंतहाई समरावर साबित होंगे। हाल ही में तय पाए तिजारती मुआहदे इसी जानिब इशारा करते हैं। इन मुआहदों में तिजारत और इक्तिसादी शराकतदारी और भारत यूरोपीय यूनियन आजाद तिजारती मुआहदा शामिल है। दहशतगर्दी के बारे में जनाब मोदी ने कहा कि तरफेन का एक वाज़ह और मुत्तहदा मौकिफ है, जिसमें कोई समझौता नहीं है और कोई दोहरा मयार नहीं है।
4: आज हम सब ने मिलकर ग्लोबल इश्यूज पर भी विचार साझा किए। वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत है कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है, और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
9: इस मौके पर खिताब करते हुए नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के वज़ीरे आज़म ने जमहूरियत की अपनी मुश्तरका अकदार उसूलों पर मबनी आलमी निज़ाम और आज की बदलती हुई दुनिया में कसीर सतही इदारों में इस्लाहात की फौरी ज़रूरत के तई अपने अज़्म का इयादा किया। भारत के आलमी मर्तबे का एतराफ करते हुए उन्होंने भारत के साथ ज्यादा तआवुन की जरूरत पर जोर दिया, क्योंकि ये ममालिक मुश्तरका अकदार के हामिल हैं। बिलखसूस तनाज़ियात और आलमी रखनांदाजी के चैलेंजों से निमटने में इनकी अकदार मुश्तरक हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड्स और मुत्तहिदा अरब अमारात के अपने दौरों की तकमील के बाद 5 मुल्कों के अपने दौरे के 5वें और आखिरी मरहले की तकमील के लिए इटली रवाना हो गए हैं। जनाब मोदी आज रात देर गए रोम पहुंचेंगे। मजीद तफसील वजीर आजम के इटली के दौरे की रिपोर्टिंग के लिए उनके साथ गए हमारे नुमाइंदे से।
10: वजीर आजम 5 मुल्कों के अपने दौरे के आखिरी मरहले पर आज इटली पहुंचने वाले हैं। तवक्को है कि ये दौरा कई अहम शोबों में भारत इटली किलीदी शराकतदारी को नई बुलंदी अता करेगा। इम्कान है कि तिजारत, सरमायाकारी और सनती पार्टनरशिप से मुतालिक शराकतदारियों का ऐलान किया जाएगा, क्योंकि दोनों ही मुल्क अपनी इक्तसादी वाबस्तगी को मजबूत करने और ताउन के नए शोबे तलाश करने के ख्वाह हैं। दौरे के दौरान आला सतह के मुजाकरात के बाद ताल्लुकात में मजीद इजाफा होगा, जो इस वक्त भी इंतहाई मजबूत हैं। روم سے سپرنا بھاٹیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان.
9: وزیر داخلہ اور امدادی باہمی کے وزیر امت شاہ نے آج کہا ہے کہ 36 گڑھ کا بستر ڈویژن آئندہ 5 برس میں ملک کے سب سے ترقی یافتہ قبائلی خطے کے طور پر ابھرے گا. جگدلپور میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ بستر میں نکسلزم کو ختم کرنے کے بعد مرکز اور 36 گڑھ حکومت نے خطے کی ترقی کی خاطر مشترکہ طور پر ایک سائنسی لائحہ عمل تیار کیا ہے.
11: بستر کے سبھی ناگرکوں کو بھارت سرکار اور دیش کے پردھان منتری نریندر مودی جی کی اور سے بھروسہ دلانا چاہتا ہوں کہ اب بھائی سے جینے کی ضرورت نہیں. یہاں نیا سوریودے ہو چکا ہے, بھلے آزادی کے اتنے سال بعد ہی اب وکاس کا راستہ پرشست ہو رہا ہے. یہاں کے آدیواسی یوا اور مہیلا وشواس کے ساتھ آگے بڑھے, بھارت سرکار اور 36 گڑھ سرکار آپ کے ساتھ ہے.
9: اس سے قبل مرکزی وزیر داخلہ نے جگدلپور میں وسطی زونل کونسل کی 26ویں میٹنگ کی صدارت کی. 36 گڑھ, اتر پردیش, مدھیہ پردیش اور اتراکھنڈ کے وزرائے اعلی اور سینئر عہدیداران نے اس میٹنگ میں شرکت کی. شمال مشرقی ریاستوں کے دستکاروں اور بنکروں کے گروپ نے آج راشٹرپتی بھون میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے ملاقات کی. بات چیت کے دوران دستکاروں اور بنکروں نے راشٹرپتی بھون میں ایٹ ہوم تقریب کے لیے کام کرنے کے اپنے تجربات بتائے اور اپنے ہنر کو پیش کرنے کے موقع کے لیے تشکر کا اظہار کیا. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے دستکاروں اور بنکروں کی مدد کی ضرورت پر زور دیا تاکہ ان کا روایتی فن زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور وہ خود کفیل بن سکیں. مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے آج نئی دلی میں نیٹ یو جی کے آئندہ ماہ ہونے والے دوبارہ امتحان کی تیاریوں کا جائزہ لیا. امتحان کے انعقاد میں مکمل دیانتداری اور شفافیت کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے جناب پردھان نے ہدایات دی کہ اسے سخت سیکیورٹی ضابطوں کے تحت ایک محفوظ, بلا رکاوٹ اور کسی بھی کمی کے بغیر طریقہ کار کے تحت مکمل ہونا چاہیے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ 3 روزہ سرکاری دورے پر آج جنوبی کوریا کے سیول پہنچے ہیں. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب سنگھ نے کہا کہ اس دورے کا مقصد بھارت اور جمہوریہ کوریا کے درمیان دفاعی اشتراک اور کلیدی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ یہ دورہ باہمی دلچسپی کے شعبوں میں دو طرفہ تعلقات اور اشتراک بڑھانے کا موقع فراہم کرے گا. اقلیتی امور کے مرکزی وزیر کرن رجیجو نے ریاستی اقلیتی کمیشنوں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ اقلیتی فرقوں کے معاملات اور شکایتوں سے نمٹنے میں سرگرم رول ادا کریں. وزیر موصوف نئی دلی میں آج منعقدہ ریاستی اقلیتی کمشنروں کی کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. جناب رجیجو نے کہا کہ نریندر مودی حکومت ملک کے ہر شہری کی بہبود اور ترقی کے تصور کے ساتھ کام کر رہی ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. سپریم کورٹ نے آج پہلی مرتبہ انتہائی خطرناک یا لا علاج بیماریوں میں مبتلا کتوں کو جان سے مارنے کی اجازت دی ہے. عدالت نے انسانی زندگی کے تحفظ اور عوام کی حفاظت کی ضرورت کا حوالہ دیتے ہوئے یہ فیصلہ سنایا ہے. دوسری طرف سپریم کورٹ نے آج ان ازداشتوں کو بھی خارج کر دیا جن میں آوارہ کتوں کو کسی دوسرے مقام پر لے جانے اور ان کی نسبندی کرنے سے متعلق عدالت کے اس سے پہلے کے فیصلے کو واپس لینے کی درخواست کی گئی تھی. عدالت نے کہا کہ وقار کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق آزادی کے ساتھ چلنے پھرنے کے حق کا بھی احاطہ کرتا ہے, جس میں کتوں کے کاٹنے سے ہونے والے نقصان کا خطرہ نہ ہو. مغربی بنگال میں ترنمول کانگریس کے امیدوار جہانگیر خان نے آج جمعرات کو فالٹا اسمبلی حلقے کے لیے ہونے والے ضمنی انتخابات سے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لینے کا اعلان کیا ہے. جناب خان نے ایک بیان میں کہا کہ ان کا یہ فیصلہ خطے میں امن اور ترقی بنانے کی غرض سے لیا گیا ہے اور انہوں نے بی جے پی کی قیادت والی نئی سرکار کی جانب سے فالٹا کے لیے اعلان کیے گئے خصوصی پیکج کا خیر مقدم کیا.

मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड के 110.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब आइए सुनते हैं नाटक ये हवा आंधी तो नहीं। इस नाटक की लेखिका हैं डॉक्टर आभा कुमारी पूर्वे। इस नाटक की प्रस्तुतकर्ता हैं नाओमी शांति हेमब्रम।

0: अरे अभी तक तुम तैयार नहीं हुई।
1: मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे ऑफिस के कुछ मित्र मुझसे मिलने आ रहे हैं।
2: अच्छा?
1: हाँ, बस यूं समझो कि मुझसे क्या, तुमसे मिलने आ रहे हैं।
2: मुझसे? लेकिन आपके मित्र मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं?
1: भाई गजब की बात करती हो, वे सब मेरे मित्र हैं। बस यूं समझो कि वे रिश्ते में तुम्हारे देवर लगते हैं। चलो चलो जल्दी तैयार हो जाओ, बस वे सब आते ही होंगे।
2: सुनो जी, देखो अपने दो देवर ही मेरे लिए काफी हैं। मुझे किराए के देवरों की जरूरत नहीं है, और वैसे भी आप तो जानते ही हैं कि मैं...
1: हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हें पराए पुरुष से मुंह लगाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन समझो तो भाग्यवान, अब सती सावित्री का जमाना तो रहा नहीं। फिर सावित्री को भी तो अपने पति के जीवन के लिए यमराज से मुंह लड़ाना पड़ा था, क्यों है कि नहीं?
2: तो आप चाहते क्या हैं?
1: अरे देखो, पहले कुर्सी पर तो बैठो, आओ आओ यहाँ बैठो बैठो। अब इस तरह तलवार की तरह खड़ी रहोगी तो कैसे बताऊंगा, बोलो तुम्हें।
2: लीजिए, बैठ गई, अब बताइए क्या कहना चाहते हैं।
1: हाँ ये हुई ना बात। देखो शकुंतला, वे जो मेरे साथी आ रहे हैं वे साथी भर नहीं हैं,
2: तो
1: मेरे सारे दुखों में मददगार हैं। अब अगर कह ही दिया है कि भाभी से मिलेंगे तो तुम ही कहो, मैं कैसे इनकार कर सकता था।
2: लेकिन लेकिन ना जाने क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ये सब पसंद नहीं।
1: मुझे मालूम है कि शादी के पहले तुमने घर से कभी बाहर पांव नहीं रखा, लेकिन शकुंतला मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की है कि तुम किसी राजे रजवाड़े की पत्नी की तरह इस घर में छिपी रहो कि सूर्य की किरणें भी तुम्हें न देख सके। भूलो नहीं कि तुम 21वीं सदी की स्त्री हो, जिसे घर का अंधेरा नहीं सूर्य की रोशनी में चलना है। अब देखो, अब तुम उठो और जल्दी से तैयार हो जाओ, और हाँ तैयार होने से पहले रसोई के काम को निपटा लो। मैंने एक बार तुम्हारे खाने की प्रशंसा कर दी थी अपने मित्रों के सामने, बस इसी से समझो।
2: लेकिन लेकिन इतनी जल्दबाजी में मैं खाना कैसे बना सकूंगी?
1: अरे तुम क्या मुझे इतना मूर्ख समझती हो? मैंने आते वक्त मॉडर्न होटल में 10 आदमी का खाना भेज देने के लिए कह दिया है।
2: ओ, अच्छा।
1: मुझे लगता है अब खाना आ भी रहा होगा, कमला को कह दूंगा वही खाना लगा देगी। चलो चलो उठो। अरे उठो,
2: अरे,
1: भी ओहो, बैठने का बिल्कुल अवकाश नहीं है।
2: आती हूँ बाबा।
1: हाँ
3: साहब,
1: हाँ हाँ,
3: नीचे के कमरे में कोई ढेर सारे खाने का पैकेट पहुंचा गया है।
1: तो उन पैकेटों को तुम सीधे ऊपर ले आओ।
3: जी जी।
1: और सुनो,
3: हाँ?
1: कुछ मेहमान यहाँ आ रहे हैं।
3: अच्छा,
1: तुम ही खाना खिलाना, ठीक से बन सवर जाओ के मालकिन की तरह दिखो।
3: क्या कहते हैं मालिक, नौकरानी चाहे जितना भी बन सवर ले, वो कभी मालकिन भी हो सकती है क्या?
1: अरे छोड़ो भी इन सारी बातों को, चलो चलो तैयार हो जाओ, जल्दी जाओ जाओ जाओ। लगता है वे सब आ गए। सुनो, तुम जाकर मालकिन से कह दो कि मेरे दोस्त आ चुके हैं।
3: हाँ, जी जी साहब, ठीक,
1: हाँ,
3: ठीक,
1: जाओ जाओ जाओ जल्दी जाओ।
2: सुनिए जी,
1: हाँ,
2: आपके दोस्तों का नाम क्या है?
1: नाम
4: चाहे जिसे भी पुकारो मुझे, जिंदगी हूँ तुम्हारी गुजारो मुझे। हमारे घर में सभी जगह हो आईने, मैं संवारूं तुझे तुम संवारो मुझे।
5: क्या
4: तुम्हारी नजर में मैं बस एक खेल हूँ, चाहे जीतो मुझे चाहे हारो मुझे।
5: क्या बात,
4: भावी श्री को विभूति का नमस्कार निवेदित हो।
2: नमस्ते, आप सबको नमस्ते, आइए ना आइए बैठिए।
1: तुम तो जहाँ जाते हो यार शुरू हो जाते हो।
6: भाभी जी, मैं सागर, नमस्कार।
2: जी जी नमस्कार।
7: और मैं भाभी धीरज, नमस्कार।
2: जी नमस्ते, आइए आइए ना, आप लोग अंदर आइए बैठिए।
6: धीरज चलो।
7: अरे बैठिए बैठिए। हाँ मुक्तेश्वर, हम बिल्कुल समय पर पहुँचे हैं ना?
1: हाँ हाँ बिल्कुल यार, एकदम सही समय पर पहुँचे हो।
6: वाह भाई वाह, तुम्हारा घर तो बहुत बढ़िया है, एकदम सुरुचिपूर्ण।
7: अरे यार सागर, सारा भाभी का कमाल है।
1: सारे भाभी का कमाल।
4: अरे यार मुक्तेश्वर।
8: बोलो।
4: अरे यार तुम तो बहुत भाग्यशाली हो यार।
8: वो कैसे?
4: अरे तुम्हें इतनी प्यारी और खूबसूरत पत्नी जो मिली है।
8: देखो देखो तुम भाभी को खुश करने के लिए तो नहीं कर रहे हो ना।
4: क्या बात करते हो मुक्तेश्वर, तुम तो जानते हो कि झूठी तारीफ तो मैं अपने बॉस की भी नहीं किया करता, जहाँ मेरी नौकरी का सवाल है।
8: हाँ वो तो मैं जानता हूँ, आखिर कवि हो ना।
7: यार खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट लगा, मैंने तो जरूरत से ज्यादा ही खा लिया।
2: और थोड़ा सा लीजिए ना। धीरज जी थोड़ा सा।
6: हाँ भाई सागर। हाँ भाई वाकई भाभी जी के हाथ में तो जादू है।
2: अरे हाँ आप लोग भी
6: कैसे भाभी जी फिर हाँ। कब बुला रही हैं दोबारा?
2: अरे ये भी कोई पूछने की बात है। नहीं, नहीं। जब आपका दिल करे
6: जी।
2: विभूति जी।
9: हाँ भाभी श्री।
2: एक बात पूछो, आप कवि हैं?
9: हाँ हाँ, लेकिन क्या आप कवियों को पसंद नहीं करती भाभी श्री?
2: नहीं नहीं ऐसी बात नहीं।
8: अरे रे रे रे मैं तो ये बताना ही भूल गया।
9: क्या?
8: कि तुम्हारी भाभी यानी मेरी पत्नी शकुंतला कविता भी रचती है।
4: अरे क्या बात है यार, वाह वाह।
8: मेरी देखो भाई मेरी समझ में तो कविता बिल्कुल नहीं आती।
9: अच्छा
8: फिर भी डर के मारे वाह वाह करना ही पड़ता है।
6: अच्छा भाभी कविताएं लिखती है? ये तो सोने पे सुहागा हो गया भाई। क्यों धीरज?
7: बिल्कुल, तो भाभी कुछ हमें भी सुनाइए ना।
6: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए भाभी जी प्लीज।
2: वो अब मैं
8: अब सुना भी दो।
9: हाँ भाभी श्री जरूर, आपके मुखारविंद से हम लोग कविता सुनना चाहते हैं।
8: अरे क्यों नहीं, मैं ही डायरी खोज कर ला देता हूँ। मैं अभी आया, तू लोग रहो, मैं अभी आया।
9: आओ
6: थोड़ा जल्दी आइएगा।
9: भाभी जी सुना है आप किसी से मिलना जुलना नहीं चाहती?
2: नहीं नहीं ऐसी बात नहीं।
9: लेकिन मेरी पत्नी कामनी तो यही बता रही थी कि आप अपने कॉलेज के जमाने में किसी को बोलने में ठहरने नहीं देती थी।
2: क्या क्या बताया कामिनी?
9: हाँ कामिनी।
2: मेरी सहेली कामिनी आपकी पत्नी है?
9: हाँ भाई।
2: अरे वाह, तब तो मैं उससे मिलने आपके घर जरूर जाऊंगी।
9: आप मेरे घर आएंगी?
2: हाँ हाँ।
9: मैंने तो सुना है कि आप कहीं जाना आना पसंद नहीं करती।
2: सारी बातें झूठी हैं। मैं इस घर में किससे बात करूं? आपके मित्र हैं कि घर आकर भी ऑफिस की फाइलों में डूबे रहते हैं।
9: सो तो है।
2: आपके मित्र अपने बॉस की सारी बातों में हाँ हाँ हाँ कर सकते हैं, लेकिन मेरी कविता पर वाह वाह नहीं।
8: लो लो यार डायरी मिल गई, अब तुम भाभी से कविता सुनो और मैं जरा उन पुस्तकों को फिर संभालाऊं जो डायरी निकालने के क्रम में गिर गई थी।
9: ठीक है भाई ठीक है।
8: सुनो तुम लोग सुनो।
9: हाँ मुक्तेश्वर जाओ तो भाभी जी लीजिए, इस डायरी में से आप अपनी कोई प्यारी सी कविता सुनाइए।
6: हाँ भाभी जी सुनाइए सुनाइए।
2: सुनकर बताइएगा, पता नहीं कैसी कविता लगे आप लोगों को। अब आप लोग कह रहे हैं तो सुनाती हूँ, अब जैसी भी कविता हो।
7: स्वागत है स्वागत है।
2: मेरी कविता का शीर्षक है विसंगति। उसके जीवन की अनेक अच्छाइयाँ उसे कोई नाम न दे सकी जिससे वो जाना जाता।
6: वाह वाह क्या बात है।
2: उसके जीवन की अनेक अच्छाइयाँ उसे कोई नाम न दे सकी जिससे वो जाना जाता।
7: बहुत खूब।
2: हाय आज मेरे ही कारण, हाय आज मेरे ही कारण वो जाना जाता है, बस अपने कुछ अनगिनत बुराइयों के कारण।
6: वाह वाह वाह क्या बहुत बढ़िया। क्या बात
9: क्या बात है भावी श्री, आपकी कविता में गहराई थी, दर्द था। वाह वाह बहुत खूब।
0: शकुंतला शकुंतला
2: हाँ हाँ
0: कैसा रहा कल का दिन?
2: बहुत बढ़िया, अद्भुत। एक बात बताऊं?
0: बोलो।
2: ससुराल में आकर पहली बार मुझे अपने होने का एहसास हुआ।
0: अरे अभी क्या अनुभव हुआ है, ये देखो देखो देखो, यो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। देखो लो लो लो, पढ़ो पढ़ो। अच्छा छोड़ो, मैं ही पढ़कर सुनाता हूँ। मित्रों, आपको सूचित करते हुए हमें बेहद खुशी है कि अपने नगर की कवियत्री शकुंतला का काव्य पाठ आगामी मंगलवार को रखा गया है। इसमें शकुंतला जी का एकल काव्य पाठ होगा। आप इसमें सादर आमंत्रित हैं। विनीत कामिनी, बोलो।
2: मेरे बारे में?
0: अरे हाँ,
2: मेरी कविताएं?
0: बिल्कुल
2: सच?
0: बिल्कुल बिल्कुल।
10: क्या यही है शकुंतला जी? कितनी शालीन दिखती हैं।
11: दिखती ही नहीं है, सुना है काव्य पाठ में भी वैसी ही शालीनता है।
10: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि स्त्रियों के हक के लिए कॉलेज के दिनों में इन्होंने कॉलेज के द्वार पर ही भूख हड़ताल की थी।
12: अरे वाह, लेकिन मैंने तो सुना है कि ससुराल में आकर एकदम चुप हो गए हैं।
11: क्या पता, स्त्रियाँ जब तक अविवाहित होती हैं तब तक तो पहाड़ उठाने की भी क्षमता रखती, लेकिन विवाह हो जाए तो पुरुषों के पैरों की धूल।
10: ठीक ही कहा तुमने, लेकिन स्त्रियों का हौसला न मरे तो वह किसी भी विपत्ति का सर कुचल सकती हैं।
2: हाँ हाँ, ठीक कहा ठीक कहा।
13: भाइयों और बहनों, शकुंतला मेरी सखी है, मेरी बहन भी, लेकिन आज मैंने इसे एक कवित्री के रूप में बुलाया है। मैं बिना समय गवाए शकुंतला को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और अपनी कविताओं का पाठ करें। तो तालियों के साथ स्वागत करें शकुंतला जी।
2: धन्यवाद कामिनी, और आप सबों का भी धन्यवाद। आपने मुझे बुलाया, कुछ कहने का अवसर दिया, तो मैं अपनी जो कविताएं आपके सामने लाई हूँ, जिंदगी के आईने के रूप में ये मेरी पहली कविता है। कविता का शीर्षक है शिकायत। गुलाब का सौंदर्य, चूही की कोमलता और रात रानी की खुशबू, सब कुछ तो थे। गुलाब का सौंदर्य, जूही की कोमलता और रात रानी की खुशबू, सब कुछ तो थे। फिर क्या हुआ कि तुम मुझे एक गजरे का सा रूप न दे सके। फिर क्या हुआ कि तुम मुझे एक गजरे का सा रूप न दे सके।
0: अरे दरवाजा खुला है, शकुंतला नहीं दिखती, और फिर ये कमला भी नहीं है। कमला, ओ कमला, कमला!
3: हाँ साहब, मैं आई। जरा ऊपर मालकिन के कपड़े फैलाने चली गई थी साहब।
0: लेकिन मालकिन कहाँ है?
3: साहब, एक औरत आई थी कार लेकर, और फिर जल्दी से मालकिन तैयार होकर

0: और मुझे इसकी जानकारी तक नहीं। अच्छा मैं अपने कमरे में जाता हूँ, कोई आए तो कह देना साहब नहीं।
1: साहब मालकिन ने कहा है साहब को खाना दे देना, मैं आपके लिए खाना लगा दूं।
0: नहीं छोड़ दो।
1: साहब साहब कहिए तो मैं खाना को थोड़ा गर्म कर दूं, थोड़ा सा भी खा लीजिए ना साहब।
0: ओ मैंने कहा ना कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, जो कहूं उसे समझा करो।
1: ठीक है साहब ठीक।
0: जाओ।

0: साहेब आ गए?
1: हाँ मालकिन, साहब तो आज 5 बजे शाम को ही घर लौट आए थे।
0: कहाँ हैं?
1: अपने कमरे में, शायद सोए हुए हैं।
0: खाना दे दिया था तुमने?
1: नहीं मालकिन, उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया।
0: लेकिन क्यों?
1: मुझे कुछ भी नहीं मालूम मालकिन।
0: अच्छा ठीक है, तुम खाना खाकर अपने कमरे में चली जाओ।
1: जी जी अच्छा।
0: मुझे भी खाना नहीं खाना है, खाकर आ रही हूँ।
1: ठीक है।
0: आप सो रहे हैं क्या? मैंने आपसे पूछा, क्या आप सो रहे हैं?
2: सोने की कोशिश कर रहा हूं। असल में ऑफिस के कागजों से मैं इतना परेशान हूं कि किसी से बात करना भी अच्छा नहीं रहा।
0: मुझसे भी नहीं?
2: तंग मत करो शकुंतला, जाकर खाना खा लो और अपने कमरे में आराम करो। मेरे कमरे में खाना रख दो, जी चाहेगा तो खा लूंगा।
0: जी ठीक है।

0: कौन?
1: अरे दरवाजा खोलो शकुंतला, मैं कामिनी हूँ।
0: अरे अरे कामिनी, ठहरो ठहरो, मैं अभी आई।
1: अरे पगली, तू अभी तक सोई है, जबकि तुम्हें मालूम है कि ठीक 10 बजे से कार्यक्रम शुरू होना है। तुम्हें ही तो आचार्य दत्ता जी के अभिनंदन में स्वागत भाषण करना है। चलो फटाफट तैयार हो जाओ, मैं चलती हूँ। आचार्य जी को सभागार तक लाने का भार मुझ पर ही सौंपा गया है, ठीक है?
0: हाँ ठीक है, तुम निश्चिंत होकर जाओ, मैं ठीक समय पर पहुँच जाऊँगी। आप जाग गए क्या?
2: क्या कोई विशेष बात है?
0: विशेष बात है ना, अभी कामिनी आई थी।
2: हाँ, मैंने कामिनी जी की सारी बातें सुन ली हैं। तुम्हें स्वागत भाषण करना है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं अपने नियम से ही अपना काम करूँगा, मुझे किसी के स्वागत में भाषण करने नहीं जाना है।
0: ठीक है, अब जब मैंने हाँ कह दिया है तो ये नहीं हो सकता कि मैं ना जाऊं।
2: मैं तुम्हें कहां रोक रहा हूं? अगर रोकना चाहता तो तुम आज इतनी स्वतंत्र नहीं हो पाती।
0: हाँ, आपने ठीक ही कहा, नारी की मुक्ति और उसकी पराधीनता सिर्फ पुरुषों पर निर्भर करती है। आप ऑफिस जाने से पहले खाना जरूर खा लेंगे, मैं कमला को कह देती हूँ, वो खाना तैयार करके रख देगी।

0: ये काम मैं खुद भी कर सकता हूं। कमला को कहना ही है ना, कह दूंगा।
1: कमला बाथरूम में कपड़े रख दो, स्नान करूंगी।
2: जी मालकिन, वो मैंने पहले ही रख दिया है।
1: ठीक है।
0: स्वागत भाषण करने जाएगी और मैं यहाँ, मुझे कमला खाना खिलाएगी और मेम साहब अब सभाओं में डिनर लंच किया करेंगी।
1: कमला
2: जी,
1: देखो मैं जा रही हूँ, शायद दोपहर के 2 बजे के बाद ही लौट पाऊंगी। तुम ऐसा करना, मालिक को लंच देकर ही इधर उधर जाना, ठीक है?
2: ठीक है मालकिन।
1: हाँ, दरवाजा बंद कर लो।
2: जी जी।
1: सुनो जी। मैं तुम्हें जैसा कह रही हूँ ना, वैसा ही करो।
2: बिल्कुल मालकिन, बिल्कुल।
1: कुछ भी नहीं बताना है किसी को।
2: नहीं बताऊंगी।
1: ठीक है, मैंने कहा ना, दरवाजा बंद कर लो।
2: कर रही हूँ मालकिन।
0: मैं पंख जोड़ना जानता हूं तो पंख कतरना भी। थोड़ी सी हवा क्या मिली कि खिड़की तोड़ने चली है, लेखिका बनने चली है, लेखिका।
2: आप मालिक?
0: बंद करो ये मालिक। मुझे किसी की जरूरत नहीं, शकुंतला की भी नहीं और तुम्हारी भी नहीं, समझी?
2: मालिक,
0: मैं कहता हूं तुम यहां से निकल जाओ।
2: जाती हूं।
0: जाओ, अभी निकल जाओ। ठीक है, अब कोई नहीं, अब लौटे शकुंतला, अब लौटे। मालिक को लंच करा के जाना, मालिक को। औरत को थोड़ी सी आजादी मिले तो सर के ऊपर से उड़ने लगती है। मेरी ही गलती थी जो शकुंतला को दीवार के बाहर की दुनिया दिखा दी। अब भोगो मुक्तेश्वर, जितना दुख भोगना है। तब तो बहुत अच्छा लगा था, तब तो बहुत प्रगतिशील बनना चाहते थे। नहीं, पुरुष को इतना कमजोर नहीं होना चाहिए। मुझे शकुंतला को बताना ही होगा कि तुम औरत हो और औरत की तरह ही रहा करो। तुम किचन में थी?
1: मैं कहाँ थी ये जानने की जरूरत नहीं।
0: क्यों?
1: और शकुंतला को ये भी बताने की जरूरत नहीं कि औरत के लिए आजादी कुछ भी मायने नहीं
0: रखती। जरा समझा कर बोलो।
1: आजादी सिर्फ पुरुषों के लिए होती है। मैंने थोड़ी सी खुली हवा की इच्छा क्या की, तुमने खिड़की ही बंद कर दी, ताकि बंद कमरे में मुझे उसी तरह मरना पड़े जिस तरह से आज तक औरतें मरती रही हैं। मैं तो तुम्हें जांच रही थी कि तुम मेरी स्वतंत्रता किस हद तक चाहते हो। मैं ये जानती थी कि मेरा खुलापन चाहना तुम्हारा एक ढोंग है।
0: बंद करो ये बकवास।
1: और मैं तुम्हारे इस ढोंग को, तुम्हारे पाखंड को खोल कर रख देना चाहती हूँ। वो तो हो चुका, मुझे किसी विभूति विभूति के नहीं जाना, लेकिन तुम इतनी बात याद रखो कि ऐसे व्यवहार और आचरण से कोई समाज और देश तो क्या, घर भी नहीं चल सकता।
0: शकुंतला, ठीक कहती हो शकुंतला, तुम ठीक कहती हो शकुंतला, ठीक कहती।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे नाटक ये हवा आंधी तो नहीं। इसकी प्रस्तुतकर्ता थी नवमी शांति हेम्ब्रम और इसकी लेखिका थी डॉक्टर आभा कुमारी बूर्वे। कुछ पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
2: गुड मॉर्निंग विक्रमशिला।
3: सुबह की सुहानी धूप में ओस की नन्ही नन्ही बूंदों के साथ आकाशवाणी भागलपुर आपके लिए लेकर आया है जानकारियों का खजाना।
4: कई स्थापित कार्यक्रमों के साथ हम आपको लिए चलेंगे मनोरंजन की दुनिया में।
3: रूबरू होंगे आप खबरों से,
4: देश दुनिया की ताज़ा जानकारी और स्थानीय हलचलों को आप जान पाएंगे एक नए अंदाज में।
3: और ये सब होगा आकाशवाणी भागलपुर की प्रस्तुति गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में।
4: सुनिए हर दिन प्रातः 7 बजे से 7:55 तक
3: आकाशवाणी भागलपुर से मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज पर।
4: भागलपुर से गुजरने वाली ट्रेनों का हाल जानिए,
3: साथ ही हाल जानिए मौसम का।
4: मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला के अंतर्गत
3: आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज पर।
4: इसे आप मोबाइल पर न्यूज ऑन AIR ऐप डाउनलोड करके भी सुन सकते हैं।
3: तो जरूर सुनिए गुड मॉर्निंग विक्रमशिला।
5: आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से।
6: उमंग।
7: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं प्रस्तुत है अंगिका लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम गूंजे बिहार।

लोक संगीत, मिट्टी की खुशबू, श्रम की सुगंध, इसी से सराबोर है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गूंजे बिहार। बिहार की लोक संस्कृति का संवाहक गूंजे बिहार।

0: ऐसी प्रत्येक मंगलवार रात 10 बजे नामी ग्रामी लोक गायकों की मधुर गायकी के रस में आकाशवाणी भागलपुर का प्यार गूंजे बिहार।
1: श्रोताओं नमस्कार, लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम गूंजे बिहार के आज के संक में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका ही दोस्त डॉक्टर विजय कुमार मिश्र और आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ हैं
2: सोनाली कर्मकार। नमस्कार।
1: बहुत ही पुरानी एक पंक्ति है
2: जी।
1: जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि घरीयसी, यानी जननी और जन्म भूमि स्वर्ग से भी बढ़के हुआ करती है
2: जी। वैसे भी हमारा ये प्यारा भारतवर्ष जहाँ प्रकृति की विभिन्न छटा देखने को मिलती है, विभिन्नता में एक रूपता का प्रतीक हमारा प्यारा भारतवर्ष, जहाँ प्रकृति की विभिन्न छटा देखने को मिलती है, जहाँ की भौगोलिक विभिन्नता, भाषाई विभिन्नता के बावजूद भी अपने देश में हम एक रूपता देखते हैं, सद्भावना देखते हैं, विभिन्न पहनावा ओढ़ावा खान पान के बावजूद मन में बस यह विचार हमेशा प्रज्वलित रहता है, हम सभी भारतीय हैं, यह भारत भूमि हमारी मातृभूमि है, हमारी कर्म भूमि है, हमारी धर्म भूमि भी है।
1: हमारी संस्कृति की विशालता तो देखिए, जो कि पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है। और इस संस्कृति में सबसे बड़ी बात अगर कही जाए वो है प्रकृति से सीधे जुड़ाव की संस्कृति। अपनी इस प्यारी भूमि को मातृशक्ति हम कहते हैं, साथ ही साथ जितनी नदियां जितनी प्रकृति में बिखरे हुए और भी सारी चीजें हैं वो सब मातृशक्ति स्वरूप हैं, और मातृशक्ति के उपासन और पूजन हम नित्य प्रतिदिन किया करते हैं। यही कारण है कि हमारी शस्य श्यामला धरती के आंचल के बीच में कई नदियां प्रवाहमान रहती हैं।

आध्यात्म प्रधान देश होने के कारण हम अपनी देश की माटी का तिलक लगाते हैं और गौरवान्वित होते हैं। देश के लोगों को हम अपना समझते हैं और इसीलिए सुबह से शाम तक हमारे जो कृषक भाई बंधु हैं वह लगातार खेतों में मिट्टी में सने होकर मेहनत करते हैं। और जहां हमारी आधी आबादी अपने साथ साथ न केवल अपने लिए साथ ही साथ लोगों के लिए भी अनाज उपजाती है, धरती माता की सेवा करती है, अपने साथ साथ अन्य भाई बहनों का भी भोजन उपलब्ध करवाती है मेहनत के बल पर, हम उन सभी कृषक भाई बहनों को श्रद्धा करते हैं और उनकी मेहनत को भी प्रणाम करते हैं। अपनी सुबह शाम की चिंता से दूर मिट्टी और कीचड़ से सने कृषक भाई बहन हमारी खाद्य की जनता के लिए दिन भर धूप में अपने मेहनत के बल पर अनाज उपजाते हैं।

0: प्रकृति के सौंदर्य के बीच में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो भावनाओं को आह्लादित कर देती है और भावनाओं को प्रबलतम भी बना दिया करती है। अब सोचिए कि चारों बगल हरे भरे खेत हों, बाग में फल लदे हुए हों, नदियां कलकल करती हुई बहती हुई हो, और ऐसे में स्वाभाविक है कि प्रकृति का सौंदर्य मन को तो मोहेगा ही, साथ ही साथ हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करेगा। आकाश में उगड़ते बिगड़ते बादल हों या फिर तीखी धूप के बीच थोड़ी सी पाई हुई शीतल छा, अपने आप में जाने अनजाने ये सारी चीजें बहुत कुछ बोलती है, बहुत कुछ कहती है।
1: हमारे खेतों में जब फसलें लहलाती है और अन्न के भंडार भरे हुए होते हैं तो मन अनायास ही खुशी से नाचने गाने लगता है, झूमने लगता है और गीत गुनगुनाने लगता है।

0: जी
1: तो निश्चित रूप से गीत जब गुनगुनाता है तो एक अंदर से आह्वान की आवाज उठती है, चाहे वो किसी रूप में हो और किसी के अंदर की व्यथा हो या किसी के अंदर का श्रृंगार हो, किसी के अंदर का प्रेम हो, यानी अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम होता है गीत। और गीत के भी अलग अलग रूप स्वरूप होते हैं, जिसमें पूर्वी जिसकी तान अपने आप में बड़ी ही मधुर हुआ करती है और इस पूर्वी के माध्यम से अपनी भावाभिव्यक्ति को व्यक्त करने में अगर गोरिया की बात की जाए या फिर बालम की बात की जाए, दोनों एक दूसरे के प्रति अपनी भावाभिव्यक्ति को स्पष्ट रूप से समक्ष वो रख पाते हैं।
2: मन तो बस

मन है क्षण भर अपने पास नहीं रहता। कभी हंसता है, कभी गाता है, कभी रोता है तो कभी गुनगुनाता है, चाहे वह बालन की आस में ही क्यों ना हो।

चलिए भाई, अब रही बात है कि प्रीत तो प्रीत होती है और प्रीत की अपनी एक अलग रीत होती है और यही हमारी परंपरा है, यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी विरासत है। पूरे विश्व में इस मामले में भी हम अलग हैं कि जहां प्रीत जुड़ गई, जिस रीत के अंतर्गत प्रीत जुड़ गई, उसे हम चंदन के समान खुशबूदार ही मानते हैं और जीवन पर्यंत वो निर्वहन करने का हम प्रयास किया करते हैं।

0: तो श्रोता भाइयों बहनों, लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम गूंजे बिहार के आज के इस अंक को अब हम यही विराम देते हैं। आज के इस कार्यक्रम से अपने इस दोस्त डॉक्टर विजय कुमार मिश्र को और साथ ही
1: सोनाली कर्मकार को
0: अनुमति दीजिए। नमस्कार।

लोक संगीत, मिट्टी की खुशबू, श्रम की सुगंध, इसी से सराबोर है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गुंजित बिहार। बिहार की लोक संस्कृति का संवाहक गुंजित बिहार, आकाशवाणी भागलपुर से प्रत्येक मंगलवार रात 10 बजे नामी ग्रामीण लोक गायकों की मधुर गायकी के रस में आकाशवाणी भागलपुर का प्यार गुंजित बिहार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अंगिका लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम गूंजे बिहार। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है गीत और गजलों पर आधारित कार्यक्रम भावगीत। दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना है यादें। कभी बचपन की मासूमियत, कभी मोहब्बत की तड़प और कभी जुदाई का दर्द। आज का हमारा भावगीत कार्यक्रम इन्हीं यादों को समर्पित है। हर गीत और गजल हमें अपने अतीत की गलियों में ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सुनाते हैं फिल्म मौसम से लता मंगेशकर और भूपिंदर सिंह की आवाज में ये गीत। और बता दें कि गुलजार साहब के शब्द और मदन मोहन का संगीत जो है ना, हमें उन दिनों की याद दिलाते हैं जब जिंदगी में कोई बोझ नहीं था। ये गीत सुनते ही दिल फिर वही सुकून तलाशने लगता है। खेलों की मासूमियत, धूप में लिटी दोपहरें और वो बेफिक्र पल।

श्रोताओं, गाने के बाद चलिए हम आपको ले चलते हैं अब एक गजल की ओर। बता दें कि ये जो गजल है ना, मोहब्बत की सबसे बड़ी कसौटी है। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इस गजल में जो बात है वो बात है वादे की, और वादा मोहब्बत में सबसे मुश्किल पड़ा होता है। वादा करना तो बहुत आसान होता है, पर निभाना उतना ही मुश्किल। जब इंसान अपने प्यार के लिए हर मुश्किल उठाने को तैयार हो, तभी उसका इश्क सच्चा कहलाता है। ये नगमा हमें याद दिलाता है कि मोहब्बत सिर्फ इजहार नहीं बल्कि निभाने का भी नाम है।

दोस्तों, ये अगला गीत जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ ना, उसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। एक्चुअली बात यह है कि इस गीत को जिन्होंने लिखा है वो हैं अमीर खुसरो, और उनकी सदियों पुरानी पंक्तियाँ इस गीत में हैं। और इस गीत को आवाज़ दी है जगजीत सिंह और चित्रा सिंह ने। और ये जो गीत है एक्चुअली ना, इसमें मोहब्बत की शिकायत भी है और इजहार भी है। इसमें तड़प है, इंतज़ार है, और वो दर्द है जो हर सच्चे इश्क में होता है। इसलिए ये बहुत ही खास है। तो आइए इस गज़ल को सुनें और लुत्फ़ लें इसका।

वैसे श्रोताओं आपको बताते चलूं कि अभी आपने ये जो गज़ल सुनी ना, इसे आवाज़ दी थी आशा भोसले ने, और इसके बोल थे शहरयार के और खयाम का संगीत था। और चलते हैं अगली गज़ल की ओर, जिसे हमने लिया है फिल्म गुलामी से। इस गज़ल को आवाज़ दी है लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार ने। और ये गज़ल बहुत ही मतलब कमाल की गज़ल है, बहुत ही उम्दा गज़ल है। और जब भी इस गज़ल को सुने ना, तो एक रूहानियत से महसूस होती है। ऐसा लगता है कि इसके जो अल्फाज हैं सीधा सीधा जहन में उतर रहे हैं। कई बार हमें पुराने वक्त याद आ जाता है, मतलब पुराने दौर के वो लम्हे याद आ जाते हैं। अगर सच सच कहें तो, जब पहली बार कभी ये गज़ल सुनी हो आपने, और अगर कहीं से गलती से भी कोई शख्स उस वक्त सामने रहा हो। गानों और गज़लों के साथ ना सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि अगर कोई गीत है जिसे आप पहली बार सुन रहे हैं, और उस वक्त आपके दोस्त यार या जो भी हो, आपका महबूब हो या आपके दोस्त यार हो, कोई भी सामने बैठे हों, जब भी वो गाना आप कहीं सुने, अगर लंबे अरसे बाद भी ना, तो वो ख्याल जो है सीधा आपके जहन में उतरता है। तो आइए इस गज़ल का लुत्फ लें।

दोस्तों, आज के भावगीत सफ़र में हमने देखा कि हर गीत और गज़ल सिर्फ सुर और शब्द नहीं, बल्कि हमारी यादों और एहसासों का आईना है। ये नगमे हमें बताते हैं कि मोहब्बत, इंतज़ार और जुदाई सब मिलकर ही ज़िंदगी को पूरा बनाते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में बताता चलूँ एक तरफ से कि भाई, आज हमने किन किन फिल्मों के ये नगमे सुने हैं। तो सबसे पहले हमने फिल्म मौसम से लता मंगेशकर और भूपिंदर सिंह की आवाज़ में ये गज़ल सुनी थी। उसके बाद फिल्म ताजमहल से हमने मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत सुना। फिर अमराव जान से फिल्म से हमने आशा भोसले की आवाज़ में गज़ल सुनी। फिर गुलामी फिल्म से लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ में हमने ये गज़ल सुनी। तो श्रोताओं, बस अभी के लिए इतना ही, और इसी के साथ इस कार्यक्रम को कहते हैं अलविदा। और आपको बताते चलें कि हमारी घड़ी में ना समाचार का वक्त हो चला है, तो कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक

0: छोटे इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं और स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात राजधानी रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा का आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों पर चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाशी अभियान चलाया। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण अब 99.6% तक पहुंच गया है। देश में 69,873 किलोमीटर से अधिक रेलमार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। मणिपुर के महान नाटा संकीर्तन गुरु युमनाम जात्रा सिंह को 25 मई को राष्ट्रपति भवन में मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नागरिक अलंकरण समारोह के दौरान यह पुरस्कार प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भी भीषण लू की चेतावनी है। अगले 2 से 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार और उड़ीसा में लू चलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the 3rd India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo today. Prime Minister Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in past decade.
0: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
2: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements, including Trade and Economic Partnership and India-EU Free Trade Deal. On terrorism, Mr. Modi said the two sides have a clear and united stand, no compromise, no double standards. Speaking on the occasion, the Prime Ministers of Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark reiterated their commitment to shared values of democracy, a rules-based global order and urgent reforms in multilateral institutions in today's changing world. Acknowledging India's global stature, they stressed the need for enhanced cooperation with New Delhi as countries sharing similar values, particularly to address the challenges of conflict and global disruptions. Prime Minister Modi has since left for Italy on the fifth and final leg of his five-nation tour after concluding his visits to Norway, Sweden, the Netherlands and UAE. Mr. Modi is set to arrive in Italy's capital Rome later tonight. Union Education Minister Dharmendra Pradhan today chaired a high-level meeting in New Delhi to assess preparations for the forthcoming NEET UG re-examinations for admission to undergraduate medical education to be held on 21st of next month. Mr. Pradhan directed that all gaps identified in the earlier examination process must be comprehensively addressed and eliminated. The minister emphasized that re-examination must be conducted in a secure, seamless and foolproof manner under stringent security protocols. During the meeting, directions were issued to hold coordination meetings with district magistrates and superintendents of police across state to ensure robust monitoring and effective implementation of examination arrangements. The Supreme Court today for the first time allowed euthanasia for rabid, incurably ill or demonstrably dangerous stray dogs, citing the need to protect human life and public safety. The Apex Court issued a series of directions aimed at addressing the growing stray dog population across the country. The order came in a Suomotu case initiated on 28th of July last year, following media reports highlighting incidents of stray dog bites and rabies cases, especially among children in the national capital. Meanwhile, the top court dismissed pleas seeking a recall of its earlier order on the relocation and sterilization of stray canines. The Kremlin today confirmed that Russian President Vladimir Putin will attend the BRICS summit scheduled to be held in September this year in New Delhi under India's chairmanship. The Russian embassy in South Africa, in a social media post, cited an aide to President Putin, Yuri Ushakov, as saying that the Russian president will attend the summit on 12th and 13th of September. Defense Minister Rajnath Singh reached Seoul today on a three-day official visit to South Korea after concluding his Vietnam tour. In South Korea, Defense Minister Singh will hold bilateral talks with his counterpart, Ahn Kyu-bak. The IMD has warned of severe heatwave conditions in North India over the next few days. The weather agency forecasts heavy rainfall in southern region. The IMD has issued a red alert for warm night conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha till Thursday. The weather agency has forecast heatwave to severe heatwave conditions over Delhi, Punjab, Haryana and Chandigarh for tomorrow. And with that, we end this news bulletin.
3: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्ज और एफएम बैंड के 100.1 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात के 11:10 हो चुके हैं। इसी के साथ हमारी आज की ये सभा यहीं समाप्त होती है। हम अपनी कल की सभा के समस्त कार्यक्रमों के साथ प्रातः 5:48 पर पुनः उपस्थित रहेंगे। अभी हमें दें इजाज़त। शुभ रात्रि। जय हिंद।